इनसे कहो, तुम हमारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा, तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतजर हैं। इनसे कहो, तुम अपने माल खार राजी खुशी खर्च करो या बकराहत, बहरहाल वो कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनके दिए हुए माल कबूल न होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादले ना खास्ता खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी में भी मुब्तलाए अजाब करे, और ये जान भी दे तो इनकार हक की हालत में दें। वो खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं हैं। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफ ज़दा हैं। अगर वो कोई जाए पनाह पा ले या कोई खोह या घुस बैठने की जगह तो भाग कर उसमें जा छुपे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से बाज लोग सदकात की तकसीम में तुम पर एतराजात करते हैं। अगर इस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाएं, और न दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपने फजल से हमें और बहुत कुछ देगा, और उसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा, हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं।

जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में न निकलो। इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है, काश इन्हें इसका शऊर होता। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे हैं उसकी जजा ऐसी ही है कि इन्हें इस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई ग्रोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और न मेरी मायत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो, और आइंदा इनमें से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज न पढ़ना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक थे। इनकी मालदारी और इनकी कसरत औलाद तुमको धोखे में

न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के जरिए से इनको इसी दुनिया में सजा दे और इनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। जब कभी कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिबे मकदरत थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि उन्हें जिहाद की शिरकत से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। बखिलाफ इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां उन्हीं के लिए हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अज़ीम शान कामयाबी।

बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज्र किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाजत दी जाए। इसी तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन लोगों ने कुफर का तरीका इख्तियार किया है अनकरीब वो दर्दनाक सजा से दोचार होंगे। ज़ाइफ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए ज्यादा राह नहीं पाते अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे मुहसिनीन पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज का मौका नहीं है जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए सवारियां बहम पहुंचाई जाएं, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम नहीं कर सकता तो वो मजबूरन वापस गए और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे और उन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीक जिहाद होने की मकदरत नहीं रखते। अलबत्ता एतराज उन लोगों पर है जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरखास्त करते हैं कि उन्हें शिरकत जिहाद से माफ रखा जाए। उन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के हां इनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला है। तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के औजरात पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने न करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, अब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सब का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्बे खाएंगे ताकि तुम उनसे सरफे नजर करो, बेशक तुम उनसे सरफे नजर ही कर लो, क्योंकि ये गंदगी है और इनका असली मकाम जहन्नुम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी ना होगा।

0: روایت ہے ترمذی کی.
1: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقت

0: اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے طبرانی کی. ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर. Every Monday, 10 a.m. onwards. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.
3: Assalamu alaikum saathiyo. Main hoon aapki host Sapa aur aap sun rahe hain Money Navigator. Bhai dekhiye, aaj ka jo hamara episode hai na, wo thoda sa mukhtalif sa hai. क्योंकि आज हम सिर्फ नंबर्स और स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज उस खामोश सी बेचैनी के बारे में बात करेंगे जो हम सब के दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती है. जब हम महीने के आखिर में पहुंच जाते हैं ना, तो जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, तब जाकर ये बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. चले भाई, मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करें. अगर आप इस वक्त ड्राइव नहीं कर रहे तो आंखें बंद करके एक्सरसाइज कर लें, वरना तो खुली आंखों से भी इमेजिन किया जा सकता है. अब आपने करना ये है कि आपने इमेजिन करना है एक सर्कल के बारे में. देखिए भाई, ये जो एक सर्कल है ना, ये इज इक्वल्स टू $1 million है. अब आपने करना ये है कि आपने अपने दिमाग में सिंपल से सर्कल्स इमेजिन करने हैं. सीधी सी बात है, वन सर्कल इज इक्वल्स टू $1 million. अब ये इमेजिन करें कि ऐसे 10 सर्कल्स हैं एक ही लाइन में. कितने हुए? ये हो गए $10 million. ठीक, अब इसमें एक और जीरो ऐड कर दें, कितना बना? $100 million. बिल्कुल सही. अब रुकिए मत, दिमाग में सर्कल्स बढ़ाते जाएं तब तक जब तक कि आपकी स्क्रीन छोटी ना पड़ जाए या आपकी इमेजिनेशन में आपके लिए काउंटिंग करना मुश्किल ना हो जाए. अब साथियों, वो जो एक पहाड़ सा आपने बना लिया है ना सर्कल्स का, ये याद रखें कि वो बन गया है $1 billion. सोचकर हुई ना खुशी? लेकिन अब एक कड़वी हकीकत भी सुन लीजिए. नाम आपने सुना होगा जेफ बेजोस का. भाई, जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, आपको पता है उनकी नेट वर्थ इस $1 billion से भी 100 टाइम्स ज्यादा है. मतलब उस पहाड़ जैसे 200 और पहाड़ जो कि हम अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए थे, उससे भी ज्यादा. अब ये सारी हकीकत जानने के बाद एक तरफ आते हैं मैं और आप. देखिए भाई, शायद इस वक्त आप दोहा के रश और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या फिर एक थका देने वाले दिन के बाद अपने घर में बैठकर मजे से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं. अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो जो एजुकेशन सिटी में पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, जो फ्यूचर के बारे में थोड़ा फिक्रमंद हो. देखिए, आपने वही किया जो आपको बचपन से सिखाया गया था, यानी कि आपने मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी डिग्री ली, एक रिस्पेक्टेबल नौकरी ढूंढी, आपने सारे रूल्स फॉलो किए साथियों. लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी पैसे का मसला कभी खत्म ना हुआ, और खत्म होता नजर भी नहीं आ रहा. रेंट हर साल ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, चाहे वो लूसेल हो या अलसद हो. बच्चों की स्कूल फीस एक बढ़ता हुआ बोझ लग रही है. कॉस्ट ऑफ लिविंग का ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है, लेकिन सैलरी का ग्राफ वहीं का वहीं खड़ा है. और सेविंग्स, अरे भाई, जब इन सेविंग्स के बारे में बात आती है ना, तो हम सबको घबराहट शुरू हो जाती है. अगर थोड़ी बहुत सेविंग्स हमारे पास हैं भी, चले मान लें, तो वो इतनी कमजोर हैं कि छोटा सा इमरजेंसी खर्चा, बस जैसे कार का इंजन खराब हो गया या हॉस्पिटल का कोई बिल आ गया, बस ये एक झटका लगता है और हमारी वो सारी सेविंग्स हवा हो जाती हैं. देखिए, मैं मानती हूँ एक्सपेक्ट्स के लिए तो प्रेशर

0: बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ ना कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, ना कोई परमानेंट रेसिडेंसी का सुकून। अच्छा, मजे की बात यह कि पीछे मुल्क में घर वालों की उम्मीदें भी हमसे हाई फाई होती हैं। हम यहाँ होते हैं तो हर वक्त वीजा और कॉन्ट्रैक्ट का डर होता है, और वो टिकिंग क्लॉक की आवाज हमारे दिमाग में एक ही चीज चला रही होती है, न जाने कब वापसी जाना पड़ जाए। साथियों, आप यहाँ मेहनत करते हैं ताकि पीछे सब खुश रहें, लेकिन क्या अपनी जात के लिए आप कुछ बचाते हैं? मजे की बात यह है कि हमारे लोकल भाई बहनों के लिए अलग तरीके का ही बोझ होता है भाई। उन पर खानदान की एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टेबिलिटी बरकरार रखने का प्रेशर है। सिर्फ आज का नहीं साथियों, बल्कि इनके लिए तो एक और ही मसला है कि इन्होंने तो आने वाली नस्लों के लिए भी एक लेगेसी छोड़कर जानी होती है ना, इस चीज का भी इनके पर बोझ होता है। साथियों, वेल्थ सिर्फ एक ख्वाब लगता है जो दूर से चमक रही है लेकिन हाथ नहीं आती। फिर आप और मेरे जैसे लोग थक कर अपना फोन उठाते हैं, क्या देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं भाई, और हाँ वहाँ देखते हैं कि 22-23 साल के यंग मिलेनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर, ये वो लोग हैं जो क्रिप्टो और ट्रेडिंग से रातों रात अमीर हो जाते हैं। तब चुभने वाला सवाल दिमाग में आता है, भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं नहीं कर सका? भाई इनका रास्ता मुझसे अलग कैसे रहा था? क्या मैंने मेहनत काफी नहीं की? और क्या मैं कभी उस मकाम पर पहुंच भी पाऊंगा जिसके बारे में मैं सिर्फ हाथ देखता हूँ, या जहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं? साथियों, सच तो ये है कि पैसे सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होते। मान लें भाई मेरी बात, ये एक सिस्टम है, सिस्टम का खेल। हमने जो रूल्स सीखे हैं ना, कि मतलब स्टडी हार्ड, गेट अ जॉब, ये वो फलाना धमाका, वो पुराने इंडस्ट्रियल जमाने के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए थे। वो उस वक्त काम करते थे जब इन्फ्लेशन कम थी और पेंशन सिक्योर थी। आज की दुनिया में भाई रूल्स बदल चुके हैं, आंखें खोलें, सब कुछ फास्ट ट्रैक चल रहा है। आज के दौर में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, आज के दौर में लेवरेज को समझना बहुत जरूरी है। वेल्थी लोग अपने वक्त के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अच्छा भाई, अक्सर औकात हमें स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे लड़ना है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। देखिए भाई, आज के इस एपिसोड में इसी रास्ते पर्दा उठेगा। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी 9 to 5 की जॉब के साथ साथ वो फाइनेंशियल कुशन बना सकते हैं जो आपको वीजा या कॉन्ट्रैक्ट के डर से आजाद कर दे। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन से लड़ने की, और उस मिसिंग पीस की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की पिक्चर हमेशा के लिए बदल सकता है। तो भाई, आपने करना सिर्फ ये है कि आपने क्यों नहीं रहना है। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी वो 3 असूल जो हर मिलेनियर फॉलो करता है, चाहे वो दोहा में हो या कहीं न्यूयॉर्क में बैठा हो। देखिए भाई, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। शायद कहीं ना कहीं आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई कहानी शेयर करना चाह रहे होंगे, या कोई मुश्किल मशवरा लेना चाह रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं @FM107Qatar। तो भाई, अभी जैसे ही ब्रेक खत्म होगी ना, हम बात करेंगे उस एक खास चीज की जो जेफ बेजोस और एक आम एम्प्लॉय के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। ये सिर्फ पैसा नहीं है साथियों, ये कुछ और है। कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM107।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। समझना भी शुरू कीजिए।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ मनी नेविगेटर ऑन FM107। साथियों, चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने पैसे के बारे में जो कुछ भी सीखा, क्या वो किसी ने बकायदा क्लास में बैठकर सिखाया था आपको? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमने ये सब एब्जॉर्ब किया है अपने घर की बातों से, स्कूल के सिस्टम से और अपने दोस्तों से, है कि नहीं? देखिए, हमारे कल्चर में, खास तौर पर देसी घरों में, पैसे पर खुलकर बात करना थोड़ा सा अजीब समझा जाता है। पैसा एक प्राइवेट या अनकंफर्टेबल टॉपिक होता है। जरा सोचे, आपने भी और आपके बच्चों ने भी हमेशा यही सुना है ना कि बेटा पैसा

0: पेड़ों पर नहीं उगता। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ज्यादा लालच मत करो, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। या फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई चना टपता है तो अपना ही मत्था भरता है। साथियों, ये फिक्र, ये डर हमारे दिमागों में बिठा दिया जाता है। हमारे स्कूल्स ने हमें एम्प्लॉयबल बनाना सिखाया, मतलब ये कि एक अच्छी नौकरी कैसे लेनी है, हमें ये सिखा दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाई पैसा काम कैसे करता है, हाउ डज मनी एक्चुअली वर्क्स। और भाई रही सही कसर हमारी मूवी और टीवी शोज ने पूरी कर दी है। वेल्थी लोगों को हमेशा ग्रीडी, बैड इखलाक और करप्ट ही दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम डाटा उठाकर देखें ना, तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। दुनिया के अक्सर अमीर लोग सेल्फ मेड हैं। वो किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, ना ही उन्हें कोई कारून का खजाना मिला था, उन्होंने जीरो से शुरू किया था। तो भाई सवाल ये है, अगर इतने सारे लोग जीरो से वेल्थ बना सकते हैं तो वो ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो मैं और आप नहीं जानते। साथियों, हमें एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला सिखाया गया था, सख्त मेहनत करो, सैलरी हासिल करो और रिपीट। इसे कहते हैं टाइम फॉर मनी। लेकिन चलिए इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर देखते हैं। इमेजिन करें कि आप कतर में एक अच्छी सी नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी तकरीबन 7,000 रियाल महीना है। साल के बने कितने, तकरीबन 84,000 कतरी रियाल, राइट? अगर आप एक रियाल भी खर्च ना करें, जो कि नामुमकिन है, तो भी आपको एक मीनिंगफुल वेल्थ तक पहुंचने में दसियों साल लग जाएंगे। लेकिन असल जिंदगी में तो रेंट है, दोहा के महंगी ग्रोसरीज हैं, बच्चों की फीसें हैं, हेल्थ केयर है और हर साल बढ़ती हुई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है। हकीकत ये है साथियों कि सैलरी आपको स्टेबिलिटी देती है, लेकिन फ्रीडम यानी कि आजादी, ना ना ना ना, वो उससे नहीं मिलती। और अब आप पूछेंगे कि क्यों? भाई क्योंकि जब आपका पैसा आपके वक्त से जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ एक सीलिंग या हद आ जाती है। देखिए ना, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, भाई आखिरकार आप कितनी देर तक जाग सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं? एक बार वक्त निकल गया तो भाई वो कभी भी वापस नहीं आता। तो भाई अब सवाल ये आता है कि लोग इस टाइम फॉर मनी के पिंजरे से कैसे निकलते हैं। देखिए, हर इकोनॉमी में, चाहे वो कतर हो या कोई और मुल्क, पैसा हमेशा वैल्यू की तरफ जाता है। इस बात को गौर से सुनिएगा साथियों, पैसा आपकी मेहनत या थकावट का रिवॉर्ड नहीं होता, पैसा वैल्यू को रिवॉर्ड करता है। मार्केट आपको इस बिना पर पैसे देती है कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी मुश्किल कितनी गहरी है। और भाई इसीलिए तो एक स्पेशलिस्ट एक जर्नलिस्ट से ज्यादा कमाता है, एक सिस्टम मैनुअल लेबर से ज्यादा पैसा बनाता है, एक सॉल्यूशन मेहनत से ज्यादा कीमती होता है। जरा सोचिए, अगर आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक बंदे की मदद करता है तो आपको थोड़ा पैसा मिलेगा ना, अगर वो हजारों लोगों की मदद करता है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर वो लाखों लोगों की मुश्किलें आसान करता है तो भाई वो वेल्थ क्रिएट करता है। यही तो वजह है कि बिजनेसेस स्केल्स बड़े होते हैं लेकिन नौकरी नहीं। साथियों, यहाँ सबसे बड़ा रूल याद रखने वाला ये है कि मनी फॉलोअर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नॉट मनी चेसर्स। पैसा उनके पीछे जाता है जो मसले का हल निकालते हैं, उनके पीछे नहीं जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। अब मेरी ये बात सुनकर आप कहेंगे कि भाई सफा, हम सॉल्यूशंस कहाँ से लाएं? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें साथियों, कतर में रहते हुए आपको किन चीजों से प्रॉब्लम होता है, कहाँ कोई प्रोसेस बहुत लंबा है, कौन सी सर्विस है जो बहुत पुरानी और सुस्त सी चल रही है, कौन सी ऐसी जरूरत है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई मार्केट में। देखिए भाई, सीधी सी बात है कि हर शिकायत एक सिग्नल है, हर फ्रस्ट्रेशन एक मौका है। आपको कोई नया गूगल या फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक असली ग्रुप की एक असली मुश्किल को बेहतर तरीके से हल करना है। याद रखें कि गोल ये नहीं है कि आपने पैशन ढूंढना है, गोल ये भी नहीं है कि आप यूजफुलनेस ढूंढें। बस दिमाग में ये बात याद रखें कि जब आप लोगों के लिए काम आसान करते हैं ना, तो लोग आपको खुशी खुशी उसके लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखने की है कि अगर एक बिजनेस पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है तो वो बिजनेस नहीं है, वो बस एक फैंसी जॉब है। देखिए, असल लेवरेज तब आता है जब आप सिस्टम्स बनाते हैं, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सिखाना, ये वाले काम करते हैं। जब आपकी वैल्यू आपकी मौजूदगी के बगैर लोगों तक पहुंचने लगे तो टाइम का रास्ता साफ हो जाता है भाई, वहां से असली आजादी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि अब आपका पैसा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप आज काम पर आए या ना आए। देखिए साथियों, आज की सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। सच तो ये है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक किस्म का औजार। असल में आपको पैसा नहीं बल्कि वो चीज चाहिए जो पैसे से मिलती है, जिसमें आती है सिक्योरिटी, यानी कि इस बात का इत्मीनान कि कल अगर कोई मसला हो तो आप उसके लिए तैयार हैं। एक और चीज आती है चॉइस, यानी कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का इख्तियार। फिर उसी के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है, सुकून की नींद आना बिना कर्जे या बिल्स की फिक्र के। और भाई टाइम, यानी कि अपने घर वालों के लिए वक्त निकालना और अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना भाई। और एक और बड़ी बात ये कि बिना किसी डर के यस या नो कहने की ताकत रखना, अपने पेरेंट्स की खिदमत करना बिना फिक्र के, सफर करना और बिना किसी गिल के आराम करना। और यही तो असली इनाम होता है उस पैसे का जिसे हम कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथियों चले इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और भी फाइनेंशियल बातें करेंगे। सुनते रहिए FM 107 पर सफा के साथ मनी नेविगेटर।
1: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। समझना भी शुरू कीजिए।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा ऑन FM 107। देखिए भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी उस ब्रोकन इक्वेशन की जो हमें बचपन से सिखाई गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि हकीकत में क्या चल रहा है भाई, और इसके बारे में क्या किया जाए। देखिए भाई, दुनिया की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ हर तरफ चमक धमक है, हम अपना रास्ता कैसे बनाएं, सवाल ये उठता है। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 गोल्ड रूल्स। ये सिर्फ टिप्स नहीं है साथियों, ये वो रास्ते हैं जो आपको फाइनेंशियल दलदल से निकाल कर आजादी की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, लोग समझते हैं कि अगर उनकी सैलरी 20,000 रियाल है तो वो अमीर हैं। साथियों सैलरी आपकी वेल्थ नहीं है। सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए कतर जैसे मुल्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनका अकाउंट खाली हो ही जाता है, यानी कि वो पेचेक टू पेचेक ही जी रहे होते हैं। देखिए असल रूल ये है कि वेल्थ वो नहीं है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वो है जो आप बचाते हैं। और इसके लिए कुछ एक्शंस दरकार हैं भाई। एक्शंस ये कि अपनी इनकम को ट्रैक ना करें, अपने नेट सेविंग रेट को देखें भाई, कोशिश ये करें कि अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले अपनी कमाई का कम से कम 20% इन्वेस्ट या सेव करें। अच्छा भाई ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चीजों से पहले वक्त खरीदें, यानी बाय टाइम बिफोर यू बाय एनीथिंग। देखिए हम अक्सर नया फोन या महंगी गाड़ी खरीदते हैं ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अमीर लोग वक्त खरीदते हैं साथियों। अगर कोई ऐसी सर्विस या टूल है जो वक्त बचा सकता है ताकि आप कुछ नया सीखें या आराम कर सकें, तो भाई वो किसी भी लग्जरी आइटम से ज्यादा कीमती है। सवाल ये आता है कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये चीज मुझे ज्यादा आजादी देगी या मेरा वक्त और सुकून छीन लेगी। देखिए भाई फजूल के लोन्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें जो आपको सालों तक काम करने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर भाई तीसरी चीज आती है, पहले इमरजेंसी बफर बनाएं, बिल्ड एन इमरजेंसी बफर फर्स्ट। तो भाई साथियों बात ये है कि जहां पर हम रह रहे हैं वो एक एक्सपेक्ट हैवी कंट्री है, यहाँ जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। खुदा ना खास्ता अगर आज नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन निकाल सकते हैं, कभी सोचा है? तो भाई इसका सलूशन ये है कि कम से कम 6 महीने का खर्चा यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस एक अलग अकाउंट में रखें ना। याद रखें कि ये इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, ये आपका पीस ऑफ माइंड पैसा है। जब ये हमारे पास अकाउंट में सेफ पड़ा होता है ना, तो काम करने का मजा भी अलग ही होता है और डर भी कम लगता है। अच्छा भाई चौथी चीज आती है

इनकम के पीछे मत भागें। देखिए मसला हल करें ना, डोंट चेस इनकम, चेस द प्रॉब्लम। भाई देखिए साइड इनकम तभी चलती है जब वो किसी का असली मसला हल करे। कतर की मार्केट को देखें, क्या लोगों को कन्वीनियंस चाहिए या नहीं चाहिए? क्या SMEs यानी छोटे बिजनेसेस को डिजिटल सर्विसेज की जरूरत है, या क्या ट्यूटरिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की डिमांड है? भाई देखिए आज अपने आसपास लोगों की 5 ऐसी शिकायतें लिखें जो आप बार बार सुनते हैं। वो 5 शिकायतें ही आपकी अपॉर्चुनिटी लिस्ट हैं साथियों, ये याद रखिएगा। अच्छा भाई 5वें पॉइंट तक आए तो मैं आपको बता दूं कि 5वें पॉइंट पे हमारी लिस्ट में है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए भाई वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन कम सैलरी नहीं है बल्कि बढ़ते हुए खर्चे हैं। प्रमोशन हुई, नई गाड़ी ली, बोनस मिला, बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए कि नहीं, क्योंकि दूसरों के पास भी मौजूद है तो आपको भी थोड़ा बहुत लालच होता होगा। देखिए भाई अपने एसेट्स यानी वो चीजें जो पैसा बनाती हैं, उनको अपग्रेड करें ना, लाइफस्टाइल को हमेशा आखिर में रखें। अच्छा भाई 6 नंबर पे जो हमारे पास चीज आती है वो है पैसे को वक्त से जुदा करें, सेपरेट इनकम फ्रॉम टाइम। अगर आपका पैसा तब रुक जाता है जब आप काम रोक देते हैं तो आप खतरे में हैं साथियों। देखिए भाई असली लेवरेज तो तब आता है ना जब आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपको तब भी इनकम लाकर दे रही होती हैं जब आप सोए पड़े रहते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन कोर्सेज, कंसल्टिंग पैकेजेस जो कि घंटे के हिसाब से नहीं रिजल्ट के हिसाब से होते हैं, स्केलेबल सर्विसेज। देखिए मैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना हमेशा अपने आप से एक सवाल जरूर किया करें कि क्या ये काम मुझे तब भी पैसा लाकर दे सकता है जब मैं सोया पड़ा रहूं? A question to be asked. भाई इसके बाद आता है हमारा 7 नंबर का पॉइंट, यानी कि एक हाई वैल्यू स्किल्स सीखें। लर्न वन हाई वैल्यू स्किल साथियों, ये बहुत जरूरी है। एक खास हुनर जो कि आपकी इनकम को किसी भी प्रमोशन से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। गल्फ रीजन में इन स्किल्स की बहुत कदर होती है साथियों, जैसे कि सेल्स एंड नेगोशिएशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन टूल्स एंड लीडरशिप। देखिए अगले 12 महीने सिर्फ एक स्किल और रोजाना प्रैक्टिस, याद रखें ये अपग्रेड आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं भाई 8वें पॉइंट की, यानी बैड डेट को खत्म करें, रिड्यूस बैड डेट्स एग्रेसिवली। याद रखें साथियों हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। अगर हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करें ना तो मैं आपको 2 टोके बाद बोल सकती हूँ कि ये वेल्थ किलर है। इसका सूद यानी इंटरेस्ट आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा। कार लोन्स के बारे में बात कर लें, भाई न्यूट्रल हैं लेकिन रिस्की हैं। भाई आपने करना ये है कि किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने हाई इंटरेस्ट डेट्स को जड़ से खत्म करें। और भाई एक और सेकेंड लास्ट बात ये कि जज्बाती नहीं सादगी से इन्वेस्टमेंट करें ना। देखिए भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। देखिए आज के जमाने में मामला ये है कि लोग हाइप के पीछे भागते हैं या किसी दोस्त के कहने पर किसी क्रिप्टो में या कहीं पे भी पैसे फेंक देते हैं। अपना एक रूल बना लें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट मत करें, मेहरबानी करके नहीं करें ये काम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस ना करें। भाई सीधी सी बात है कि लॉन्ग टर्म सोचना हमेशा मार्केट को टाइम देने से बेहतर होता है। देखें आखिरी बात यह है कि अपनी वेल्थ की हिफाजत करें, प्रोटेक्ट बिफोर यू ग्रो। वेल्थ अगर प्रोटेक्टेड नहीं है ना तो वो फ्रेजाइल है। देखें कतर में इसका मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्लैरिटी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि विल्स और नॉमिनेशंस। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना, अगर मैं कल यहाँ ना हूँ तो मेरे घर वाले कितने प्रोटेक्टेड हैं। साथियों ये 10 असूल आपकी जिंदगी की नई बुनियाद बन सकते हैं। साथियों एक बात तो पक्की है कि पैसा कमाना एक फन है, एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना लिटरली एक साइंस है, रॉकेट साइंस। ओके भाई अब हम शो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल दें। अक्सर लंबी बातें भाई लोगों को याद ही नहीं रहती, इसलिए अब वक्त है हमारे क्विक फायर मनी टिप का। देखिए भाई ये वो बातें हैं जो आपको अपने फ्रिज पर लिख कर रख लेनी चाहिए या अपने फोन के वॉलपेपर पे टिका कर रखनी चाहिए। शॉर्ट, शार्प और सीधा निशाने पर लगने वाली।

तो भाई शुरू करते हैं पहली चीज से, पे योरसेल्फ फर्स्ट नॉट लास्ट। लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहले रेंट देते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, फिर दोस्तों के साथ बाहर खाना खाते हैं और फिर आखिर में जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। बहुत गलत बातें बता रही हूँ। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का हिस्सा निकाल कर अलग कर दें, बाकी बचे हुए पैसों में महीना गुजार लें चुपचाप। आप अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए यानी फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर दूसरी बात देखी जाए तो नेवर कंफ्यूज बिजी विद प्रोडक्टिव। देखें, इस लाइफ में हम सब बिजी हैं, सिंपल सी बात है, आप भी मैं भी। लेकिन एक बात याद रखें कि सारा दिन थक कर चूर हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने पैसा कमाने वाला काम किया है। हाई वैल्यू कामों पर फोकस करें साथियों, सिर्फ भाग दौड़ पर नहीं। और भाई आगे बढ़े तो कंपेयर लेस प्लान मोर। जब आप सोशल मीडिया पे किसी दोस्त की नई गाड़ी या लग्जरी वेकेशन देखें ना, तो मेहरबानी करके आप दिमाग कंपैरिजन मोड पर मत लेकर जाएं। वो आपकी एनर्जी ज़ाया करता है भाई। उनकी लाइफ की हाइलाइट्स देखकर अपनी लाइफ की प्लानिंग ख़राब मत करें, मेहरबानी। उनका रास्ता अलग है भाई, आपका मकसद अलग है। कंपैरिजन छोड़ें और मैच्योरिटी के साथ प्लानिंग पक्की करें भाई। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि वेल्थ इज क्वाइट, डेट इज ऑलवेज लाउड। अच्छा, मैं एक पर्सनल बात बताऊं, ये मेरी फेवरेट टिप है। आपको पता है मैंने अक्सर अमीर लोगों को ये देखा है कि वो पुरानी गाड़ी चला रहे होते हैं या सादगी से कहीं रह रहे होते हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। वेल्थ खामोश होती है साथियों, लेकिन ये जो कर्जा होता है ना, डेट, ये बहुत शोर मचाता है। वो चमकती हुई गाड़ी, वो महंगी वॉच, जो आपने लोन पर ली है भाई, वो चीख चीख कर ये कह रही होती है कि मैं किसी और के पैसों से हूँ। असली सुकून ना खामोश वेल्थ में होता है, जितना है उसी में एडजस्ट कर लें। और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है ना, वो ये है कि फ्रीडम इज़ बेटर देन स्टेटस। लोगों में अपना रुतबा स्टेटस बनाए रखने के लिए अपनी आज़ादी यानी अपना फ्रीडम मत बेचें भाई। 5-star होटल में डिनर करके 1 घंटे का स्टेटस तो मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या वो आपको उस नौकरी से आज़ादी दिला सकता है जो आपको पसंद नहीं है? भाई हमेशा स्टेटस के ऊपर आज़ादी को तरजीह दें, बहुत सिंपल सी बात है। और एक और बात ये कि कैश फ्लो मैटर्स मोर देन नेट वर्थ अर्ली ऑन, यानी कि भाई शुरुआत में इस बात पर परेशान मत हों कि आपके पास कितने मिलियन हैं, बल्कि उल्टा इस बात पे फोकस करें कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। याद रखें कि कैश फ्लो वो खून है जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को जिंदा रखता है। जब कैश फ्लो सेट हो जाए, नेट वर्थ खुद ब खुद बन जाती है साथियों। और आखिर में भाई एक गोल याद रखें, द गोल इजंट बीइंग रिच, इट्स अनवरिड। और आखिर में सबसे कीमती बात ये कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ बैंक में पैसों का ढेर लगाना नहीं है साथियों, मकसद ये है कि आप अनवरिड हो जाएं, कि जब आप रात को सोएं तो आपको कल के बिल का डर ना हो, कि जब आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत हो तो आपको पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। साथियों, असल अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसकी फिक्र सबसे कम है। तो भाई इन टिप्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पैसा सिर्फ जेब नहीं पहले सोच में होना चाहिए। साथियों, आज हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, हमने सर्कल्स इमेजिन किए, अमीर लोगों की साइकोलॉजी समझी और उन 10 असूलों पर बात की जो हमारी फाइनेंशियल ज़िंदगी की बुनियाद बदल कर रख सकते हैं। लेकिन शो ख़त्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक पल के लिए रुक कर असली सच्चाई पर ज़रा गौर करें। हमने इतनी बातें क्यों की भाई, इतनी मेहनत क्यों की? याद रखें, पैसा मंजिल नहीं है, पैसा सिर्फ एक रास्ता है साथियों, एक टूल है, एक औजार है। जैसे एक हथौड़ा घर बनाने के काम आता है ना, बिल्कुल वैसे ही पैसा आपकी ज़िंदगी की खुशहाली बनाने के काम आता है। कभी आपने सोचा है असल जीत क्या है? मुझे लगता है असल विन पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि ये 4 चीज़ें हैं, चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कंट्रोल कि आपकी ज़िंदगी के फैसले आपके बॉस या बैंक के पास नहीं, आपके अपने हाथों में हो, काम यानी कि वो सुकून जो तब आता है जब आपको अगले महीने के रेंट की फिक्र नहीं होती, और सबसे बड़ी चीज़ वक्त यानी कि टाइम, वो

जो आप अपने बच्चों, अपने माँ बाप और अपनी जात को दे सकते हैं। साथियों, अगर आप मुझसे पूछे ना कि सफा आज के इस एपिसोड का निचोड़ या समरी क्या है, तो भाई मैं एक लाइन में ये कह सकती हूँ, सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, क्रिएट वैल्यू, स्केल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेन फ्रीडम। यानी कि सही मसले हल करें, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, उस सॉल्यूशन को टेक्नोलॉजी और सिस्टम के जरिए बढ़ाएं और आखिर में अपनी जिंदगी हासिल करें। साथ ही एक सिंपल सी बात है, मनी चेसर मत बने, सॉल्यूशन चेसर बने। जब आप लोगों की मुश्किलात हल करते हैं ना, तो भाई कायनात का कानून है कि पैसा आपको ढूंढता हुआ आता है। तो भाई ये था हमारा आज का सफर मनी नेविगेटर का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू आपके दिमाग में एक नया चिराग रोशन करेगी। शुक्रिया कि आपने आज मुझे वो चीज दी जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है, आपका वक्त। भाई सीधी सी बात है, पैसा तो वापस आ ही सकता है, लेकिन ये वक्त जो आपने मुझे दिया है ना, ये वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए भाई मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ। चलिए भाई, अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्वाबों पर यकीन रखें और हमेशा याद रखें, आपकी असली वेल्थ आपका हौसला है। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो क्या ही दूसरों का ख्याल रखेगा और वो क्या ही पैसा कमाएगा। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे मनी नेविगेटर ऑन FM 107। सफा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को संवार दें।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबने कराम प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान कुरानी मोती के आज के समंदरी सफर में आपका खैर मकदम है। आज गुफ्तगू होगी सूरह अनआम पर। सूरह अनआम कुरान करीम की अजीम और गहरी सूरतों में से एक है। बाज़ रिवायात और आसार में यह भी मनकूल है कि जब यह सूरत नाजिल हुई तो उसके साथ हजारों फरिश्ते थे। अब इस रिवायत की तफसीलात और सेहत और ज़ुल्फ अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि सूरह अनआम अपने मजामीन, दलाइल, मवाइस और अकीदा तौहीद की तौज़ीह के एतबार से कुरान की इंतहाई अहम सूरतों में शुमार होती है। इसका बुनियादी महवर वही अजीम मकसद है जिसके लिए मक्की कुरान मुसलसल नाजिल हो रहा था, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की बंदगी का इस्बात और हर उस अकीदे, रिवायत और तसव्वुर की तर्दीद जो इस खालिस उबूदियत के रास्ते में हायल हो। सूरह अनआम ऐसी सूरत है जिसके साथ अगर इंसान ठहर ठहर कर चले तो हर चंद आयात के बाद एक नया

यहां इल्मी दरवाजा खुलता है। कहीं तौहीद है, कहीं रिसालत, कहीं आखिरत, कहीं शिर्क के बातिल तसव्वुरात की तरदीद, कहीं इंसानी नफ्स की कैफियत, कहीं मुआशरे की गुमराहियों

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर

0: FM 107. Time check.
1: आइए भाई साहब, ये दुकान खुल चुकी है। 6:01। एक व्हाट्सएप जो जिंदगी बदल दे, एक व्हाट्सएप जो जिंदगी बदल दे। एफएम 107 पर दोहा वाला कबीर। एक व्हाट्सएप। भाई साहब उधारी नहीं चलेगी, सॉरी बोरिंग का टाइम है। अभी सुबह शटर खुला है दुकान का, अभी नहीं। आइए भाई साहब, एक व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप 6622107 पर, 6622107 पर आइए।

लेकिन आप गाना बहुत जरूरी है हमारे व्हाट्सएप पे भाई साहब गाल दो मैसेज 666-221-07 नंबर है मैसेज मैसेज सुबह सुबह आते तो अच्छा लगता है एनर्जाइज लगता है। मैं पता है रास्ते में मैं एक वीडियो देखता आ रहा था उसमें एक बंदा पता किस चीज का बर्गर बना रहा था आपको पता है लेट मी टेल यू उसने कहा बढ़िया ब्रेकफास्ट है जैक फ्रूट बर्गर। भाई साहब ऊपर से आखिर में बोल रहा उसने पता क्या बोल रहा कह रहा है चिकन जैसा लगेगा। अब भाई मैं चिकन खा लूंगा ना जैक फ्रूट का बर्गर क्यों मन करता है। तो ऐसा हो रहा है दुनिया में पर कोई बात नहीं आप चाय के साथ तैयार है मैं अपने चाय के थर्मस के साथ तैयार हूँ भाई बहुत ही क्यूट सा छोटा सा थर्मस है मेरे पास बढ़िया उसमें 5 कप निकलते हैं चाय मजा आ जाते हैं भाई साहब। तो मैं आ चुका हूँ आप भी आ जाइए 666-221-07 पर तमाम बच्चों को जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं जिनका मूड नहीं है लेकिन जा रहे हैं जिन माँ बाप का मूड नहीं है सुबह उठने का वो बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं सबको मेरा प्यार। इट्स ऑलवेज अ बिजी डे जब स्कूल की बारी आती है एक मैसेज आया मेरे पास सलाम फ्रॉम अतीक कतर से फातिमा गोइंग टू स्कूल। अरे वाह फातिमा को बहुत सारा प्यार अतीक भाई वालेकुम असलम आपको एक मैसेज है आसिफ भाई कह रहे हैं असलाम वालेकुम भाई फेरी वाला ब्रदर फेरी वाला गुड मॉर्निंग मेरा भाई सुभाष भाई कैसे मेरा भाई वालेकुम सलाम बहुत प्यार सुभाष भाई को एंड देन

0: नहीं भाई लिखा अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये वालेकुम सलाम जुनैद भाई कैसे चल रहा है, तौफीक साहब अलवकरा से वालेकुम सलाम भाई लिखा आ गया भाई, भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कब्बू भाई कैसे, मैं बढ़िया भाई आप बताइए सलमान भाई क्या चल रहा है सल्लू भाई। और मोहसिन साहब का मैसेज है, फिर अब्दुल जब्बार का मैसेज है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट डे वालेकुम सलाम, एंड देन एक मैसेज आयो, क्या नाम है भाई ये आपका नाम क्या है, खुबेब नाम है आपका क्या, मैं अस्सलाम वालेकुम मुस्फिरा गोइंग टू स्कूल, माशाल्लाह ये अरे पहली मरतबा नाम सुना है ना, मतलब क्या है, मतलब इस नाम का मतलब क्या है, काफ़ी अलग और यूनिक नाम लगा मुस्फिरा, सही पढ़ रहा हूँ ना मैं, मुझे ना मतलब बताइएगा भाई, मुझे बहुत प्यारा नाम लगा ये, ब्राइट फेस, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है भाई, बहुत प्यारा नाम है, एंड मुस्फिरा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, नाम लेने में मज़े आ रहे हैं भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत नाम रखा है आपने। अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे भाई, बढ़िया। अच्छा सुनो भाई मैं आज बता दूँ आपको, बहुत बढ़िया सी कहानी है तो मैं टाइम लेके सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज की कहानी जब आप मेरे साथ साथ सुनेंगे ना तो उस कहानी में बिल्कुल खो जाना, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अरे शब्द नहीं मिल रहा है, चाय पी के आएंगे शब्द भी, लेकिन यूँ समझ लो बहुत ही बढ़िया सी कहानी है इतना लंबा पॉज लेगा ना, बढ़िया सी कहानी है, वो कैबलरी काम नहीं कर रही सुबह सुबह ना, तो कोई गल नहीं आप आ जाओ फिर बात बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं भाई। 666-22-107 फिलहाल ये नंबर है, ये बताना चाह रहा था मैं। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई आपके आते ही लगता है कि सामने शाम हो रही है, अरे कह रहे लगता ही नहीं सुबह हो रही है, कह रहे शाम ही हो रही है भाई, जो आपको बढ़िया लगे वो लगना चाहिए, आप बस खुश है ना, इंपॉर्टेंट ये है और कोई नहीं है भाई। एक मैसेज है भाई आज कौन से आइटम लेके आए हैं बेचने के लिए, भाई ऐसा बढ़िया आइटम आज भाई ऐसा बढ़िया है, आप जो हैं कहेंगे ये वो वाली बात थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें टाइप, समझ रहे हैं आप, आपको मजा आ जाएंगे भाई, पूरी पूरी गारंटी है। एक सुभाष भाई कह रहे हैं जैक फ्रूट का बर्गर तो नहीं सुना भाई, पर सब्जी ज़बरदस्त टेस्ट होती है, सब्जी भाई एक नंबर है जैक फ्रूट, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, जैक फ्रूट एक नंबर चीज़ है भाई, लेकिन जैक फ्रूट का बर्गर क्यों बन रहा है, वो तो आलू के टिक्के तक सही रहना चाहिए ना। एक मैसेज है कबीर भाई, कार का सेट स्लिप ट्राई किया, सेट स्लिप ट्राई किया, कार का सेट स्लिप यो क्या हुआ है भाई, वो साइड में लगता है वो वाला क्या जो नीचे गिरने से बचाता चीज़ों को, वो वाला कह रहे हो क्या। तबसो मैन का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, नीड सम मंडे मोटिवेशन, इज ऑलवेज अ बिजी डे व्हेन स्कूल स्टार्ट्स, और टिफिन बॉक्स में क्या रखना क्या अलग टेंशन है, बहन आज क्या है वैसे टिफिन में क्या रखा है आज, बच्चे वैसे आजकल बहुत ही हेल्दी खाना ले जाते हैं हमारे टाइम पे परांठे जा रहे हैं भाई, मक्खन तैरता हुआ उसमें, लेकिन आजकल बच्चे बहुत वो हेल्दी लंच ले जाते हैं, उसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं नट्स वगैरह होते हैं। एक मैसेज, सीट, हाँ वो तो मैं समझ गया, कार की सीट पर क्या मतलब कार स्लिप, अच्छा वो हो अच्छा कल वाली बात कर रहे हैं अभी इरफान भाई को आने दो भाई, मैं जानना चाहता हूँ इरफान भाई कल कैब में स्लिप हुए कि नहीं हुए, कि कल की स्टोरी नहीं मिला ब्रो। ब्रो मैंने आपको एक चीज़ भेजी हुई है पहले की, ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, आसिफ भाई नज़र डाली है इस पर, ये दिख रहा है आपको जो मैंने भेजा है आपको, इस पर ध्यान दें, इसके अंदर है कहानी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम गुलाम साहब कैसे हैं भाई, बढ़िया। तो अब भाई 10 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होगी, और इसके बाद मॉर्निंग के अज़कार के बाद, सुबह के अज़कार के बाद इंशाल्लाह वहाँ भी शुरू करेंगे, बढ़िया बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, कहानी तो भाई एक नंबर है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और जितने बच्चे भी स्कूल की तरफ जा रहे हैं मेरा उनको बहुत सारा प्यार, एंड आई होप कि उनका दिन बहुत बढ़िया जाए। आई नो भाई सुबह स्कूल जाना एक अलग टास्क है, ऊपर से माँ बाप को उन्हें छोड़ना जिन्हें सुबह नहीं उठ रहा वो एक अलग टास्क है, कोई नहीं मैं भी आपके साथ ही हूँ, आप ही की सफ में खड़ा हूँ है ना। गुड मॉर्निंग, ठीक है जी आ जाऊँ।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

यूनिफॉर्म बन गए, सो गए थोड़ी देर। वो जो 5 मिनट की नींद यूनिफॉर्म पहन के आती है ना, उसका तोड़ नहीं है भाई। और दूसरी स्पेशल नींद बच्चों के लिए होती है जो बस में मिलती है उनको, जो बच्चे पूरी करते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल पूरी नहीं करते हैं ऑब्वियसली, इट्स ओके, जो कि मस्ती मजा करते हुए जाना इज मोर फन ऑब्वियसली, मगर जो बस में कर रही नींद आती है भाई उसकी बात ही कुछ और है। बट एनीवे, तमाम बच्चों को जो आज जिनका मन नहीं स्कूल जाने का, आई टोटली अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट। और एक मैसेज है, अरे वाह माशाल्लाह, फाइनली आज मैंने सेल्फी देखी, कितनी प्यारी सेल्फी है। सलाम अंकल कबीर फ्रॉम धनीन और रदवा ने मुझे उनकी सेल्फी आई है मेरे पास, ये इसरा बहन ने मुझे भेजी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें क्या लिखा है, हियर वी कम ग्रेड 3 धनीन एंड KG 2 रदवा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बात तो दोनों को सेल्फी में एकदम

सवाल पूछने जा रहा था, एंड अक्सर ये सवाल जो है, मैं मेरा ये डिस्कशन होता है सरवर भाई से या अपने घर पे, एंड वी ऑलवेज डिस्कस केयर के ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो दौर है, ऑफकोर्स एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी कतर में बहुत सारे ब्रांड्स ने हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतार दी हैं। अब जो लोग नहीं लेना चाहते उसे, उसके दो वजह होती हैं। एक तो भाई ऑब्वियसली जो उसका कॉस्ट है थोड़ा हाई है, मगर कॉस्ट अगर नीचे की तरफ आ जाए तो उसमें भी लोग ये कहते हैं यार वो गाड़ी चलाने वाली फील नहीं आ रही है, दैट इज ऑल्सो देयर नो। पर आपको मैं फ़ायदा बताऊँ, हम लोग होता ना मिडिल क्लास वाले फ़ायदे, तो मैं तो ये सोचता हूँ भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी का फ़ायदा ये कि यहाँ पे जो वो हरी पार्किंग मिल जाती है ना, आप सोचिए कितनी एक्सक्लूसिव पार्किंग है, वो टेंशन ही नहीं भाई साहब दुनिया जा रही है पार्किंग ढूंढने, आपको सामने मिल गई, अरे भाई यहाँ लगा दो। एक मैसेज, भाई पसंद ही नहीं है, नहीं है कि है, ये AI बीच में क्या लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपकी। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू अलीना। अलीना मैं वेट कर रहा था अलीना का मैसेज, अलीना का मैसेज हमेशा सुबह आता है उन बच्चों में, अब बहुत अभी लिस्ट में 5-6 बच्चे हो चुके हैं सुबह सुबह मैसेज करते हैं ना, रियली रियली लव इट, अच्छा लगता है यार बच्चे भी सुन रहे हो। एक मैसेज है, पार्किंग की वजह से गाड़ी, मतलब क्या पसंद नहीं आती है कि, मैं समझा नहीं बहन ये, भाई आप साइकिल ले लो, बहन मैंने ट्राई की है साइकिल आपको क्या लगता है मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया होगा, मैं सिर्फ बोल देता हूँ रेडियो पे आके, मैंने लिटरली साइकिल लेके ट्राई की है, वक्रा में बहुत घुमाई है मैंने, पर मुझे समझ में आ गया मारे बस की कोई नहीं को नहीं है बात। एक मैसेज है, सुबह सुबह प्रमोशन किस चीज़ का भाई। एक मैसेज है, सलीम इज फीलिंग इंजॉय, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बढ़िया सेल्फी ली है भाई आपने। और ये अच्छा, ये आप अभी स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्या सीन चला है भाई। और एक मैसेज है, टॉपिक चेंज कर ले, नहीं बहन मैं इसी बारे बात करूंगा। तो गिवन अ चॉइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनका जो रेट है, उनका जो प्राइस है, वो एकदम उस ब्रैकेट में आ जाए जहां पे बाकी गाड़ियां मिलती हैं, वुड यू बाय इट और नॉट। अब तो ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि अभी तो वो जमाना तैयार है भाई, क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ मेरे जान पहचान वाले जिन्होंने हाइब्रिड गाड़ी ली और इलेक्ट्रिक पे ही दौड़ाते रहते हैं। तो आपका क्या सीन है, व्हाट डू यू बिलीव के आपके अंदर से आवाज़ आती कि यार अगर ये इस बजट में आ जाए इलेक्ट्रिक गाड़ी तो भाई मैं ले लूँगा, क्या सीन है आपका। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, जो गाड़ी पेट्रोल डीजल वाली चलती है वो इलेक्ट्रिक कहाँ स्पीड पकड़ेगी। तो मामला यहाँ स्पीड का आ गया, ये भाई कह रहे हैं मोहम्मद भाई का ये वाला पॉइंट ठीक है, ओके। एक मैसेज आ रही है अंसारी साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, मैं तो एकदम अच्छा हूँ, अच्छा एकदम अच्छा हूँ, वालेकुम अस्सलाम भाई मैं भी एकदम अच्छा हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर शानदार। जो लोग कॉल करना चाहें वो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पर। एक मैसेज, इको फ्रेंडली के लिहाज से ठीक है, बाकी मज़ा तो पेट्रोल का ही है भाई, यही तो बात है, यही तो सारी बात है, दो गाड़ी रखनी पड़ जाएगी, ये शौक बड़ी चीज़ है उसाम भाई भी कह रहे हैं देखो बात सारी ऐसे, इको फ्रेंडली वगैरह सब ठीक है, उसके बिल्कुल हक में हो, लेकिन जो पेट्रोल की गाड़ी का मज़ा है रुण रुण रुण, वो नहीं मिल रहा है। आई गेट द पॉइंट। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो पेट्रोल गाड़ी ही चूज़ करूँगा, क्या है जब पेट्रोल की खुशबू ना आए तो अरे यार हम देसियों के साथ ये छोटे छोटे जो मसले ना, ये बड़े कमाल के मसले, बड़े प्यारे मसले हैं ये। आरिफ भाई कह रहा है भाई जब तक वो पेट्रोल की आती नहीं है ना वो खुशबू, अरे तब तक गाड़ी चलाने का फील नहीं है भाई, गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल की अगर खुशबू आ जाए ना तो दिक्कत है भाई एक मंत्र से भाई इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल की स्मेल नहीं तो ड्राइव क्या हो ही इलेक्ट्रिक। सुम्बिल बहन आप वैसे अमूमन गाड़ी चलाती हैं, ये बिल्कुल नहीं चलाती हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया, मुदस्सर भाई क्या हाल है भाई के। और इनके बाद मैसेज आया, इलेक्ट्रिक में खर खर की आवाज़ नहीं आती भाई कह रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक में यार वो खर खर की आवाज़ नहीं आती है, खर खर खर खर इग्निशन देने पर ना वो तो यार फील है भाई उसका कोई तोड़ नहीं है। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई हाउ आर यू, इन्होंने मेरा नाम लिखा है KBR, भाई किसी बाइक का नाम लग रहा है पर थैंक यू, आई विल प्रिफर पेट्रोल वाली गाड़ी, पेट्रोल की खुशबू, ओहो यही तो मसला है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो लोग इसके वो भी है ना डीलर्स, मेरा एक दोस्त है यहाँ पर ही डीलर है, मैं उससे हमेशा कहता हूँ भाई तुम देसियों को बेचोगे ना इलेक्ट्रिक तुम्हें बहुत मुश्किल आने वाली है ये लोग नहीं लेने वाले,
इनको जब तक बिल्कुल ये ना लगे ना कि ये आखिरी ऑप्शन।

ने, तब तक नहीं हो रहा है शिफ्ट, ये मैं लिख के दे दे रहा हूँ और मेरे सामने ये देखो सवाल। इरफान भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। इरफान भाई क्या डीबी लाया है भाई एकदम, है मतलब क्या बात है। और एक मैसेज आया है इलेक्ट्रिक्स, ये लोग ये है बिल्कुल देसी जवाब। उसाम भाई कह रहे हैं इलेक्ट्रिक तो ये टॉयज चलते हैं यार, बच्चे चलाते हैं हम थोड़ी, ये मेरा भाई। सुमुल बहन ड्राइव करती हुई जा रही है, उन्होंने बाकायदा उसका शो ऑफ कर दिया। सुमुल बहन थैंक यू सो मच, पॉइंट टू बी टेकन। एक मैसेज है मेरा तो कहना है कि पेट्रोल कार्ड तो हो लेकिन है ऑटोमेटिक क्यों डिस्टेंस। भाई मैं समझ नहीं पाया, बदलने का मज़ा आता है। अच्छा ओ अच्छा ओके, इन्होंने एक और बात इसके टॉप पे कर दी है। मुदस्सिर भाई ने कह रहे हैं भाई ऑटोमेटिक गाड़ी में मज़ा नहीं है, गियर वाली गाड़ी में मज़ा है। कभी दिल्ली के धौला कुआं में चलाओ गाड़ी, पैर और हाथ आपको लगेंगे ही नहीं कुछ वक्त के बाद कि है। वहां किसी से पूछोगे ना आपके ऑटोमेटिक के गियर वाली, लोग भाग के एक सांस में ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे, समझ रहे हैं हम। तो ठीक है कतर में ऑब्वियसली मैनुअल का मजा है बिकॉज उतनी दिक्कत नहीं है, मगर प्लेसेस वेयर इन यू फाइंड टन्स ऑफ ट्रैफिक तो भाई वहां मसला है। रिजवान भाई कहना अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, कैब के लिए ठीक है, ये भाई अच्छा पॉइंट है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। भाई कहना कैब के लिए ठीक है इलेक्ट्रिक गाड़ी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उस बात से भाई, क्योंकि मेरे कैब वाले भाई जो उनको भी आसानी हो जाएगी, है ना, उनका एक तो पेट्रोल का मामला थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मगर भाई उसमें एक चीज़ है, जब चार्जिंग पे लगेगी गाड़ी तो फिर वो लेगी टाइम, और वो जो टाइम जाएगा चार्जिंग का उसमें सवारी छूट जाएगी। बाकी आपका पॉइंट सही है, अगर जल्दी जल्दी चार्ज होने वाली गाड़ी हो, फोन तो है नहीं तो टाइम तो लगेगा, तो जल्दी अगर बहुत जल्दी हो सके तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ है, बहुत फ़ायदे का सौदा है, ये तो मैं मानता हूँ भाई। हाँ तो मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन कुछ सालों बाद, अभी हम 2026 में हैं, 2030 या 32 तक यू माइट एज वेल सी मोर इलेक्ट्रिक कार्स। और अभी आप देख भी रहे होंगे सड़कों पर यार, लोग दौड़ा रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, या तो हाइब्रिड दौड़ा रहे हैं। तो आपका क्या है सीन, क्योंकि अभी जो मैं एक आर्टिकल पढ़ के आया हूँ उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं स्पेशली कंट्रीज लाइक कतर और इवन हमारा इंडिया, वहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट में आने वाली कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ब्रांड्स अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं। तो उस सूरत हाल में क्या आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे या कहेंगे नहीं यार नक्को करो। एक मैसेज तब उस महंगा लिखते हैं, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की पीक पे है और हम लोगों को देखो पेट्रोल की खुशबू चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मैं ड्राइव नहीं करती लेकिन मुझे भी पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है। यही तो हमें मतलब नहीं है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि ओजोन लेयर के साथ क्या हो रहा है, हमें टेंशन नहीं है, हमें चाहिए पेट्रोल की खुशबू भाई साहब। एक मैसेज है रिजवान भाई का, लिखते हैं कैब ड्राइवर्स लेस कार कब आएगी, इंशाल्लाह जल्दी आएगी भाई, कतर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टेस्टिंग अच्छे से हो चुकी है और बहुत कामयाब रही है, तो यहाँ पर ड्राइवरलेस कैब्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब वो लोगों पर है, उसमें जाना चाहे ना जाना चाहे वो उनके ऊपर है। अब एक बहुत ही शानदार निर्वस सेल्फी आई है फ्रॉम सहरीश एंड फरदान, ये इतने क्रिएटिव नाम रख रहे हैं ना आज के माँ बाप। भाई मुझे ये बताइए, ये फरहान भाई सहरीश का मतलब क्या होता है, सहरीश सहरीश कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे बताना, क्योंकि अभी मैं आपको वॉइस नोट पढ़ नहीं पाऊंगा पर मैं कुछ देर में चेक करूंगा, तो मेरे को बताना। एंड बहुत सारा प्यार दोनों एकदम, भाई आज लग रहा है कि स्कूल के लिए यही तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लॉट्स ऑफ लव टू देम। एक मैसेज है भाई, देसी लोग सब पेट्रोल का नशा करते हैं। नहीं मैंने मैं समझ गया भाई, गलत सवाल पूछ लिया मैंने, देसी जनता नहीं लेने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, अनटिल और अनलेस इन सबको बहुत सारा पैसा दे दिया तब तो ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। हमारी सोच ही वैसी है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा फालतू का पैसा, है ना। एक होता है जो आ रहा है हमारे पास पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की पहली दूसरी 25 18 जो भी तारीख को आ रहा है, और उसमें हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो तब एक्सपेरिमेंट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है कि मैंने ये सवाल रखा। एक मैसेज और आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, क्या दुनिया में गाड़ी सस्ती हो रही है क्योंकि सारे के सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, सारे ब्रांड्स अभी मैदान में उतर चुके हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग के भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती कैसे बनाई जाए। वो देखा आपने बड़ी सी गाड़ी, उसका नाम नहीं ले सकता भाई मैं, उसकी बैटरी, उसकी बैटरी अगर ख़राब हो जाए ना चीखें निकल जाएंगी आम आदमी की। मैंने देखा था तकरीबन कुछ 9-10 हज़ार रियल के आसपास बैटरी थी, मैं कहा भाई ये तो नहीं देनी है। आसिफ भाई गुड मॉर्निंग मेरा भाई।

कैसे सब बढ़िया शानदार। और एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम क्या नाम है आपका, हैं सही पढ़ रहा हूँ आपका नाम, मैं पढ़ के गलत नहीं बोलना चाहता, आपका नाम तैमूर है या तैमूर, मैं ओके ओके मैसेज पढ़ देता हूँ। भाई ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त एक हाइब्रिड गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी को मेनली इलेक्ट्रिक पे रखता हूँ, पर जब चार्जिंग कम होने लगती है तब मैं पेट्रोल पे चला जाता हूँ। आई थिंक फ्यूचर इज मोर हाइब्रिड देन कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। ये बात भी सही है, हाइब्रिड गाड़ियाँ भी है, ये बात भी सही है। तो सुरजीत भाई के मैसेज, असलाम गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम रिजान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, आसिफ भाई मैसेज कर रहे हैं अभी एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई विनीश शेर, इलेक्ट्रिक तो छोड़ो, आई डोंट इवन लाइक हाइब्रिड और ऑटोमेटिक, फॉर अस आई जस्ट लव द मैनुअल व्हीकल्स, आई फील लाइक ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स फील्स लाइक अ कार इटसेल्फ ड्राइव्स यू। आए हाय भाई, ये तो हिप हॉप में लिखने वाला आपने प्रॉपर बार दे दिया है, इलेक्ट्रिक कार्स फील्स लाइक कार इटसेल्फ ड्राइव्स यू, मेरा भाई लाइन है ये तो। पर मैनुअल जो वाले हैं, इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ मैनुअल गाड़ी चलाने फील तो आती है भाई, बिकॉज हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग अ कार वो मैनुअल का ही है ना। आज भी आपने सुना होगा गियर तीसरा डालो चौथा डालो, वो अभी भी अगर खुद भी गियर्स लग रहे हैं तब भी हम बात ऐसे करते हैं ऐसे खुद ही गियर लगा रहे हैं। एक मैसेज है मेरा, मोदी ने 3 दिन पहले कार लिया ओके चाइना का, अब मेरे को पूछता है चाइना गाड़ी कैसी है, मैंने कहा बॉस आपको लेने से पहले सोचना चाहिए था। और उसके बाद से आसिफ भाई और उनके मोदी की बात बंद है, यही हुआ है ना आसिफ भाई, इसके बाद तो यही हुआ होगा। कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं सब शानदार। और एक और भाई ने मैसेज किया है, इनका भी यही कहना है, हाइब्रिड गाड़ी है इनके पास और वो कह रहे हैं कि हाँ हाइब्रिड गाड़ी पिछले 3 सालों से चला रहा हूँ, आई लव द फैक्ट कि मैं इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों में चला सकता हूँ। तो कमिंग टू योर पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 सालों के बाद लोग अपने आप इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएंगे, अभी सब पेट्रोल पेट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट नो मेरा भाई, मुझे लगता नहीं है देसी जनता एकदम से आने वाली है उस तरफ, उन्हें बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा दिख गया तब तो बात बहुत दूसरी है, मतलब एकदम ऐसा फ़ायदा दिखे कि ओ हो यही है सब, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं तो जीना नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ टाइप कुछ ऐसा सीन हो गया तब तो वो शायद चली भी जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो बस मैंने मैसेज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पेट्रोल की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वरना हमारी कंट्री में बहुत सारी इलेक्ट्रिक चल रही हैं वो भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से, ट्रू। वरना बड़ी शान फील करते हैं पड़ोसी जब बोलते हैं हाँ जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने, ये तो ये इंडिया में बहुत बड़ा शो ऑफ बन चुका है बहन हमारे यहाँ भी, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रिक है भाई, कौन भरेगा इतना महंगा पेट्रोल, किसी के पास हो ना तो पूरा वो एकदम दिखावा करके जाता है वो, कहाँ जा रहे हो, अरे बस यार वो पेट्रोल भरवा लूँ यार, बीच में गाड़ी रुकी भी अच्छी नहीं लगती ना, हाँ वो टंकी फुल करा लूँ थोड़ी सी। तो ये शो ऑफ हमारे यहाँ चलता है, ये टंकी फुल करा लूँ यार थोड़ी सी बस तब मज़ा है ब्रो, ऐसे नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा आपने तो इलेक्ट्रिक ले ली होगी। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे, और एक मैसेज है ले लो भाई, आज भाई का दिन है, भाई मेरा हर दिन होता है आज भाई, क्या जानते हो आप आसिफ भाई, अपना तो बता दो आप क्या कैसी ने, आप क्या बिलीव करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाओगे, अगर आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, नॉर्मल प्राइस ब्रैकेट में आ गई, तो कह रहे आप भी करते हो शो ऑफ। मोहसिन भाई मैं आपको अलग से बताऊंगा मेरा शो ऑफ भाई, अभी नहीं बता पाऊंगा भाई, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, मुझे एक ब्रांड का नाम लेना पड़ेगा, वो मैं लेना नहीं चाहता। एक मैसेज है आसिफ भाई का, कह रहे हैं भाई मैं सोचता हूँ हेलीकॉप्टर खरीद लूँ एक। आसिफ भाई की बात सुनी, कह रहे हैं सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, भाई अगर मैं मेरे नाम के पहले आरज नहीं लगा होता, इसका जवाब देता भाई मैं आपको, शरीफ बनना पड़ा भाई मेरे को। रिजवान भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई इलेक्ट्रिक कार में क्या मस्ती के चांस कम है, प्लीज इलेबोरेट, मैं कुछ नहीं समझा कि इसमें क्या मतलब, गाड़ी आपको क्या खुशी दे रही है पेट्रोल वाली, मुझे पहले तो ये बताओ। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, भाई बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो नंबर दे रहा हूँ इतनी देर से, मैं दोबारा दे देता हूँ, नंबर है 444-377-444-377, इस पर आप कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और आसिफ भाई कह रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, नहीं भाई मैं बाद में वॉइस नोट भेज दूंगा, कह रहे
मोहसिन भाई कह रहे हैं आज भाई

0: हेलीकॉप्टर खरीद के कबीर भाई को पायलट रख लो, इनके बाल सारे सर के गायब हो जाएंगे मुझे पायलट रख लिया तो। ऐसी पगार लूंगा ना अगले दिन छत पे खड़ा मिलेगा हेलीकॉप्टर। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत अच्छी होती हैं, मैंने खुद एक क्या, अरे भाई आपने तो बहुत महंगी गाड़ी ले रखी है भाई। मेरा म्यूजिक रुक गया आपकी गाड़ी देख के। भाई ने जिस गाड़ी का मुझे फोटो भेजा ना, 2-2.5 लाख वाली है वो। इज्जत से बात करनी पड़ेगी। हाँ मालिक, चिप्स खिला दो मालिक। कैसे तो आपकी तो भाई फिर 2 लाख वाली गाड़ी ना यार, आपको तो आपका अलग फ्लेक्स चल रहा है, आपसे बहस नहीं कर सकता मैं। पर भाई ने जो बोला वो बता देता हूँ, इनका कहना है कि मैंने ये गाड़ी 2 साल पहले ही ली है एंड मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट इज़ मच मोर रिलायबल। ओके, आगे लिखते हैं कि पार्किंग में मसले नहीं होते एंड इसमें अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लव पेट्रोल कार्स बट आई वुड स्टिल सजेस्ट के आने वाले वक्त में इस बारे में सोचें बिकॉज व्हेन यू डोंट ट्राई समथिंग यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, भाई की बात मान लो, 2.5 लाख की गाड़ी का उन्होंने सीधा फ्लैक्स किया, फोटो भेजा मुझे मुंह पे ये ले। एक मिनट से मलिक भाई का, भाई साहब ईवी वालों को तब लगेगा झटका जब पड़ेगा बैटरी चेंज का फटका। अरे वाह, नेताजी ने सीधा लाइन दे दी भाई, नेताजी ने लाइन दे दी, कह रहे ईवी वालों को तब लगेगा झटका जब पड़ेगा बैटरी चेंज होने का फटका। आप एड लिखिए भाई, गलत लाइन में आप जिस लाइन में भी आओ आपको मलिक भाई ऐड लिखने चाहिए। एक मैसेज है, भाई फिर मैकेनिक खत्म हो जाएंगे, सब इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी गलती है, सवाल पूछा मैंने, मुझे पता है मेरी जनता तो खतरनाक जनता है भाई। उसाम भाई एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही। और एक और मैसेज है, 2.5 लाख की गाड़ी, हाँ भाई होती है। मुझे भी नहीं पता तो था लेकिन मुझे ही नहीं पता था कोई उसे फ्लैक्स करने के लिए फोटो भेज देगा मुझे उठा के। तो भाई ने अपना नाम भी मेंशन नहीं किया भाई, तो भैया काले रंग का ग्लासेस लगाए हुए हैं भाई ने, सीधा फोटो भेजी है ये ले गरीब। सीधा उनका मुझे गरीब कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है पर भेज दिया। एक मैंने कुछ टाइम बाद ये लोग भी बोलेंगे, भाई पतले पिन वाला चार्जर है क्या। कह रहे इलेक्ट्रिक वाले कुछ दिनों बाद ये भी बोलेंगे, भाई पतले पिन का चार्जर रहेगा, अरे वो गाड़ी खड़ी हुई है मेरे बीच चौराहे पे, हाँ थोड़ी सी चार्ज कर लूँ 5% घुमा के इधर को ले आऊँ। और फराज भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड टॉपिक, इन्जॉइंग पीपल कमेंट, आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग। भाई लोग मेरे मैसेजेस में फ्लैक्स भी कर रहे हैं और जिनके पास इलेक्ट्रिक है दे आर ट्राइंग सो हार्ड कि कन्विंस कर सके बेचारे। एक मैसेज है, भाई 2.5 लाख की गाड़ी है तो चश्मा तो लगेगा ना। भाई बात तो सही कह रहा हो भाई, भाई सॉरी हाँ आपने नाम नहीं बताया वरना आपका नाम लेके मैं आपको बताता। भाई ने सीधा डांट दिया सामा भाई ने, क्या यार तुम यार अलग लेवल के हो यार, गाड़ी 2.5 लाख की चश्मा लगेंगे ना ब्रो। भाई सॉरी अगर ही करता हूँ भाई। ये बात तो सही है, मैं तो रात में भी चश्मा पहनूँ काला वाला भाई अगर 2.5 लाख की गाड़ी ले लूँ। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम हजरत भाई, कैसे हैं आप भाई, और आज सुजरा गाड़ी कहाँ है, गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी। और एक और भाई आ चुके हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इन्होंने काफ़ी मुझे कर्रा मैसेज किया है, कन्विंस भी कर रहे हैं, बताने भी चाह रहे हैं वाई इलेक्ट्रिक कार्स आर बेटर। तो उनका मैं एक एक करके मैसेज बताता हूँ। साजिद भाई है इनका नाम और साजिद हुसैन भाई लिखते हैं, पहला पॉइंट कहते हैं कि आपको गाड़ी एकदम साइलेंस मिलेगी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। ओके, इनका पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने अच्छा बताया पार्किंग का, तो मैंने वो तो शुरुआत में बोल ही दिया था कि वो जो ग्रीन वाली पार्किंग होती है, दूसरा पॉइंट उन्होंने। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिकल होती है, ओके पॉइंट टू बी टेकन। और चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा है, ये क्या लिखा है, सर्विसिंग में खर्चा नहीं। भाई सर्विसिंग में बैटरी का प्राइस देख के मेरा दिल जो था वो अलग में आ गया था, क्या बात कर रहे हो, कहाँ से बदलवा रहे हो बैटरी। अच्छा वो कह रहे हैं गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता, तो वो उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश करी है जनता को, मतलब आपको और मुझे, कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोचो बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट सस्टेनेबल मगर एकदम साइलेंटली चलती है, स्मूथ, ऐसी आवाज़ भी नहीं आती है, तो मैंने निकाल दी ज़बरदस्ती। अब साइलेंस की आवाज़ कैसे निकालूँ भाई। समझो मेरी बात को, तो ये मेरी साइलेंस की आवाज़ है, गाड़ी जा रही है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि साइलेंटली चलती है, दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से। अभी मत करने लग जाना। ठीक, मैसेज आया है, आई ब्रॉट माई फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार 30 ईयर्स बैक। हैं ये क्या है भाई, ये है क्या चीज? मुझे इतना समझ में आ रहा है किसी किस्म का ये कोई पंप है, लेकिन ये क्या है कासिम भाई, मुझे प्लीज समझाएं। मैं आंखें चौंधे आ गई मेरी जो आपने मुझे अभी भेजा। साइकिल लाइट, अच्छा ओके हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, बढ़िया भाई। और ये कह रहे हैं रिमोट कार होगी। अरे फराज भाई, वो मैंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी देखी भाई, ब्रांड नाम नहीं पता, वो लेना बड़ा मुश्किल होता है, आपको तो पता ही है कैसे कैसे नाम है आजकल गाड़ियों के। भाई एक बंदे ने रिमोट से गाड़ी निकाली, नू करके बाहर आ गई भाई गाड़ी एकदम रिमोट से, कह रही मालिक अभी आ रही हूँ, वो मुड़ी और उसकी तरफ आकर रुक गई भाई। तो ये सब भी हो रहा है, फीचर तो बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक फीचर है, लेकिन मुझे अभी भी ये जो जिस किस्म के मैसेजेस आए हैं मैं देख पा रहा हूँ कि आम आदमी को ज़्यादा पड़ी नहीं है। इनको पेट्रोल सूखना है, पेट्रोल की खुशबू आनी चाहिए। नेचर तो ऐसी तैसी, मुझे चाहिए पेट्रोल। तो एक और भाई ने मैसेज किया है इस भीड़ में, और वो कह रहे हैं कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे पेट्रोल वाली गाड़ी ही पसंद है, मैंने CNG आपके दिल्ली में ही चलाई है। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे वो भी सिस्टम अच्छा लगता है, हालांकि डर लगता है। मैं एक फैक्ट बताऊं आपको, चलो बता देता हूँ। एक गाड़ी आती थी पहले, ये उन लोगों को बताओगे जो इंडिया से है भाई, बहुत छोटी सी गाड़ी थी, बहुत छोटी सी पीली सी गाड़ी, वो करती पीले रंग की। उसकी सीट के नीचे सिलेंडर लगाया था उन्होंने भाई। जहाँ ड्राइवर बैठा है सीट के नीचे सिलेंडर, आप सोच रहे हैं? मतलब इतना सा भी अगर उसमें स्पार्क हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा, ये मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। एक मैसेज है, वी कैन ओनली बाय दिस इलेक्ट्रिक कार आफ्टर आर किड्स। अरे माशाल्लाह, वैसे क्या लग रही गाड़ी इसरा बहन, ये तो बच्चों की गाड़ी लेकिन इतनी प्यारी गाड़ी लग रही है, माशाल्लाह सुपर क्यूट, सुपर क्यूट। ये वाला पिंक अच्छा लगता है मुझे, ये वाला बढ़िया पिंक है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत?
0: अरे बढ़िया भाई, एकदम शानदार है। आप सुनाइए जयस भाई, क्या चल रहा है सवेरे सवेरे?
1: क्या चल रहा है भाई, सब बस आके गाड़ी में बैठा, रेडियो ऑन का, उनका भाई की आवाज सुन
0: रहा है मेरा भाई। कल मैंने देखा कैसे झूठ बोल रहे थे आप उनके शो में, सरर भाई
1: ने देखा। जब जाने जातू जब्बा जातू पसंद है या सारे का सारे यहाँ से निकल के ना सो जाते होंगे, अपने काम से लग जाते होंगे, ये बंदा बैठ कर दूसरों के शो पे जो है ना जाकर सुनते हैं कि कौन कौन आके इधर हाजिरी लगा रहा है।
0: भाई मैंने नोटिस करा, मैंने कहा भाई तो शरीफ बनने हैं, सुबह सुबह तो कुछ और ही आदमी होता है, दुग्गल साहब आज शरीफ बने हुए।
1: दुग्गल साहब है ना यार वो वाला, यार नहीं कसम से, कसम से वो सीन वो बिल्कुल 100% है भाई।
0: भाई मैं तो मानूंगा नहीं भाई। अच्छा ठीक है, मान लेते जस भाई। तो जस भाई क्या हो गया यार, इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में क्या ख्याल थे आपके?
1: इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये नॉर्मल यूज के लिए, लोकल यूज के लिए बेस्ट है भाई, लॉन्ग लॉन्ग वे के लिए यूज अच्छा नहीं है। अच्छा, कहाँ ढूंढते थे लोग, कहीं जा रहा हो जंगल में, जा रहा हो तुम जंगल में है? और वहां पे स्टेशन का ढूंढोगे, चार्जिंग स्टेशन, क्या पेड़ की झाड़ियां लगाओगे?
0: बहुत गुस्सा भरा है आपने सुबह सुबह यार, कुछ कीजिए इसका।
1: ना ना यार,
0: पहाड़ी वाड़ी में जाके बैठे।
1: एलपीजी वाली और सीएनजी वाली, हमने तो एलपीजी वाली भी चलाई है भाई।
0: आजा
1: वो जो आती थी ना ओमनी वैन, बड़ी चलाई
0: है, उसे किडनैपिंग गाड़ी कहते थे।
1: सच बताऊं भाई साहब, उस तो मैंने काम करा है ये भी।
0: वो पता है मुझे भाई, मैं शक्ल आवाज देख के पहचान जाता हूँ मैं आदमी को, समझ में आ रही है? मैं आवाज, मैं पता इसलिए तो हैरान था, मैंने कहा ये आदमी जो है इतना शरीफ बन रहा है उनके शो में, सरवर भाई के शो में, नाजिया बहन के शो में, मैं कहा ये आदमी वो तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मैंने दो तीन बार सोचा,
1: शादी के बाद हो गया शरीफ भाई, शादी के बाद शरीफ हो गया।
0: अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा
1: हाँ, शादी से पहले ना तो बहुत बिगड़ेल था।
0: ओके चलो, आप कहते हो तो ऊपर ऊपर से मान लेता हूँ मैं, ठीक है, सुबह का वक्त है, क्यों मूड खराब करना। पर जैसे भाई एक पर्सनल बात बताओ, अगर आने वाले वक्त में ये उस ब्रैकेट में आ गई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो एक आम आदमी का ब्रैकेट होता है कि चलो यार ये गाड़ी तो सेम रेट पे ही है, तो आप लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे?
1: ना भाई बिल्कुल भी नहीं लेंगे।
0: बिल्कुल भी नकार ही दिया भाई साहब। अच्छा ओके, ये भी
1: अभी इंडिया ने तुमने देखा ना, इंडिया में बलेनो लैंड छोड़ी है भाई।
0: हाँ हाँ,
1: कितनी जबरदस्त है,
0: बहुत जबरदस्त तो है भाई। तो हाइब्रिड तो ले लोगे? हाइब्रिड भी नहीं लोगे जैसे पेट्रोल चले और इलेक्ट्रिक दोनों?
1: नहीं दोनों ले लेंगे भाई, वो दोनों में फायदा ना, थोड़ा पेट्रोल से चलेगा, थोड़ा हाइब्रिड से चलेगा ना, तो थोड़ा बचत होगी ना।
0: वो मैं समझ गया, सुबह पेट्रोल में चलते हो, दोपहर वाले शो में बिल्कुल इलेक्ट्रिक। हाँ मेरी सब पे नजर है, ऐसी बात नहीं है भाई, गलती से सुन लेता हूँ मैं कभी कभार।
1: भैया जितने भी कबीर भाई के सुनने वाले हैं ना, चाहने वाले हैं ना, थोड़ा हिसाब से तरीके से जइयो दूसरे शो में। ये बंदा जो है ना जग्गा जासूस बन के बैठ जाता है,
0: मुझे अच्छा लगता है भाई। अच्छा मैं बताऊँ मैंने क्यों कहा, मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे शो में जो भी आता है वो एकदम रॉ आता है, मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा जो है जो असली वैसी बात कर रहा है, तो मुझे वो चीज जान के बड़ी खुशी मिलती है कि देखो अभी कितना शरीफ बनना, मेरे शो में तो भाई एकदम खुला होता है। तो वो चीज अच्छी है, तो तारीफ है आपकी।
1: भाई भाई वो जो भाई वाला बॉन्ड है ना वो अलग चीज है।
0: हाँ मेरा
1: उधर जो है ना, उधर वाला थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए भाई।
0: बिल्कुल भाई, वरना जंगल में भेजेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेगी।
1: ना भाई, कौन अकेला धक्का लगाता है।
0: अच्छा आपको इतना भी कॉन्फिडेंस है कि जंगल में धक्का लगाएंगे आप? वाह बढ़िया, मैं एक नंबर दे दूंगा भाई, कॉन्फिडेंस का एक नंबर भाई।
1: तो शुगर बता, यहाँ दोहा में जो है ना जगह जगह स्टेशन लगा रखे हैं भाई, उसके चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं।
0: हाँ वो तो है,
1: अगर कहीं दूर दराज के हो ना, बंदा धक्का लगा के लेके जाएगा कि चलो ढके लो।
0: नहीं पर कतर में लेने का मौका मिले तब भी नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कितना ही मतलब विद इन कतर घूमने के लिए। नहीं
1: नहीं विद इन कतर घूमने के लिए ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज है, फायदा है।
0: हाँ ओके ठीक है।
1: अगर भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान के चक्कर में आ जाओगे तो चार्जिंग पॉइंट उखाड़ के ले जाएंगे वहां से। अब कहां मुद्दे करोगे?
0: हाँ बात तो सही है, अभी भाई कह भी रहे थे कि लोग पता चला आगे आने वाले वक्त में पतले पिन का चार्जर मांग रहे हैं गाड़ी चार्ज करने के लिए।
1: अरे जुगाड़ करवाना पड़ेगा भाई, बैटरी से जुगाड़ कर दियो, बैटरी से चार्ज करेंगे इसको, मोटिवेट का चार्जर लगा दो।
0: मुझे पता किस बात का डर है, लोग आने वाले वक्त में इन्वर्टर से गाड़ी चला रहे होंगे चार्ज करके। मैं बता मुझे भरोसा नहीं है किसी, अपनी जनता में मुझे पूरा भरोसा है भाई।
1: टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है भाई,
0: इंशाल्लाह देखते हैं भाई कहाँ तक जाती है टेक्नोलॉजी। लेकिन जैस भाई बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच कि आपने सुबह याद किया,
1: बहुत आपकी मोहब्बत
0: मोहब्बत भाई, भाईचारा ऑन टॉप भाई, थैंक यू जैस भाई।
1: बिल्कुल
0: अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। और जैस भाई के बाद एक मैसेज आया है, उन्होंने मैसेज किया है, कह रहे हैं इट इज फ्री चार्जिंग इन कतर टिल 2030। हाँ 2030 तक तो एकदम फ्री है मामला। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम डॉट लगा के भेजा इन्होंने। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई मैंने भी सुना बहुत सारे बंदे मॉर्निंग में कुछ सर्वर भाई की शो भी गुजाना, ये मैंने भी नोटिस किया, लेकिन अच्छी बात है मुझे लगता है कि थोड़ा खुले हुए रहते हैं। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम तला फ्रॉम अलखोर, भाई मेरे पास हाइब्रिड है, रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है किलोमीटर्स की, यही मैं चाह रहा था कोई बोले तो सही इस बारे में आके, ये मैं चाह रहा था। तो ये जो उन्होंने मेंशन किया ना, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस, क्योंकि एक जो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है हाइब्रिड गाड़ियों का, और अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको लगता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ ना है, तो ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। तला भाई ने जो बताया ना कि हाइब्रिड गाड़ियाँ शानदार हैं, आपको एक बहुत ही लंबी रेंज मिल जाती है, तो आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। बहन आपने संबुल बहन सही गाड़ी का नाम लिया। एक मैसेज भाई जब तक ये गाड़ी का नाम नहीं ले सकता मैं, नहीं आती कतर में, सक्सेसफुल नहीं होगी भाई। कतर को सब कहते हैं। हाँ वो तो है भाई, देसी लोग रूफ पे सोलर प्लेट लगा देंगे, ये मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है अपने लोगों पे। एक मैसेज है ताहिर भाई का, आई लाइक इलेक्ट्रिक कार्स बट आई थिंक फ्यूचर इज हाइब्रिड एंड नॉट इलेक्ट्रिक। वेरी गुड पॉइंट, दिस इज वॉट आई ऑल्सो फील। कंप्लीटली इलेक्ट्रिक तो दुनिया पता नहीं कब जाएगी, लेकिन नियर फ्यूचर में हाइब्रिड तो हो जाएगी। आज भाई कह रहे हैं भाई तेरी बातों से मुझे ये लग रहा है ये बंदा नेक्स्ट टाइम सर्वर भाई को कॉल करने से पहले तो नहीं करेगा, मैं रोक नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मज़ा आता है मुझे सुन के ना। एक मैसेज सीट के नीचे सिलेंडर से, हाँ एग्जैक्टली वो छोटी सी गाड़ी में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, उसमें सीट के नीचे सिलेंडर लगा हुआ है, बताओ CNG का। और एक मैसेज है, क्या मैसेज है, एक सेकेंड मुझसे मिस हो गया भाई, जिसे दुबई कार नकली हवा में उड़ाने वाली टैक्सी को क्या कतर में भी ऐसे निकाल सकते हैं? टाइम लगेगा भाई, अभी कह नहीं सकते कहां तक जाएगा मामला, बट सो फार सो गुड, चल ही रहा है, ठीक ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई जान क्या हाल है आपके?
0: बढ़िया भाई, आपके क्या हाल है भाई? सर तला भाई कैसे?
2: आज बिजली भी चल रहे हो क्या?
0: आज बिजली में चल रहा हूँ भाई, आज मेरे का आज तला भाई के डिपार्टमेंट की बात हो जाए। कैसे हो तला भाई?
2: मैं तुम्हारी खाने के चक्कर में तुम मेरी खा रहे हो।
0: हाँ ये कान इधर से पकड़ा आपने, मैंने उधर से पकड़ लिया। ये वैसा वाला सीन है भाई,
2: समझोगे एक दूसरे की नौकरी के पैसे हम दोनों खा रहे हैं।
0: यही हमारा कॉन्टेंट है, यही हमारा कॉन्टेंट है।
2: भाईचारा हमारा, यही ब्रदर हो गए, यही चाहिए हमें जिंदगानी।
0: तो तला भाई आपका क्या पर्सपेक्टिव है यार, आप एक बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, आप सीरियसली बताओ मुझे कि कहाँ देखते हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, अगर सेम ब्रैकेट में आ गई जहाँ पे एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, डू यू सी पीपल बाइंग इन कतर, क्या कहना है आपका?
2: भाई 100% लेंगे लोग, 100%।
0: अच्छा
2: 100% लोग लेंगे क्योंकि बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, और जो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन मिलेगा इसको लेके वो 100% लेंगे। बट द थिंग इज यहाँ पे जो हमारा जो ओल्ड स्कूल माइंड है ना, जो वो से वो क्या है, मैकेनिक नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का, रहे भाई मेरे मैकेनिक मतलब वो मैकेनिक जो वो होता है ना, हमारे जो अबू और हमारे पुराने जो लोगों का होता था ना, ये दो तीन चीजों को लेके बड़ा कॉन्शियस रहते थे कि मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक नहीं है प्रॉपर, या फिर आपके रीसेल वैल्यू नहीं है, और मतलब इन चीजों को लेकर मैंने लिया है अलहमदुल्ला हाइब्रिड भी है, तो वही बड़ा बहुत मीन्स के जेब पे ठीक ठाक फायदा मिल रहा है यार, बड़ी ठीक ठाक बचत है भाई।
0: तो आप क्योंकि
2: मदीना सिटी जो है
0: हाइब्रिड पर है आप, तो आपको एक स्पीड पे फर्क पड़ता है, आपका क्या खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था भाई?
2: नथिंग, इवन दो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है ऑटोमोबाइल्स में, इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास ट्विन मोटर लगती है, तो आपका जो इंजन है वो कंपैरेटिवली दो जो आपकी मोटर है वो उसका कंपैरिजन जो है वो आपकी मोटर से बिल्कुल ही मतलब नेक टू नेक होता है, तो आपको डिफरेंस ही महसूस नहीं, इवन दो आपकी ड्राइव लाइट हो जाती है जो ये हमारे ट्रक हैं, हमारे जिनके पैर भारी, नॉर्मली अपन लड़कों की लैंग्वेज कहते हैं भारी पैर की, भारी पैर का ड्राइवर है जो देते हैं। अरे मतलब वो नहीं यार, वो नहीं भाई, मतलब
0: मैं तो चुप हूँ भाई, मैं क्या बोला
2: ये आज भी गलत है में जो
0: आपके लिए मैसेज आया मेहर अजीज भाई का, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वैसे तला भाई की एनर्जी किधर गया है, सुबह आती उस टाइम बहुत एनर्जी होती है, अब लो लग रहे हैं। तला भाई क्या क्या दिक्कत है, मेहर भाई पूछ रहे हैं आपसे, और आपको सलाम भेजा आसिफ भाई ने,
2: फैमिली आ गई
0: है भाई, मेहर भाई सॉरी कुछ नहीं कर सकते, दिस इज बाय नेचर
2: यार। मेहर भाई देखो यार ऐसी बात है, सुबह सुबह यार मतलब कन्ना वन्ना दे तो फिर बात करें, तो
0: नहीं गलत बात है, वो छेड़ रहे हैं आपको, मैं भी इनके साथ हूँ वैसे तो। एक मैसेज आया है, ये तला भाई कराची से हैं जो अल जनूब गार्डन्स में रहते हैं, ये कह रहे हैं आपसे।
2: और है भाई है
0: ऐसा लगा जैसे सारे के सारा इतिहास खोल दिन करे, कौन है भाई कौन हो इनका नाम माजिद भाई है, माजिद भाई, माजिद भाई है, डर गए ना थोड़ी करे कौन है ये हे भाई
2: से परेशान हो गया
0: मैं। माजिद भाई सलाम अलैकुम, अब तो इज्जत से रहना पड़ेगा ना, ठीक ओके। तो तला भाई थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया, क्योंकि ये आजकल आज सुबह से ही बात चल रही है, लोग कह रहे हैं स्पीड नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये नहीं आता, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर बहुत कुछ बोला गया, तो आपका प्रोस्पेक्टिव काम आएगा डेफिनेटली।
2: मतलब भाई आपको थोड़ा सा देखो ना, चेंजेस लानी पड़ेंगी ना, आपको मॉल के साथ चलना पड़ेगा, फिर यही है जो है फीचर के आपके जो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन की तरफ जाए, तो वो तो अपनी चीज है एनर्जी, और आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो ग्रेड यूज हो रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे फिर में।
0: हाँ राइट, नहीं एकदम से, और मुझे ये भी लगता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक तो खैर टाइम लगेगा, लेकिन जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है वो बहुत जल्दी एक आम आदमी की जेब तक पहुंच जाएगा।
2: भाई मेरे बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहले हाइब्रिड ये होता था कि स्पीड लिमिट 1 सेकंड स्पीड के बाद जो है ना अभी गाड़ी कन्वर्ट हो जाती थी फ्यूल और इलेक्ट्रिक, अभी वो पता नहीं है, अभी आपके पास मैनुअली ऑप्शन है आपके हाथ में, आप 180 तक लेके जाके भी ना आप अपनी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी चेक कर लो
0: डेफिनेटली,
2: जो आप अपना आप पेट्रोल पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक पे आ जाओ, मसला क्या है।
0: बढ़िया भाई,
2: तुम मुझे कहाँ गरीब से बात कर रहे हो यार,
0: यार आज इतनी पढ़ी लिखी बातें आपसे करके ना मेरे को यार अजीब से लग रहा है, चाय भी नहीं पड़ेगी यार, आप जाओ यार काम पे जाओ प्लीज। गलती हो गई, ये टॉपिक मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, कल दूसरा टॉपिक लाऊंगा आपके लिए, मतलब मजा नहीं आया, ज्यादा पढ़ी लिखी बातें हो गई।
2: फोन
0: ठीक है तला भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच तला भाई, अल्लाह हाफिज भाई। तो तला भाई को आज मैंने फाइनली सीरियस बना दिया। एक मैसेज है, माजिद भाई कह रहे विनू इच अदर, क्लियरली भाई क्लियरली जिस हिसाब से वो डरे आपके बाद तो समझ में आ रहा है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, तला भाई न्यू कराची में रहते हैं भाई, वही वाले राणा भाई, राणा जी माफ करें ना। फराज भाई थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। उनके बाद एक मैसेज आया है आसिफ भाई का, भाई ये बेइज्जती वाली बात हो गई, और मैसेज किया है इलेक्ट्रिक कार का चक्कर आओ भैया, इलेक्ट्रिक कार का चक्कर। तो माज भाई कहना क्या है आपका इस पर, ये भी तो बताओ। लक्ष्मण भाई गुड मॉर्निंग, कैसे मेरा भाई। और मैसेज है, भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी होती तो फास्ट एंड फ्यूरियस और धूम मूवी कैसे बनती बिना साउंड की गाड़ी चलते हुए। बात में दम तो है सुभाष भाई, आई लाइक द वे यू थॉट अबाउट दिस। भाई कह रहे यार ये फास्ट एंड फ्यूरियस और ये सब कैसे बनती बताओ, गाड़ी की आवाज तो आनी चाहिए उसमें, रन रन रन टकराने की आवाज़ तो फील नहीं आएगा ना। रियाज भाई कह रहे हैं भाई जो मज़ा पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल की खुशबू सूंघने में आता है वो इलेक्ट्रिक वाले क्या। भाई एक बोतल भर के पेट्रोल अपने साथ रख लेना और इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्जिंग पे लगा के वहीं कुर्सी लगा के बैठ जाना और पेट्रोल की बोतल को सूंघते रहना, बिल्कुल बढ़िया फील आई। ये है आसानी। और एक मैसेज है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है तो सही। मैं ये पूछ रहे हैं माज भाई क्या, माज भाई मैं ये कह रहा था कि आने वाले वक्त में अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल विच इज़ पब्लिश्ड, मैं नाम नहीं ले सकता, बट उन्होंने कहा कि आम आदमी की पॉकेट पर हल्की पड़ेगी इलेक्ट्रिक गाड़ी, कंप्लीट इलेक्ट्रिक। तो मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर देसी जनता जब उसको सारी सुविधाएं दे रखी हैं, सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं ना जी मुझे तो पेट्रोल सूंघना है भाई। एक मैसेज है, भाई स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ड्रिफ्टिंग में मजा आता है टायर से। तला भाई ये दूसरे तला भाई हैं फ्रॉम अवर, दोनों के दोनों तला भाई आज कतई मूड में भाई। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, कहाँ कहाँ से आपके क्या आपके लिसनर्स कुछ अलग ही लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनते सुनते ये भी आपके जैसे हो गए। अरे ये पता नहीं तारीफ है कि क्या है, मेरी संगत पे लोग शक कर रहे हैं यार, कह रहे तुम्हारी दिक्कत है। हम बताओ ठीक है कोई बात नहीं, आई लव द वे मेरे शो में जिस तरीके के रॉ रिस्पॉन्सेज है। मैं जरा कॉल कर रहा हूँ माज भाई को, माज यू कॉल टू, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर माज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया माज भाई, क्या हाल है आपके। जी माज भाई क्या बोलेंगे माज भाई,
3: दो तीन अलग अलग पहलुओं पे आपको तवज्जो देना पड़ेगा।
0: जी जी जी बताइए।
3: महंगाई जो है, महंगाई सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलती है।
0: ठीक है
3: ठीक है। तो जब पेट्रोल की गाड़ियां स्टार्ट हुई थी, जब पेट्रोल निकला था, पेट्रोल की गाड़ियां इंजन बना था जब, तो जब बोले लगे थे कि भाई ये गाड़ी घोड़े से सस्ती पड़ेगी।
0: हाँ ठीक है,
3: समझ रहे हो। फिर घोड़ा गाड़ी मेंटेन करने, घोड़ा गाड़ी मेंटेन करने आपको, फिर उसका चारा रखो, उसका स्टेबल रखो, यू गेट द पॉइंट राइट।
0: समझ आया।
3: तो अभी की स्थिति के हिसाब से ठीक है, इलेक्ट्रिक कार आपको सस्ती पड़ेगी। इलेक्ट्रिक कार आपको सस्ती होगी, इलेक्ट्रिक कार आपको हल्की पड़ेगी। फिर आगे चल के फिर होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया, आप कभी से घर बार में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, अब गाड़ी में भी चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब क्या
0: आवाज ही चलेगी।
3: नहीं नहीं नहीं भाई,
0: हाँ क्या कह रहे हो।
3: तो ऑन द लाइन ये रहेगा कि नहीं भाई, पुरानी अपनी पेट्रोल की गाड़ी अच्छी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बहुत पैसा जा रहा है।
0: तो माज भाई क्या घोड़ा ले लेंगे यार, आप घोड़े पे वापस चले जाए, क्या बोलते हो आप।
3: ठीक है
0: हाँ।
3: ये एक पहलू है। अब रही बात परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस वाइज देयर इज नो डाउट इलेक्ट्रिक गाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। एंड मतलब अगर आपको जो एवरेज मिल रहा है, या फ्यूल कंजम्पशन बोलो, या फुल टैंक करने पे आप कितना पहुंचते हो, और फुल बैटरी करने पे कितने किलोमीटर मार लेते हो, इलेक्ट्रिक कार्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। हीट हमारी जो पेट्रोल वाली गाड़ी है इसमें बहुत गर्म होती है, मतलब क्योंकि पेट्रोल जल रहा है, लिटरल आग होती है आपके बोनेट के अंदर। तो आप गर्मी दे रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में आप उतनी गर्मी नहीं देते हो, तो इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। द ओनली प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक कार जो मैं नहीं स्विच कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार,
0: हाँ प्रॉब्लम पे हो क्या है
3: वो ये है कि भाई मैं लॉन्ग ट्रिप कैसे मारूंगा।
0: हाँ ये बोलो ना, ये वाला कीड़ा है। हाँ। अब मैं समझा, ठीक है ठीक है।
3: मैं लॉन्ग ट्रिप कैसे मारूंगा?
0: हाँ।
3: मुझे अगर जाना है बॉर्डर पार,
0: हाँ,
3: लंबी ड्राइव पे 1000 किलोमीटर ही हो, तो फिर मैं कहाँ चार्ज करूँ उसको?
0: हाँ जब वो सुविधा आ जाए तो शायद ठीक है, लेकिन आपने जो पहला पॉइंट बोला ना, मैं उसके साथ हूँ भाई। जस्ट इमेजिन कि लोग वापस घोड़े गाड़ी पे चले जाएं, एटलीस्ट ठंड के टाइम पे कतर में सब ऑफिस जा रहे हैं घोड़े पे। हाउ ब्यूटीफुल वुड दैट बी।
3: एक मैंने वीडियो देखी थी,
0: हाँ,
3: जिसमें बंदे ने ये जनरेटर होता है ना छोटा वाला पेट्रोल का,
0: हाँ, हाँ,
3: पेट्रोल का जनरेटर खरीदा और इलेक्ट्रिक कार की डिक्की में रखा, उसमें पेट्रोल डाला और लंबी ड्राइव पे निकल गया कि उससे गाड़ी चार्ज करेगा। गाड़ी चार्ज मारेगा।
0: हमारी तरफ का होगा, हमारी कंट्री का होगा वो जरूर। है ना?
3: तो हाँ, तो क्या ही बताऊं, तो जुगाड़ हर जगह चलता है।
0: I hope ऐसा कोई जुगाड़ ना करे, आगे जो होगा पता नहीं। लेकिन माज भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस बात पे रोशनी डालने के लिए, बहुत प्रेम आपको, और लंबी ड्राइव के लिए आपको कुछ ना कुछ सुविधा मिली इस बात की मैं पूरी उम्मीद करता हूँ भाई। थैंक यू सो मच भाई, जैसा कल भाई। ओके अल्लाह हाफिज। एक दो मैसेजेस आए, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। ताहिर भाई कह रहे हैं कि फन पार्ट इज दैट इवन सेल्स एजेंट्स इन कार शोरूम्स डोंट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक कार्स कंप्लीटली। आई केप्ट इलेक्ट्रिक कार फॉर टेस्ट ड्राइव फॉर अ कपल ऑफ डेज 3-4 years अगो, एंड व्हेन आई गेव फीडबैक दे आस्क्ड मी टू कीप इट फॉर अनदर कपल ऑफ डेज टू गिव मोर फीडबैक फॉर दे ट्रेनिंग। कस्टमर ट्रेनिंग करा रहे हैं वहाँ के सेल्समैन को। और एक मैसेज से पहले जो मुझे याद दिलाया, अच्छा याद दिलाया, आपकी इमेजिन टॉप नॉच है घोड़े पे ऑफिस। मैं बता रहा हूँ ठंड में ऐसा होना चाहिए घोड़ा गाड़ी भाई साहब, मैं तो टांगे के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कतर में जो मौसम बढ़िया होता है टांगे में ऑफिस जाने का जो मजा है। ओए, बाकी घड़ी में हो रहे 7:02 और पब्लिक मेरा 7:02, ये याद आएगा आपको जब मॉर्निंग शो के पे से शिफ्ट होगा। मैं बता रहा हूँ दिस इज समथिंग जो हमें जोड़े रखता है। अब मैं पार्लियामेंट के एमपी की तरह बात नहीं करूँगा। जिंगल सुनो।

0: FM 107. Time check.
1: बात तीन हो गए भाई, बात करते करते और आपने भी साथ दो के बाद साथ दो दिया भी है माशाल्लाह। एक मैसेज आया तलाभाई कह रहे हैं आवाज़ हो जाए, किस चीज़ की आवाज़, घोड़े वाली आवाज़ कह रहे हो क्या। एक मैसेज है भाई आप कब ले रहे हैं इलेक्ट्रिक कार। भाई मेरी गाड़ी में ना, मैं बजट के चक्कर में 20,000 ऊपर पड़ रहा था, तो मैंने मसाजर वाली नहीं ली गाड़ी, मेरे को सीट पर मसाजर चाहिए, उसके बाद मैं कोई इलेक्ट्रिक लूँगा। क्या मजे आते हैं भाई सीट पर मसाजर होता तो, ओहो बढ़िया हाल है भाई। और एक मैसेज और आया है, ये क्या मैसेज है, क्या हाइब्रिड का एक नुकसान है, कार स्टार्ट होने के टाइम दूसरी कार्स के जैसे साउंड नहीं आती। एक हॉस्पिटल के बाहर एक वैली ने गाड़ी के ब्रेक तोड़ दिए, वो देखता रहा, कार स्टार्ट नहीं हो रही बट कार ऑलरेडी स्टार्ट थी। भाई साहब ये एक नई परेशानी है, और वैली पार्किंग में होता है। उस वैली से पूछा था तुम ये गाड़ी चला लोगे, तो बोलता है हाँ जी। ये मैं अग्री करता हूँ, वैले में जो उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और सीट पर मसाजर, हाँ भाई मेरे को मजा आता है। मैं सही बताऊँ फैजान भाई, मैंने जो है दे गई थी उसके लिए, कहते ना टेस्ट ड्राइव के लिए बढ़िया वाली भाई, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ गई तो मैंने ली नहीं तो मजे आ गए थे भाई। गाड़ी चलते मसाज हो रही है सीट, ओए बेटी। एक तबस्सुम बहन का मैसेज है, तबस्सुम बहन के बाद मैसेज किया है, क्या है, घोड़े को भी चलना चाहिए। चलेगा कैसे नहीं चलेगा। एक मैसेज है भाई, तो भाई मैं ऐसे ही नहीं पूछता हूँ, तो उसमें ग्रेविटी कहाँ गई, पूछो ये ग्रेविटी क्या है मुझे बता दो ना। गुड मॉर्निंग मोहम्मद सादिक भाई का मैसेज है, थैंक यू सो मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई कह रहे हैं, क्या घोड़े की आवाज़ निकाल दो, फ्री में तो नहीं निकालूंगा मैं, बहुत हो गया, आप लोगों ने मेरे बहुत फ़ायदा उठाया। पहले ही मेरा जिंगल हो जाए।

0: जाहिद भाई कह रहे हैं भाई सातों देर गाने नहीं मिली। भाई मैंने आपको एक चीज भेजी है जो मैंने पहले भी भेजी थी, इस पे आप आके देख नहीं रहे मुझे ऐसा लग रहा है। जाहिद भाई भूल भुला गए आप। एक मैसेज है भाई, और मैसेज करवाते हैं और मैसेज मसाज करवाते करवाते नींद ना गई। तो भाई मैं देखो, मेरे को रिस्क फैक्टर मत बताओ, मुझे बताओ मसाजर मिलेगा कहाँ। एक मैसेज है, कैसे सलमान भाई को किक चाहिए वैसे भाई को ग्रेविटी चाहिए। मुझे भी ऐसी लगता है। अस्सलाम वालेकुम फरद भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम मुशीर आलम भाई, वालेकुम अस्सलाम। और तौहीद अहमद भट्ट साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, मॉर्निंग मॉर्निंग मेरे भाई, क्या हाल है। एक मैसेज, मसाज वाली कार ले लें फिर तो आप काम पे नहीं आएंगे, रास्ते में सो जाओगे। नहीं नहीं भाई, मज़े बहुत आए थे भाई, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया मज़ा आए थे भाई। एक भाई कह रहे हैं घोड़े की आवाज़, अरे भैया घोड़े की आवाज़ निकाल ही देता हूँ। ओके रेडी हैं आप घोड़े की आवाज़ के लिए? ओके, पांच रियाल में इतने मिलेगा भाई, एक कॉलर ही रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: जी भाई, जी भाई बताइए।
1: नाम तो सुना ही नहीं होगा।
0: सुबह सुबह नहीं, समझदार इंसान से बात हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई बताइए।
1: कबीर भाई, मतलब अभी ये जो चक्कर चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो मैं भी हूँ वैसे, मतलब okay, जो मजा आपको पेट्रोल वाली मिलती है
0: ठीक मिलती है
1: एनीवे, बट सीन क्या है ना, मुझे लगता है कि ये जो साउंड का मसला है ना, ये इलेक्ट्रिक वाले बहुत जल्दी निकाल लेंगे। मतलब स्पीकर में ऐसा कुछ सेटिंग करेंगे कि भाई अभी फिलहाल कोई मतलब स्पोर्ट्स कार का साउंड आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कुछ नहीं आ रहा है। मतलब रेसिडेंशियल एरिया में आप चला रहे हो तो एकदम स्मूथ है, फिर जिधर जा रहे हो बटन दबा और वो साउंड चालू, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
0: एक बात माननी पड़ेगी, आपने मजाक मजाक में आइडिया दे दिया भाई।
1: बेसिकली हाँ,
0: ये आपने आइडिया दे दिया और मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग बोलेंगे ना कि यार वो फील नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो ये लोग साउंड
1: नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब पता चला आप यू टर्न ले रहे हो, किसी ने बटन दबा दिया ड्रिफ्ट का और ड्रिफ्ट का साउंड आ रहा है। ये होता रहेगा भाई।
0: वैसे गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। वेरी गुड। रात में ट्रक की आवाज लगा लेंगे गाड़ी के अंदर। क्या लगना चाहिए, टोल वोल क्रॉस कर रहे हैं।
1: जो चाहिए, मतलब आपको अगर 1960 मॉडल का कोई अगर वो चाहिए ना, जैसे अमेरिकन इंजीनियर, शायद नाम नहीं ले सकता मैं, बट उसका चाहिए तो उसका भी लगा लो, जो चाहिए हो भाई। मतलब जैसे अभी फोन में रिंगटोन आते हैं ना, वैसे उसमें गाड़ियों की साउंडें आएंगी।
0: बहुत बढ़िया, वो साउंड ना बिल्कुल सिंक होनी चाहिए ड्राइविंग के साथ साथ, उसका अलग मतलब। भाई पेशे से इंजीनियर है आप?
1: नहीं नहीं,
0: तो क्या क्या है वैसे, क्या करते हो?
1: बट पेशे से तो बैंकर हूँ।
0: अरे भाई आप तो दो दो प्रोफेशन संभाल सकते हैं, आपके अंदर है इंजीनियर, मुझे यहाँ से दिख रहा है। कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है।
1: थैंक यू भाई,
0: यू टू मेरा भाई, थैंक यू सो मच। हाँ क्या क्या?
1: Anytime, नहीं मैं एक्चुअली ऑफिस के एकदम करीब में हूँ, अभी घुस ही रहा हूँ पार्किंग में, फिर कॉल कट जाए।
0: भाई याद करने के लिए बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखिए बस अपना आप।
1: थैंक यू,
0: ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद एक मैसेज आया, ऑलरेडी ऑप्शन है साउंड, वो साउंड वाला ऑप्शन ना सिंक इन नहीं है, मतलब ड्राइविंग के साथ सिंक्ड नहीं है, अगर है तो मुझे बता दो भाई, गाड़ी तो मैंने देखी को नहीं भाई। एक मैसेज, दो रियाल को और कर दो। वाह मजे आ रहे हैं इन्हें घोड़ी की आवाज़ कह रहे हैं, दो रियाल का थोड़ा सा और कर दो। एक मैसेज है भाई, मैनुअल गाड़ी चलाना अच्छा लगता है कि ऑटो गाड़ी? भाई इंडिया में तो मैनुअल का मज़ा नहीं है, स्पेशली दिल्ली से आता हूँ मैं, वहाँ नहीं चला सकते आप, आपके पैर चीखने लग जाएंगे, समझ रहे हैं आप, तो वहां पे तो ऑटोमेटिक ही चाहिए, यहाँ पे मैनुअल अच्छी है, मजे हैं भाई उसके। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, मैं तो एकदम सेट, आप सुनाइए।
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये बार बार में कौन घोड़े की आवाज की बोल रहा है, आपको घोड़ा बना के छोड़ेगा लगता है मुझे।
0: भाई आपने इस बात को जहां तक ले गए हो ना, बात गलियों तक थी, आप हाईवे पे ले गए। भाई बस बढ़िया चल रहा है, शानदार है, आप सुनाइए।
2: इलेक्ट्रिक कार बढ़िया है कबीर भाई, यार साउंड नहीं देता उससे। मेरे गाड़ी अभी एक दो डेढ़ महीने से साउंड बहुत कर रही है, पीछे का एक्सल है ना, उसको बोला चेंज करा दे। हाँ। वो नहीं करा, इतना साउंड कर रहा है कि मेरा कान खराब हो गया यार।
0: अरे रे रे रे,
2: इलेक्ट्रिक कार में ये फायदा है।
0: हाँ। वो तो है, वो तो है,
2: साउंड नहीं रहेगा।
0: उफ, ये अब तो घोड़े आपके घोड़े की आवाज आपने निकाली जस्ट अभी।
2: नहीं नहीं, मैंने तो क्या गला खराब हो, घोड़े की नहीं निकाली
0: भाई, एकदम एकदम ओरिजिनल आवाज थी भाई, कसम से बता रहा हूँ।
2: आपने मुझे बना दिया घोड़ा।
0: अरे यार भाई तू भाई पुअर चॉइसेस ऑफ वर्ड्स। एनीवे थैंक यू सो मच भाई कि आपने कॉल करी। उम्मीद करता हूँ कि इंजन की आवाज ठीक हो जाए है और आपकी परेशानी दूर हो भाई। आप जिद करो, आप जमीन पे लौटने लग जाओगे, नहीं मुझे ऐसा कुछ करो आप। तो भाई की थोड़ी ग्रामर के मसले चल रहे थे, बाकी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कॉल नहीं लग रही शहजाद सलीम साहब, अभी बताता हूँ मैं। और इनके बाद मैसेज आया है, ये भाई ढूंढना पड़ेगा अब इसको। भाई मुझ पर शक, आपके मैसेज में अभी कुछ देर पढ़ता हूँ। एक मैसेज है फरद भाई का, फरद भाई को मजा आ रही है, कह रहे आवाज़ आज भी वही है ना, कभी बदली नहीं मैंने आवाज़ को, इट्स अ वेरी ओरिजिनल आवाज़ भाई, ये दे अपने देसी ट्रक वालों के गाने। हाँ मैं निकला गड्डी गाबा जी, गुड मॉर्निंग। एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: अरे
0: अस्तबल ही बना लेते हैं भाई तैयार। तो
3: अब आप घोड़े की आवाज निकाल निकाल के लोगों को ये कर रहे हो, तो हम बोले हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं, कम से कम ज्यादा रही तो कम से कम फूंक मार देते
0: भाई। वो ऐसा लगा कि अभी बीमारी से उठा है घोड़ा जो अपनी आवाज निकाली ना।
3: अरे भाई यार बीमार मत करो, बस अल्लाह का शुक्र
0: है। अल्हम्दुलिल्लाह।
3: और सुनाओ भाई, कभी भाई क्या चल रहा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं लोगों से पूछ रहा था अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी सी सस्ती हो गई भाई आने वाले टाइम में, तो आपके लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे?
3: अरे भाई एक नहीं दो चार दिला दे, कैसो कैसो को दिया है, बस हम तो वही अदनान सभी की तरह भैया, हम तो बस जो भी मिल जाए। लेकिन ये जो ये साउंड का जो मामला बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि बंदा एकदम, कभी कभी तो मैंने देखा कि आगे एकदम टच हो गया, पलट के देख रहे तो गाड़ी, अरे भाई क्या है यार, कम से कम थोड़ा हॉर्न वॉर्न बजा दिया कर। नहीं उसमें बिल्कुल साउंड नहीं, ये थोड़ा सा मसला है उसमें। ये जो अभी जो ये अजीब सा ये वो निकाल के साइलेंसर निकाल के जो उड़ाते हैं रोड में ना, आवाज अजीब सा बना के, वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन लोग, वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब वो लोग को इलेक्ट्रिक,
0: हाँ बेचारे वो साइलेंसर हटवा रहे हैं और उनको इलेक्ट्रिक पकड़ा गए तो वो तो जी नहीं पाएंगे भाई।
3: हाँ उनको उनको ये गाड़ी देना मांगता है, पुलिस को सजा के तौर पे देना मांगता है, ले अब दूसरे दूसरा गाड़ी तो चला नहीं सकता है
0: भाई, वो डुक डुक डुक डुक डुक की साउंड नहीं आएगी, तब तक फील नहीं आती है पब्लिक को,
3: सजा के तौर पे देना मांगता है कि ले तू, बहुत लोगों को पूरे पब्लिक को परेशान करके रख रहा था ना, तुझे यही गाड़ी चलाना।
0: वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बहुत सही जा रहे हो भाई, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू मेरा भाई। तो किधर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, क्या सीन है अभी?
3: लगे हैं बस, अभी अभी फर्स्ट लोड करके आ गए हैं प्लांट में, अब इंशाल्लाह धीरे धीरे लगे हुए काम, बस चल रहा है नॉर्मल ही, ज्यादा ये करके फायदा नहीं है ना।
0: अरे नॉर्मल काम ही बढ़िया भाई, क्यों एडवेंचर
3: चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी इस साल में थोड़ा सा बेहतर है और सालों के बनिस्बत, गर्मी का जो ये है मतलब सितंबर में तो तकरीबन हालत 20-25 के बाद में अगस्त से ही मौसम में थोड़ा सा तब्दीली मैं देख रहा हूँ।
0: अच्छा,
3: हालांकि जो आउटडोर काम करते हैं उनके लिए तो मतलब मसला, लेकिन फिर भी जो ह्यूमिडिटी का जो सिचुएशन हुआ करता था और महीनों में और सालों में, तो वो सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर।
0: मौसम विभाग ने हायर कर लिया क्या आपको?
3: नहीं नहीं नहीं,
0: पूरा ऐसा लगा मौसम का कि आज जो है सूरज कहीं और से निकलेगा, तापमान जो है
3: शुक्र है मैं देख रहा हूँ मेरे भाई, मैं आज के मतलब बहुत सालों से गल्फ कंट्री में रह रहा हूँ ना, जो सिचुएशन अभी यहाँ पे जो पहले हुआ करता था आज के 10 साल पहले, वो सिचुएशन अपने मुल्कों में आ चुका है, वो मैं देख रहा हूँ यूपी और मतलब ये सब जो तराई इलाका है ना, ये वहाँ पे यार वो गर्मी वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे बल्कि बेहतर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और ये सब लगाने का मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया और लोगों को बहुत फायदा पहुंचा।
0: हमारा नेता कैसा हो भाई, पेट लगाओ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने कॉल करी।
3: चलो शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जारी रखो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजा आता है, आपका टाइम हो रहा है अभी थोड़ी देर में वो भी,
0: और
3: हमारे तमाम जानने वाले भाइयों को भी जो हम लोग आया करते थे, बात किया करते थे, हम लोग याद करते हैं एक दूसरे को,
4: सारे लोगों को सलाम हुआ था।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। और क्या तनवीर अहमद साहब का मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हैव यू एवर एक्सपीरियंस एट अ प्रॉब्लम कार गोज नेक्स्ट टू यू एंड फील सो दिस सम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम इन योर कार दिस क्रिएट्स अ डाउट वेदर इट्स योर कार दैट नीड्स मेंटेनेंस। भाई एकदम सही तनवीर भाई, होता है साइड वाली गाड़ी में मसले दिख रहे हैं, लग रहा है हमारी गाड़ी में भी हो ही रहे हैं। और ये चार्जिंग पे लगी हुई गाड़ी भेजी है माज भाई ने, और मेहर अजीज भाई ने भी बड़ा वाला ट्रक भेज दिया है। फरहत भाई ने मैसेज किया भाई जो एंट्री किया भाई ने है ना एकदम सॉलिड एंट्री थी एकदम। एक बार से कबीर भाई इलेक्ट्रिक वालों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना, बहुत बेकार एक्सपीरियंस है मुझे। अरे ये क्या बात है, चलो उनका एक्सपीरियंस सुन लेते हैं फिर मैं गाना चला देता हूँ। भाई कुछ एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं, आई वुड लव टू नो कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। और इस बीच एक और मैसेज है, कबीर भाई मेरे पास इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर है लेकिन मुझे तो उससे अच्छा लगता है। हाँ इंडिया में भाई मजा आते हैं, सुनो भाई नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी भाई, क्या हाल है? ठीक है बढ़िया भाई, सुन रहा हूँ जब से। हाँ एकदम आपने मुंबई के भाई की तरह बोला, हाँ क्या हाल है? बहुत देर सुन रहा हूँ,
5: ये कह रहा था जैसे हम मुंबई से जा रहे थे, दो फैमिली जा रहे थे,
0: ठीक है,
5: एक पेट्रोल गाड़ी जैसे मैं चला रहा था और एक दोस्त था इलेक्ट्रिक गाड़ी से।
0: हाँ
5: भाई यकीन मानो मैंने उसके साथ दोस्ती तोड़ना वाजिब समझूंगा, मैं बोलूंगा भाई दोस्ती नहीं रही अभी।
0: हाँ।
5: हर एक अभी जैसे पेट्रोल मेरे को भरना है, मेरे को मैं टैंक टू टैंक चलाता हूँ, जैसे दिल्ली जा रहे थे आप।
0: हाँ।
5: टैंक टू टैंक चलाना मैं प्रिफर करता हूँ भाई, उसके लिए वेट करना, इलेक्ट्रिक चार्जर ढूंढते रहो, एक जगह मिला उधर चार पांच गाड़ियां, फिर वो थोड़ा टाइम वेस्टिंग बहुत है उसमें।
0: अच्छा ओके, तो आपका तो क्या कहना है कि अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि ढूंढने मुश्किल आती है इसलिए लेंगे, तो कतर में तो सब जगह ऑलमोस्ट फैसिलिटी है इसकी, तो तब ले लेंगे आप अगर फैसिलिटी मिल जाएगी भाई, यहाँ भी चार्जिंग कर लो वहाँ भी चार्जिंग कर लो, तब ले लेंगे तब भी नहीं लेंगे?
5: यार वो थोड़ा माइंड अभी कंफ्यूज है उसमें, लेकिन जो पेट्रोल में फीलिंग है ना, जैसे अभी एक्सीलरेटर दो और वो करके आवाज आए,
0: कैसी कैसी आवाज, कैसी आवाज
5: भाई, वो घोड़े वाले तो ना आएगी
0: करे हु करके बात
5: जैसे समझो ना अभी वो जैसे आवाज आएगी।
0: अच्छा
5: तो और ऐसा लगता है कि मेट्रो में ही चल रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में बैठे तो।
0: ओके तो भाई को फील सी है सारा वैसा फील रहा है भाई, ठीक है भाई समझ गया समझ गया, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड शिव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: और दूसरी बात मैं बोल रहा था कि जो एक भाई बोल रहा था ना जैसे आवाज स्पीकर लगा के
0: साउंड इफेक्ट, हाँ
5: जैसे इंडिया में अभी कुछ है इलेक्ट्रिक कार, उसमें वो फीचर्स है एक्चुअली।
0: अच्छा है, मैंने मैंने देखा है
5: स्पोर्ट्स का, जैसे कुणाल कामरा ने जो गाड़ी की बात लगाई है ना उसमें है फीचर्स।
0: अच्छा ओके, तो ये देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था बट थैंक यू, मैं बस इस बारे
5: में देखूंगा। ओला गाड़ी में वो फीचर वो उसमें तुम ऐसा ये करो ना, स्पोर्ट्स का है और नॉर्मल फायरिंग गाड़ी का है उसमें आता है।
0: अच्छा ओके ठीक है भाई, जरूर चेक करते हैं, थैंक यू सो मच भाई कॉल किया आपने शिव भाई, ओके भाई अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। शेयर भाई की बात जैसे मैसेज पढ़ती हूँ, यहाँ भाई ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्ट्रिक कार को लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है, एमटी कॉरिडोर से क्या सोलर पैनल लगा कर ड्राइव करोगे क्या, ओनली ऑप्शन इज दिस। उन्होंने एक फोटो भेजा गाड़ी के पीछे भाई ने जनरेटर बांध रखा है। और अस्सलाम वालेकुम समीरा जी ने मैसेज किया, वो कह रही है मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से हाइब्रिड कार की सोच रहे थे, थैंक्स टू यू आज उनको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि लेना है या नहीं। लॉन्ग ड्राइव के लिए हाइब्रिड गाड़ियाँ मस्त हैं मुझे ऐसा लगता है, फुल इलेक्ट्रिक के लिए तो अभी आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। एक शुएब मंसूर भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, गुड इलेक्ट्रिक कार्स जब फ़ोन के चार्जर से चार्ज होने लगेंगी आई विल परचेज, कह रहे जब तक गाड़ी फ़ोन के चार्जर से चार्ज नहीं हो रही है तब तक मैं नहीं ले रहा हूँ भाई। ये आपका कहना मान लेता हूँ, तो आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? और मलिक वकास साहब का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है, बस शो वाला काम है, इट्स टाइम टेकिंग फॉर ए चार्जिंग एंड एक डर ही लगा रहता है सेल कब एंड हो जाएंगे। ओके इरफान अली भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई होप यू वेल, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स हमारे बहनों के लिए अच्छी हैं, हम बॉयज़

एक मैं अधूरी छोड़ दूं क्या, मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

ये तीसरी मरतबा मुझे किसी ने लिख के भेजा मेरे नाम जो है कबीर की जगह के बी आर इरफान मैंने मजे लिए इरफान मैं कह रहे मेरा नाम भी आज से आई आर एफ भाई क्या चल रहा है के बी आर तो दवाई का नाम लग रहा है एक के बी आर सुबह लें 500 mg भाई ऐसा बढ़िया तूफानी माहौल हो जाएगा आपका जिसकी अदरी एक के बी आर सवेरे सवेरे 500 mg सॉलिड दिन

0: शायद लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
2: देखो भाई बात सारी हो रही है कि मैसेज आए कुछ मेरे पास, मैं लास्ट मैसेज पढ़ता हूँ फिर जरा कतर की खबरें और उसके बाद कहानी की तरफ पढ़ना है. तो फरद भाई कह रहे हैं भाई ओके मैं गाड़ी का नाम नहीं ले सकता, मेरे कज़न ब्रदर माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं अपना बताऊँ, मुझे लगता है कि हाइब्रिड कार्स कुल मिला के जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, मसला मसाइल ये हैं कि हाइब्रिड कार्स आर रियली रियली गुड ऑप्शन अगर आप लग रहे हैं कि आपको आगे जाके भाई कुछ करने का है, मतलब आपको लगता है कि भाई मैंने चेंज करनी है गाड़ी भाई, तो फुल इलेक्ट्रिक की जगह जैसे तला भाई ने मैंशन किया, जैसे दो तीन और लोगों ने मैंशन किया, हाइब्रिड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सीधी बात भाई, ठीक है यहाँ पे बात ख़त्म कर दें. ठीक है एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई क्या खबर है भाई, सब बढ़िया खबर है नौशाद साहब. सुपर एक भाई ने मैसेज किया है, सुपर भाई थैंक यू भाई. मोहम्मद आलम सिद्दीकी साहब का मैसेज है. उस्मा जी ने मैसेज किया है, जिन भाई को मोबाइल चार्जर से गाड़ी चार्ज करनी है उनके वजह ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी सी गाड़ी है भाई इतनी क्यूट सी गाड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह. और सईद हमसे भाई ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रिक इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट बट फॉर लॉन्ग रन एज यू मैंशन हाइब्रिड वुड बी अ गुड चॉइस. जी भाई कंक्लूजन ही यही है, अगर आपको बढ़िया चाहिए ना मामला तो यही है भाई. एक मैं कॉल आ रही है, रुक जाओ कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: सलाम क्या हाल है कैप्टन
2: साहब? अरे गाबा जी जमा जहज बना रखा है सो को भाई कतई
3: आज तो मेरे भाई ने घना थ्रस्ट बढ़ा रखा भाई.
2: जी भाई एकदम क्या चल रहा गाबा भाई, क्या सीन है, चाय हो गई?
3: चाय भाई आपके साथ ही शेयर की है डिजिटली.
2: हाँ डिजिटली भाई, उस टाइम मैं भी चाय पी रहा था. सही है भाई सेम टाइम पे. और गाबा जी क्या होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में?
3: कबीर भाई मैं बताता हूँ आप, यार सच में थर्मस लेके आते हो बड़े वाला घर से.
2: भाई अभी मैं मेरे आपको बड़ा थर्मस या छोटा वाला लेके आ रहा हूँ भाई.

0: छोटा कर दिया मैंने इसको, 5 कप चाय निकलती है इसमें से भाई, बढ़िया ली एकदम।
1: 5 कप वो कितने टाइम में होती है फिनिश
0: भाई? शो के आखिर तक, आखिरी गाने तक चलती है चाय भाई।
1: क्या बात है भाई, बैक टू बैक है?
0: नहीं बैक टू बैक नहीं, बीच बीच में गाने गुने लगा के एक बार चला देता हूँ मैं, वरना तो वह पूरे शो में 3 घंटे तक दौड़ती है चाय।
1: सही है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है,
0: ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा भाई।
1: नहीं भाई आपकी चाय के चर्चे बहुत ज्यादा हैं कभी भाई,
0: थैंक यू भाई।
1: लगता है ठंड में तो आप थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देते हो गया ना थर्मल।
0: बिल्कुल भाई, देखो आंख खुलते के साथ ही एक मिडिल क्लास बच्चे को ना वो जो चाय के उबलने की जो महक है और जो खुशबू है या देखने में जो खुशी मिलती है ना, वो किसी चीज में नहीं भाई, तो वही देख के हम बड़े बड़े
1: भाई वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे दिल्ली में जो लोग नीचे केला वगैरह लगा के या बैठ के चाय बना के देते है ना भाई ठंड में, देखो देख के ही भाई खुशी मिलती है।
0: मैं एक पिक्चर पेंट करता हूँ और ये पिक्चर पाकिस्तान में भी लोग इमेजिन कर पाएंगे, जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना ठंड का, दुकानें बंद है, शटर गिरे हुए हैं, शटर के साइड में बैठ के आप चाय पी रहे कोहरे में, भाई उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, साफ सीधी बात। क्या कहते हो बाबा जी?
1: कबीर भाई उसका आप यकीन मानिए, हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं ना कबीर भाई, मैं भी एडिक्टेड हूँ चाय का, वो जो सुबह वाली चाय है ना कबीर भाई,
0: बहुत जरूरी है भाई।
1: वो जब ये घना कोहरा होता है ना इंडिया में जैसे आपने बताया, और बंदे के मुंह से भाफ निकल रही होती है उस टाइम पे, कबीर भाई यकीन मानिए यार चाय पीने का इतना मजा आता है ना उस टाइम।
0: शुक्र शुक्र मेरे पास चाय बची है, नहीं तो भी झगड़े हो जाते आपके मेरे। और गाबा जी जाते जाते बता के जाओ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को क्या सीन है भाई, आपको कुछ है
1: भाई? मना तो बात यू ही करनी थी हाइब्रिड की, ये आपने ही कंक्लूजन कर दिया। एक्चुअली पता क्या है कबीर भाई, देखिए ये जो हाइब्रिड गाड़ियां ना ये थोड़ी सी महंगी तो हैं इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल कार्स, बट मैंने अभी ड्राइव नहीं की है, मेरे किसी दोस्त के पास है, मगर चीज अच्छी है। अगर आप इसकी ब्रेक भी दबाते हो ना या आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो उसका चार्जिंग का कोई मसला नहीं रहता।
0: अच्छा ओके,
1: हाँ वो गाड़ी का मैकेनिज्म ही ऐसा, वो अपने आप ही उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है।
0: लेकिन बढ़िया भाई, फील तो है उस गाड़ी में, फील तो है।
1: भाई देखिए जब पेट्रोल या डीजल के बाद सीएनजी आया तो लोगों ने सोचा भी ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिकल ऑप्शन आया, वो भी क्योंकि मेजोरिटी में आपके दिल्ली में जो रिक्शा है वो तो चार्जिंग वाले ही हैं मेरे ख्याल से।
0: अरे भाई दुखी कर रखा उन्होंने, दुखी कर रखा भाई, जैसे मक्की मिन बनाती ना वैसे हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिक वाले वो रिक्शे चल रहे भाई, बहुत परेशानी कसम से।
1: चलो यार कबीर भाई सबकी रोजी रोटी लगी हुई है।
0: बिल्कुल भाई बात तो है, लेकिन वो वहाँ पे ना देखो वो तो सही है पर उनको ना कोई मैनेज करने वाला नहीं है कि भाई तुम थोड़े इस इलाके में हो लो थोड़े उस इलाके में, सबको एक जगह जमा कर रखा है, समझ रहे हो
1: कबीर भाई? ये एक काम ही ऐसा काम है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, हालांकि जो सरकारी बसें उनकी होती हैं उनका रूट तय होता है।
0: वो तो
1: आपने दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से पंजाब जाना है, ये जो दिल्ली के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर ऑटो रिक्शाज हैं दिल्ली नंबर के लगा लीजिए, उनका कोई पैरामीटर नहीं है।
0: दिल्ली में तो पैरामीटर वैसे ही कोई नहीं भाई, हमारे यहाँ पैरामीटर तो वैसे भी किसी चीज का नहीं पर भाई। और भाई सही साइड चल रहा है भाई, कहानी सुन पाएंगे आज? अब
1: कहानी सुन लेंगे भाई, आज तो है गाड़ी में ही है कबीर भाई।
0: बिल्कुल एक बढ़िया आर्टिस्ट की कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है?
1: क्या बात है भाई, न्यू ही गणी फूफा करके रखो।
0: बिल्कुल भाई शोशा और फूफा कर देंगे भाई, बढ़िया तुमने तो फेरा भाई, बस चलाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं कबीर भाई वो जो ऑफिस से चाय नाश्ता देने वाला सिस्टम नहीं है भाई, है लेकिन घर की चाय की बात थी कुछ और है भाई, तो मैं नू कर रहा था बढ़िया करके गाना आ रहा है, इसके बाद आ रही है सीधा कहानी और कहानी बहुत बढ़िया है, इट इज अबाउट एन आर्टिस्ट, सो मजा आएगा आपको। पर अभी जो लोग अपनी गाड़ी में है वॉल्यूम बढ़ाऊं मैं आपकी यहीं से? देखो वॉल्यूम बढ़ाऊं गाड़ी की, ओके अब देखो मेरा जादू देखो, ओके एब्राकडेब्रा चलो KBR MG500 अब नया वॉल्यूम बढ़ जाएगी भाई, इसके बाद गाड़ी सुनने का अलग मजा आ जाएगा, मौज करा देंगे मौज। 7:30 बजे क्लॉक और इसके ठीक बाद आज का किस्सा।

सच्ची बताना, साथ में अलाप लगाया ना आपने? हाँ किया ना, किया कि नहीं किया पता है मुझे। अच्छा ट्राई था। ये तो मुझे पता था कि असली में तो आपने ट्राई तो किया ही होगा। मैं एक सेकंड एक चीज टेस्ट कर रहा हूँ, ये वही वाला म्यूजिक है? हाँ ये वही वाला म्यूजिक। ओके अब तैयार है आज के किस्से के लिए? एक मैसेज है, एक नंबर सॉन्ग बाय KBR। ये दवाई मुझे रुक गई है आज के शो में। KBR MG 500 MG की दवाई लीजिए, सुबह सुबह आपका दिन सेट हो जाएगा। ठीक है अब मैं जरा शुरू कर रहा हूँ आज का किस्सा, किधर गया। ओके सो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा मैं, है एक मैसेज, अरे सुबह कहाँ आ गए? बस भाई ऐसे जा रहा था अफजल उस्मानी भाई, मुझे कहा इधर आओ, मैं आ गया, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ मैं। ओके इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसलिए बहुत बहुत हैरत अंगेज कहानी है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप इत्मीनान से सुने। अगर आप गाड़ी रोक के सुने तो आपको डबल ट्रिपल में जा जाएंगे, वरना ड्राइव करते हुए प्लीज ड्राइव स्लोली एंड सेफली। ठीक है ऑल राइट। तो आज का जो किस्सा है ये कुछ अलग किस्म का किस्सा है, ध्यान दीजिएगा हर एक डिटेल पे। शुरू करता हूं मैं 1920 एम्स्टर्डम से, साल 1920 एम्स्टर्डम। एक बंदा था जिसका नाम था हैंस वैन मेगोरन। ये पेशे से पेंटर था, पेंटिंग वगैरह बनाया करता था, और जो भी बनाता था अपना दिल निकाल कर रख देता था कैनवस पे। और इसी एरा में पूरी दुनिया दीवानी हो रही थी यूरोप में स्पेशली मॉडर्न आर्ट की, पिकासो के फ्रैक्चर्स, कैंडिंस्की के

जो पेंट उनका जो आर्ट वर्क था, ये उस वक्त के जीनियसेस थे, लोग दीवाने हो रहे थे इनके पीछे। और हैंस जो था, हैंस वैन मेगरन, वो पेंट कर रहा था, एक ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा था जो कई जमाने पहले हुआ करता था, जिनका नाम था वर्मेयर, वर्मेयर रिम्बार्ट। और उनकी वो आर्ट की कॉपी बनाया करता था नए जमाने के हिसाब से, फ्लॉलेस स्किल। कोई देखेगा तो ये बोलेगा यार क्या कॉपी किया है भाई। और प्रॉब्लम यही थी कि लोग बोल रहे हैं क्या कॉपी किया है भाई। तो जो क्रिटिक्स थे उसकी पेंटिंग्स को देखते थे, हैंड वैन की, और उसकी पेंटिंग को देख के ये कहते थे कि यार बंदे में बात तो है, क्या पेंट करता है। इस वजह से उससे गैलरीज मिलने लगी, उसको आर्ट दिखाने का मौका मिलने लगा। और फिर आया एक मोड़, एक ऐसा क्रिकेट, एक ऐसा क्रिटिक जिसने बहुत ही दर्द भरी बात कह दी। उसने हैंस को बोला कि हाँ पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया है तुम्हारी, ओरिजिनलिटी नहीं है यार इसमें, बात नहीं है। अब ये जो लव्स थे ये तलवार की तरह उसके दिल पे लगे, छुरी भी नहीं, तलवार की तरह। मतलब इसका ये हुआ कि सामने वाले को बोला कि भाई तुम क्रिएटिव नहीं हो बिल्कुल भी। किसने बोला तुम पेंटिंग वेंटिंग अच्छी करते हो? टेक्निकली ठीक हो मगर क्रिएटिवली जीरो हो। और 1920 में अगर ऐसा बोल दिया जाए किसी पेंट करने वाले को तो समझ लीजिए उसका करियर खत्म। आपको लोग कॉपी कह देंगे, आपको लोग बोलेंगे कि आप क्राफ्ट्समैन तो ठीक है, आर्टिस्ट नहीं है यार, बात नहीं है तुम में। और हैंस को भी बहुत बुरा लगा, वो ये क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पा रहा था। हर आर्टिस्ट के अंदर, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, एक किस्म का ईगो होता है, ठीक है। आर्टिस्ट थोड़ा सा ईगोस्टिक और थोड़ा सा सनकी होता है, और राइट अमाउंट ऑफ ईगो एक आर्टिस्ट के अंदर होना भी जरूरी है, ये भी जान लीजिए। हाँ, हैंस भी इसी जमात का था। तो हुआ ये कि वो क्रिटिसिज्म ले नहीं पाया, उसके ईगो को हर्ट कर दिया इस क्रिटिक ने। फिर हैंस ने पेंटिंग विंटिंग छोड़ी और सनक में आके एक कॉलम एक अखबार में लिखवाया। उसने लिखा तमाम दुनिया के लिए और उस क्रिटिक के लिए कि इनको इज्जत नहीं है आर्टिस्ट की, मुंह उठा के बस किसी भी पेंटिंग के बारे में कुछ भी बोल दिया। अपने घरों की दीवारों पर टांगी हुई है पेंटिंग्स, उनकी असल अहमियत कुछ है ही नहीं, बस पैसों से तोलते हैं आर्ट को। और ये सब उसने लिखा, पर सुनेगा कौन, आर्टिस्ट की कौन सुनता है, और वो आर्टिस्ट जिसका कोई नाम ना हो कौन सुन रहा है उसे। तो लोगों ने सुनने के बाद बिल्कुल उसे बेदखल सा कर दिया आर्ट की दुनिया से। बस अपना सामान लपेटा, ब्रश उठाए और अपनी टूटी हुई इज्जत रेप्यूटेशन बची कुची लेकर ये वहां से निकल गया, सामान बांध के एम्स्टर्डम की आर्ट की दुनिया से बेदखल होकर बची हुई सेविंग्स के साथ हैंस पहुंचा एक सी साइड विला में इन सदर्न फ्रांस। अब कुछ तो करना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। अब एक आर्टिस्ट को एक ही काम तो आता है, आर्ट, वो क्या करे। अब हैंस ने कहा मैं यहां आ ही गया हूं, क्यों ना यहां पे आने वाले टूरिस्ट के मैं चेहरे बनाऊं। तो उसने पोर्ट्रे बनाना शुरू किए, वही पोर्ट्रे जिसमें सामने एक बंदे को या बंदी को बिठाया जाता है और उनसे कहा जाता है सर ऐसी रहेगा, सर बिल्कुल स्टिल होके बैठिए, और फिर वो पोर्ट्रे बना के उनको देता था। कमाई हो रही थी पर दिल में कहीं एक आग जल रही थी। फ्रांस के अकेलेपन में इस आर्टिस्ट के अंदर कुछ पक रहा था। उसने डिसाइड किया कि मैं इन क्रिटिक से कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मगर इनको मैं गलत साबित करके रहूंगा। भाभी सोच रहे होंगे एक मामूली सा आर्टिस्ट जो पोर्ट्रे बना रहा है वो क्या गलत साबित करेगा। आइडिया सुनिए, हैंस का आइडिया था कि वो पुरानी पेंटिंग्स की, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी पेंटिंग्स की ऐसी कॉपी बनाएगा कि ओरिजिनल समझ के लोग तारीफें करेंगे। हाँ, वो उसके नीचे अपना साइन नहीं करेगा, ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा तो अपना साइन नहीं करेगा, मगर इतनी बढ़िया कॉपी बनाएगा कि लोग उसकी पेंटिंग को देख के मुरीद हो जाएंगे। और उसने डिसाइड कर लिया था कि अपना नाम तो नहीं लिखूंगा लेकिन जितना मुझे बेइज्जत किया है उसका बदला पूरा लूंगा। जब ये लोग बाहर की दुनिया उसकी पेंटिंग की तारीफ करेगी, वाह वाह ओरिजिनल पेंटिंग की बात ही कुछ और होती है, तो वो निकल के सामने आएगा और

बोलेगा बेटे मैंने बनाई है, कॉपी है ये। तो इन लोगों की इज्जत उसके सामने सातवें आसमान से सीधा फर्श पे आ जाएगी। यही उसकी टेक्निक थी और यही वो सोच रहा था। अब ये इतना आसान नहीं होता, मैं आपसे बोलूंगा किसी पेंटिंग की कॉपी बनवा दीजिए ठीक है, मगर लैब टेस्ट में सामने आ जाएगा साफ कि ये कॉपी है, तो इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। सदरन फ्रांस में अर्ली 1930s में एक शांत से विला के अंदर जहां से समुद्र दिखता है, खूबसूरत नजारे, वहां पे हैंस अपने कमरे में था और वो ओरिजिनल की कॉपी बनाने की तैयारी कर रहा था। यहां पर वो एक आर्टिस्ट को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था, द लेजेंडरी होएनिस वर्मीयर। वर्मीयर जो थे वो साहब 17th सेंचुरी के डच मास्टर थे। और उन्हीं को क्यों चूज किया आप सोच रहे होंगे, पिकासो वगैरह चूज कर लेता जिनके नाम वाम है। तो उसने इसलिए चूज किया वर्मीयर को क्योंकि उनकी सिर्फ 40 नोन पेंटिंग है दुनिया में जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, और सारी की सारी पेंटिंग्स दुनिया के हाथ अभी भी नहीं लगी, जो बहुत रेयर है, वो बहुत बहुत कीमती है। आर्ट के हिस्टोरियंस तो इन पेंटिंग्स को खजाना मानते हैं, बहुत से पेंटिंग्स की तलाश में अभी भी लगे हुए हैं कि इटालियन पीरियड वाली जो पेंटिंग्स होती है, आपको तो पता ही है पेंटिंग्स की लोग कैसे बात करते हैं, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये वही लोग थे। आर्ट की दुनिया को ये पेंटिंग्स चाहिए थी, वर्मीयर की पेंटिंग, और हैंस उन्हें वही देना चाहता था। उसने सबसे पहले वर्मीयर की पेंटिंग्स के स्टाइल को पढ़ा, एकदम किसी हाई प्रोफाइल सर्जन की तरह अपना दिमाग लगाया। उसने देखा कि इसमें स्ट्रोक्स कैसे यूज किए गए हैं, कैसे उनकी पेंटिंग्स में एक अलग किस्म की चमक आती है, कैसे शेडोज को यूज किया गया है, कैसे इनविजिबल ब्रश का काम है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पूरे पूरे दिन बैठा रहता था वो। चलो स्टाइल तो कॉपी कर लेगा, लेकिन एक चीज कॉपी करनी बहुत मुश्किल है, वक्त। मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब, यह है कि आप किसी चीज को अगर बताना चाहते हैं कि ये 17th सेंचुरी की है तो उसका पुराना दिखना भी तो जरूरी है। अब नई पेंटिंग पुरानी कैसे लगेगी, फ्रेश पेंट तो पता लग जाएगा, और ऑयल पेंट नरम हो जाता है, सालों तक ऐसे ही रहता है। तो कोई भी आम एक छोटा सा लैब टेस्ट करके साबित कर देगा कि यह नकली है। अब इसको पुराना कैसे बनाया जाए, 300 साल पुराना कैसे बनाया जाए। तो हैंस वेन ने एक तरकीब निकाली, उसके अंदर के साइंटिस्ट को उसने जगाया। वो सबसे पहले गया कबाड़ी वाले के पास, उसने कहा भाई तुम्हारे पास कोई पुरानी पेंटिंग्स पड़ी हैं? तो उसने बोला हाँ पड़ी हैं, देख लो। और वो जो पेंटिंग्स थी वो 17th सेंचुरी की पेंटिंग्स के जो फ्रेम होते ना वो उसे चाहिए थे। उन पेंटिंग्स को इकट्ठा किया, घर पे ले गया, बीच में से पेंटिंग्स को फाड़ा और 17th सेंचुरी का फ्रेम उसको मिल गया। उसके बाद आते हैं रंग, क्योंकि पेंटिंग कैसे बनेगी, रंगों को अगर वो नए वाले रंग से मिलाता और बनाता तो शायद मजा नहीं आता, असली नहीं लगता। तो उसने हाथों से ग्राइंड करके पिगमेंट्स बनाए, उस दौर के मटेरियल्स को यूज किया, जैसे कि लेड वाइट को यूज किया उसने, और उसने लैपिस लजुली एक किस्म का पत्थर होता है उसे ना ग्राइंड करके पेंट में मिला दिया उसने, ताकि बिल्कुल पुराना वाला फील आए। और फिर उसने आयरन ऑक्साइड, येलो ओकर कहते हैं उस मटेरियल को यूज़ किया, एक क्ले होता है जो चिकनी मिट्टी होती है, उसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं ना हर किसी की रेसिपी, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, तो ये था बैकलाइट। बैकलाइट 1907 में 1907 में एक किस्म का प्लास्टिक हुआ करता था जो उसने पेंट में मिलाया। क्यों? क्योंकि इसे अगर कम धीमी आंच पर पकाया जाए, बेक किया जाए, तो यह जल्दी से सख्त हो जाता है, और पेंटिंग जब ठंडी होती है तो क्या होता है, पेंटिंग पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। आप समझ रहे कितना दिमाग लगाया इसने कि जब पेंटिंग पे क्रैक पड़ेगा तो बनी बनाई पेंटिंग क्रैक्स में बिल्कुल पूरा नहीं लगेगी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। और फिर जब क्रैक्स पड़ जाएंगे तो उस पे वो इंडिया इंक रगड़ देगा पूरा उस पे क्लीन करने के लिए, जिससे वो एकदम पुरानी 300 साल पुरानी पेंटिंग लगेगी।

अब ये एक पेंटिंग बनाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी और 1968 तक तैयार करी। वो जानता था वक्त लगेगा तो लगे, लेकिन ये एक पेंटिंग खजाने की चाबी है। सालों की मेहनत से ये पेंटिंग तैयार हुई और अब बारी थी इस पेंटिंग को दुनिया में लाने की। अब या तो वो बाहर एक बहुत ही बड़ा जीनियस कहलाएगा या वो इतिहास का सबसे बेवकूफ इंसान कहलाएगा। खैर, एक आर्ट डीलर के पास वो गया, एक अनजान इटालियन कलेक्टर बन के, बाकायदा पूरी आइडेंटिटी लेकर, और बोला कि मुझे ये बिकवानी है, ओरिजिनल पेंटिंग है। सामने वाले ने देखा कि यार लग तो रही है ओरिजिनल। उसने कहा ठीक है सर। उसने बताया कि ये एक बहुत पुरानी वर्मेयर की पेंटिंग है, मैं कलेक्टर हूँ इसलिए मुझे शौक है इन सब चीज़ों का और मैं बेचना चाहता हूँ। उसे कहा गया कि आप वेट कीजिए। अब एक्साइटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा खास है ना, क्योंकि अब उसने जो बनाया है इतने सालों से, अगर ये बिक गया तो वो पूरी दुनिया पे हंसेगा, क्योंकि उस दौर में एक वर्मेयर की पेंटिंग किसी कॉमेट के गिरने से भी ज्यादा रेयर थी। कलेक्टर्स, क्यूरेटर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स सब बेचैन हो गए जब उन्हें पता लगा कि मार्केट में एक वर्मेयर की पेंटिंग है। सब भाग रहे हैं इसके पीछे कि चलो चलो देखने चलते हैं। इस बीच में एक शख्स आया, इसका नाम था डॉक्टर इब्राहिम ब्रेडस। डॉक्टर इब्राहिम साहब जो थे वो 73 साल के थे, डच अथॉरिटी में थे, और ये वो शख्स थे जो वर्मेयर की पेंटिंग के एक्सपर्ट थे। अगर इन्होंने कह दिया कि पेंटिंग असली है तो काम वहीं खत्म। इनकी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज या तो पेंटिंग को अमर कर देगा या बनाने वाले के करियर को खत्म कर देगा। जब उन्हें पेंटिंग दिखाई गई तो वो प्राइवेट कमरे में गए उस पेंटिंग को लेकर और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको जांचते रहे। एक एक स्ट्रोक को डॉक्टर इब्राहिम ने देखा, अच्छे से देखा। उसके बाद वो पीछे हटे और फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। बाहर बैठा हुआ था हैंस जिसने वो पेंटिंग बनाई है, मगर किसी को पता नहीं है कि उसने बनाई है। वो इंतजार कर रहा था कि अंदर से क्या होगी, क्या आवाज आएगी। एक नॉर्मल बंदा बन के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर इब्राहिम ने एक एक चीज को मैग्नीफाइंग किया और बाहर आके तो वो खुशी से पागल हो गए। वही ब्रश वर्क, वही पिगमेंट्स, वही क्रैक्स, क्या कॉम्पोजिशन है। वो हटे पीछे और मुस्कुराते रहे, बार बार देखते रहे। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। उन्होंने अपना पूरा फैसला प्रेस्टीजियस बर्लिंगटन मैगजीन में छापा, लिखा कि क्या मोमेंट है इतिहास में, भाई वाह। आर्ट लवर्स के लिए इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। द मास्टरपीस ऑफ होएनिस वर्मेयर ऑफ द डेल्ट, क्या क्या ऑथेंटिक चीज दुनिया को मिली है। और वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। वो क्रिटिक्स एक्चुअली में जो हैंस को बेवकूफ कह रहे थे, वही उसकी की हुई इस पेंटिंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेख लिख रहे थे उस पे। हैंस को मतलब नहीं था, हैंस से अपना नाम भी नहीं आने दिया बीच में। हैंस ने सोचा लेट्स वेट। और रोटरडैम्स बॉयमेंस म्यूजियम में जब ये पेंटिंग लगाई गई तो इसे खरीदा गया 5,20,000 गिल्डर्स में, मतलब आज के $4 मिलियन में। हैंस ने अपना मुंह बंद रखा, उसने सोचा अमाउंट बहुत मोटा है तो अपना नाम नहीं बताता। और हैंस ने ये अमाउंट लेकर वहां से जाने का फैसला किया। बिटवीन 1937 एंड 1943 हर साल एक वर्मेयर की पेंटिंग तैयार करने लगा, और हर साल वर्मेयर की एक पेंटिंग पुरानी 300 साल पहले खोई हुई पेंटिंग खुद अपने हाथों से फ्रेश बनाकर हैंस मार्केट में उतारता रहा। आती गई, बिकती गई। आर्ट वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा था, कल्चरल मिरेकल, और मोटा मोटा पैसा गिर रहा था हैंस की गोद में। वो खुद शेडो डीलर बनकर एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, उनसे मजे कर रहा था। 1943 तक हैंस ने 6 वर्मेयर पेंटिंग्स बेच दी थी और पैसा ओफ हो। उसने एम्स्टरडैम में एक मेंशन खरीदा, उसके पूरे पूरे स्टाफ को खरीदा, महंगी महंगी दौड़ने वाली, तेज दौड़ने वाली गाड़ियां ली।

12 बेडरूम थे इसमें, हर बेडरूम में रहने वाला शख्स कोई भी नहीं, वो कल्ला ही था यहां पे, कोई नहीं था उसके साथ। उसने पार्टीज रखी, और क्या पार्टीज रखी, इन पार्टीज में उन्हीं को बुलाया जो कह रहे थे कि ये तो फालतू का आर्टिस्ट है। और दीवार पे उसने अपनी ही बनाई हुई नकली पेंटिंग्स को टांगा और दुनिया को दिखाया, देखो ये फला आर्टिस्ट की है, ये फला आर्टिस्ट की है। एक शख्स जो लोगों की पोर्ट्रेट्स बनाया करता था जिंदगी चलाने के लिए, वो उन लोगों को पार्टी दे रहा था जिनकी अगर इनकम को कुल मिलाए भी जाए तो भी उससे कम पड़ेंगी, वही लोग जो उसकी बेइज्जती कर रहे थे। वो समझ गया था कि दुनिया को पेंटिंग से मतलब नहीं है, पेंटिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्मेर अगर नाम लिखा हुआ है तो चल जाएगा, बस मुझे पेंटिंग बढ़िया तरीके से बनानी है। और हैंस को अब इस चीज की लत लग गई थी, एक किस्म की एडिक्शन, एक सीक्रेट पावर उसे मिल गई थी, मजा आने लगा था लोगों को ऐसे बेवकूफ बनता देखते हुए। ही वाज रियली रियली हैप्पी। मगर इसके साथ साथ इस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो अलग अलग किस्म की दवाइयां लेने लगा था सोने के लिए, गेटिंग ऑन हिज हेड। मगर वो बहुत कोशिश कर रहा था, ये डबल लाइफ जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर नोट आ रहे, जिंदगी चल रही है, टेंशन क्या है, देख लेंगे। मगर फिर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, छिड़ गई जंग और पिक्चर में आया हिटलर, पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया। अब हैंस जो था उसे इसमें भी एक फायदा दिखा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी। जर्मन्स जो थे वो चाहते थे कि कल्चर के हर एक चीज पर कब्जा कर लिया जाए, तो उनको ये पेंटिंग्स बेचना और भी आसान था, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं ना कि यूरोपियन आर्टिस्ट की सारी चीजें उनके पास हों, वो हर चीज पर कब्जा कर लें, तो ठीक है जर्मन्स को बेच देते हैं। हांस ने सोच लिया था, मोरालिटी और पॉलिटिक्स मेरे को मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसा। 1942 में उसने एक और पेंटिंग, नकली पेंटिंग बनाई और उसे आर्ट मार्केट में उतरवा दिया। फिर एक आर्ट एग्जीबिशन में वो पहुंचा, वहां पे एक बंदा था, बंदे का नाम था एलॉय मीडल। एलॉय मीडल बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। एलॉय मीडल एक जर्मन डच कोलैबोरेटर था जिसके डायरेक्ट कनेक्शन थे हाई कमांड से, यानी हिटलर से। जब मीडल ने देखी वो पेंटिंग वर्मेयर की, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, उसने कहा भाई साहब ये पेंटिंग तो मैं पहुंचाऊंगा ऊपर तक। और उसने इस पेंटिंग के बारे में हरमन गोरिंग को बताया, जो कि सेकंड हैंड था हिटलर का, सेकंड इन कमांड, और वो आर्ट कलेक्शन के नाम पे ऑब्सेसिव था, दीवाना था आर्ट का। लेट 1943 में हिटलर की तरफ से लोगों ने एम्स्टरडेम पे कब्जा कर लिया। हरमन गोरिंग जो कि उसका राइट हैंड था, सेकेंड इन कमांड था, उसने जितने भी आर्ट्स थे सबको लूटा, सारी पेंटिंग्स को जो चाहिए था उठाता गया। और उसकी नजर उस वर्मेयर पेंटिंग पे पड़ी जो कि बनाई थी वैंस ने। उसने बोला ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो बोला सर बनाई नहीं है, वर्मेयर की है। वर्मेयर की पेंटिंग है ये, किसके पास है, मुझे खरीदनी है, मुझे चाहिए पेंटिंग है। तो कहा गया ठीक है सर आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अब ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डील कोई ऐसी डील नहीं है कि पेंटिंग बेची और बदले में रकम मिल गई, नहीं, ये डील कुछ अलग थी। वर्मेयर की नकली पेंटिंग जो हैंस ने बनाई थी, जिसको वो बता रहा था कि 300 साल पुरानी है, उस पेंटिंग को असली बता के बेच रहा था वो हिटलर के राइट हैंड को, जो बदले में उसे नोट नहीं देगा मगर 137 पेंटिंग्स अपने कलेक्शन से देगा, जो कि ओरिजिनल हैं, जो कि मास्टरपीसेस हैं, जो कि अलग अलग जगहों से यूरोप की चुराई हुई असली पेंटिंग्स हैं। गोरिंग को अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो हैंस को 137 असली पेंटिंग्स थमा रहा है एक नकली पेंटिंग के बदले। ये डील हुई 1943 और गोरिंग ने इस पेंटिंग को ले लिया और अपने ऑफिस में एक क्राउन जूल की तरह टांग दिया। और हैंस के पास थी अब 137 पेंटिंग ओरिजिनल यूरोप की। एक्सीडेंटली उसने अपने देश का बदला ले लिया था, जो उसको भी अंदाजा नहीं था, और वो यहां पे जंग जीत गया। फिर आई

मई की तारीख 3, 1945, हिटलर जा चुका था दुनिया से और एलाइड फोर्सेस यूरोप वापस कब्जा कर रहा था और अब यूरोप को रिकवर करना था अपना वो आर्ट जो उनसे चुरा लिया गया था। एंड वो जा पहुंचे गोरिंग के ऑफिस। गोरिंग ने क्या किया था, गोरिंग ने पेंटिंग जो ली थी हैंस से वो अपने ऑफिस में टांगी हुई थी, उस पर नजर गई इन यूरोप की फोर्सेस की। उन्होंने कहा भाई ये तो वर्मेर की पेंटिंग है, पर इसको किसने बेची, कौन है वो गद्दार जिसने इन लोगों को हमारी पेंटिंग्स बेची। वो जानना चाहते थे कि ये पेंटिंग मिली कैसे, और पता लगा ट्रैक करके एक नाम जिसने इन्हें पेंटिंग बेची, हैंस वैन मिग्रोइन, और वो सीधा इस तक पहुंच गए। मई की 29 तारीख 1945 डच पुलिस ने दरवाजे तोड़कर हैंस को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर लेके आए। वो शख्स जो लग्जरी में जी रहा था उसका बुरा हाल कर दिया, चेन्स में लेकर उसको ले गए वहां से और उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये देश का गद्दार है। हर न्यूज़पेपर में उसके बारे में खबर छप रही थी, लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे, नेशनल विलन बन चुका था और उस पर अब उसे डेथ सेंटेंस दी जाने वाली थी। हैंस एक ठंडे से प्रिजन में पड़ा हुआ था, गार्ड उसको चलते फिरते मार रहे थे, दुनिया नफरत करती थी, ऑफिशियल तो उसे देखने नहीं चाहते थे। एक ब्रिलियंट कॉन आर्टिस्ट जो कामयाब भी था वो अब दुश्मन बन चुका था। मगर रात में उसने कुछ सोचा और इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, उसने सोचा कि मुझे अगर इस डेथ सेंटेंस से बचना है तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि जो पेंटिंग मैंने बनाई है वो नकली है। जस्ट इमेजिन, वो शख्स जो इतना टाइम लगा के एक नकली पेंटिंग बना के ये कन्विंस कर रहा था कि 300 साल पुरानी है, अब उसे ठीक उल्टा करना है, उसे ये बताना है कि साहब मैं तो नकली पेंटिंग बनाता हूं, इनको असली लग गई, तभी उसकी सजा जो है वो कम हो सकती है या खत्म हो सकती है। मगर वो ये कैसे करेगा, जाके अगर वो कोई बोले किसी से भी कि साहब वो जो पेंटिंग है वो असली नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ जी मैं अमिताभ बच्चन हूँ, हाँ जी मैं इंग्लैंड का राजा हूँ जी, बैठा मैं चुपचाप, यही होगा ना, इतना आसान तो नहीं है। और उसने कोशिश भी करी, उसने जाकर ऑफिसर से बात करी, सर वो जो पेंटिंग है वो असली नहीं है। हाँ ठीक है असली नहीं है, बैठ वहाँ पर चुपचाप जाके, और लोग उसको ऐसे ही साइड में करके बिठा दे रहे थे। क्या करें, वो कोई सुनने को राजी नहीं है। मगर फिर उसने कहा कि मुझे तो इस बात पे अड़े रहना है। जुलाई 1945 एम्स्टर्डम कोर्ट हाउस, और उसने जज को बोला, जज साहब ये पेंटिंग नकली है साहब, 300 साल पुरानी नहीं है। जज साहब ने बोला मैं बता रहा हूं, एक और बार तूने ये बोला छोड़ूंगा नहीं। उसने बोला सर मुझे मौका दीजिए, मैं ये पेंटिंग शुरुआत से बना के आपको दिखाता हूं और आप टेस्ट करा लीजिएगा चाहे तो। जज 2 मिनट के लिए रुक गया, उन्होंने कहा ठीक है, पर अगर प्रूव नहीं कर पाया ना तो ऐसी खतरनाक सजा मिलेगी सोचनी होगी। उसने कहा ठीक है। उसने कोर्ट से टाइम मांगा, ये टाइम जो था वो हफ्तों का टाइम था। उसने सारे साजो सामान मंगाए और पेंट करना शुरू किया अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि एक एक स्ट्रोक सही होना चाहिए और पेंटिंग पुरानी लगनी चाहिए। अगर पेंटिंग पुरानी नहीं लगी तो उसे बहुत खतरनाक सजा सुनाई जाएगी। और वो कोर्ट के सामने डेली आता, डेली पेंटिंग बनाता। लोग वहाँ पे आके बैठे हुए थे, एक मेकशिफ्ट स्टूडियो बना दिया गया था, 17th century कैनवस उसे दिया गया, पिगमेंट्स ब्रशेस सब चीज़ें उसे दी गई। एक एक स्ट्रोक जिंदगी और मौत के बीच में था वो, उसे डेडलाइन दी गई थी और धीरे धीरे वो इमेज बनाता गया, एक सेंचुरी ओल्ड पेंटिंग। 6 हफ्ते लगे उसे, वो अपने 50s में था, थक गया था, लेकिन हांस को बनानी ही थी एक पेंटिंग, एक फ्रेश पेंटिंग जो 300 साल पुरानी लगे। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन हर मिनट बहुत जरूरी था। फाइनली पेंटिंग तैयार हुई, वो पीछे हटा और पूरा का पूरा कोर्ट रूम, चश्मे लगाए हुए लोग एकदम साइलेंटली उस पेंटिंग की तरफ देख रहे थे। एक्सपर्ट्स आगे आए, देखने लगे पेरेंट्स को, और फिर इस पेंटिंग को सीधा भेजा गया केमिस्ट्री के जानकारों के पास। अब लास्ट टेस्ट था, अगस्त 1945 एम्स्टर्डम, साइंटिस्ट केमिकल एनालिस्ट सब चेक कर रहे थे और पेंटिंग का रिजल्ट आया अमेजिंग,

कोर्ट में लोग दीवाने हो गए। एक्सपर्ट जो वहां पे खड़े हुए थे, वही एक्सपर्ट जिन्होंने सालों पहले इतना सुनाया था उसको, वो बिल्कुल किसी बिल्कुल कैसे गधे जैसे खड़े होते हैं वैसे वो खड़े हुए थे। एंड बाय हिज जीनियस वो जीत गया। सबके मुंह तर चुके थे। हांस ने उल्टा सामने वाली पार्टी को धोखा दे के 137 पेंटिंग्स रिकवर भी कर ली थी। वो एक्सीडेंटल हीरो बन गया था। ओवरनाइट लोग नारे लगा रहे थे, लोग दीवाने हो चुके थे, और उसकी सजा को, जो कि डेथ सेंटेंस थी बाय द वे, उसे एक साल की सजा बना दिया गया। नेशनल पोल में बाय द वे सबसे टॉप के मंत्री से नीचे था वो, फेमस होने के लिहाज से। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड्स। हैंस खुश था, बोला महंगी महंगा। उससे पूछा गया कि आपने पेंटिंग्स को इतना महंगा क्यों बेचा, 4-4 मिलियन मिले आपको, थोड़ा सस्ता बेच लेते। तो उसने एक बात बोली जो आज भी लागू होती है। उसने बोला महंगा बेचा क्योंकि सस्ता बेचता ना तो लोग नकली समझते। ये लोगों की आदत है, जब चीज सस्ती होती है तो नकली लगती है, तो क्यों ना इसको 4 गुना बढ़ा के बेचा जाए तो असली लगेगी। December 1947 में और दुनिया से चल बसे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। आप क्या पता डबल लाइफ जी जी के उस राज ने उनकी जान ले ली। मगर ही बिकेम अ लिटरल हीरो एंड बिकेम समथिंग एल्स। और उसने ये साबित कर दिया कि एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स होंगे अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी इतना अकलमंद नहीं है। हर शेर का सवा शेर मार्केट में बैठा हुआ है। दिस वॉज द स्टोरी। अब आपके हवाले 666-22107 नंबर है, 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड।

धूम मचा ली। हाँ जी क्या हाल है? सब बढ़िया, शानदार चल रहा है। कहानी बढ़िया लगी है, आपको कहानी अच्छी लगनी चाहिए, बस मैं तो उसकी टेंशन लेता हुआ है। कहानी बढ़िया लगी है तो पैसे वसूल हो गए, बाकी जिंगल की भी पैसे वसूल कर रहा हूँ चला चला के।

0: में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हाँ जी मैं कहना जी वेक अप तो होली हो गई अभी तक कहानी सुन के। एक दो मैसेज आए हैं, एक भाई कह रहे हैं भाई क्या खुराबाती दिमाग था इस आदमी का। जी भाई। और बाकी अजहर उस्मान हुसैनी भाई लिखा है कि पापी पेट के लिए क्या कर क्या क्या करते हैं लोग। यही तो एग्जांपल है भाई। एक कॉल आ रही है, कॉल उठा लेते हैं सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, सब खैरियत से हो?
2: भाई खैरियत से, पेंटिंग बना रहा हूँ।
3: अरे भाई वो छोड़ो, मुझे पेंटिंग वेंटिंग कलर वालर वो छोड़ो। मुझे जो है ना कहानी में तुम्हारा एक चीज बहुत जबरदस्त लगा भाई।
2: क्या?
3: जो जर्मन स्टाइल में बोला था ना तुम भाई कबीर भाई
2: थिएटर में आ गया था, फील में आ गया था। आज तो कहानी एकदम बढ़िया
3: नहीं यार, उस चीज को बता रहे हो, कहानी प्रेजेंट कर रहे हो वो ठीक।

0: मगर जो एकदम से जर्मनी एक्सेंट आया हो
1: थैंक यू भाई पैसे वसूल हो गया किसी ने तो चलो नोटिस किया भाई थैंक यू भाई आज दिन सेट हो गया
0: नहीं यार मैं सुन रहा था देखो फ्री होता हूँ ना तो तसल्ली से प्यार से सुनता हूँ कि भाई कहाँ जा रहा है
1: थैंक यू भाई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई और कैसी लगी बाकी कहानी आपको
0: हाँ जबरदस्त यार मजे की
1: तो फिर पेंटिंग बनाए क्या भाई क्यों मजनू मजनू भाई की तरह बना लो पेंटिंग क्या टेंशन है एक पेंटिंग बनाना सरोवर भाई के ऊपर मुझे बिठा देना कह रहा है नई मजनू की पेंटिंग है 2026 की पेंटिंग है ऐसी अहमद भाई का लिखते हैं क्रेजी भाई क्या स्टोरी थी मजा आ गया वो पैसा वसूल फुल एक्सपीरियंस थिएट्रिक जी भाई आज मन था भाई थिएट्रिक करने आपके भाई का एकदम पहल के गया तो इसलिए एक कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है कबीर भाई
1: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भाई क्या हाल है
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है
1: तो भाई फिर क्या करें फिर पेंटिंग बनाए कमाल भाई
2: भाई बना दीजिए पेंटिंग अभी तो एआई से भी बन सकती है
1: अरे नहीं नहीं
2: सरोवर भाई की बात कर रहे थे एआई से बनाइए और अच्छे दिखेगी
1: है ना मैं सोच रहा हूँ पिकासो बन जाऊँ भाई अब बहुत टाइम हो गया मुझे भी 300 साल पुरानी पेंटिंग बनानी है अब मन सा करके कैसी लगी आपको कहानी कुल मिला के
2: भाई कहानी तो बहुत जबरदस्त थी उसको एगो पे लग गई ना भाई अगर वो एक कलाकार हो जाता जैसे लोग और भी पेंटिंग के नाम में रहते अगर उसको वो नहीं करते तो अपनी खुद की पेंटिंग बनाता ना लेकिन जब उसके ईगो को ठेस पहुंची तो उसने बोला कि नहीं अब बर्बाद ही करना है
1: वही है भाई।
2: कमाया उसने
1: आदमी की सनक बहुत खतरनाक चीज है भाई और आर्टिस्ट की सनक तो बहुत ही डेंजर होती है बहुत दूर तक ले जाती है उसे
2: और एक चीज और कभी भाई जो पेंटिंग बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनकी बिक्री ये बात अलग है लेकिन जो बीच के जो बेचने वाले होते हैं ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही कमाते हैं
1: हाँ ये आपने बहुत पॉइंट वाली बात कही है भाई इसके पीछे पूरी डॉक्यूमेंट्री आई थिंक पिकासो करके कुछ नाम है उसका उसमें जो बीच के जो डीलर्स होते हैं ना जो शेडी डीलर्स होते हैं जो पेंटिंग को उधर से उधर करते हैं वो भर के कमाते हैं भाई
2: भर के कमाते हैं
1: बहुत कमाई होती है उनकी सॉलिड वाली तो वही है कि एक तो पेंटिंग देखने के लिए ना वो पता नहीं कौन सी नजर लोग कहते हैं चाहिए होती है हमारे पास तो नहीं है भाई लेकिन वो
2: अपने पास नहीं है भाई अरे अपने पास तो हीरे की परख नहीं है दूसरे को क्या
1: क्या हीरे नहीं देख पा रहे बात तो सही है कमाल भाई ये तो आपने सॉलिड बात की भाई लेकिन आप पेंटिंग वेंटिंग कभी मतलब कभी शौक चढ़ा बनाने का बनाते हैं ड्राइंग व्राइंग कैसे रही कमाल भाई बचपन में
2: नहीं बहुत पहले बनाता था कभी कभार
1: अच्छी थी अच्छी थी
2: अब जो उस टाइम पे ऐसी बना लेते थे कॉपी करके
1: समझिए
2: लेकिन अब वो सब चीज का नहीं है तो जिंदगी में बस
1: बिल्कुल मिलेगी नदीम भाई एक मैसेज है इसे कहते हैं अच्छा मैं समझ गया मैसेज है कबीर भाई साथ में बहुत बड़ा कलाकार लेकिन इसको पहचाना नहीं पहले हाँ लोग समझ नहीं पाया भाई को गहराई में नहीं उतरे इसकी एक कॉल आ रही है अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम तुम्हारा कैसे हैं कबीर भाई
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप बताइए कैसे हैं भाई
3: भाई कहानी क्या सुनाई है सुबह सुबह माहौल मोटिवेशन दे दिया आपने
1: है मोटिवेशन तो ब्रश खरीदने जा रहे हो फिर
3: ब्रश खरीदने जा रहे हैं मुझे आइडियाज दूसरे वाले आ रहे हैं क्योंकि पेंटिंग पे तो हाथ नहीं चलेगा अपना
1: तो क्या बनाओगे भाई क्या करोगे फिर
3: यार पहले तो मुझे आपके लिए आइडिया आ रहा है कि यार आप वॉइस आर्टिस्ट की दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं
1: शुक्रिया मेरे भाई बहुत बड़ी बात कर दी आपने हमको अंदाजा भी नहीं थैंक यू सो मच भाई थैंक यू
3: नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपने इस चीज में बिल्कुल यही जो काम हमारे हीरो ने किया था सेम काम आप कर सकते हैं
1: अरे भाई
3: वॉइस सैंपल्स ले जाएंगे 1930s के भाई बिल्कुल ओरिजिनल है ये फला लेजेंड के
1: भाई आपने नोटिस किया मैंने इसलिए पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ये चला दिया था ये वाला समझ रहे हैं आप ऑथेंटिसिटी का
3: पेंटिंग बेचे आप पेंटिंग के तो विजुअल का जमाना गया था अब वो हम ऑडियो नोट्स बेचेंगे
1: हाँ
3: ये ओरिजिनल तस्वीर है 1930 की जो फला उसने की थी फलां शख्स का नाम नहीं लिया कोई
1: ये पिकासो ने खुद अपने मुंह से कहा था
3: हां ये खुद अपने

0: से कहा था उसने, उसके ऑडियो नोट है। तो हम इसमें लेजेंड हैं, जितने दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं उनमें से क्या वॉइस नोट कॉपी करें और बिल्कुल ओरिजिनल उसमें आवाज है, बीच में पीछे बैकग्राउंड नॉइज भी डालेंगे, थोड़े से शोर वोर भी डालेंगे, एकदम ओरिजिनल लगी।
1: भाई आप मोटिवेशन कर रहे हो, मोटिवेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उतार जाऊंगा मार्केट में, फिर मैं दिक्कत हो जाएगी।
0: भाई आप उतर जाए, बाकी दूसरा
1: ये पार्टनरशिप मुझे अच्छे लगे अहमद भाई, आई लाइक इट, वेरी नाइस।
0: बहुत कामयाब पार्टनरशिप रहने वाली मुझे ऐसा लगा,
1: समझ गया मैं, दूर तक दिख रहा है मुझे, सही जा रहा है मामला।
0: माशाल्लाह, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन और अदाएं और बीच में जो वो अपने देसी अलग अलग एक्सेंट आ रहे थे,
1: थैंक यू भाई, थैंक यू। इस बार मुझे कहानी क्यों लगा ये मजेदारी है।
0: हाँ नहीं, कभी कभार ऐसा होता है, मैं भी ऐसा फील करता हूँ ना, जैसे आज की कहानी आपको भी फुल मजा आ रहा है।
1: हाँ।
0: कभी कहानी आपने एक अपने को एक ऑब्लिगेशन भी है कि आप रोज सुनाते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो लेकिन हर रोज वो फील नहीं आती सेम।
1: हाँ,
0: क्योंकि कभी
1: हाँ।
0: आप भी जैसे कहानी सुना रहे हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन कभी आप खुद कहानी में घुस गए तो वो फिर अलग चीज ले लेती है चीज की। हाँ यार, बंदा कहीं ना कहीं तो अंदर कहानी में खुद एक कैरेक्टर बन चुका है।
1: हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा था भाई, ये कहानी सुनाने मुझे खुद बहुत मजा आया, लिटरली बताऊं तो ये बहुत तो सच है। थैंक यू अहमद भाई, आपकी मोहब्बत भाई,
0: आपकी सलाहियत को और बढ़ाए,
1: जज़ाकअल्लाह,
0: और हमें और इसी तरह से फायदा उठाने वाला बनाए,
1: जज़ाकअल्लाह,
0: और हमारे शो को इसी तरह से रोशन करता जाए आपके साथ,
1: इंशाल्लाह अहमद भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच भाई, वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। और अहमद भाई ने मार्केट में उतरने के लिए कह दिया, एक मैसेज आया, भाई कहानी बहुत अच्छी थी, एक बार मैंने ड्राइंग बनाई थी और मेरे टीचर ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था, पर वो उसके बाद कभी बनाई नहीं, और भाई उस बीच वाले को, हाँ वो तो कहते नहीं, कह नहीं सकता ना मैं। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। आरिफ भाई बहुत सारे भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल भाई। और इनके बाद मैसेज किया रियाज भाई ने, कहता है मोटिवेशन मिल गया भाई, ब्रश लेने जा रहा हूँ, टूथब्रश। मुझे याद आया कि टूथब्रश भी लेना है, वैसे ये ज़रूरी है। नाजिया में लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, लगता है स्टोरी मिस कर दी, आपके चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बहन। तला भाई ने मैसेज किया है, तुम उतरो ये भाग जाएंगे अदाएं। भरोसा करूं या ना करूं, तला भाई क्या कहते हो? यूसुफ भाई कह रहे हैं, कबीर अच्छी थी स्टोरी, इससे ये सबक मिलता है कि इंसान कितना भी चालाकी कर ले, झूठ बोले, एक ना एक दिन फंस ही जाता है। वो बंदा इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा जमा करने के बाद कंट्री छोड़ के क्यों नहीं गया? क्योंकि मुश्किल था भाई उस टाइम पे कंट्री छोड़ना, इट वाज नॉट इजी। 1920s 1930s वाला दौर बहुत भारी था भाई। और बड़ी बात ये हुई कि वो पेंटिंग फेक साबित करने के लिए कोर्ट ने उतना टाइम दिया, दैट्स हिज लक, क्योंकि कोर्ट को पता था कि यार ये अगर कलाकार निकला तो अपने काम ज़रूर आएगा, वरना तो कौन ये बात बिलीव करता। बढ़िया स्टोरी, बढ़िया नरेशन, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, वेरी गुड पुट, अच्छे से आपने बताया। आपने तब उसमें मैं लिखते हैं, सेटिस्फाइंग बदला लिया बेइज्जती का, सुपर्ब स्टोरी, एक्सलेंट ब्रदर, पूरा का पूरा आपके दिल से कहानी, एक अलग से मज़ा आता है कबीर भाई, मैं तो उस दौर में चला गया था। थैंक यू सो मच भाई, ये आपकी मोहब्बत मेरी जान, यही कोशिश रहती है कि आप भी उस दौर में जा सकें मेरे साथ, मोहम्मद आलम सिद्दीकी का। तो ये जो आज की कहानी थी ना, ये बंदे को आप हीरो मान सकते हैं या आप ज़ीरो मान सकते हैं, आपके ऊपर है। सईद साहब थैंक यू सो मच। और इनके बाद जो है एक मैसेज आया है चार्ली भाई का, गुड मॉर्निंग, फाइनली आई कैच्ड यू, कॉट यू ना, मतलब एक मैसेज, मजनू भाई की पेंटिंग हो गई। मजनू भाई की पेंटिंग ये थी है। अफजल उस्मानी भाई, माजिद भाई क्या कह रहे हैं, माजिद भाई भी कुछ कह ही रहे थे, मिस हो गया मेरे से। और एक तला भाई कुछ कह रहे हैं, इनको भी लाइन पर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: हां भाई
2: साहब, थैंक यू बोलो मुझे।
1: किस बात के लिए भाई?
2: मैं दो दफा अपनी आवाज सुनने का शर्फ पता किया मैंने आज।
1: मुझे तो लग रहा है आपको आइडिया मिल गया है कि मैं ये आज की इस कहानी के ऊपर कुछ करूं, कुछ प्लान है तला भाई?
2: देखो भाई जान, मैं आपको बताऊं एक बात, आप जो है ना एक डिस्क्लेमर बोल दो सबको लॉग इन क्लियर कि ये सिर्फ कहानी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
1: भाई मेरा दिल
2: और इसका इसके इस्तेमाल के बाद अगर कोई पकड़ा जाए तो मेरा उसके कोई ताल्लुक नहीं है।
1: भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने तो स्टार्टिंग में
2: समझ रहे बात को,
1: बिल्कुल भाई।
2: मुझे जो है ना, तुम आने वाले वक्तों में तुम जस्टिफाई करने वाले हो। मैं देखो कहानी नरेट करने वाला हूँ और इससे ज्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इससे।
1: मेरा तो काम
2: इतना ही है, करने में
1: अगर आप फंसे तो कहानी तो मैं सुना दूंगा।
2: मैं बता रहा हूँ उसको तो 3-6 हफ्ते मिल गए थे, तुम्हें 2 घंटे भी नहीं मिलेंगे प्रूफ करने के लिए।
1: दो तीन
2: महीनों से तुम्हें चलते फिरते घोड़ा बना दिया,

0: इतनी डार्क बातें नहीं थी भाई, ज्यादा आगे ले गए आप।
1: मैं यकीन कर रोते रोते रह गए, एक आंख में तो आंसू आ गए थे, मैंने कहा भाई कहाँ साफ कर कॉफी पी भाई दफा कर।
0: सही बात है, महंगे महंगे कप है भाई लोगों के पास, कहाँ वो हमारी बात सुन।
1: अरे मजनू जलता है मजनू, मजनू मसला बताऊं क्या मजनू, तेरी आंख में मसला है भाई, तू पकड़ लेता चीजें ना, वरना फ्लेक्स में करता नहीं हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: ऐसा है,
1: तुम्हारी आंखें पकड़ लेती है। हाँ मसला ये है।
0: थैंक यू सर। एक भाई कह रहे हैं, अजहर हुसैनी साहब कह रहे हैं, कबीर भाई इससे कुछ आइडिया लगाओ कि हम लोग भी पैसा कमाएं, देख रहे हो।
1: मैं कह तो रहा हूँ ये उठवा देंगे भाई, ये सारे सारे मिलकर उठवा देंगे, इनका कुछ ना जाएगा, हमारी भाभी का स्वाद निकल जाएगा।
0: अजहर भाई मैं आपसे दोस्ती और नहीं रख पाऊंगा भाई, यहीं तक थी हमारी दोस्ती, थैंक यू सो मच।
1: भाई अच्छे बदर भाई नहीं, सबकी बात कर भाई, मुझे
0: अच्छा
1: छोड़ के मैंने आगे करी, मैंने आगे ही कॉल करी है, वरना तो सारे के सारे तो चक्कर में गए, ये कटे मुझे लग रहा है ये किसी, ये साजिश चल रही है किसी और आरजे ने भेजे
0: ये
1: बंदे।
0: आज पता करूंगा, मुझे सरवर भाई भी शक है, आज पता करूंगा मैं। डन
1: ये सरवर भाई को बता रहा हूँ मैं, एक बिरयानी की प्लेट की पिक्चर भेज दो, बिक जाएगा वो आदमी।
0: आज मैं खरीदारी करने निकलूंगा मार्केट में, फिर डन हो गया।
1: वो क्या नाम रखा था हमने तो सरवर भाई का, थॉमस?
0: थॉमस
1: नहीं,
0: थॉमस नहीं था,
1: थॉमस था नहीं, नहीं भाई
0: थॉमस भी था, थॉमस भी था, थॉमस भी था,
1: लेकिन जो जिससे वो चमक रहे थे ना वो कुछ और नाम था,
0: उसने
1: बोल दिया मुझे। यार मुझे तो बकायदा मुझे मीठी मीठी सुनाई और उन्होंने बिरयानी वाली मसाले वाली,
0: मैं उनसे पूछूंगा आज कौन सा नाम था, कौन सा नाम था जो उन्हें पुकारा।
1: अबे ये किसने बोल दिया है तुम्हें बार बार बोल रहे हो मुझे, तो मैंने कबीर ने तुम्हें सुबह का नाम रखा है कभी, इसको मैं बताता हूँ अभी कॉल के नाम से, मेरा बात करनी पड़ेगी कबीर से,
0: मैं उनसे पूछता हूँ कौन सा नाम था, डन है आज ही पूछता हूँ मैं, ठीक है।
1: हाँ तो भाई मेरा जरा समझ रहे हो ना बात को, तुम डिस्क्लेमर देते रहो वरना तुम डिस्क्लेमर की तरफ निकल रहे हो मुझे लग रहा है,
0: ठीक है डन।
1: आने वाले वक्तों में ना तुम्हारा हाथ मुझे ना सलाखों की तरफ दिख रहा है।
0: नहीं नहीं भैया, पॉइंट टू भी ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और आप थैंक यू सो मच।
1: यार मैं कुछ बोलते बोलते चुप, चलो भाई अल्लाह हाफिज़।
0: ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और तला भाई के बाद जो है गाना बोल, हाँ माइकल, माइकल था क्या जीशान भाई, आई थिंक यस माइकल ही था, फिलहाल तो ओझले था गाना।

तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आज इंटरनेशनली बहुत सारे दिन मार्क्ड हैं, वो कौन कौन से दिन है सबके बारे में बात करेंगे। भाई कह रहे हैं भाई आपने एकदम सीखा रेडियो के फूफा, आपने नोटिस किया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, एक सेकंड, इनका नाम है मतीन भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतना क्लोजली नोटिस किया। और ये सब माइकली बोलते थे, सरल भाई का एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग मोहसिन भाई के बाद सैयद खादिम साहब ने मैसेज किया, खादिम भाई ये जो मैंने आपको दिया है चैनल छुरल, इसी पे सब आता है। और एक मैसेज है अब्दुल्ला खान साहब का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं अब्दुल्ला खान पेशावर पाकिस्तान से सबको सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, आगे लिखते हैं, बचपन में स्कूल के होमवर्क करते हुए अक्सर ड्राइंग्स बनाने में लग जाते थे, इस जिस पर पेरेंट्स से बहुत पिटाई भी है। पिटाई क्यों पड़ती थी, ड्राइंग्स में कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, आगे लिखते हैं, कॉलेज टाइम में केमिस्ट्री की बोरिंग क्लास में अक्सर पीछे बैठकर ड्राइंग्स बनाता था, जब टीचर ने कैच किया तो बोला आर्किटेक्चर में अपना प्रोफेशन बनाओ, जिससे बहुत मोटिवेशन मिली और मैं आर्किटेक्ट बन गया। अरे भाई तो थ्री इडियट्स वाली कहानी चल रही आएगी। आगे लिखते हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानें और बच्चों के पैशन को उनका प्रोफेशन बनने दें। बात तो सही की आपने, करेक्ट। कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, हाँ जी सब हो गया। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से दिन है आज, जो एक कैलेंडर में होते हैं ना, जगह जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। आज है सुपर ह्यूमन डे। आपके अंदर किसी किस्म की काबिलियत है तो भी आप दर्शा सकते हैं इसके, हालांकि बहुत दो तीन मायने हैं जो आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा सीरियस मैटर बनाना नहीं चाहता इसको। एनीवे, इसके बाद है कोई ऐसा दिन है जो बताएं लायक हो, नो योर नंबर्स वीक, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है, आज है नो योर नंबर्स वीक। अब इसका ताल्लुक मेडिकल से है, मेडिकल फील्ड से भाई, ये कहने का मतलब ये कि आपको अपने पता है हिसाब किताब कितनी हाइट है सेंटीमीटर्स में या फीट में, आपको वजन पता है अपना, आपको पता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये सब पता है आपको, नहीं पता है, हाई फाइव, हाथ में लाइए, अरे शर्माइए हाथ में लाइए, हाँ मुझे भी नहीं पता, पता होना चाहिए ये, इसलिए नो योर नंबर्स वीक। एंड ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, पर बैक ऑफ द माइंड है, ये फ्रंटल लोब पे नहीं आ रहा, इधर लाना पड़ेगा इसको। एंड ऑनेस्टली ये ज़रूरी है, कभी भी आपको हल्का सा भी ऑफर शॉफर दिए कहीं पे कि फुल बॉडी चेकअप करो तो करा ले करो, और हमद में जाके वैसे भी करा सकते हैं, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन में जाके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ये एक रिमाइंडर है एक किस्म का। बाकी आज 8 तारीख है कि 7 तारीख है, बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं, हाँ 7 तारीख है, तो नेवर माइंड, आज इतने ही खास दिन थे, ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या है भाटी, क्या है, बस वेट पता है मुझे भाई कुछ नहीं पता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर कि हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी ट्रैफिक हाल बता दीजिएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। ओके, मीनवाइल गाना चलूगा, अस्सलाम शादलानी, अल्लाह दुहाई है, 831। मैं कहा जी व्हाट्सएप है प्लीज 666-22107।

हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ मैसेजेस हैं उनका पहले रिस्पॉन्स कर देते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। तो एक मैसेज है, ये क्या है, थोड़ा ना थोड़ा तो बनता है। अच्छा, बनता है दिशान भाई, बिल्कुल बनता है दिशान भाई, एकदम फ्लैक्स है। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे, कितना जा रहे, ऑफिस जा रहा हूँ। फिर उन्होंने रास्ते को लेकर थोड़ा फ्लैक्स किया, कह रहे हैं ये जो कॉर्निश है वहाँ से लेकर पूरा वेस्टवे की तरफ थोड़ा जाम लगा हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा ऑफिस बहुत बढ़िया जगह पर है। माशाल्लाह। तो बेसिकली कॉर्निश की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो पूरा वेस्ट बे तक अभी तक जाम लगा हुआ है, जो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन आपने अलग तरीके से बता दी, लेकिन बता दी, गुड दैट यू डिड। अच्छा, उस और जगहों पर ट्रैफिक है, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ब्रिज के पास भाई मैं पिछले 10 मिनट से हूँ। क्या हो गया? ठीक है, वहाँ तो मैं सुबह सुबह हर रोज़ आता हूँ भाई, आज कुछ स्पेशल जाम लगा हुआ है क्या? एक और मैसेज है कॉर्निश की तरफ, भाई सच में ट्रैफिक है, लेकिन मैं अलमरखे की तरफ से गया तो मुझे कहाँ से जा रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। अलमरखे की तरफ तो मुझे भी नज़र आ रहा है, मजलिस अल-तवाउन स्ट्रीट की तरफ से जाएंगे तो ट्रैफिक है, मोहम्मद बिन थानी स्ट्रीट की तरफ से आपको ट्रैफिक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अलरियान रोड पर हैं तो ट्रैफिक क्लियर है, आराम से निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। सलवा रोड की तरफ आपको बढ़िया जाम मिलेगा, स्पेशली सीरिंग रोड तो आपको मतलब जगा देगा, आप कहेंगे यार क्यों ही आया मैं। इधर से अगर आप निकल जा रहे हैं सलवा रोड से होते हुए, इफ़ यू टेक दिस टर्न, एक सेकेंड ना, ये टर्न किधर जा रहा है, ये इब्न सीना की तरफ, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। ये जो हमद साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है इसके पास से थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। सलवा रोड अभी थोड़ा सा बिजी हो रहा है और

बिजी होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, बाकी जगहों पे क्लियर है। जवान स्ट्रीट स्पेशली जो अलसद वाला एरिया है तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक नहीं है। फॉर नाउ यू कैन गेट अवे, बट बाकी एरियाज जो मुझे दिख रहे हैं मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। कहीं और ट्रैफिक आपको मिल रहा है तो 666-22107 नंबर है, 666-22107 काइंडली मुझे अपडेट कर दीजिए। बाकी तो क्लियर ही नजर आ रहा है, इतना किधर कुछ है तो नहीं। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज़ गेट इन टच विद अस और बता दिया करें कि कहाँ पे आप हैं, किधर हैं। अभी ज़रा मुझे लग रहा है कि बैटरी ना कम हो जाए आपकी, इसलिए मैं आपको कुछ लगा के ऐसे सुनाना चाहता हूँ ना कि मतलब मज़े ही आ जाए आपको। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मज़े आ जाएंगे। किधर है, किधर है, मिल नहीं रहा है मुझे। अगर मिल गया भाई साहब तो समझ लीजिए कि किधर है यार, मिल क्यों नहीं रहा। जो मैं गाना लगाना चाह रहा हूँ जिससे आपकी गाड़ी एकदम नाच पड़े, वो नहीं मिल रहा है मुझे। मिल जाए जैसी तो फिर मैं कुछ करूँगी। खैर जब मिल जाएगा तो लगा दूंगा। बाकी 666-22107 नंबर है, इस पर मैसेज अब करते रहिए। एक दो मैसेज और मेरे पास आए हैं। और ये क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, आज क्या बात है, टाइम से सेंड कर दी भाई। आज मैंने उनको टाइम से अपलोड कर दिया एक मैसेज, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द वे ऑफ माय लव। अए ओए ओए ओए, कह रहा जी ट्रैफिक किधर नहीं है, उसके दिल की राहों में ट्रैफिक है। ये बातें करते रह जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्शन करो भाई, एक्शन चाहिए होता है दुनिया में, इससे कुछ नहीं होगा भाई मैं आपको बताऊँ। तो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। इसी बात पर मैं एक बढ़िया गाना लगाता हूँ भाई। हाँ ये भाई के लिए गाना, अरे ट्रैफिक बहुत हो रहा है दिल के रस्तों में। ये लो और याद कराता हूँ। बाकी 8:30 थी, 38 बाय द क्लॉक मैं दुखा वाला कभी रेफर मैं सोन पर।

0: Salut.
1: मैं फौरन दूसरा गाना चलाने वाला था और मैं चला ही देता हूँ इनफैक्ट, और एक मैसेज पहले पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर साहब कह रहे हैं, हम तो सर खुली खुली जगह में घूमते हैं, रश से हमारा क्या काम। मेरा भाई ट्रैफिक से दूर चल रहे हैं, ये कुल मिला के ये कहने का तरीका थोड़ा शायराना है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, मिसिंग ऑल योर स्टोरीज ब्रो, आई स्टार्ट फ्रॉम 9 सो कुडंट लिसन टू योर स्टोरीज। आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, दे दूँगा आपको सोल्यूशन, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, आपके बहुत काम आएगा भाई। ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा भाई। ठीक है, बाकी बढ़िया सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज़ प्लीज़ आ जाएं, और अब ऐसा गाना कि आपकी गाड़ी को भी मज़ा आ जाए और आपको भी लगे हाँ ये बंदा है तो सुबह जान आ रही है। ठीक है, जब तक अभी मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी वो ऐसा लगे डबल ए बैटरी लगी हुई है। ठीक है, रेडी आप? रेडी, 1 2 3 भाई उधम काट के जाएंगे ऐसे थोड़ी, क्लाइमेक्स तो वही होता है जो धुआंधार हो, ठंडा नहीं पड़ने देंगे शो को भाई। 8:43 बाय द क्लॉक, सुखविंदर बाजी हो विशाद अदलानी। हाँ जी, नींद भगा देंगे भाई इस गाने से।

लेट्स गो भाई साहब, मजा आ गए। दो तरीके के लोगों के मेरे पास मैसेज आए। एक भाई ने बोला कि भाई बहुत मजा आ गए, शुक्रिया फॉर द सॉन्ग, आंख खुल गई। और एक हमारे भाई है अरबाज भाई, वो कह रहे हैं ऐसा भी गाना चला था जिससे सुन के किसी की याद आ जाए। यही तो मैं नहीं चाहता, क्यों आए याद।

0: शायद लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हाँ तो जी, अब जरा कुछ रिकमेंडेशन का वक्त है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। रिसेंटली मैंने देखने शुरू करी, एक एपिसोड ही देखा है मैंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चीज देख रहा हूँ मैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिनको ऐसी सीरीज पसंद है जो हॉरर तो नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल फ्रंट पे है, मतलब देख के लगता है भाई क्या होगा अगले एपिसोड में, क्या होगा अरे बता दो क्या होगा। एंड वैसी एक सीरीज है ये, आपको क्या कहते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ देखनी पड़ सकती है, तो जो लोग अगर देखना चाहें तो उनको बता देता हूँ, नाम है इसका आर्ट ऑफ सैरा। आर्ट ऑफ सैरा ये एक सस्पेंसफुल साउथ कोरियन सीरीज है भाई, अलग ही आइडिया लेके आते हैं लोग, अलग ही आइडिया लेके आते हैं। एक है जो अपनी आइडेंटिटी इसमें बनाना चाह रही है, मतलब उसे चाहिए कि लग्जरी ब्रांड जो है उसके पास आए, उसे अप्रोच करें, लेकिन वो डबल जिंदगी जी रही है या नहीं जी रही है इस पर बहुत सवालिया निशान है, और ये सीरीज के पहले एपिसोड से सेटल कर दिया गया है। शुरुआत में आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है, और फिर आप बोलेंगे जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अभी तक मैंने इसका दो एपिसोड ही देखे हैं, बट आई फिगर्ड आउट कि बहुत बढ़िया चीज है यार, तो जिन्होंने ऐसा कुछ देखना है उनके लिए हाईली हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा एक सीरीज जो इस साल से पहले आके गई है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, एक क्या नाम है उसका, अरे हिज एंड हर्स, हिज एंड हर्स। ये एक ऐसी नैरेटिव कहानी है जो एक पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करती रहती है साथ साथ, तो ये अगर आपने देखी होगी बहुत फेमस हुई रिसेंटली, इसके कई सारे मीम्स भी बने और कई सारी जगहों पर इसको मेंशन भी किया गया है व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट सीरीज, और ये तो ये आप देख सकते हैं। मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ वहाँ भाई, नींद में लेते लेते टेस्ट कर ली थी मैंने, तो मुझे ठीक ठाक ही लगी। मेरे घर वाली का मैसेज आया, करी सिंग विदाउट मी। अरे रात में बता के तो देख रहा था, और क्या कुछ भी लगा दी थी मैंने, तो मैंने रैंडमली लगाई थी एंड आई फिगर्ड आउट कि आर्ट ऑफ सैरा इज नाइस, अभी तक तो ठीक ही लग रही है, हालांकि मैं सो गया तो मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी तो, मगर बढ़िया लगी। अच्छा एक और रिकमेंडेशन देता हूँ, एक भाई ने मुझे कल पूछा था कि मैं कंफ्यूज हूँ, उनको मैंने एपिसोड बताया था हेल हाउस LLC होटल और हेल हाउस LLC हाउस, दोनों अलग अलग है भाई, दोनों मिक्स मत करना। एक सीरीज पहले आई थी, एक उसके बाद आई थी, और एक मैसेज है वाह मेरे बब्बर शेर, दो एपिसोड में कहानी रिवील कर, नहीं कहानी रिवील नहीं करी है मैंने, मैं दो एपिसोड में बता रहा हूँ कि कहाँ तक उन्होंने दिखाया, आगे क्या है मुझे भी नहीं पता है, बट वो कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर है जहाँ तक मुझे नजर आया, दैट्स ऑल। पर ये कहानी का सेटअप तो भाई, बाकी तो आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो मई थू छला। लेकिन जाने से पहले इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, सो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। बाकी कल सवेरे मुलाकात होगी, बढ़िया कहानी लेके आएंगे आपके लिए भाई, मौज करा देंगे एकदम, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और याद रखिएगा क्या आप

0: किया गया। बदर अब्दुल आती और इसहाक डार ने इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़राए खारजा ने एक जामे और पायदार माहदे की ज़रूरत पर भी जोर दिया जो इलाकई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग दे और तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोके। मिस्र के वज़ीर खारजा ने बंगलादेशी हम मनसब के साथ खित्ते में कशीदगी कम करने और जारी बहरानों तनाज़ात के असरात को महदूद करने के तरीकों पर भी बातचीत की ताकि इलाकई इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सके। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर खारजा हक्कान फिदान के दरमियान टेलीफोन कॉल पर राबता हुआ। गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और बैनुल अक्वामी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया जबकि बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। दोनों वज़ीर खारजा ने आलमी फोरम्स पर तआवुन को मज़ीद फ़रोग देने के इम्कानात पर भी बातचीत की। अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरिड कुशनर ने कल इतवार को कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात में हासिल होने वाली नई पेशरफ्त को सराहा। ये मुलाकात यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ट्रंप इंतजामिया की सफारती कोशिशों का हिस्सा थी। विटकॉफ और कुशनर मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात के बाद कीव पहुँचे थे। विटकॉफ ने कहा कि मॉस्को में उन्हें नए ख्यालात सुनने को मिले और उम्मीद है कि अमेरिका की इस सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने भी अमरीकी नुमाइंदों के साथ बातचीत को इंतहाई अहम और बामानी करार दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सहफरीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तैयार है। मुलाकात में मौसम सरमा की आमद से कबल यूक्रेन के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और तवानाई के शुबे में मुआवनत पर भी बात हुई जबकि रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर मुमकिन नए हमलों के खदशात का भी जायज़ा लिया गया। सामिन, खबरों के इस मरहले में एक अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस विद सरवर मिर्ज़ा। विद सरवर मिर्ज़ा।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतर फ्री जोन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख मोहम्मद बिन हमद बिन फैसल अल्थानी ने रियासत कतर में जमहूरिया कजाकिस्तान के सफीर बखैत बतेर शाएव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फरोग देने और मजीद सरमाया मुतवज्जे करने के लिए तआवुन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कतर फ्री जोन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख मोहम्मद बिन हमद बिन फैसल अल्थानी ने रियासत कतर में जमहूरिया माल्टा की सफीर मोहतरमा मारिया कैमेलरी कोलाज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के तआवुन को मजबूत बनाने के तरीकों पर बातचीत की गई। कतर टूरिज्म की सर्विस एक्सेलेंस एकेडमी ने कल मॉल ऑफ कतर के ओएसएस स्टेज पर लेगेसी ऑफ गाइड्स जनरेशन टू जनरेशन के उन्वान से मुनक़द तकरीब के दौरान 2026 के साल भर जारी रहने वाले टूर गाइड ट्रेनिंग और नौजवानों की तरक्की के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले 147 शिरकत करने वालों की खिदमात और कामयाबियों को सराहा। इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ने कतर चैम्बर के तआवुन से जीसीसी कंसल्टेटिव लैब फॉर ट्रेनिंग एंड द नॉलेज इकॉनमी सेक्टर का आगाज किया। इस एक रोज़ा फोरम में जीसीसी ममालिक के माहिरीन और मुतखसिसीन ने प्राइवेट सेक्टर में वोकेशनल ट्रेनिंग की मौजूदा और मुस्तकबिल की सूरत हाल, इलाकाई तजुर्बात के तबादले और ट्रेनिंग निज़ाम को लेबर मार्केट की ज़रूरियात और मुस्तकबिल की महारतों से हम आहंग करने के तरीकों पर बातचीत की गई। रियासत कतर 28 और 29 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 111वीं सालाना मीटिंग की मेज़बानी करेगी। इस इजलास में रुकन ममालिक के वफूद, पॉलिसी साज, तजारती रहनुमा, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और दुनिया भर से मुतअद्दिद मुतअल्लिका फरीकीन शिरकत करेंगे। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 30.38 पॉइंट्स या 0.31% के साथ 9,733.76 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 12,367 ट्रांजेक्शन्स के नतीजों में

0: 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 4 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थे अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में, सऊदी अरब ने इतवार को कतर को 1-0 से हराकर ग्रुप ई में टॉप पोजीशन हासिल कर ली और एएफसी अंडर 20 एशिया कप चाइना 2027 के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन सिक्योर भी कर ली। इंडिया ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो अगले साल चीन में होगा। ये इंडिया की 20 साल बाद पहली कामयाबी थी। यूएस ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने इतवार को टॉमी पॉल को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना लिया। अरीना साबालेंका और लिंडा नोस्कोवा ने भी अपने मैचेस जीतकर अगले राउंड में जगह बना ली, जहां दो ग्रैंड स्लैम विनर्स के दरमियान मुकाबला होगा। मारनास लाबुशांगे को ऑस्ट्रेलिया के 16 मेंबर क्रिकेट स्क्वाड में बरकरार रखा गया है, जो अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट सीरीज के लिए रवाना होगी। और कतर 10th फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है, जो दोहा में 8 से 12 सितंबर तक होगी। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस चैंपियनशिप में 21 ममालिक के तकरीबन 116 एथलीट्स शिरकत करेंगे। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही, आप सुन रहे एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस With Ismail Khan.
3: साहिब सुमो अमीर नॉर्वे के वजीर आजम ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम और वजीर खारजा आज 7 सितंबर से 8 सितंबर तक अवामी जमहूरिया चीन का दौरा करेंगे। रियासत कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मुतहदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के वज़राए खारजा ने गजा से फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली से मुतालिक इसराइली कौमी सलामती के वजीर और इसराइली वजीर दिफा के बयानात की शदीद मुज़म्मत की है। और अमरीकी नुमाइंदों ने कल इतवार को कीव में यूक्रेन के सदर से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात में हासिल होने वाली नई पेशरफ्त को सराहा। ये मुलाकात यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ट्रंप इंतजामिया की सफारती कोशिशों का हिस्सा थी। उर्दू रेडियो एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावन नूर और न्यूज़ स्टूडियो से सरवर मिर्ज़ा, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद शाह और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज की दुआ। इस सिलसिले में हम कुरान सुन्नत की वो चुनिंदा दुआएं पेश करते हैं जो अपने दिल और जान को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करती हैं। आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, जो आजिज़ी, अदब और बंदगी का आला तरीन नमूना है। ये दुआ नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब अपने बेटे के बारे में सवाल करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह फरमाई थी। नूह अलैहिस्सलाम फौरन अपनी खता पर झुक गए और कहा,
3: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिन्हें दुनिया के तमाम फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने सिर्फ गोलकीपर नहीं बल्कि फुटबॉल की दीवार कहा। जी हाँ, दिनोज़ोफ, इटली का वो सिपाही जो 40 साल की उम्र में भी गोल पोस्ट के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं बल्कि ठंडक, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और हिम्मत का नाम भी है। दिनोज़ोफ का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। यंग एज में जब वो फुटबॉल खेलना शुरू कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि वो फुटबॉल के लिए फिट नहीं है। उनकी हाइट और फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर भी सवालात उठाए गए, लेकिन ज़ोफ ने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग, मेहनत और साइलेंट डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया और फिर धीरे धीरे वो बन गए इटली के सबसे भरोसेमंद गोलकीपर्स में से एक। ज़ोफ ने अपने क्लब करियर में भी शानदार कामयाबियां हासिल की। उन्होंने यूवेंटस के साथ कई सीरी ए टाइटल जीते और इटालियन फुटबॉल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा याद करती है इटली के लिए उनकी कामयाबियों की वजह से। मसलन दिनोज़ोफ ने इटली के लिए 112 इंटरनेशनल मैचेस खेले और फिर आया 1982 का फीफा वर्ल्ड कप,

स्पेन में होने वाला ये वर्ल्ड कप ज़ॉफ के कैरियर का सबसे यादगार टूर्नामेंट बनने वाला था। उस वक्त ज़ॉफ की उम्र 40 साल थी, लेकिन उम्र ने उनकी हिम्मत को जरा सी भी कम नहीं किया था। वो इटली के कप्तान थे और टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी लीडरशिप एक्सपीरियंस और गोलकीपिंग से टीम को संभाला। इटली ने नॉकआउट स्टेजेस में ब्राजील और पोलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में सामने था वेस्ट जर्मनी। सोचिए, एक तरफ वर्ल्ड कप का फाइनल और दूसरी तरफ 40 साल का गोलकीपर डिनो ज़ॉफ। इटली ने जबरदस्त फुटबॉल खेली। पाओलो रोसी, मार्को तर्देली और अलेसांद्रो अल्तोबेली के गोल्स की मदद से इटली ने वेस्ट जर्मनी को 1-3 से शिकस्त दी और डिनो ज़ॉफ बन गए वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा शायद फाइनल के बाद आया, जब रेफरी की फाइनल हुसल बजी, इटली के प्लेयर्स खुशी से झूम उठे और फिर पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। इटली के प्लेयर्स ने अपने 40 साल के कप्तान डिनो ज़ॉफ को कंधों पर उठा लिया। एक गोलकीपर, एक कप्तान और अब एक वर्ल्ड चैंपियन। ये मंजर फुटबॉल हिस्ट्री के यादगार लम्हों में शामिल हो गया। डिनो ज़ॉफ कभी फ्लैशी नहीं थे, ना वो अननेसेसरी टॉन्ट्स देते, ना ही हर वक्त हेडलाइंस में रहने की कोशिश करते। लेकिन जब गेंद उनके गोल की तरफ आती तो सबको पता था डिनो ज़ॉफ वहां है, पुरसुकून लेकिन तैयार, हमेशा तैयार। उनकी गोलकीपिंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ रिफ्लेक्सेस नहीं था, उनका एक्सपीरियंस उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वो गेम को समझते थे, डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते थे, प्रेशर के वक्त अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते थे और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती, डिनो ज़ॉफ मजबूती से गोल के सामने खड़े होते, चट्टान की तरह। डिनो ज़ॉफ का करियर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है दोस्तों, ग्रेटनेस हमेशा जवानी की मोहताज नहीं, कभी कभी एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और सालों की मेहनत टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतना कोई आम कामयाबी नहीं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कप्तान के तौर पर उठाना, यह डिनो ज़ॉफ को फुटबॉल के सबसे अजीम गोलकीपर्स में शामिल करता है। उन्होंने साबित किया कि फुटबॉल सिर्फ नौजवानों का खेल नहीं, जब तक जज्बा जिंदा हो, जब तक मेहनत का सिलसिला जारी हो और जब तक अपने मकसद पर यकीन हो, उम्र सिर्फ एक नंबर है। डिनो ज़ॉफ ने यह भी साबित किया कि ग्रेटनेस आवाज से नहीं, काम से होती है। वो शोर मचाने वाले हीरो नहीं थे, वो खामोशी से अपना काम करते थे और जब जरूरत पड़ती तो पूरी टीम उनके पीछे खड़ी होती थी। डिनो ज़ॉफ इटली की दीवार, एक गोलकीपर, एक कप्तान, एक वर्ल्ड चैंपियन और एक ऐसा लेजेंड जिनका नाम फुटबॉल की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: अपना जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
1: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107।

0: अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं आपको बताता हूँ अपडेट्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है या क्या काम का है जो आपसे चूक में छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा गैजेट है जो आपको काम आ सकता है। गैजेट्स पर हम आएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम आने वाली है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेबसाइट जो आपके काम आएगी, अगर आपको म्यूजिकल कुछ करना है आप, या चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आप गाने लिखते हैं, यू आर अ सॉन्ग राइटर, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेट, ये भी आपका कंटेंट जनरेशन हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसका नाम है, पहले तो लिखना है आपको एक्स, फिर डालना है स्लैश, फिर लिखना है माइनस MINUS माइनस डॉट, फिर लिखना है प्रो PRO फॉरवर्ड स्लैश AI। आई नो नाम बहुत लंबा है, पर लेट मी जस्ट रिपीट। ओके, तो आपने लिखा सबसे पहले एक्स, एक्सरे वाला, उसके बाद आपने डाला डैश, और उसके बाद आपने लिखा माइनस MINUS, उसके बाद आपने डॉट लगाना है, फिर लिखना है प्रो PRO, फिर फॉरवर्ड स्लैश और लिखना है AI। अब क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऑडियो है और उसके पीछे जो है नॉइजेस हैं, या मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉन्ग, आपने कोई गाना जो है चुन लिया और आप चाहते हैं कि इस पे कवर बनाना है, मुझे कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू सिंग, यू वांट टू रैप, कुछ भी करना है, आपने वो ऑडियो अपलोड किया इस वेबसाइट पे और ये जो है उसके सारे कॉम्पोनेंट्स जो उसमें बज रहे हैं उन सबको अलग करके आपको दे देगा। Right from drums to everything will be separated और ऑडियो अलग, तो आप उन सबको जैसे मर्जी चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, या सिंपल ऑडियो हटा के जो मेन वोकल है उसे हटा के आप म्यूजिक पे कुछ कर सकते हैं। इट विल नॉट ओनली टीच यू म्यूजिक, इट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आप अपने कॉन्टेंट जनरेशन के लिए कुछ अगर ट्वीक करना चाहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में गाना बनाते हैं और वो म्यूजिक यूज कर रहे होते हैं जो ओरिजिनल बॉलीवुड के किसी मूवी का होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो बहुत ही नीश है, अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उतना हिट नहीं किया है, मगर इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की है वो खुली हुई है, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू इट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट्स। अब जरा एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो आपके बहुत काम आएगी, और ये जो वेबसाइट है ये है म्यूजिकल, सॉरी मैं म्यूजिकल बना रहा हूं इसको, म्यूजिकल नहीं है, हड्डियों की आवाज म्यूजिकल भी हो सकती है वैसे तो। दिस इज मसल विकी। ओके, मसल विकी MUSCLEWIKI.com। तो मसल विकी पे जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको पूरा बॉडी एनाटॉमी दिखा देगी। भाई देखो, आपको कौन सी मसल पे काम करना है, आप कोई भी मसल इसमें चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली मसल पे काम करना है या इन दो मसल्स पे साथ में काम करना है, एंड उसके बाद आपको ये पूरा पूरा चार्ट बना के देगा कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया है और ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, तो आपको आसानी रहेगी। समटाइम्स यू नो पीपल हु आर शाय लाइक मी, हम लोग पूछ नहीं पाते कि भाई ये कैसे करना है वैसे करना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता भाई, होता है हमसे एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांगा जाता। तो हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किस मसल पे या कैसे काम करना है, तो ये मसल विकी जो वेबसाइट है इस पे जाके बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी। आप जहां पे टारगेट करना चाहते हैं उस जगह की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यू नीड टू सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड दैट इज इट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा जरा जरा खबर की तरफ, ठीक है। तो खबर आ चुकी है मार्केट में, अभी बात करी है बिल गेट्स ने, बड़ा शौक था कि बिल गेट्स, अच्छा तो बिल गेट्स ने बात करी है कि AI रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ग्लोबली एक इशू बन चुका है। अब वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, उनका ये भी कहना है कि AI की सेफ्टी को लेकर और उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज पे बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है, लोग जो हैं उसके फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑल्सो उन्होंने बात करी AI को लेकर कि किस तरीके से एविएशन की सेफ्टी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे, एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन बहुत सारे AI पे बहुत जरूरी है। आई होप कि उनका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ा दो। आई रियली होप सो। बट ये थी अपडेट्स, दिस इज कबीर।

साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी. See you in the next one. गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती. आपका पसंद

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो फ्रॉड अवेयरनेस और हर दिन एक ऐसे फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं जो अवेयर करता है कि कैसे आप नए जमाने के स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये नए जमाने का वो स्कैम है जो आज कल लोगों के सामने से हो रहा है। ये है डिलीवरी स्कैम्स। आजकल बहुत ज्यादा जो कि बढ़ चुके हैं और हर तीसरा बंदा इसका शिकार बन रहा है। ये स्कैम अचानक आपके फोन पर एक नॉर्मल SMS या आपके इनबॉक्स में एक ईमेल के जरिए आते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपका कोई पार्सल या पैकेज आपके घर डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एड्रेस मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर आपके ऊपर एक या दो डॉलर या रियाल की बहुत ही छोटी सी डिलीवरी फी बाकी है। इस मैसेज के नीचे एक ऑफिशियल दिखने वाला लिंक भी होता है ताकि आप उस मैसेज पे ज्यादा यकीन कर पाएं, जिसे क्लिक करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ये बात उसमें लिखी होती है, या फिर आप फीस पे करने के बाद उस लिंक को क्लिक करें, फीस पे करें और फीस पे करने के बाद आपके पास आपका पार्सल पहुंच जाएगा। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है क्योंकि आम तौर पे आपके घर पे पार्सल आते रहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं जो आपके घर पे डिलीवर होना होती है। लेकिन यहाँ पर होता है सबसे बड़ा स्कैम। जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जो लिंक होता है, उसमें दिया गया लिंक असल में एक फिशिंग ट्रैप होता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक फेक डिलीवरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली होती है, चाहे वो कतर पोस्ट की हो या DHL की हो या कोई भी वेबसाइट ऐसी हो जो डिलीवरी करती है आपके घर तक सामान को। जब आप वहां अपना एड्रेस और क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं तो स्कैमर्स आपका पूरा बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। लोग इस ट्रैप में इसलिए आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता ही करता है और उनका कोई पार्सल आने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह से आप बच सकते हैं। कैसे? कुछ स्कैम से बचने के सॉल्यूशन भी हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि किसी भी अनजान लिंक पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं स्कैम होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मैंने तो अभी एड्रेस डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डाली है। हो सकता है आप लिंक क्लिक करें और आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, आपके लैपटॉप में वायरस आ जाए और वहां से वो मालवेयर वायरस के जरिए आपको स्कैम कर सकता है। लिंक पर क्लिक ना करना सबसे आसान है। किसी भी SMS या ईमेल में आए हुए डिलीवरी लिंक पर क्लिक ना करें। असली डिलीवरी कंपनीज कभी भी ऐसा रैंडम नंबर से ना लिंक नहीं भेजती हैं आपको। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप कोशिश करें कि पहले उस लिंक को पढ़ें और समझें कि क्या ये लिंक असल में मौजूद है या नहीं। अगर आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो डायरेक्ट आप गूगल सर्च इंजन पे जाके क्लिक करें, उस नाम को लिखें, कतर पोस्ट या उनकी वेबसाइट लिखें जिस वेबसाइट से आपके घर डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद ही आप बाकी का प्रोसेस करें। उसके अलावा छोटी फीस का ट्रैप, इससे भी बचना बेहद जरूरी है। स्कैमर्स जानबूझकर एक या दो डॉलर जैसी बहुत छोटी अमाउंट या एक दो रियाल या फिर 20-25 इंडियन रुपीस या 100-150 पाकिस्तानी रुपीस के बारे में बात करते हैं। ऐसे छोटे अमाउंट मांगते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे पेमेंट कर दें। ऐसे किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट ना करें क्योंकि ये छोटे पेमेंट जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। सेंडर का नंबर भी चेक करें। अगर मैसेज किसी नॉर्मल 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से आया है या ईमेल का एड्रेस अजीब है तो वो 100% स्कैम है। असली कंपनीज के मैसेज उनके ब्रांड नेम से आए, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी स्कैम को पकड़ने का। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो शुरुआती जो मिनट्स होते हैं या एक दो घंटे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइबर क्राइम को ऐसे में रिपोर्ट करें। अगर आप कतर में हैं और आपके साथ ऐसा कोई खुदा ना खासा फ्रॉड हो जाए, या फिर आप किसी और मुल्क में हैं, अगर आपके साथ वहां पर फ्रॉड हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक को इत्तला करें। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें।
2: और भी जरिए हैं, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई बार हेल्पलाइन नंबर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर को भी आपको गौर से पढ़ना है, क्योंकि ये एक और नए तरह का स्कैम है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको डिलीवरी के स्कैम से बचना है। लिंक पर कभी क्लिक ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करें कि वो सही है या नहीं, छोटी फीस के ट्रैप में कभी ना पड़े, और सेंडर का नंबर हमेशा चेक करें, क्योंकि ब्रांड कभी भी नंबर से मैसेज नहीं करता, और खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए फ्रॉड से। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट,
3: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ना भूलें शो वेमेन वेलनेस, हर मंडे शाम 5 बजे से आज ही नासिया के साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त की होस्ट नासिया। दोस्तों आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग एंड आर वी रेडी। देखिए आज के इस डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है। कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहां लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल है। टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे, यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है। लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल एप्स के जरिए मैनेज करते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट बताते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है। देखिए कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना? जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, सुपरमार्केट में हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इससे टाइम बचता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है। लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड

और स्कैम्स भी रहे हैं इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते लेकिन कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाती है गवर्नमेंट्स भी डिजिटल ट्रांजेक्शंस को सपोर्ट करती हैं क्योंकि इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है इसी वजह से कभी कभी लोग अपने बजट से ज्यादा खरीदारी कर बैठते हैं और फिर सर में दर्द होता है सो, मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ कैशलेस सोसाइटी एक सोशल एस्पेक्ट रखती है हर शख्स के पास स्मार्टफोन इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती सीनियर सिटीजंस हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी होते हैं इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना बजट मेंटेन करना सर्विसेज सेविंग गोल सेट करना मोबाइल एप्स चेक करना ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को स्पीड को एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस स्मार्ट बजट और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें तो कैशलेस वर्ल्ड उनके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल साबित हो सकता है वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक टाइम चेक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों इस वक्त अगर टाइम चेक के बारे में बात की जाए तो एफएम 107 की घड़ी बजा रही है 10:02 और आप सुन रहे हैं माविश और सफा के साथ शो का नाम है
2: यू मैटर्स अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी आप लोग सुन रहे हैं सफा और माविश के साथ यू मैटर्स और हमारा आपका साथ रहने वाला है 11 बजे तक तो मुझे एकदम से लगा मैं कुछ तोता हूं मतलब बातें रिपीट कर रही हूं
1: ये कभी-कभी

0: होता है मालिश। देखिए अच्छी अच्छी बातें रिपीट करनी चाहिए ताकि लोग दो दो दफा सुन लें, दो दो दफा।
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा? जो जो बातें हम करते हैं ना वो अच्छी बातें होती हैं। तो भाई देखें आप जो है इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आपके बगैर तो काम बनेगा नहीं ना। यू मैटर ना, आपके बारे में बात हो रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए नंबर है 666-2107 इज द नंबर टू मैसेज। कॉल करने के लिए नंबर है
1: 4434377। तो दोनों नंबर मैसेजेस पे आपको आसानी हो आप कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा और शामिल हो जाएगा।
0: हाँ जी, और देखें अटेंडेंस लगवाने तो फिलहाल आ ही जाए, बता दें कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। और एक बात बताओ वैसे आज मुझे वेदर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है या वाकई टेम्परेचर गर्मी वापस आ गई है
1: आज? और इवन मतलब आज जो है ना वो सूरज भी चल रही है क्या, शिद्दत जो है ना वो भी ज्यादा है, तपिश भी ज्यादा है। और मतलब जो रोज में ये नोट कर रही थी
0: ह्यूमिडिटी कुछ वापस आई है, मुझे
1: ह्यूमिडिटी तो आई है, आई वो तो अलग बात है, वो तो चल रही है। लेकिन उससे है ना मतलब जो आजकल ये हो रहा था कि सुबह के वक्त में सूरज जरा कम कम दिखाई दे रहा था।
0: सही,
1: मतलब सुबह 6 बजे तक 6:30 तक तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी वो है धुंधला धुंधला सा है, लेकिन आज बड़ा जगमगाता नजर आया। ये क्यों,
0: कहीं मुझे तो नहीं देख लिया सुबह सुबह?
1: या अल्लाह,
0: कचरा फेंकने बाहर गई थी ना,
1: तुम्हें देखा होगा तो उसने सोचा होगा और रोशनी डालो।
0: कचरा फेंकने बाहर गई थी सुबह सुबह, मैं दिख गई थी, उसने कहा ओ सुबह सुबह आपका दीदार हो गया,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: ये बात देखिए माविश को भी बता, माविश ने भी आज मान ही लिया।
1: अरे माना नहीं है लेकिन अब क्या करें, बोलना पड़ता है।
0: माविश देखिए
1: मतलब दिल बहलाने को बोल रहे हैं, अभी शो करना है दिसंबर तक, क्या करूं मैं, कहां जाऊं,
0: कौन सी दीवार में से
1: राइट।
0: चले कोई बात नहीं, देखें ऐसा इस तरह तो होता है कामों में। तो साथियों आ जाओ जरा खुशबू लगा के आओ, गोभी दें पुलों
1: आ गए हैं। लेकिन पहले आप ये बता दें आज का टॉपिक क्या है।
0: देखिए आज का टॉपिक हम आवेश आप बताएं।
1: हाँ मैं बता देती हूँ, बेसिकली होता ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा मतलब छोटा सा, एक दफा मुझे देखना पड़ेगा मैं भूल गई,
0: हाँ या ना वाली जो चीज होती है ना वो कभी कभी इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख देती है।
1: छोटा सा जो डिसीजन है ना, क्या वो पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है आपकी जिंदगी की? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसा होता है? तो देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, आज पहली कॉलर में हल्का है।
1: ओए रईस भाई क्या हाल है, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं ये सोच रही थी
2: मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे मतलब असल में ड्यूटी थोड़ा हम लोग का लाइटली कमती हो गया। असल में हम लोग ट्रिप सिस्टम काम करते हैं ना, तो काम है तो करेंगे, नहीं तो रूम में आराम से बैठेंगे, मसला ये पड़ जाता है। बस यही है, थोड़ा काम अभी कम चल रहा है तो इसके लिए लाया मैं थोड़ा सा सुबह के टाइम तो होता हूँ, लेकिन वो मजा नहीं है अभी जो मजा पहले, बहुत मिस कर रहे हैं वो। अब हम कितना जल्दी दिसंबर तक, आपने डरा दिया दिसंबर तक आप लोग।
0: कह रहे डरा दिया
1: क्यों भाई,
0: डरा दिया आपने?
1: अच्छा तो हम दोनों दिसंबर तक साथ रहेंगे, साथ आप डर गए?
2: साथ में रहेंगे, मतलब बस करता हूँ कि बस हमारा भी थोड़ा टाइम ज्यादा शुरू हो जाए ताकि हम भी रहे। और आप लोगों का एक घंटे का टाइम ये बहुत मुख्तसर होता है, इसमें थोड़ा सा ना लंबा बात कर सकते हैं बट नतर लोगों का, आप लोगों को घुटन और सुनने वालों को भी घुटन की भैया यही तकरीर शुरू कर दिए सुबह।
0: रईस भाई मामला पता है क्या है, जब कोई चीज लिमिटेड मिलती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम अपना भाव बढ़ा रहे हैं ना।
1: बिल्कुल जी, हम अपनी वैल्यू को खुद समझ रहे हैं तो कोई और समझेगा ना।
2: मटन या मच्छी घर पे जब थोड़ा होता था सालन ना, तो
0: वो ज्यादा टेस्टी लगता है,
2: तो उस दिन बोलते यार थोड़ा, अरे भैया आज थोड़ा कमती है तो थोड़ा सा नहीं, आज टेस्टी ज्यादा बना है, तो वही हाल है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं मतलब आप लोगों को साथ में, भाई आप लोग करांची वाले हो,
1: करांची ये कौन बोलता है करांची बोलता कौन है? अच्छा मैंने देखा है,
2: हाँ करांची लोगों से मैंने सुना है किसी को,
1: हाँ लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों करांची।
2: पूछना मैं मतलब सपा से मैं पूछने वाला था कि क्या आप करांची में भी बिहार के जो साइड पे हैं वो भोजपुरी बोलते हैं कि मैं उर्दू ही बोलते हैं?
1: नहीं जो है बिहार के वो बिहारी लोग कहलाते हैं ना, तो वो हैं बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि हमारे नेबरहुड में तो बहुत थे, बहुत ज्यादा।
2: अपनी अपनी जबान जो मतलब अपनी मदर टंग है वो बोलते हैं कि मतलब वो
1: आपस में बोलते हैं, आपस में बोलते हैं लेकिन हमसे नहीं बोलते, लेकिन पता चलता है फॉरेन से पता चलता है।
0: जैसे जैसे जो हैदराबाद से होते हैं उनका भी पता चल जाता है,
1: ये पता चल जाता है।
0: जो बोई होते हैं उनका भी पता चल जाता है, सबका पता चल जाता है। वो हमसे बात करेंगे तो वो उर्दू में बात करेंगे, लेकिन उनका लबो लहजा जो होता है ना,
1: वो वही वाला होता है बोलने का।

0: बिहारी स्टाइल।
1: वही सुनना चाहता
0: था। तो आप बिहारी हैं क्या?
1: यूपी
0: साइड के। अच्छा अच्छा, मैंने कहा वरना मैं आपसे पूछ लूं, मुझे ना थोड़ा सा वो कि हम लोग पूरी जिंदगी रहे हैं बिहारियों के साथ, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई अलग लैंग्वेज होती है।
1: नहीं, थोड़ा सा बोलने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है।
0: वो तो है,
1: वही होता है। ये अवधी, भोजपुरी और मतलब ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। हम समझते हैं, बिहारी समझते हैं, बोलना भी आता है, काम चलाऊं।
0: कैसे कैसे बोलते हैं?
1: अरे भैया, वो बस सुनोने तो हंस हंस के पेट उठने लग जाए।
0: नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ लैंग्वेज चेंज होती है या एक्सेंट? तो मुझे भी पता है, मैं भी बोल सकती हूँ।
1: पानी को पनिया, खाना को खनवा।
2: अच्छा, मुझे बड़ा मजे का लगता है,
0: उनका मजे का एक्सेंट होता है।
1: तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बोलने का अंदाज
0: काफी डिफरेंट है। और हम लोगों के, क्योंकि बहुत सारे हमारे ना साथ रहे हैं, बहुत मतलब करीबी, तो उन लोगों का था। और मेरे पापा, और वो मेरे पापा की आदत थी, वो उन्हीं के अंदाज में बात करते थे।
2: मजे की बात है, कराची में बहुत बहुत मैंने लोग देखे
0: हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
1: कानपुर, लखनऊ, ये सबके करीब के हम लोग का मतलब ये मिलता जुलता हम लोग का जबान जो है। कानपुर, ये सब इलाहाबाद, ये सबके करीब।
0: अच्छा, दादी जो है ना वो कानपुर की थी, कानपुर से उनका ताल्लुक था मेरी दादी का।
1: हमारे रिलेशन के बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारा आना रहता है कानपुर में, वहाँ का बड़ा अच्छा लगता है, वो लैंग्वेज भी बड़ा अच्छा लगता है।
0: सही सही, गुड, जबरदस्त
2: जी। अच्छा भाई, अब टॉपिक पर आते हैं। मामला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ निकल गए हम?
0: इधर उधर, अभी भी हम इधर उधर घूमते रहेंगे।
1: कभी ये दिल की बात भी हो, मतलब सुनने पूछने के मैं बहुत दिन से मतलब सोच के भूल जाता था। ये दिन सपा से या मैं उससे पूछूं कि क्या वो लोग मतलब
0: ये ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कौन बिहारी कराची चला गया जिसको हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये बताएं।
1: नहीं,
0: कोई खास है तो हम ढूंढ के देते हैं आपको।
1: सुनना चाहता था कि मतलब ये
0: अच्छा होते हैं कि नहीं होते,
1: वहाँ पे बोला जाता कि नहीं।
0: सही सही, नहीं सब बोलते हैं, सब अपनी अपनी जबानें बोलते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है ना पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में हम सब लोगों की एक नेशनल लैंग्वेज है जो कि उर्दू। हम सब लोग आपस में बात करते हैं तो उससे इजी हो जाता है सबके।
2: मजे की एक बात अगर इन शॉर्ट में बताऊं ना, तो इन शॉर्ट कराची जो है ना वो हब है लोगों का। भाई मैंने तो नाइजीरियंस भी देखे हैं कराची में, चाइनीज भी देखे हैं,
0: हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।
1: हाँ हाँ, तो कोई टाइम में कैपिटल रहने वाला सिटी है।
0: जी जी जी जी, कैपिटल।
2: तो वहाँ पे माशाल्लाह से आपको हर कौम, हर नस्ल का बंदा बड़ी फ्री छोटी मोटी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज है, बिल्कुल ऐसे।
1: मैं देखते रहता हूँ, मेरा जुड़ाव ज्यादा है, मैं वो सब देखते रहता हूँ। बताने की जरूरत
0: नहीं,
1: खाली यही
0: सुनना चाहते, मतलब पहले पूछ रहे थे, अब कह रहे बताने की जरूरत नहीं। अब हमारे जब मतलब जज्बात जग गए, हम जज्बाती हो चुके हैं, नहीं आपको रईस भाई तंग करते हैं, मजा आता है। अच्छा ये तो बताएं भाई कि कोई छोटा सा डिसीजन क्या ऐसा आपने लिया कभी जिसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो?
1: ऐसे मसलन थोड़ा सा मतलब
0: शादी के अलावा
1: शादी में बहुत से लोग बड़ा मतलब ये रोते रहते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ भाई वो हिस्सा है हमारे लिए। आप बिना शादी कर रहे बाहर, फिर वो तो यार मुझे अजीब सा फील होता है कि क्यों लोग शिकायत करते हैं भाई, हम अधूरे हैं ना।
0: अपनी अपनी मर्जी से शादी की, अपनी खुशी से, और फिर कोसते फिरते हैं ना।
1: चैलेंज आ रहे ऐसी फिर वाइफ के ऊपर ऐसे वैसे करे।
2: अच्छा लाइफ में अगर अगर अगर आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल दी जाए, कभी होता है ना कि भाई कोई एक छोटा सा डिसीजन, जैसा कि आपने घर वालों को बोला हाँ मैं बाहर जाऊंगा, मुझे बाहर जाके काम करना है, फॉर एग्जाम्पल, या आपने कहा कि भाई मुझे फलानी जगह पढ़ाई करनी है, या आपने कहा हो कि नहीं भाई मुझे फलाने मुझे फलाना शख्स पसंद है तो मुझे उससे शादी करनी है, या कुछ ऐसे छोटे डिसीजन होते हैं लाइफ में।
1: तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम अगर डिसीजन लिए तो हम में कामयाब हो जाए, कभी कभी हमें सोचना पड़ता है कि यार बल्कि नहीं किए होते ये काम, या ये ऐसा हम घर वाले मना कर रहे थे, और कुछ या कोई और मना कहा था, बल्कि वो डिसीजन बेहतर था हमारे लिए। तो ये सब चीजें मतलब ये लाइफ का हिस्सा है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हर बंदा मतलब कामयाबी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें
2: कोई ऐसा डिसीजन था जो आपको अभी तक याद है, जिसके अंदर आपने कहा कि भाई इसके अंदर

0: हाँ बोल के अच्छा किया और उसने ना बोल के गलत कर दिया, कुछ याद पड़ता है?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लाइफ में देखो मतलब हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ, निगेटिविटी मैं अपने अंदर मतलब रखता हूँ, अगर कोई चीज हमारे अंदर हो भी गया तो मैं अपने तकदीर का हिस्सा समझ के उसको आगे बढ़ जाता हूँ, मैं ज्यादा उस पर अफसोस और ये सब तरह तरह का
0: टाइम नहीं अफसोस करने का
1: ज्यादा ये नहीं करते, हम सोचते बस इसी पे इक्तफा कर लेते हैं कि हमारे तकदीर का हिस्सा था, हमारे लिए शायद कुछ बेहतरी था, अल्लाह ने जो फैसला किया हमारे लिए वो बेहतर है, बस इसी पे सब्र कर लेते हैं, और ये ज्यादा बेहतर भी है मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा घुटन अपने आप को करो और अपने आप को तरह तरह लोगों पे ब्लेम करो और ये करो, ये लाइफ में फिर आदमी को।
0: अच्छा ये तो बताएं जरा कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात करें तो जिंदगी का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सा यस बताएं जिसको आज भी आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि हाँ भाई ये वाला जो मैंने यस बोला था ना ये बड़ा अच्छा काम किया था मैंने
1: सफा। ये देखो पॉजिटिविटी का ये है कि मैं दूसरों पे ज्यादा भरोसा करके नहीं था, मैं अपने लाइफ में मैं बहुत ज्यादा दूसरे पर डिपेंड होके कि नहीं मुझे ये चलो वो हमारा ये काम कर देगा, ये चीज मेरे अंदर नहीं है। कभी आप किसी की काबिलियत के ऊपर किसी के उस पर मैं भरोसा करके आगे बढ़ के कि चलो उससे मैं मदद लेके आगे बढ़ जाऊंगा, ये चीज मेरे अंदर नहीं है।
2: ये तो ऐसा अच्छा भी होता है कि जो फैसला लेना बंदा
0: अपनी मर्जी से
2: ले ताकि अगर गलत हो तो बंदा मतलब ना खुद अपने आप ये कह सके भाई मैंने ही लिया था, किसी और के ऊपर ना ब्लेम करे।
1: अभी आज हम बैचलर हैं, आज यहाँ पे खाने में नमक ज्यादा हो या तीखा हो या फीका हो तो यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो हम किसको कोसेंगे, हम मतलब खुद ये कर रहे हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में भी अपने आप को बंदे को ऐसा मतलब डिसीजन ले रहे हैं कि दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम कर, हाँ राय ले सकते हो, खुद फैसला के सारी चीजें ये करो, राय लेता हूँ मैं खुद उस पर जज भी मतलब ये करता हूँ कि हाँ लोग किस तरीके से, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा किया तो वो बंदा कहाँ तक कामयाब हुआ, उसके तरफ भी मतलब थोड़ा सा अपना फोकस होता है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा कोई भी फैसला लिया फौरी तौर पे अगर आगे बढ़ा तो उसको कामयाबी, वो तो बाद में हमें लगता है यार वो बंदा, लेकिन वो कितनी मुश्किल से अपने लाइफ में वहां तक पहुंचा है
2: गुड हो गया, जबरदस्त बहुत अच्छा लगा रईस भाई। हाँ हाँ बिल्कुल जी, वो एक कॉलर बेसिकली होल्ड पर भी है तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा कॉल करते रहा करें, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी मैं सोच रही थी कि खादिम भाई आजकल बिल्कुल गायब है, कहाँ चले गए, ना उनका मैसेज नजर आ रहा है ना उनकी कॉल नजर आ रही है, देखते हैं। चले जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
0: कौन है हमारे साथ?
3: शोएब बात कर रहा हूँ।
2: कैसे हैं शोएब भाई?
0: शोएब भाई क्या हो गया है, मतलब ये आज दूसरा दिन है आपकी आवाज थोड़ी सी पहचान में नहीं आ रही, क्यों भाई क्या चल रहा है, ये मार्केट में क्या आया है नया?
2: भाई आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा
0: वाटर है।
2: हाँ कुछ
0: ब्लूटूथ पर हैं या हेडफोन पर है?
3: ब्लूटूथ पर नहीं,
0: स्पीकर पर तो नहीं है कहीं आप?
3: स्पीकर पर।
0: हाँ ये स्पीकर का मसला मुझे जहर लगता है बात करना, क्योंकि ना आपको समझ में आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है ना, तो समझ आता है आपके, हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं।
3: चलिए ठीक है अब आ गया।
2: हाँ अब आ गया ना, बिल्कुल सेट हो गया जी। शोएब भाई उम्मीद है कि कल अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह,
0: थोड़ा टाइम लगेगा।
3: खबर बहुत अच्छी मिली, बहुत जबरदस्त रहा है, सब कुछ बढ़िया रहा है, जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज मुझे मिल जाए
0: सबको कामयाब करे, खैर आफियत का मामला रखे। ये बताएं कि भाई शोएब भाई आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई एक ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर आप रिग्रेट करते हो कि आपने ना कर दिया हो, या कोई एक ऐसा डिसीजन पॉजिटिव जो आपने लिया हो यस कर दिया हो, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन हो, क्या इस बात
3: पे? तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं क्योंकि मैं अपने दिल की ज्यादा सुनता हूँ, माइंड से कम सोचता हूँ, और फिर ज्यादातर मैं राय मशवरा करता हूँ अपने मॉम डैड से। अच्छा आप बताइए आपका कौन सा ऐसा डिसीजन रहा है?
0: मेरा सोचना पड़ेगा, आपने देखिए मुझे बहुत काम दे दिया आपने, सोचने का काम आपने मुझे दे दिया है, ये बहुत गलत काम कर दिया आपने,
3: सोचा नहीं जाता
0: सोचने का काम मुझे देना क्या हो सकता है।
3: मैंने एक डिसीजन लिया था मैम, दरअसल डिसीजन बहुत अच्छा था और सब कुछ बेहतर हो गया, कोरोना नहीं आता तो कोरोना से आने से पहले यानी कि 2020 जनवरी से पहले आई थिंक 2000 वो होगा ना फिर तो 19 था शायद आई थिंक
2: सही।

0: अच्छा, तो वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस, अपना एक स्टार्टअप किया था, उसमें मैंने अच्छा खासा एक अमाउंट भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये
1: कोरोना
0: चीज आ जाएगा। हाँ, उसके चलते बहुत ज्यादा मतलब लॉस हुआ था।
1: सही,
0: तो वो एक डिसीजन मेरा बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। देखो फिर मैं कतर आ गया।
1: सही। अच्छा, अगर वो आपको लगता है कि अगर वो मामला नहीं होता तो आप कतर आते?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता।
2: तो फिर ये अच्छा हो गया ना, ये हुआ ना।
1: कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, समझें बात ही गहराई को समझें, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी का पूरा पूरा रुख बदल के रख देते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होता, हम उस सिमत निकल पड़ते हैं।
2: बिल्कुल।
1: एक डिसीजन जो आपने बेसिकली नहीं लिया था, कहीं ना कहीं आपने लिया था, लेकिन वो आपके हक में नहीं गया, लेकिन आपके हक में चला गया।
0: मतलब देखो होता है, एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी इंसान कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, कुछ अच्छे ले लेता है, कभी वो तुक्के से अच्छे बहुत जबरदस्त लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैम जिंदगी पीछे चली जाती है थोड़ा बहुत। ये तो हर किसी के साथ है, कोई मेरी अकेले की बात नहीं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज ना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम ऐसे रखा है इंसान को, ऐसा प्रैक्टिकल सीख देने के लिए ना, कि भाई ये चीज़ अगर ऐसे ना होती आज से कुछ साल बाद, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कुछ साल पहले का मैं सोचूं तो मैं शायद कतर नहीं आता, अगर वो मामला नहीं हुआ होता ऐसा। तो लाइफ में से बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें ना नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो होते हैं हमारे हक के लिए, और जब कुछ सालों बाद हम जब उनके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हूँ जैसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: देखिए मेरी एज मैम 32 हो गई है और मैं आज तक सीख ही रहा हूँ। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आता कि हम कब तक सीखेंगे।
1: पूरी जिंदगी सीखने का, जिस इंसान ने अपनी सीखने की किताब बंद कर दी ना, फिर उसके पास जीने का पर्पस ही नहीं है मेरे भाई।
2: एग्जैक्टली, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
1: जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया तो फिर वो तो बोर हो जाएगा।
2: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: सही कह रही है आप। अभी जब से मतलब देखो कहीं भी आप कोई नई जगह चले जाओ या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो या कुछ भी ऐसा कोई भी नया काम करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो।
2: बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये अच्छी चीज भी है कि आपके अंदर इतनी विल है कि आप इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक सर्टन पॉइंट पे ना अपनी एज के वो डिसाइड करते हैं कुछ भी कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर अगर वो नहीं हो पाता तो उन ख्वाबों को जीना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हिम्मत करते रहें और जो कुछ भी आपके जहन में उसके लिए कोशिश करते रहे।
0: जी बिल्कुल, बेशक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी जरा थोड़ा सा जल्दी है मुझे भी।
2: बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही तो हमारे साथ शुएब थे और मेरा ख्याल है अब हमें एक म्यूजिकल नंबर की तरफ चलना चाहिए, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं।
1: इंशाल्लाह।
2: सुनते रहें
1: डू मैटर विद महावेश एंड सफा ऑन FM 107।

0: बाजी आप सुन रहे हैं फेमानो सेवन पर यू मैटर और इस वक्त घड़ी में टाइम हो चला है
1: 10:26 और बस आधा घंटा हमारा आपका साथ है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैसेजेस शामिल कर दें इस देर में। तो जी गुड मॉर्निंग और ये कहना है एहसन का गुड मॉर्निंग एहसन कैसे हैं ठीक ठाक हैं। राना हनीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग आप दोनों को मेरा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
1: तौफीक का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम मावश एंड सफा जमाल भाई का नंबर दे दें प्लीज।
0: जमाल भाई का
1: हाँ
0: जमल जमालो जमल जमल कुदूस क्या याद है मुझे। अच्छा जमाल भाई का नंबर दे दें
1: अब अगर होगा तो देखना पड़ेगा अगर होगा जमाल भाई वो ना जमाल भाई उर्दू
0: उर्दू
1: इंतहाई
0: गाढ़ी किस्म की उर्दू
1: हाँ
0: माशाल्लाह
1: उर्दू उर्दू। अच्छा जी मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गुड मॉर्निंग मावश जी एंड सफा जी कैसे हैं आप दोनों।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ट्यूसडे तक आते आते ना तबीयत थोड़ी बहाल हो जाएगी
1: अभी आज ट्यूसडे नहीं है
0: वही कह रहे हैं ट्यूसडे तक आते आते तबीयत बहाल हो जाएगी।
1: पिछली दफा गुम गया था आज आपने एक ट्यूसडे पहले से ना बना दिया कि इस दफा मैं दो ट्यूसडे मनाऊंगी।
0: नहीं ट्यूसडे जो ना ट्यूसडे पे आकर ना मेरी जिंदगी थोड़ी सी संभल सी जाती है।

0: ट्यूजडे पे खड़े होकर मुझे वीकेंड बहुत पास नजर आ रहा होता है, तो फिर मैं संभल सी जाती हूँ.
1: हाँ, वैसे मुझे पता है कि आज बहुत फील हो रहा था कि वीकेंड आ जाए, क्योंकि मुझे कल रात में नींद नहीं आई है. कल रात में कोई मतलब बज गए मुझे 12 और 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, और सुबह 4 बजे उठना होता है, तो सिर्फ 4 घंटे की कुछ नींद मिली है. तो मैं सोच रही थी कि ये वीकेंड कब आएगा. चले जी, गुड. अच्छा जी, तो फिर मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज मैंने कहाँ तक पढ़ा था, मैं कहाँ खैर खैरियत. फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि घंटा काफ़ी नहीं है उस शो के लिए, इतना अच्छा शो है लेकिन बस एक घंटा.
0: चले देखें, जो जो चीज़ कम मिलती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी अहमियत डबल बढ़ती है. मैंने कहा था
1: दो घंटे मैं कैसे सफ़ा को बर्दाश्त करूँगी, ऐसी बात ये है.
0: ये कौन सबर कर रहा है, कौन शुक्र कर रहा है, तो वक्त बताएगा माविश.
1: हाँ, ओके. रियाज कह रहे हैं कि मोटिवेशन मिल गई भाई, ब्रश लेने जा रहा हूँ, टूथब्रश. मुझे याद आया कि टूथब्रश लेना है.
0: वाह,
1: ये हमने कहाँ बात की थी ब्रश की,
0: ये कहीं हमने पुराना मैसेज तो नहीं है.
1: में कोई डिसीजन लेना. आओ, ओके ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल.
0: देखा देखा, शुक्र करें मैं आपके साथ हूँ, शुक्र करें.
1: ओके,
0: देखिए ना, देखिए मैंने आपको बता दिया,
1: देख लेती थोड़ी देर के बाद. लेकिन हाँ, वो पता है क्या,
0: मैं इतने दिनों से
1: लिखना शुरू किया था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से आ गया सुबह वाला.
0: मैं कहा कि चलो मैं कहती हूँ कि खुशबू लगा कर आना, अब से बोलना शुरू करूंगी कि टूथब्रश करके आना.
1: वो कबीर ने कह दिया ऑलरेडी. अस्सलाम वालेकुम मामूश मैम, मैं सफा जी, कैसे हैं आप? सफा जी आज ट्यूसडे है.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो देखो ऐसा ना करें ना, इतनी बेवकूफ नहीं है.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बिल्कुल ठीक ठाक. महविश
0: के साथ एक
1: भाई,
0: महविश के साथ एक और भी पीस है.
1: हाँ, ये जानबूझ के तुम्हारा नाम नहीं लेते, अच्छी नहीं लगती तुम इनको.
2: आपकी बारी आती है लेकिन आपने सबर नहीं
0: है. मुदस्सर भाई, ठीक है, आज एक और बुराई जोड़ दी गई मेरे साथ,
1: सबर नहीं है आप
0: जो ये बात तो मेरे घर वाले कहते हैं मुझे कि तुम्हारे अंदर सबर नाम की चीज नहीं है.
1: सही बात है, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल सही पहचाने मुदस्सर.
0: ठीक है मुदस्सर भाई, ठीक है, आप भी मेरे घर वालों की तरह ही निकले.
1: बिल्कुल, मुझे लगा था तुम बोलने वाली हो, आप भी दुश्मनों के साथ मिल गए.
0: जी जी,
2: आप में जो क्वालिटी है ना वो बहुत कम लोगों में होगा.
0: हाय हाय, अब क्या रुलाओगे पगले.
1: अब पता है क्या वाकई, मतलब एक क्वालिटी है सफा में, सफा बर्दाश्त कर लेती है.
2: जो कोई लॉन्ग सफर में जाएगा ना, उसके साथ आप जैसा इंसान होता है ना, वो कभी भी सफर से बोर नहीं होगा.
0: मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट की मैं जोकर हूँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरा मेरा नाम जोकर वाली लाइफ है मेरी. ये अच्छी, ये जना मुदस्सर भाई, इसको मैं जो कॉम्प्लीमेंट लूंगी.
1: अब मैं क्या बोलूं,
0: मैं कुछ पॉजिटिव सोचूंगी.
1: मैं दिल में सोच रही हूँ कि मैं इस पे क्या बोलूं.
0: नहीं, मैं पॉजिटिव सोचूंगी, आप
1: सोचो, तुम सोचो. लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यार जो हम पकते हैं ना, हमें पता है.
0: देखिए, पक पक के ही पॉपकॉर्न बनता है. मैं आप लोगों को पॉपकॉर्न बना रही हूँ. अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताएं आपका दिन कैसा गुजर रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: जाहिरी बात है, मेरी और माविश की आपने आवाज सुन ली है तो अच्छा ही गुजरेगा, है कि नहीं?
2: बिल्कुल.
0: अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताएं कि जो है ना, हमारा सवाल आज का ये चल रहा है कि जरा बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है, आप ये बात मानते हैं कि इंसान के छोटे छोटे डिसीजन होते हैं ना, ये सिर्फ हाँ और ना कह देना ही कभी कभी इंसान की जिंदगी में बहुत, मतलब बिल्कुल आपके लिए 360 टर्न मार लेती है लाइफ उससे. मानते हैं ऐसा होता है?
2: ऐसा होता है, लेकिन इतना तो खास नहीं है. लेकिन मैं जब 2013 का मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैंने माँ को बोला कि मुझे बाइक चाहिए.
0: सही.
2: तो मेरा मामू भी पाकिस्तान आए थे 4 दिन के लिए. मेरे कजन का इधर शादी था कतर में.
0: सही.
2: वो मामा मुझे बोल रहा था कि आप ऐसा करो, आप डिसीजन ले लो, बाइक चाहिए या विजिट पे कतर जाएंगे, शादी अटेंड करो.
0: सही.
2: मैंने कहा, सोच लिया, मैंने कहा कतर में तो फिर जाएंगे तो बाइक फिर नहीं मिलते. मैंने कहा मुझे बाइक चाहिए.
0: बाइक चाहिए, गाड़ी का शौक नहीं, बाइक का शौक है.
2: गाड़ी का नहीं, इतना बाइक का बहुत है.
1: फिर क्या हुआ? उस बाइक पे बैठ के कतर आ गए?
2: बाइक भी मिल गया. तो 2017 में फिर कतर गया.
0: माशाल्लाह, अरे भाई
1: सही. एक तीर से दो शिकार.
2: एक तीर से दो शिकार.

0: इनका वो वाला हाल है कि जब हम मॉल जाते हैं ना, पार्किंग नहीं मिल रही होती, जिस सेकंड हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं ना, उस सेकंड तीन पार्किंग और खाली हो जाती हैं। इनको सब कुछ मिल गया।
1: मुझे
0: कुछ और भी मांग लिया था तो वो भी मिल जाता,
1: वो भी मिल जाता था ना।
0: कबूलियत का वक्त था कोई सही वाला,
1: सही वक्त था लेकिन बस गुजर गया।
2: चले भाई, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे वक्त आएंगे, गुजरा नहीं। इंशाल्लाह
0: देखें, अभी बहुत लंबा सफर है मुदस्सिर भाई, बहुत टेंशन को ले रहे हैं। बस सेहत होनी चाहिए, जान है तो जहान है, सेहत जान होनी चाहिए, बाकी अरे हम दोनों चीजें हम लेंगे भी मार्केट से और लोगों को देंगे भी। वो हम लोग कहते हैं ना कि मेरी अम्मा कहती है अल्लाह ताला से दुआ करो कि, मेरी अम्मा हमें कहती है अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और दे और दे और दे, फिर मैं अपने बच्चों से खुद वसूल कर लूंगी।
1: अच्छा एक बात याद आ गया महेश
2: जी, जी
1: सफा में से एक निशनल बता रहा था, सफा में मैं तो इधर मतारो लड़ते हैं तो मुझे तो नजर नहीं आती हो। सरों में देव तो बोलते हैं कि सफा आप देख सको जब मतारे जाओगे तो इनका साथ लगाओगे, मैं ये हूँ मैं ये हूँ।
0: अच्छा मजे की एक बात है कि मुदस्सिर भाई मेरी गाड़ी ऐसी है कि मतार की मेन स्ट्रीट पर आपको कहीं भी नजर आ जाएगी। वो पहले तो बिल्कुल ही मैंने अलग की हुई थी। हाँ ये और बात है कि मरूर वालों ने फिर उसके शोशा कम करवाई है,
2: लेकिन करवा दी
0: वो कोशा कम करवा दी
2: जो निकले हुए थे।
0: हाँ, वो उन्होंने उतरवा दिए। हाँ। जो मैंने उसके ऊपर खूबसूरत अपने सुर्खियां लालियां लगाई थी उन्होंने उतरवा दी, लेकिन अभी भी गाड़ी मेरी ऐसी है कि दूर से खड़ी हुई नजर आ जाती है सबको की गाड़ी है। वो गाड़ी ऐसी है कि वो जहाँ भी खड़ी होगी अलग से नजर आएगी।
2: गाड़ी की प्रमोशन हो रही है।
0: मैंने सुनो ब्रांडिंग नहीं की, मैंने कहा गाड़ी अच्छी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: नहीं अभी नाम मैंने कहा इससे पहले के नाम आ जाए।
0: अच्छा मुझे
2: टोक दे।
0: नहीं मुझे जो है ना पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मेरे ख्याल से रईस भाई ने पूछा था, शेफ भाई ने पूछा था कि आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आपने ऐसा लिया हो, तो मुझे ये डिसीजन याद आता है कि मैंने बड़े जज्बाती तरीके से ना बड़े जज्बात में आकर मैंने अपनी गाड़ी के लिए, मैंने कहा इस दफा तो मैं अपने ऊपर खर्चा करती नहीं, मैंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं अपने ऊपर खर्चा करूंगी। तो मैंने मुझे मैं सबको ये कहती, मैंने कहा 25 साल लगे मुझे इस गाड़ी तक पहुंचने को। तो भाई मेरे लिए वो शहजादी है, तो मेरी गाड़ी दूर से नजर आती है
2: जिसमें हम बैठ भी नहीं पाते सही से।
1: आखिरी एक बात करता हूँ, सफा मैम बोलता है ना पैकेज नहीं हूँ ना, लेकिन आज हमने सच मान ले क्या आप सच पैकेज नहीं है।
0: सच में क्यों?
1: अगर तुमसे 10 मिनट पहले उसने बात किया, शिवाई ने तुमको बोला था कि हमने क्या डिसीजन लिया।
0: ओके वो मुझे से याद आया, मुझे फिर से याद आया, किसने बोला था ये देर से याद आया मुझे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। अच्छा कोई पूछ रहा है, गुड मॉर्निंग परवेज इज हियर और कैन यू प्ले दिस म्यूजिक जमाल जमाल। ये क्या मतलब, ये जमाल जमाल क्या हो, लुड्डी हो जमालों के रहे क्या ये?
0: नहीं गाना था ना एनिमल मूवी का।
2: अच्छा
0: वो ईरानी सॉन्ग है वो, और एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर गाना, मजे का था वो,
2: जमाल
0: एनिमल मूवी का गाना था, बहुत मजे का।
2: देख लेते हैं अगर मिलता है तो चला देंगे, बिल्कुल चला देंगे, देखना पड़ेगा। खैर जी इसके बाद कोई ये भी पूछ रहा था, मेरा ख्याल है कि चलो मैं देख लेती हूँ, उससे पहले हम ले लेते हैं कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं
0: रुके रुके आपका आपका हम जो है ना एंट्री तो करवाए ना, बाद बा मुलाहिजा होशियार।

0: Ben söyleyeyim.
1: Alhamdülillah, alhamdülillah.
0: TikTok है
1: उठाने की वजह इतनी देर से कॉल उठाने की वजह
0: ये सब मामिश को ये जितने गलत काम हो रहे हैं ये सब मामिश
2: की बात कर रहे थे तो मैं उनको कहती है नहीं रख दें सब कोई मुरव्वत भी चीज होती है
1: ये लगा कहीं भूल तो नहीं
2: गए नहीं कैसे भूलेंगे आपको भूल सकते हैं
0: भूलने वाली चीज है आप शदा सलीम ऐसा तो ना हो सकता
1: ये तो होता है कि बोले आज मंगल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ
0: चले कोई बात नहीं आप बताएं आपकी लाइफ में
2: मेरी ख्वाहिश थी कि काश मंगल होता
1: मंडे हो गया भी हुआ बेहतर हुआ
0: जी
1: हाँ
0: जी जी
1: और क्या सवाल कर रहे थे आप बताइए
0: भाई सवाल तो ये चल रहा है मर्क में कि भाई ये बताएं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन रहा है जो जिसने आपका
2: छोटा सा
0: जिसने सब कुछ बदल के रख दिया हो
1: मेरा खुद का अपना ही डिसीजन क्या घर वालों का डिसीजन मेरा अपना पर्सनल
2: आपका अपना घर वालों का क्यों पूछेंगे हम
1: मेरा अपना तो सबसे बेहतरीन जो डिसीजन था मतलब आप रोड जाने का इंडिया से बड़ी ख्वाहिशमंद था क्योंकि मैं जब छोटा था ना मेरे मामू मस्कट में रहते थे हम उनको ना बड़े हॉस्पिटल जाते थे रिसीव करने तो पे ना बैगे वगैरह देखते थे ना सारा कुछ लगेज है ना तो मैं उसमें चला जाता था कि मैं भी कभी इस तरह निकलूंगा यहाँ से
0: सही।
1: सारा कुछ छुटे हुए लगेज हाँ तो वो डिसीजन है ना बहुत मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना
0: सही
1: तो
0: सही
1: मैंने पूरा सक्सेसफुल किया लेकिन मेरा एक दूसरा जो खराब से खराब डिसीजन है ना हमेशा से आए आज भी उसकी आदत अभी नहीं छुटी मैं ना जॉब को छोड़ देता हूँ थोड़ा सा कुछ हुआ ना डायरेक्टली मैंने रिजाइन किया हूँ कितनी जगह मैंने कई जगह रिजाइन करके गया हूँ लेकिन फिर मुझे ना दूसरी कनेक्ट भी हो जाती है ऑन द कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी कनेक्ट है फिर कहीं ऐसी हो जाती है ना जो मुझे सेटिस्फाई नहीं है जो मुझे मतलब है ना मतलब ऐसा है कि मेरा कैसा रवैया रहा है शुरू से जहाँ मेरी जगह नहीं बनती तो वहाँ मैं किनारा कर लेता
0: मेरे अब्बा की तरह
2: मेरे अब्बा की नहीं बनती किनारा सी
0: मेरे अब्बा कहते नहीं ये यहाँ दाल नहीं गल रही चलो साइड जाता हूँ
1: तो मेरा इस तरह हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन डिसीजन खराब मेरी नहीं है तो ऐसी ही डिसीजन है ना तो मुझे मतलब ना क्रैश कर गई
0: जज्बाती
1: हाँ जज्बाती और कहीं कहीं जगह है ना मारी हालत में डैमेज किया काफी कुछ मतलब नुकसान उठाया मैं तो लेकिन उससे सोच के अभी तो क्या सिवाय अफसोस के ना लेकिन ये पता नहीं क्यों मैं मेरे से होता ही है ये
0: ये एक
2: खराब डिसीजन होता है
0: नहीं देखें मामला पता है क्या मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये होता है कि ये बात समझना बहुत जरूरी होती है जब आप दूसरों के अंगूठे के नीचे काम करते हैं ना तो उस वक्त मामला कुछ और होता है उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको अपनी खुदसरी का या अपना आप कह लें सेल्फ रिस्पेक्ट का कहीं ना कहीं होता है वो 5% 10% आपका जाता ही जाता है कुछ लोग होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो कहते हैं हल्ली मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा
2: मतलब बाय द टाइम मुझे ये बात समझ में आई है कि इस एटीट्यूड का कोई फायदा होता नहीं है ये आपको सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है आपने दुनिया में रहना है ना तो आप किसी हद तक तो लोगों के साथ मिलके मतलब एक सर्वाइवल है ये एक तरह तब आप नहीं कर सकते किससे कितना ही जिद बहस करोगे
0: सही
1: लेकिन कई जगह है ना ऐसा होता है ना जो कुछ चीजें थोपी जाती है ना जबरदस्ती मतलब जहाँ हमें इन्वॉल्व नहीं है जहाँ कुछ हमारा जगह ही नहीं है हमारे घर पे लाते जा रहे हैं जाति वाली जो बात है ना तो फिर
2: पर्सनल जैसे हम लोगों ने फर्स्ट आई थिंक शो किया था बाउंड्री के ऊपर फर्स्ट शो हमारे इसी हवाले से था तो ये तो ना एक बाउंड्री होनी चाहिए शहजादा सलीम
0: वो नेसेसरी है
2: हाँ कि जो आपकी जिंदगी के डिसीजंस है ना वो आपने खुद लेने हैं वो उनको अपने खुद फेस करना है कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है तो दोनों तरह से आप ही हो जो जिम्मेदारी उसकी कबूल करें
1: सही है लेकिन मेरा कैसा है ना जज्बाती और जो थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है उस टाइम पे तो उसमें कोई शक नहीं तो वो सारे ना टोटल लॉस में ना तब्दील होते हैं
0: नहीं भाई कुछ कुछ लोगों का ही होता है अल्लाह ताला उनके लिए फिर रास्ते निकाल भी देता है अगर आप ये बड़ी अलग सी एक डिबेट है इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे इंशाल्लाह ये बहुत बहुत संगीन मामला है
2: बहुत ही संगीन मामला
0: ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला जो ये कह रहे हैं ना तो वो चीज मोस्टली लोगों से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती
2: है वो बिल्कुल
0: करनी भी नहीं चाहिए
2: अच्छा पता है क्या वो करनी भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मतलब मैंने ये चीज देखी है कि

0: आप मैं क्या बोलूं, मतलब वो फिर बहुत ही डीप चली जाएगी, बहुत डीप चली जाएगी, तो फिर इसके ऊपर कभी बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। शहजादा सलीम टॉपिक ही ऐसा रखेंगे कुछ
1: दफा में। मैं तो इसका एक ही लास्ट सोल्यूशन यही है कि मूड अगर फ्रेश करना हो ना, एक गर्मा गर्म
2: गोभी के पकोड़े बना के खा लें।
0: गोभी के पकोड़े, वैसे गोभी के पकोड़े होते बहुत अच्छे, बहुत ही मजे के होते हैं।
2: मैं भी आ जाओ आज शाम को गोभी के पकोड़े बना के खिलाती हूँ।
0: चले ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर टाइम हुआ तो मैं जरूर आऊंगी। चले दी भाई, अल्लाह
2: हाफिज़।
0: मुझे बुलाए नहीं, वो कह रहे मैं कट जाता हूँ वहाँ से। अभी बोल रहे थे ना थोड़े देर पहले कि जहाँ पे मुझे मुंह ना लगाया जाए मैं कट जाता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं सैयद भाई?
3: सईद भाई नहीं, मैं मुर्तजा खान बोल रहा हूँ।
0: अरे मुर्तजा खान, क्या बात है भाई, आप दोनों की आवाज़ भाई कहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई तो नहीं है आप लोग? इतनी मिलती आवाज़
3: जी। माई मैम, आप और सफा मोहन का सुना, मेरे को टॉपिक पता नहीं है, मैंने कॉल लगा दिया।
0: नहीं अच्छा किया आपने, आपसे बात हो गई, ये अच्छा लग रहा है। टॉपिक हम आपको बता देते, बड़ा ईजी सा है, लेकिन पहले ये बताएं कि कैसे हैं, खैर खैरियत है, कहाँ रहे, कैसे रहे?
3: अल्लाह का शुक्र जी, एहसान अल्हम्दुलिल्लाह।
2: हवाओं में है अभी भी मुर्तजा भाई, आप हवाओं में हैं अभी भी?
3: जी।
2: हाँ जी जी, क्या भी नहीं, क्योंकि हमें आपके फोन से ना हवा की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं या तो फिर गाड़ी में कहीं एसी के पास हैं या बाहर कहीं हवा चल रही है।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी में अभी पार्किंग में हूं। हां
2: ओके, अब आवाज सही,
0: अभी ठीक है, अभी ठीक है।
3: जी।
0: तो आज हमने सवाल ये किया मुर्तजा कि आपने जिंदगी में कुछ छोटा सा ऐसा फैसला किया हो जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो, ऐसा कभी हुआ है या आपको लगता है छोटे से फैसले कभी कभी जिंदगी बदल देते हैं?
3: जी बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: तो बताइए
2: वो कौन सा वाला फैसला था जिसको सोच कर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा किया या ये गलत किया?
3: बताओ, बताना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन ऑलरेडी मैं स्मोक सिगरेट पी रहा था, मैंने छोड़ के 10 साल हो गए मेरे को।
2: माशाल्लाह, दिस इज गुड थिंग, ये शेयर करने वाली बात है कि हाँ भाई एक चीज की आपको एडिक्शन थी एंड यू लेफ्ट इट।
3: हालांकि 15 साल मैंने किया सिगरेट, लेकिन छोड़ कर 10 साल हुआ मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: पॉजिटिव पॉजिटिव,
0: वेरी नाइस,
2: वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
3: लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, छोड़ने के लिए पर आए तो कोई कुछ भी है ना, अपने आप को बदल सकते हैं।
2: और मजे की बात ये है कि ये सारा विल पावर का गेम होता है, माइंड का गेम होता है ये सारा।
3: जी, अपनी सोच पर डिपेंड है ये, लोग सोचते हैं नहीं हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे तो
0: बिल्कुल हर चीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये फिर भी मतलब एक बड़ी बात यूं है क्योंकि लोग ऐसा सोचते ही नहीं है, तो आपने सोचा और आप कर गुजरे, इसलिए बहुत बड़ी बात है।
3: वो भी एक अल्लाह का करम है, वो भी छोड़ने की एक वजह क्या है बोले तो, मैं उमरा जा रहा था 2017 में, उस टाइम 16 से ही मैंने छोड़ दिया, जाने से पहले ही है ना, मैंने इरादा किया था, इससे पहले गया था लेकिन इरादा किया लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन दूसरे बार जाने से पहले मैंने पक्का इरादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब दी।
0: वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। और मतलब वाकई ये भी एक तरह की ऐसी चीज है जिसमें आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं बिला वजह के,
2: आपकी सेहत वेस्ट हो रही है,
0: सेहत खराब हो रही है, और सेहत अल्लाह ताला की अमानत है तो आपको नहीं करनी चाहिए खराब। बिल्कुल
2: चलन जी, वेरी गुड, माइलस्टोन कवर्ड, तो मतलब एक छोटे से डिसीजन ने वाकई में लाइफ चेंज कर दी, बेस्ट एग्जांपल।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी टॉपिक थी और इस बात शेयर करने का मौका भी मिला मेरे को, मेरे को पता ही नहीं था क्या टॉपिक पे बात करूं। मैं सलीम भाई की आवाज सुना, आप दोनों की आवाज सुना, तो मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट किया, निकल रहा था तो
0: नहीं, बहुत अच्छा लगा मुर्तजा खान, एक अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, मतलब मेरा ख्याल है कुछ महीने हुए हैं, जब लास्ट टाइम बात हुई थी वो तो बहुत ही अरसे के बाद बात हुई थी, लेकिन अभी भी महीनों बाद तो बात हो रही है।
3: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे महीनों बाद, कल भी मैंने ऐसे ही टॉपिक सुन रहा था, नाजिया जी और सरवर साहब कर रहे थे प्रोग्राम, तो मैं इसमें भी पार्टिसिपेट किया कल।
0: चले आप हमारे शो में भी करते रहिएगा।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम तो उनकी फैमिली चैनल है, हमारा साथ में इसका बहुत बॉन्डिंग रही है के साथ।
0: बिल्कुल
3: माशाल्लाह, हमारा तारीख तकरीबन 2012 से हम इधर है, जब से ही हमारा जुड़ा हुआ है, और 2014 में हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारी फैमिली जितना टीम थी, हमारी दोस्तों की भी माशाल्लाह, कहाँ है किधर है।
0: बिल्कुल नहीं, अच्छा आपको सुना बहुत अच्छा लगा बहुत अरसे के बाद, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ना मुझे शुरू शुरू की याद आ जाती है, आप लोगों में से किसी की भी आवाज सुन लूं तो वो बिल्कुल शुरू का वक्त याद आ जाता है।
3: गुड मॉर्निंग, हर दिन नया दिन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी मुर्तजा खान, अब कॉल जरूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है?
3: बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, आप सभी आरजेएस को सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, जो जमाल जमाल जिन्होंने गाने का बोला था, मैं चलाऊं क्या?
2: चला दी।

0: Welcome. एक दफा फिर से आप लोगों के साथ यू मैटर्स और हमारे पास वक्त बहुत ही कम है तो जल्दी से मैसेजेस पहले पढ़ लेते हैं फिर कॉल का अगर मौका मिलता है तो एक कॉल हम मेरा खाली ले सकते हैं. मोहम्मद यूसुफानी कहते हैं किसने कह दिया भाई आज ट्यूजडे है और ये जनाब एक दिन आगे चल रहे क्योंकि लास्ट टाइम मोहम्मद यूसुफ आपको पता नहीं है सफा का ट्यूजडे निकल गया था तो इसलिए
1: मैं वेनेसडे को कह रही थी ट्यूजडे और सब मेरी शक्ल देख रहे थे तो कह रहे वेनेसडे है आज. मैंने कहा नहीं तो फिर ट्यूजडे कहाँ गया, ट्यूजडे कल था. मैंने तो कल तो मंडे था.
0: मुबीन बुखारी कहते हैं मामिश मैम सफा जी गुड मॉर्निंग आपको तमाम लिसनर्स को एमबीबी की तरफ से और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम मैम आज भी जैकेट पहनी है क्या? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल पहनी है इन्होंने ये जैकेट पहनी है. और ये पता है क्या हरकत करती है, ये करती हैं कि स्टूडियो में दाखिल होते ही एसी पहले ऑफ करती हैं उसके बाद फिर ये जैकेट चढ़ा के बैठ जाती
1: है. अरे मजे की बात है आपके साथ तो एसी ऑफ करने का मौका मिलता है, सरवर भाई के साथ तो वो भी नहीं मिलता था. हाँ. सरवर भाई रखते थे 12 पे 11 पे टेम्परेचर. हाँ. और एसी ऑन और जैकेट भी मैंने पहनी हुई और फिर भी मेरे दांत कांप रहे होते थे.
0: दांत कांप रहे
1: होते
0: थे. ठीक है ठीक है ठीक है. की किस्मत अच्छी है इंशाल्लाह माशाल्लाह. हम जो चीज मांगते हैं उसका उल्टा ही होता है.
1: नहीं नहीं नहीं ये ना बोला करे. देखिए अल्लाह ताला कहता है जो जो मुझसे मुतमइन रहेगा मैं उसका दिल खोल दूंगा और जो मुझसे शिकायत करेगा मैं उसके दिल को और तंग कर दूंगा.
0: अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम. मैं आपका शो बहरेन से सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू.
1: थैंक यू.
0: इन्होंने खुद ही कह दिया था भी कह देते हैं थैंक यू. अंसारी जुल्फिकार और इसके साथ जी रियाज हैं. रियाज कहते हैं कतर में पहली जॉब की सैलरी बहुत कम थी और मैंने कुछ टाइम के बाद दोस्तों की बातों में आकर सैलरी तो कम है ये नहीं बढ़ेगी ऐसा है वैसा है तो मैंने वो जॉब छोड़ दी.
1: अरे
0: लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत डिसीशन लिया था. खुद पर यकीन रख के लोगों की वजह से कुछ डिसीशन ना लें भाई.
1: अच्छा ये बड़ा ये बहुत बेसिक फैक्ट है. कुछ ऑफिस में ना आपको 36 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलते रहेंगे नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ मैं तो छोड़ रहा हूँ मैं तो अभी क्विट करता हूँ और उनको सदियां गुजर जाएंगी उसी सीट पर लेकिन आप छोड़ चुके होंगे उनकी बातों से
0: उनकी बातों में आगे. बिल्कुल ऐसे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.
1: जी कौन है हमारे साथ?
2: मैं भी सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम कहता हूँ. सफा बहन आपको भी वेलकम कहता हूँ.
0: जी जावेद साहब है ना.
1: अरे जावेद भाई हैं.
0: क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्लाह का बड़ा एहसान है. अच्छा पहले तो आप दोनों सुनाइए आप कैसी हैं.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र. मैंने पहले दिन आके ना आपका पूछा था कि आप कहाँ गायब हैं तो पता चला था कि आप कहीं गायब हैं वाकई कहीं गए
1: हुए थे.
2: डेफिनेटली मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था तो उसके बाद आके सफा बहन को बताया था कि मैं वेरी नेक्स्ट डे फिर ट्रेवल कर रहा था 3 दिन के लिए.
0: घूमते फिरते
2: नहीं भाई बस ऐसे ही है अल्लाह के मखलूक और
0: माशाल्लाह.
2: अच्छा हुआ ये कि मतलब आज लकीली इस वक्त मैंने रेडियो ऑन किया तो मैंने जब देखा कि माशाल्लाह महविश और सफा दोनों ओ माय सोने पे सुहागा. वाह वाह वाह
0: जी अच्छा किया भाई आपने कि आपने रेडियो ऑन किया. आपकी आवाज सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा.
2: चले खुश रहिए हमेशा खुश रहिए और माशाल्लाह हमेशा के टॉपिक्स को बहुत मिस कर रहे थे. फिर नाजिया बहन थी और सब माशाल्लाह एक से एक FM 107 पे एक से एक हीरा जड़ा हुआ है. किसको क्या बोले हम समझ नहीं आती.
1: ताजमहल बनवाएंगे ताजमहल. हमारे पास ना टाइम बहुत कम रह गया लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि सबसे मैं कर रही हूँ मतलब माविश और मैं हम सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जरा ये बताएं कि आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि इंसान के छोटे छोटे डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं लाइफ में. कोई ऐसा डिसीजन आपका जो आप कहते हो कि भाई ये डिसीजन मैंने हाँ में लिया था तो इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन दैट आई टुक. या कोई ऐसा डिसीजन जिसको आप कहते हैं कि काश मैं इसको ना कर देता तो ज्यादा बेहतर होता.
2: अच्छा डिसीजन मेरी जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म या सोच है मैं ये कहूँगा कि जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो बड़े बड़े फैसले नहीं होते. यानी कि ये रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है ना रोजमर्रा की गुजारते हैं आप इसमें से नताइज को अक्स करते हैं फिर आप फैसला लेते हैं.
0: ठीक है
2: हाँ. और मेरे पास मतलब कि 2009 में मैंने एक रियलिटी ऑफ वर्ल्ड फेस देखा. मैंने दुनिया की हकीकत देखी.
0: सही
2: यहाँ पर ही मतलब जहाँ पर वो जिस तरह मतलब मेरी वालदा को कैंसर हुआ और जो हल्का मेरा बहुत बड़ा था
0: सही
2: लेकिन उसके बाद मुझे वो दिखे नहीं जो हौसला देने वाले लोग थे या कुछ भी था. उसके बाद मैंने अपना हल्का वो छोटा कर लिया और फैसला किया कि नहीं मेरी अपनी एक दुनिया होगी और उसी को मैं गुजार रहा था. और उसी दुनिया में मैं बहुत खुश और बड़े सुकून के साथ वक्त गुजार रहा था. लेकिन जहां पर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि FM 107 के जरिए महविश ने मुझे चार नंबर लोगों को भेजे
1: सही
2: और लोगों से हम जुड़े आप लोगों के तवस्सु से जुड़े
0: माशाल्लाह
2: दोबारा फिर मैं सर्कल में आया और ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है
0: चले जबरदस्त जावेद साहब मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पता थी आपकी लेकिन ये अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये होता है हमारे ना सबके किसी न किसी जगह पे जिंदगी के फेज में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हां बिल्कुल कट जाते हैं लोगों से लोगों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है लेकिन अच्छी बात है आपका बहाल हुआ
2: वो तब देखिए पता है जब आपकी फितरत के अंदर शामिल है कि मैं यार हर बंदे मैं कोशिश ये करूं कि हर बंदे की मैं मदद कर पाऊं दिल आजारी ना हो अखलाक पेश करूं आप जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो वो उम्मीद आपको तकलीफ देती है
0: बिल्कुल ऐसे
1: आप उम्मीद ना रखें और फिर भी करें तो वो अल्लाह ताला जो ना कहीं
0: लेकिन फिर भी तकलीफ आपको ना मतलब हम ये कहते
1: इंसान है ना
0: लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है आपको ना आपका दिल दुख जाता है ये तो है
2: और आपको पता है हम वैसे भी थोड़ा छोटा सा आर्टिस्ट हूँ
0: आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं भाई बहुत सेंसिटिव होते हैं
1: इमोशनल
0: बिल्कुल
2: जावेद
0: साहब बहुत अच्छा लगा एक दफा फिर से आपको सुन के बहुत अच्छा लगा आप जरूर जब भी मौका मिले जरूर कॉल कीजिएगा ठीक है
2: टाइमिंग क्या है आपके शोज की टाइमिंग क्या
0: बस 10 से 11
1: बस 10 से 11
2: वेरी गुड बस 10 से 11 मैंने कहा पता नहीं बस 15-16 घंटे
0: नहीं बस 10 से 11 चलिए बहुत शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू ख्याल रखिएगा आप भी अच्छा जी सफा तो इसके साथ ही हमारे जाने का भी वक्त हो गया है
1: तो भाई हाँ जी हम चलते हैं और बस जाते जाते यही कहेंगे कि देखें लाइफ में बड़ी चीजों का वेट ना किया करें हमारे छोटे छोटे से जावेद भाई ने कहा मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे छोटे छोटे डिसीजंस ही हमें बड़े डिसीजंस पे लीड करते हैं
0: एग्जैक्टली
1: तो इट्स ऑल अबाउट द जर्नी टेक केयर ऑफ
0: लें और अपनी जिंदगी का फैसला जो है ना वो खुद लें चाहे वो छोटा हो बड़ा हो लेकिन वो आपका अपना होना चाहिए तो हमेशा ये कोशिश करें कि लिया करें फैसला क्योंकि बहुत सारे लोग ना फैसला नहीं ले रहे होते
1: लोगों से ये नहीं हो रहा होता कि हम खाने में क्या खाएंगे उसके बाद भी दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो बना दो
0: देख लो बना लो बिल्कुल जी चले नहीं तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हवले तीन है कुरान की। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश

0: करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम प्रोग्राम की मोती में आप सबका खैर मकदम है। इम्तिला अशरफ जमान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। इब्तदाई में बता दूँ सामने किराम, आज की गुफ्तगु इंसान के दिमाग, खुशी, लज्जत, ताल्लुक, कामयाबी और जदीद डिजिटल जिंदगी के दरमियान एक बहुत दिलचस्प ताल्लुक के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चार अहम हार्मोन्स हैं जिनमें डोपामीन, ऑक्सीटोकिन, इंडोरफिन और सेरोटोनिन की बात आ जाती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये खुशगवार कैफियत हैं। आज के डिजिटल दौर में क्या हम इन कैफियत को कुदरती जिंदगी के जरिए हासिल कर रहे हैं या ऐसी फौरी और मस्नूई स्टिमुलेशन के जरिए जो हर वक्त ऑन डिमांड दस्तियाब है। तो बात सिर्फ इसमें नहीं कि खुशी कहाँ से आए, सवाल ये है कि अगर दिमाग को बार बार ऐसी फौरी लज्जत मिलती है जिसके लिए न मेहनत दरकार हो, न ताल्लुक, न अचीवमेंट, न इंतजार, तो फिर इंसान की फितरी ख्वाहिश, तहम्मुल और रिवार्ड सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ता है, यही आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। मजीद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस नफसियाती कैफियत के हवाले से कुरान हमें क्या रहनुमाई करता है। सामने किराम, फर्ज कीजिए आप किसी दोस्त के साथ बैठे, खूब गुफ्तगू हुई, किसी बात पर दिल खोल कर हंसे, ये कुदरती इंसानी तजुर्बा है। लेकिन अब दूसरी सूरत देखिए, आप मोबाइल खोलते हैं, एक फनी वीडियो आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आप मुसलसल आधे घंटे तक हंस रहे हैं। बज़ाहिर नतीजा एक है कि आप खुश हुए, लेकिन दोनों तरीके एक जैसे नहीं। पहली खुशी के पीछे एक हकीकी इंसानी ताल्लुक, एक मौका, एक माहौल और एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था। दूसरी खुशी एक बटन के फासले पर थी, आपको किसी से मिलना नहीं पड़ा, आपको किसी ताल्लुक की जिम्मेदारी निभानी नहीं पड़ी, कोई वक्त तय नहीं करना पड़ा, बस स्क्रॉल किया और स्टिमुलेशन मिल गई। यही ऑन डिमांड प्लीजर जदीद जिंदगी का बड़ा मसला बन सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन सेहत नफसियात वो सबसे पहले एंडोर्फिन का जिक्र करते हैं। इस हार्मोन को यहाँ एक ऐसी कैफियत से जोड़ा जाता है जो इंसान को दर्द के एहसास को कम करने, खुशी और एक तरह के नेचुरल हाई में मदद देती है। मसलन वर्जिश, हंसना, जिस्मानी मशक्क़त या बाज़ कुदरती सरगर्मियाँ इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर सकती हैं जिसमें उसे तवानाई, हल्की सरशारी और पेन रिलीफ महसूस होती है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब यही एहसास इंसान आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से बार बार हासिल करने लगे, मसलन हर चंद मिनट बाद फनी क्लिप, हर बोर मोमेंट में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हर थकन के बाद रील, हर खामोशी के बाद इंटरटेनमेंट। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये सीख सकता है कि मुझे अच्छा महसूस करने के लिए कोशिश की जरूरत नहीं, मेरे पास फौरी बटन मौजूद है, और यही बात आगे एक बड़ी आदत बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि एक बंदा एक जमाने में सिर्फ दफ्तर में कॉफी पीता था, फिर उसने महसूस किया कि वीकेंड पर जब कॉफी नहीं पीता तो शायद सर दर्द होने लगता है। कुछ अरसा कॉफी छोड़ने के बाद हेडेक खत्म हो गया। अब उसे महसूस होने लगा कि जिस्म ने कैफीन के एक मखसूस लेवल को मामूल समझना शुरू कर दिया था, जिस चीज से पहले थोड़ी स्टिमुलेशन काफी थी, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उसका आदि हो गया। और जब वो स्टिमुलेशन बंद हुई तो अलग किस्म के सिम्टम्स सामने आने लगे। तो ये मिसाल हमें एक बुनियादी उसूल बताती है कि जिस्म और दिमाग आपस में एक दूसरे से मुतासर होते हैं। जो चीज कभी खास थी मुसलसल मिलने के बाद मामूल बन जाती है, और फिर उसी एहसास के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन दरकार हो सकती है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोकिन, जिसे मोहब्बत और ताल्लुक का हार्मोन कहा गया है। इसे इंसानी कुर्बत, गले लगाने, मोहब्बत, तवज्जो और मीनिंगफुल रिलेशनशिप के साथ जोड़ा गया है। अब जरा गौर कीजिए, कुदरती तौर पर यह एहसास किन चीजों से पैदा होता है। माँ बच्चे को गले लगाती है, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दो दोस्त एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो यहाँ ताल्लुक के लिए एफर्ट है, वक्त है, कुर्बानी है।

0: इसे इस हार्मोन को सोर्स मूड या इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, जैसे किसी पुरसकून जगह बैठना, इबादत, रूहानी सुकून, समंदर की आवाज़, खामोशी, कुदरती मनाजिर। यहाँ एक मुख्तलिफ क्वालिटी की खुशी सामने आती है। ये नोटिफिकेशन जैसी नहीं, ये फौरी एक्साइटमेंट नहीं, ये सेटल्ड कम है। अब इसका सब्स्टिट्यूट इस दौर में क्या है? आप समंदर पर जाने के बजाय सोशल मीडिया पर ही ओशन साउंड्स सुन रहे हैं, जंगल में जाने के बजाय नेचर एप्लीकेशन खोल ली। कभी ये टूल्स मुफीद भी हो सकते हैं, मसलन रिलैक्सेशन, स्लीप या ऐसे हालात में जहां बाहर जाना मुमकिन ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रिप्लेसमेंट को रियलिटी समझने लगे हैं? आपको महसूस होता है कि आप मोमेंट में हैं, मगर जिस्म कुर्सी पर है, हाथ में फोन है और आप फिर भी स्क्रीन के अंदर हैं। तो यहां सिर्फ बात पिक्चर का नहीं, यहाँ रोशनी है, हवा है, टेम्परेचर है, मूवमेंट है, स्पेस है, बॉडी एंगेजमेंट है। स्क्रीन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देती है। अब इस गुफ्तगू को समेटते हुए या इस गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? क्या हम कहेंगे कि भाई फोन फेंक दो? तो ये तो दुरुस्त नहीं। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, सोशल मीडिया से इल्म भी मिलता है, रिश्ते भी कायम रहते हैं, कारोबार भी होता है। असल मसला तो अनकॉन्शियस कंजप्शन में है, यानी आपको मालूम ही ना हो कि मैं क्यों खोल रहा हूँ, कितनी देर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या हासिल कर रहा हूँ और उसके बाद कैसा महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह एक दूसरा संजीदा पहलू हसास मवाद है। आज बहुत से नौजवान ऐसी चीज़ों से बहुत कम उम्र में मुतारिफ हो रहे हैं, जबकि उन्हें ये समझ ही नहीं कि उनके दिमाग, ताल्लुकात और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर उसका क्या असर पड़ सकता है। अब जो शख्स ये जानता है कि कोई आदत उसके दिमाग पर असर डाल रही है, वो कम से कम उस पर गुफ्तगू तो कर सकता है, मदद ले सकता है, बाउंड्रीज कायम कर सकता है। लेकिन जो नौजवान ये समझता ही नहीं कि वो जिस चीज को नॉर्मल एंटरटेनमेंट या प्राइवेट हैबिट समझ रहा है, वो उसके एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड सिस्टम और ताल्लुकात के तसव्वुर पर असर डाल रही है, उसके लिए मसला ज्यादा पेचीदा हो सकता है। 40-50 साल पहले ऐसी अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी मौजूद नहीं थी। आज एक स्मार्टफोन इंसान को एक ऐसे कंटेंट इकोसिस्टम तक पहुंचा देता है जो हफ्ते में 24 घंटे ऑन डिमांड दस्तियाब है, और यही ऑन डिमांड होना इस पूरे मसले का मरकजी हिस्सा है। एक बहुत नाजुक मसला यह है कि कम उम्र नौजवान जब हकीकी इज्दवाजी ताल्लुक से पहले इज्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कॉन्टेंट देखने लगते हैं, तो उनके पास हकीकत का कोई प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। वो जो देखते हैं उसी को रियलिटी समझने लगते हैं, हालांकि दरअसल ये सिर्फ एक कंटेंट देखना नहीं, ये एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन है। हकीकी ताल्लुक की बात करें तो उसमें एतमाद की बात है, गुफ्तगू है, तारीख है, जज्बाती एक तहकुम है, कभी इख्तिलाफ, कभी पार्टनर थका हुआ होता है, कभी मूड मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब कोई इज्दवाजी हकीकी इज्दवाजी ताल्लुक के बगैर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर देख रहा है, एडिटेड कमर्शियल कोई रील्स देख रहा है, तो नौजवान का दिमाग उसी तस्वीर को नॉर्मल समझने लगता है, और इस तरह बाद में उसे हकीकी जिंदगी पेचीदा, डिसअपॉइंटिंग या स्लो लग सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हकीकी ताल्लुक इसी नहीं होता, इसमें आपको दूसरे इंसान को समझना पड़ता है, कभी आपकी ख्वाहिश और उसकी ख्वाहिश मुख्तलिफ होगी, कभी आपको इंतजार करना होगा, कभी अपॉलोजी देनी होगी, कभी अपनी ईगो कम करनी होगी, कभी पार्टनर की इमोशनल स्टेट को समझना होगा, यही इंसानियत है। लेकिन अगर दिमाग ऐसे रिवर्ट का आदि हो जाए जो मता मा उरीद, यानी जब चाहा फौरन मिल जाए, तो हकीकी इंसान से वही रिस्पॉन्सिवनेस मांगने लगता है जो मशीन या कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म देता है, हालांकि इंसान मशीन नहीं है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए Pearls of the Quran, sirf FM 107 par.
0: इस तरह सामिन इकराम, नई नस्ल के मसाइल को सिर्फ ये हराम है कहकर ख़त्म कर देना तरबियती तौर पर काफ़ी नहीं। नौजवान को ये भी समझाना होगा कि ये कंटेंट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कैसे शेप करता है। इसी तरह उन्हें हमें ये बताना है कि ऑन डिमांड स्टिमुलेशन रियल रिलेशनशिप से कैसे मुख्तलिफ है, यानी अखलाकी तालीम के साथ साइकोलॉजिकल लिटरेसी।

ये भी जरूरी है। सामने के नाम अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। वो हंटर गैदर लाइफ स्टाइल में रहता था, खाना हर वक्त अवेलेबल नहीं था, उसे खुराक के लिए चलना पड़ता था, तलाश करना पड़ता था, कभी शिकार करना पड़ता था, कभी पौधे और जड़ी बूटियां जमा करनी पड़ती थी। रोजाना बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट मामूल का हिस्सा थी, हत्ता के तकरीबन 20,000 कदम रोजाना चलना ये जिंदगी का हिस्सा था। आज हम 10,000 कदम पूरे करें तो स्मार्ट वॉच मुबारकबाद देती है, हालांकि पहले तो 20,000 कदम जिंदा रहने की शर्त थी। फर्क देखिए, उस वक्त मूवमेंट ही ऑप्शनल नहीं थी, आज मूवमेंट एक शेड्यूल एक्टिविटी बन गई है। पुराने इंसान के लिए खाना बुनियादी तौर पर सर्वाइवल था, खाना हर वक्त दस्तियाब नहीं था, ना मिड नाइट डिलीवरी, ना फ्रिज में 10 किस्म के स्नैक्स, ना हर घंटे कुछ ना कुछ खाने की आदत। इंसान का जिस्म कंटिन्यूस ईटिंग के लिए नहीं बना था, क्योंकि खुराक तारीखी तौर पर मुसलसल दस्तियाब ही नहीं होती थी। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी एक दिन कम खाया, कभी दो दिन, कभी मौसम के मुताबिक चीजें दस्तियाब थी। तो पुराने इंसान के माहौल में नेचुरल लिमिट्स थी। खाना खत्म, रात हो गई, मौसम बदल गया, या फ्रूट सीजन खत्म। और आज अगर आप कंपेयर करके देखें तो अनलिमिटेड एक्सेस हमारे बायोलॉजी के लिए एबनॉर्मल प्रेशर बन रहे हैं। वैसे आज की इस पूरी गुफ्तगू को अगर एक सवाल में समेटना हो तो शायद वो यही होगा कि क्या हम फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं या फोन हमें एज ए कॉमर्शियल, वो खुद हमें इस्तेमाल कर रहा है। सामने कराम प्रोग्राम के इस मरहले में हम आपके सामने पेश करेंगे तीन मुख्तलिफ तजुर्बात, तीन अलग अलग लोग, तीन अलग अलग स्टोरीज, लेकिन तीनों का मरकजी पैगाम एक है कि जब इंसान मुसलसल डिजिटल स्टिमुलेशन से कुछ फासले पर जाता है तो उसे अपने वक्त, जहन और जिंदगी की वो चीज़ें दोबारा दिखाई देने लगती हैं जो शोर में गुम हो गई थी। पहला शख्स बताता है कि जब उसने कई हफ्तों और बाज़ औक़ात महीनों तक सोशल मीडिया से फासला इख्तियार किया तो वो उसकी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव अतवार में से थे। अंदर एक अजीब सा सुकून आया, जहन रिलैक्स हुआ, हर लम्हे किसी नई स्टिमुलेशन की तलब कम हुई। वो शख्स कहता है कि मैंने कुछ हैबिट्स फौरन छोड़ दी, कुछ छोड़ने में साल लगे और कुछ ऐसी हैं जिनके खिलाफ आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो शख्स एक नहायत मुअसर ताबीर इस्तेमाल करता है कि मैं खुद को कैदी महसूस करता था। यही एडिक्शन लाइक हैबिट की असल ट्रेजेडी है। इंसान जानता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं, फिर भी करता है। वो छोड़ना चाहता है, फिर वापस जाता है। वो खुद अपनी ख्वाहिश के सामने कमजोर महसूस करता है। अब दूसरे बंदे का तजुर्बा भी सुन लीजिए। उसने तकरीबन 6 माह के लिए स्मार्टफोन छोड़कर एक सादा डंप फोन इस्तेमाल किया, न इंटरनेट न कोई मैसेज। तो इब्तिदा में लोगों को अजीब लगा, तुम कहाँ हो, अरे मैसेज देखा नहीं। मगर कुछ अरसे बाद एक हैरत अंगेज बात सामने आई कि जिन मैसेज को वो पहले अर्जेंट समझता था उनमें से ज्यादातर वाकई अर्जेंट नहीं थे। अगर कुछ वाकई अहम होता लोग कॉल कर लेते। तो यहाँ इंसान को एक बहुत बड़ा इल्यूशन टूटता हुआ दिखाई देता है कि हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती। वो बताता है कि गाड़ी में बैठा तो साथ वाले इंसान से बात करने लगा, सड़क पर चलते हुए फोन की जरूरत नहीं पड़ी, मस्जिद में दाखिल हुआ तो दिली तस्कीन, गर्दन हमेशा स्क्रीन की तरफ झुकी हुई नहीं थी, रास्ता दोबारा याद होने लगे, महफिल में बैठा तो वाकई मजलिस में बैठा। यानी यहाँ एक खूबसूरत बात आ गई कि फिजिकल प्रेजेंस यानी इमोशनल प्रेजेंस में वापस बदल गई। हालांकि आज की हकीकत यह है कि हम अक्सर घर में होते हैं मगर घर वालों के साथ नहीं होते, मस्जिद में होते हैं मगर जहन नोटिफिकेशन में। यही मॉडर्न एब्सेंस है, जिसमें मौजूद जहन गायब है। वो कहता है कि जब मुझे पहले से दोस्त की हर स्टोरी, हर ट्रिप, हर अपडेट मालूम ना होती तो मुलाकात में बात करने को कुछ होता था, क्या हुआ, कहाँ गए थे, कैसे रही, अब गुफ्तगू फ्रेश थी। आज हम अक्सर किसी दोस्त से मिलते हैं और कहते हैं हाँ सब देखा सोशल मीडिया पर, तो फिर मुलाकात में डिस्कवरी कहाँ रही। सोशल मीडिया ने हमें इंफॉर्मेशन बहुत दी मगर कभी कॉन्वर्सेशन का हुसन कम कर दिया है। फिर मस्जिद और फोन के ताल्लुक से वो बताता है कि हम में से कितने लोग मस्जिद के दरवाजे तक मैसेज करते हुए आते हैं, नमाज खत्म होते ही फौरन फोन खोलते हैं,
یعنی زبان نے السلام علیکم کہا مگر ذہن ابھی نماز سے باہر آنے سے پہلے نوٹیفیکیشن میں داخل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی یا صرف موشنز مکمل کیے؟ اگر دن میں صرف 5 مرتبہ بھی ہم فون سے مکمل فاصلہ رکھ لیں تو شاید یہ خود ایک بڑی اسپریچول ریسٹ بن سکتی ہے۔ ہم دل میں کہہ لیتے ہیں کہ بس تھوڑا وقت ضائع ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وقت کوئی الگ چیز نہیں، آپ کی عمر ہی وقت ہے۔ ایک قطرہ چھوٹا ہے مگر قطرے جمع ہو تو سمندر بنتا ہے، ایک سیکنڈ معمولی ہے مگر یہی سیکنڈز جمع ہو کر زندگی بنتے ہیں۔ اسی لیے وقت کی قدر دراصل لائف اویئرنیس ہے۔ آپ کے پاس مال کم ہو تو دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن آج کے 3 گھنٹے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ وقت بھی استعمال کرتے ہیں جسے باقی لوگ ڈیڈ ٹائم سمجھتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان، انتظار کے وقت، ٹریفک میں، ورک کے دوران، ریسٹورنٹ میں ویٹ کرتے ہوئے، سفر

होने के बहाने रोजाना 3-4 घंटे सिर्फ एक एक रील्स बनाने में गुजार देता था। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह वक्त का एहसास खत्म। बिलाखिर उसने फैसला किया बस, और एक साल बाद वो ये कहता है कि उसके बेहतरीन फैसलों में से एक था। उसने एक साल में कुरान के 4 अज्जा हिफ्ज किए, शरी उलूम के बाकायदा कोर्सेस में दाखिला लिया, कई एकेडमिक मॉड्यूल्स मुकम्मल किए, एक मुनज्जम इल्मी प्रोग्राम जारी रखा, तकरीबन 25 ऑडियो बुक्स सुने, कई मुतून और इल्मी मवाद से इस्तेफादा किया, सीरत नबवी से मुतालिक तकरीबन 100 रिकॉर्डेड लेसन्स मुकम्मल किए। और इस सब को वो अपनी परफेक्शन का सबूत नहीं बनाता, बल्कि साफ कहता है कि ये फख्र के लिए नहीं, मोटिवेशन के लिए है। वो ये भी कह रहा था कि शायद हम सोशल मीडिया कहने के बजाय हम इसे सोशल डिस्ट्रैक्शन कहें, क्योंकि क्या वाकई ये हमें कनेक्ट कर रहा है या हमारी अटेंशन को तोड़ रहा है। यकीनन सोशल मीडिया के कई सारे फवायद हैं, लेकिन मसला प्लेटफॉर्म का वजूद नहीं, मसला ये है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको। सामने किराम, अब अगर हम कुरान की तरफ रुजू करें तो हमें हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसा मुकम्मल मिजाज मिलता है जो इंसान को तवाजुन, जब्त, वक्त की कदर, निगाह की हिफाजत, हकीकी ताल्लुक, जिक्र इलाही और मकसद हयात की तरफ वापस लाता है। वैसे कुरान करीम में आपको टेक्नोलॉजी का नाम तो नहीं मिलेगा, या कुरान करीम ने कहीं टेक्नोलॉजी का हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन कुरान करीम में वो उसूल दे देता है जिनसे हम हर दौर की टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल असर में फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम बेशक इंसान खसारे में है। यहाँ अल्लाह ने वक्त की कसम खाई, क्यों? क्योंकि इंसान की असल कैपिटल यही है, माल जाए हो तो दोबारा आ सकता है, सेहत कमजोर हो तो कभी बहाल हो सकती है, लेकिन गुजरा हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं आता। आज अगर कोई शख्स रोजाना 5, 6, 7 या 9 घंटे फोन पर गुजार रहा है तो कुरान की निगाह में सवाल ये स्क्रीन टाइम का नहीं, सवाल तो यह है कि आप अपनी उम्र कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम कहते हैं बस वक्त गुजर गया, हकीकत तो यह है कि वक्त नहीं गुजरा, जिंदगी गुजरी है। और इसीलिए सूरतुल असर के आखिर में अल्लाह ने खसारे से निकलने का रास्ता बताया है, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایمان, عمل صالح, حق اور صبر کی تلقین. تو پہلا قرآنی اصول ہے وقت زندگی ہے, وقت یوں ہی صرف گزرنے والا لمحہ نہیں, بلکہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا انسان خسارے میں جا رہا ہے. फिर दूसरा कुरानी उसूल है, इंसान बेमकसद पैदा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है? इसका मतलब ये है कि तुम अबस के लिए नहीं आए, तुम्हारी निगाह का मकसद है, कान का, अकल का, वक्त का, ताल्लुकात का, दिल का, सबका एक एक मकसद है। तो ये आयत दरअसल आज के डिजिटल एज में बहुत गहरी मालूम होती है, क्योंकि इंसान का एक बड़ा मसला यह है कि वो पर्पस से ज्यादा स्टिमुलेशन में जिंदा रहने लगा है। फिर तीसरा उसूल है निगाह की हिफाजत, इसकी तासीर जहनी हिफाजत पर भी पड़ती है। यानी आज की जो हमने गुफ्तगू की है इसमें विजुअल ओवर स्टिमुलेशन और तरह तरह के वहश मवाद वगैरह का जिक्र भी आया है। कुरान इस मसले का बुनियादी दरवाजा ही बंद कर देता है, इरशाद खुदाबंदी है, कुल लिलमुमिनीना يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور پھر خواتین کے لیے بھی یہی اصول بیان کیا ہے. تو سامعین کرام ذرا غور کیجئے, یہاں قرآن نے نگاہ کے حوالے سے کہا ہے کہ نگاہ کو ڈسپلین کرو, چونکہ نگاہ یہ دراصل امیجینیشن بناتی ہے. اس طرح امیجینیشن کے بعد कंपेरिजन, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर बिहेवियर का मरहला आ जाता है. और इस तरह ये गज़ बसर सिर्फ एक फ़िक़्ही हुक्म नहीं रहता, ये अटेंशन मैनेजमेंट भी बन जाता है. चौथा कुरानी उसूल है, हर ख्वाहिश खैर नहीं होती. यानी अल्लाह फरमाता है, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? तो ये दरअसल आयत

0: मॉडर्न हैबिट लूप्स को समझने के लिए नहायत अहम है। अगर यानी हर बर्डम के बाद जब फ़ोन खुला रहे और हर ख्वाहिश पर फौरी रिस्पांस मिले, हर डिज़ायर को इंस्टेंटली फीड किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तरबियत ये हो जाती है कि जो चाहता हूँ अभी चाहिए। तो कुरान ने इस टेम्परमेंट को तोड़ा है, वो सिखाता है कि हर ख्वाहिश फॉलो नहीं करनी चाहिए, हर फीलिंग ट्रूथ नहीं होती, इस तरह जो है ना हर डिज़ायर हक नहीं बनती, यही सेल्फ कंट्रोल है। प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफ़ जमान को दीजिए इजाज़त। मासलामा।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: गानों के पीछे की कहानी, latest trends और ढेर सारी मस्ती, आपका

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो दुआ को हकीर समझते हो हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं खता नहीं करते अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे सामीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज की दुआ इस सिलसिले में हम कुरान सुन्नत की वो चुनिंदा दुआएं पेश करते हैं जो अपने दिल और जान को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करती हैं आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की दुआ जो आजिजी अदब और बंदगी का आला तरीन नमूना है ये दुआ नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब अपने बेटे के बारे में सवाल करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह फरमाई थी नूह अलैहिस्सलाम फौरन अपनी खता पर झुक गए और कहा
2: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
1: رب إني أعوذ بك اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں أن أسألك ما ليس لي به علم कि मैं तुझसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं और जो तेरे हिकमत के खिलाफ हो वइल्ला तग़फिरली वतरहमनी और अगर तू मुझे माफ़ न करे और मुझ पर रहम न करे अकुम मिनल खासिरीन तो मैं नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाऊंगा ज़मीन ये दुआ जाहिर करती है कि इल्म इलाही के मुकाबले में बंदा हमेशा आजिज है और उसे अपनी राय या ख्वाहिश पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह की हिकमत पर एतमाद करना चाहिए आइए हम सब दिल की आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें
2: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए बहुत डिस्टर्ब करते हैं
5: अरे पर कुछ मिस हो गया तो इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए वरना बेचैनी रहेगी ना
4: उफ पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना
6: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
7: आप सुन रहे हैं FM 107
8: दिल से देसी
1: सामईन इकराम जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सुन्नत की एक खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ जिंदगी के बड़े फैसलों में हमारी रहनुमाई नहीं करती बल्कि हमारी रोजमर्रा की इंतहाई मामूली हरकत को भी अदब और खूबसूरती अता करती है। हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे गुफ्तगू करें, कैसे मजलिस में बैठें, हत्ता कि अगर हमें छींक आ जाए तो उस वक्त हमारा अंदाज क्या हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें इसके भी तालीम दी है। और शायद यही सुन्नत की जामियत है कि इंसान जिंदगी के किसी लम्हे में भी नबवी रहनुमाई से महरूम नहीं रहता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतसा वदअ यदहु औ थौबहु अला फीह وخفض او غض بها صوته। इसे रिवायत किया है अबू दाऊद, तिर्मिजी और अहमद ने। रिवायत किया है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपना हाथ या अपना कपड़ा मुंह पर रख लेते और उससे अपनी आवाज को हल्की या पस्त करते। तो सामिन किराम, इस मुख्तसर से हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छींकने के दो आदाब सिखाए। पहला अदब मुंह को ढांपना और दूसरा आवाज को पस्त रखना। बज़ाहिर दोनों बातें बहुत मामूली मालूम होती हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए दोनों का ताल्लुक किस से है। दूसरों को अजियत से बचाने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह को ढांपते ताकि मुंह या नाक

0: निकलने वाली कोई चीज पास बैठे हुए शख्स तक न पहुंचे। इसी तरह आवाज को पस्त रखते ताकि अचानक बुलंद आवाज से दूसरों को तकलीफ या नागवारी न हो। तो आज की सुन्नत का सबक ये है कि अपनी जरूरत पूरी करते हुए भी दूसरे की राहत का ख्याल रखिए। छींक एक फितरी अमल है, इंसान उसे हमेशा रोक नहीं सकता। लेकिन सुन्नत ये नहीं कहती कि छींक ही मत आए, बल्कि सुन्नत हमें ये बताती है कि एक ऐसा अमल जो आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन इसका अंदाज तो आपके इख्तियार में है। यही उसूल जिंदगी के कितने ही मामलात पर लागू होता है। हमें फोन पर बात करनी पड़ सकती है, लेकिन मजलिस में अपनी आवाज धीमी रख सकते हैं। हमें रास्ता इस्तेमाल करना है, लेकिन दूसरों के लिए रुकावट पैदा करने से बच सकते हैं। हमें अपनी जरूरत पूरी करनी है, लेकिन दूसरे इंसान के आराम को नजरअंदाज किए बगैर। सामिन इकराम, आज हम सेहत और सफाई के हवाले से भी जानते हैं कि छींक के साथ बारीक कतरात फिजा में फैलते हैं। इसीलिए उमूमी सेहत के आदाब में छींकते और खांसते वक्त मुंह और नाक को मुनासिब तरीके से नापने की ताकीद की जाती है। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस अमल की एक इजाफी खूबसूरती है, वो सफाई का अदब इख्तियार तो करता है, साथ ही ये भी याद रखता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छींकते वक्त अपने मुंह को ढांपते थे। यूं एक मामूली सा रोजमर्रा अमल भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तबाए सुन्नत का मौका बन जाता है। तो सामने क्राम प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज का खुलासा यही है कि दीनी मामलात में अपनी राय से पहले कुरान और सुन्नत की रहनुमाई तलाश करें। जिस मसले का इल्म न हो, अहले इल्म से पूछें। दलील सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इख्तिलाफ को अना और दुश्मनी का मसला न बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और बड़े जोर को शौक से स्कूल भी जा रहे हैं, मगर हमें देखना यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुश भी हों और हेल्दी भी रहें। तो उसके लिए सबसे अहम ये है कि अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको बूस्ट करना है। तो बिल्कुल उसमें ये देखना है कि उनकी जो खुराक है वो कैसी है। उसमें ये हमेशा देखिए, जो प्रोसेस्ड फूड हैं या बहुत ज़्यादा जिनमें शुगर है या हाई फ्रुक्टोज सिरप उसमें मौजूद है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो हैं, तो बच्चों को उससे दूर रखिए। अब उसमें होना क्या है कि आपको चाहिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन, स्पेशली बच्चों की ग्रोइंग एज होती है उनके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो कंसंट्रेट कर सकें। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, वो भी उनसे दूर रहें। प्रोबायोटिक्स वो उनकी जो गट हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और 80% जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है, स्पेशली जो हमारा फ्यूचर है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन डी का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अहम रोल अदा करती है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। और इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ हैं, लाइक फ्लू है या कोल्ड है, और इस तरह से कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं, उन्हें दूर रखने के लिए। अब विटामिंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चों को ये देने भी ज़रूरी हैं। एसेंशियल विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, उससे उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा जो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो विटामिंस आप दे रहे हैं उनमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, और वो जो डाइस हैं उनके भी बगैर हों। विटामिन सी बच्चों को आप कोशिश कीजिए कि ज़रूर आप दें, और इसमें यह है कि एंटीबायोटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं, और इस तरह से वो अपनी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से जो हैं वो अदा कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही अहम है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बाहर की हवा है वो उनमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें दूर रखती है। और इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चे जो हैं फ्रेश एयर में खेलें, और वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा अगर वो कर लें तो बहुत ही उनके लिए अहम होगा। फिर स्लीप यानी नींद उनकी बहुत अहम है, और 3 से 12 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट 8 से 10 घंटे जो हैं वो नींद लेनी ज़रूरी है। तो ये छोटे से मैयर हैं बेटा, यह कि इससे आप हेल्दी खुद भी रह सकते हैं और बच्चों के जो कि हमारा फ्यूचर हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं आपको बताता हूँ अपडेट्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है या क्या काम का है जो आपसे चूक में छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा गैजेट है जो आपको काम आ सकता है। गैजेट्स पर हम आएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम आने वाली है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेबसाइट जो आपके काम आएगी, अगर आपको म्यूजिकल कुछ करना है आप, या चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आप गाने लिखते हैं, यू आर अ सॉन्ग राइटर, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेट, ये भी आपका कंटेंट जनरेशन हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसका नाम है, पहले तो लिखना है आपको एक्स, फिर डालना है स्लैश, फिर लिखना है माइनस MINUS माइनस डॉट, फिर लिखना है प्रो PRO /AI। आई नो नाम बहुत लंबा है, पर लेट मी जस्ट रिपीट। ओके, तो आपने लिखा सबसे पहले एक्स, एक्सरे वाला, उसके बाद आपने डाला डैश, और उसके बाद आपने लिखा माइनस MINUS

0: के बाद आपने डॉट लगाना है, फिर लिखना है प्रो, पी आर ओ, फिर फॉरवर्ड स्लैश और लिखना है ए आई. अब क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऑडियो है और उसके पीछे जो है नॉइजेस हैं, या मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉन्ग, आपने कोई गाना जो है चुन लिया और आप चाहते हैं कि इस पे कवर बनाना है, मुझे कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू सिंग, यू वांट टू रैप, कुछ भी करना है, आपने वो ऑडियो अपलोड किया इस वेबसाइट पे और ये जो है उसके सारे कॉम्पोनेंट जो उसमें बज रहे हैं उन सबको अलग करके आपको दे देगा. Right from drums to everything will be separated और audio अलग. तो आप उन सबको जैसे मर्जी चाहें experiment कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहे use कर सकते हैं, या simple audio हटा के जो main vocal है उसे हटा के आप music भी कुछ कर सकते हैं. It will not only teach you music, it will also help you कि आप अपने content generation के लिए कुछ अगर ट्वीक करना चाहे. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में गाना बनाते हैं और वो म्यूजिक यूज कर रहे होते हैं जो ओरिजिनल बॉलीवुड के किसी मूवी का होता है. दैट इज अ काइंड ऑफ कंटेंट जो बहुत ही नीश है, अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उस उतना हिट नहीं किया है, मगर इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की है वो खुली हुई है. यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू इट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट्स. अब जरा एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो आपके बहुत काम आएगी, और ये जो वेबसाइट है ये है म्यूजिकल, सॉरी मैं म्यूजिकल बना रहा हूं इसको, म्यूजिकल नहीं, हड्डियों की आवाज म्यूजिकल भी हो सकती है वैसे तो. दिस इज मसल विकी. ओके, मसल विकी, MUSCLEWIKI.com. तो मसल विकी पे जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको पूरा बॉडी एनाटॉमी दिखा देगी. भाई देखो आपको कौन सी मसल पे काम करना है, आप कोई भी मसल इसमें चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली मसल पे काम करना है या इन दो मसल्स पे साथ में काम करना है. एंड उसके बाद आपको ये पूरा पूरा चार्ट बना के देगा कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया है और ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, तो आपको आसानी रहेगी. समटाइम्स यू नो पीपल हु आर शाय लाइक मी, हम लोग पूछ नहीं पाते कि भाई ये कैसे करना है वैसे करना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता भाई, होता है हमसे एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांगा जाता. तो हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किस मसल पे या कैसे काम करना है, तो ये मसल विकी जो वेबसाइट है इस पे जाके बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी. आप जहां पे टारगेट करना चाहते हैं उस जगह की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी. यू नीड टू सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड दैट इज इट. ओके, अब बढ़ते हैं जरा जरा जरा खबर की तरफ. ठीक है, तो खबर आ चुकी है मार्केट में. अभी बात करी है बिल गेट्स ने, बड़ा शौक था कि बिल गेट्स अच्छा, तो बिल गेट्स ने बात करी है कि एआई रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ग्लोबली एक इशू बन चुका है. अब वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा. उनका ये भी कहना है कि एआई की सेफ्टी को लेकर और उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज पे बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है. लोग जो हैं उसके फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑल्सो उन्होंने बात करा कि बात करी एआई को लेकर कि किस तरीके से एविएशन की सेफ्टी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे. एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन बहुत सारे एआई पे बहुत जरूरी है. आई होप कि उनका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ा दो. आई रियली होप सो. बट ये थी अपडेट्स. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी. सी यू इन द नेक्स्ट वन.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाए.
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान RJ तलहा और RJ सर्वर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
5: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके. क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, और हर दिन एक ऐसे फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं जो अवेयर करता है कि कैसे आप नए जमाने के स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये नए जमाने का वो स्कैम है जो आज कल लोगों के सामने से हो रहा है। ये है डिलीवरी स्कैम्स। आजकल बहुत ज्यादा जो कि बढ़ चुके हैं और हर तीसरा बंदा इसका शिकार बन रहा है। ये स्कैम अचानक आपके फोन पर एक नॉर्मल SMS या आपके इनबॉक्स में एक ईमेल के जरिए आते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपका कोई पार्सल या पैकेज आपके घर डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एड्रेस मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर आपके ऊपर एक या दो डॉलर या रियाल की बहुत ही छोटी सी डिलीवरी फी बाकी है। इस मैसेज के नीचे एक ऑफिशियल दिखने वाला लिंक भी होता है ताकि आप उस मैसेज पे ज्यादा यकीन कर पाएं, जिसे क्लिक करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ये बात उसमें लिखी होती है, या फिर आप फीस पे करने के बाद उस लिंक को क्लिक करें, फीस पे करें, और फीस पे करने के बाद आपके पास आपका पार्सल पहुंच जाएगा। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है क्योंकि आम तौर पे आपके घर पे पार्सल आते रहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं जो आपके घर पे डिलीवर होना होती है। लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम। जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जो लिंक होता है, उसमें दिया गया लिंक असल में एक फिशिंग ट्रैप होता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक फेक डिलीवरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली होती है, चाहे वो कतर पोस्ट की हो या DHL की हो या कोई भी वेबसाइट ऐसी हो जो डिलीवरी करती है आपके घर तक सामान को। जब आप वहां अपना एड्रेस और क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं तो स्कैमर्स आपका पूरा बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। लोग इस ट्रैप में इसलिए आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता ही करता है और उनका कोई पार्सल आने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह से आप बच सकते हैं। कैसे? कुछ स्कैम से बचने के सॉल्यूशन भी हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि किसी भी अनजान लिंक पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं स्कैम होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मैंने तो अभी एड्रेस डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डाली है। हो सकता है आप लिंक क्लिक करें और आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, आपके लैपटॉप में वायरस आ जाए, और वहां से वो मालवेयर वायरस के जरिए आपको स्कैम कर सकता है। लिंक पर क्लिक ना करना सबसे आसान है। किसी भी SMS या ईमेल में आए हुए डिलीवरी लिंक पर क्लिक ना करें। असली डिलीवरी कंपनीज कभी भी ऐसा रैंडम नंबर से ना लिंक नहीं भेजती हैं आपको। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप कोशिश करें कि पहले उस लिंक को पढ़ें और समझें कि क्या ये लिंक असल में मौजूद है या नहीं। अगर आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो डायरेक्ट आप गूगल सर्च इंजन पे जाके क्लिक करें, उस नाम को लिखें, कतर पोस्ट या उनकी वेबसाइट लिखें जिस वेबसाइट से आपके घर डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद ही आप बाकी का प्रोसेस करें। उसके अलावा छोटी फीस का ट्रैप, इससे भी बचना बेहद जरूरी है। स्कैमर्स जानबूझकर एक या दो डॉलर जैसी बहुत छोटी अमाउंट या एक दो रियाल या फिर 20-25 इंडियन रुपीस या 100-150 पाकिस्तानी रुपीस के बारे में बात करते हैं। ऐसे छोटे अमाउंट मांगते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे पेमेंट कर दें। ऐसे किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट ना करें क्योंकि ये छोटे पेमेंट जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। सेंडर का नंबर भी चेक करें। अगर मैसेज किसी नॉर्मल 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से आया है या ईमेल का एड्रेस अजीब है तो वो 100% स्कैम है। असली कंपनीज के मैसेज उनके ब्रांड नेम से आते हैं। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी स्कैम को पकड़ने का। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो शुरुआती जो मिनट्स होते हैं या एक दो घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
6: साइबर क्राइम को ऐसे में रिपोर्ट करें। अगर आप कतर में हैं और आपके साथ ऐसा कोई खुदा ना खासा फ्रॉड हो जाए, या फिर आप किसी और मुल्क में हैं, अगर आपके साथ वहां पर फ्रॉड हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक को इत्तला करें। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें। और भी कई जरिए हैं, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई बार हेल्पलाइन नंबर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर को भी आपको गौर से पढ़ना है, क्योंकि ये एक और नए तरह का स्कैम है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको डिलीवरी के स्कैम से बचना है। लिंक पर कभी क्लिक ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करें कि वो सही है या नहीं, छोटी फीस के ट्रैप में कभी ना पड़े, और सेंडर का नंबर हमेशा चेक करें, क्योंकि ब्रांड कभी भी नंबर से मैसेज नहीं करता। और खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए फ्रॉड से। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
7: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
8: ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिन्हें दुनिया के तमाम फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने सिर्फ गोलकीपर नहीं बल्कि फुटबॉल की दीवार कहा। जी हाँ, दिनो ज़ॉफ, इटली का वो सिपाही जो 40 साल की उम्र में भी गोल पोस्ट के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं बल्कि ठंडक, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और हिम्मत का नाम भी है। दिनो ज़ॉफ का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। यंग एज में जब वो फुटबॉल खेलना शुरू कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि वो फुटबॉल के लिए फिट नहीं है। उनकी हाइट और फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर भी सवालात उठाए गए, लेकिन ज़ॉफ ने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग, मेहनत और साइलेंट डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया और फिर धीरे धीरे वो बन गए इटली के सबसे भरोसेमंद गोलकीपर्स में से एक। ज़ॉफ ने अपने क्लब करियर में भी शानदार कामयाबियां हासिल की। उन्होंने यूवेंटस के साथ कई सीरिया टाइटल जीते और इटालियन फुटबॉल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा याद करती है इटली के लिए उनकी कामयाबियों की वजह से। मसलन दिनो ज़ॉफ ने इटली के लिए 112 इंटरनेशनल मैचेस खेले और फिर आया 1982 का फीफा वर्ल्ड कप। स्पेन में होने वाला ये वर्ल्ड कप ज़ॉफ के कैरियर का सबसे यादगार टूर्नामेंट बनने वाला था। उस वक्त ज़ॉफ की उम्र 40 साल थी, लेकिन उम्र ने उनकी हिम्मत को जरा सी भी कम नहीं किया था। वो इटली के कप्तान थे और टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी लीडरशिप, एक्सपीरियंस और गोलकीपिंग से टीम को संभाला। इटली ने नॉकआउट स्टेजेस में ब्राजील और पोलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में सामने था वेस्ट जर्मनी। सोचिए, एक तरफ वर्ल्ड कप का फाइनल और दूसरी तरफ 40 साल का गोलकीपर दिनो ज़ॉफ। इटली ने जबरदस्त फुटबॉल खेली। पाओलो रोसी, मार्को तर्देली और अलेसांद्रो अल्तोबेली के गोल्स की मदद से इटली ने वेस्ट जर्मनी को 1-3 में 3 से शिकस्त दी और दिनो ज़ॉफ बन गए वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा शायद फाइनल के बाद आया, जब रेफरी की फाइनल हुसल बजी, इटली के प्लेयर्स खुशी से झूम उठे और फिर पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। इटली के प्लेयर्स ने अपने 40 साल के कप्तान दिनो ज़ॉफ को कंधों पर उठा लिया। एक गोलकीपर, एक कप्तान और अब एक वर्ल्ड चैंपियन। यह मंजर फुटबॉल हिस्ट्री के यादगार लम्हों में शामिल हो गया। दिनो ज़ॉफ कभी फ्लैशी नहीं थे, ना वो अननेसेसरी टॉन्ट्स देते, ना ही हर वक्त हेडलाइंस में रहने की कोशिश करते, लेकिन जब गेंद उनके गोल की तरफ आती तो सबको पता था दिनो ज़ॉफ वहां है, पुरसुकून लेकिन तैयार, हमेशा तैयार। उनकी गोलकीपिंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ रिफ्लेक्सेस नहीं था, उनका एक्सपीरियंस उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वो गेम को समझते थे, डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते थे, प्रेशर के वक्त अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते थे और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती दिनो ज़ॉफ मजबूती से गोल के सामने खड़े होते चट्टान की तरह। दिनो ज़ॉफ का करियर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है दोस्तों कि ग्रेटनेस हमेशा जवानी की मोहताज नहीं, कभी कभी एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और सालों की मेहनत टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतना कोई आम कामयाबी नहीं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कप्तान के तौर पर उठाना, यह दिनो ज़ॉफ को फुटबॉल के सबसे अजीम गोलकीपर्स में शामिल करता है। उन्होंने साबित किया कि फुटबॉल सिर्फ नौजवानों का खेल नहीं, जब तक जज्बा जिंदा हो, जब तक मेहनत का सिलसिला जारी हो और जब तक अपने मकसद पर यकीन हो, उम्र सिर्फ एक नंबर है। दिनो ज़ॉफ ने यह भी साबित किया कि ग्रेटनेस आवाज से नहीं, काम से होती है। वो शोर मचाने वाले हीरो नहीं थे,
वो खामोशी से अपना काम करते थे और जब जरूरत पड़ती तो पूरी टीम उनके पीछे खड़ी होती थी। दिनोज ऑफ इटली की दीवार, एक गोलकीपर, एक कप्तान, एक वर्ल्ड चैंपियन और एक ऐसा लेजेंड जिनका नाम फुटबॉल की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरज़ू महबश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत खूबसूरत बुनियादी उसूलों और अच्छे अखलाक पर कायम है। इज्जत, खुलूस, जिम्मेदारी, सब्र, शुक्रगुजारी और मेहमान नवाजी जैसे रवैये कतरी माशरे की खास पहचान है। ये उसूल सिर्फ माशरे की खास पहचान नहीं बल्कि लोगों के रोजमर्रा अमल में भी नजर आते हैं। दोस्तों की इज्जत करना कतरी माशरे का अहम उसूल है। किसी से मिलते वक्त सलाम करना, नरमी से बात करना, सामने वाले की बात तवज्जो से सुनना एहतराम का इजहार है। बुजुर्गों का खास लिहाज रखा जाता है क्योंकि उनके पास जिंदगी का कीमती तजुर्बा होता है। बुजुर्ग सिर्फ खानदान के बड़े फर्द नहीं होते बल्कि रिवायत और यादों के मुहाफिज भी होते हैं। उनकी नसीहत सुनना और उनके तजुर्बे से सीखना नई नस्ल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खुलूस का मतलब है कि दूसरों से सच्चाई और अच्छे इरादे के साथ पेश आया जाए। कतरी सकाफत में मुस्कुराहट, प्यारी गुफ्तगु और खैर ख्वाही को अहमियत दी जाती है। कभी कभी एक छोटा सा रवैया जैसे किसी की खैरियत पूछना या मुश्किल वक्त में हौसला देना रिश्ते को मजबूत बना देता है। नरम लहजा हर मुलाकात को खुशगवार बना सकता है। मेहमान नवाजी कतरी सकाफत का रोशन पहलू है। मेहमान का खैर मुकदम करना, उसे आराम देना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना अच्छे अखलाक की अलामत है। अरबिक कहवा और खजूर मेहमान नवाजी की मशहूर अलामतें हैं। मेहमान को कहवा पेश करना खुलूस और इज्जत का इजहार होता है। इस रिवायत की खूबसूरती सिर्फ पेश की जाने वाली चीज में नहीं है बल्कि उस मोहब्बत में होती है जिसके साथ वो पेश की जाती है। कतरी माशरे में हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी होती है। घर में अपने फर्ज निभाना, बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना और अपने वक्त की कदर करना अच्छे रवैये हैं। जिम्मेदारी सिर्फ किसी बड़ी बात का नाम नहीं होता, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी इसी का हिस्सा हैं। अपने घर को साफ रखना, चीजों की कदर करना, वादा पूरा करना और दूसरों के हकूक का लिहाज रखना जिम्मेदारी को जाहिर करता है। सब्र इंसान को मुश्किल जरूरत हाल में पुरसुकून रहने में मदद करता है। सब्र का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं बल्कि समझदारी और हिकमत के साथ अपना रास्ता जारी रखना है। कतरी सकाफत में सुलह, नरमी और अच्छी गुफ्तगु को पसंद किया जाता है। अगर किसी बात पर मुख्तलिफ राय हो तो अदब और तहम्मुल के साथ बात करना बेहतर रवैया होता है। इससे रिश्तों में इज्जत भी कायम रहती है और दिलों में खुरबत भी बढ़ती है। जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करना और दूसरों का शुक्रिया अदा करना बहुत खूबसूरत आदत है। शुक्रगुजारी से खुशी और तसल्ली का एहसास बढ़ता है। घर के किसी फर्द, दोस्त या किसी मददगार शख्स ने अगर आपके लिए कुछ किया हो तो उसे शुक्रिया कहना छोटा मगर पुरअसर अमल है। ये अल्फाज दूसरे शख्स को बताते हैं कि उसकी मेहनत और खुलूस को नजरअंदाज नहीं किया गया। खानदान कतरी माशरे में अहम मकाम रखता है। वालदैन की खिदमत, रिश्तेदारों की खैरियत पूछना और खुशी या परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होना खानदानी रिश्तों को मजबूत बनाता है। बच्चे अपने घर से अदब और रवैये सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि घर के बड़े एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो वो भी इसी तरह पेश आना सीख सकते हैं। इस तरह अच्छे उसूल नस्लों तक पहुँचते हैं। इसके साथ आ जाती है सादगी और तवाज़ो। तवाज़ो का मतलब है कि इंसान अपनी खूबियों के बावजूद नरमी और सादगी से पेश आए, दूसरों को छोटा ना समझे और हर शख्स की इज्जत का ख्याल रखे। सादगी जिंदगी को आसान बनाती है। खुशी के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. कभी खानदान के साथ वक्त गुजारना, मेहमान से मिलना या फिर पुरानी कहानियां सुनना भी खुशी का खूबसूरत सबब बन जाता है. कतरी सकाफत का हुसन इसी में है कि रिवायत को इखलाक के साथ ये जोड़ती है. मजलिस, कहवा, लिबास या दावत अपनी जगह, लेकिन इन सब की असली रूह है इज्जत, खुलूस और अपनाइयत. आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम ये है कि अच्छे उसूल जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, और जब हम नरमी से बात करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और दिल से शुक्रगुजार होते हैं, तो हमारा माशरा भी ज्यादा पुरअमन और खुशगवार बन जाता है. तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं. याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है. मैं हूँ आपकी आरजे महाविश. अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: साइंस कैन बी फन ना साइंस विल बी फन क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी है ना तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देखिए
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आपका नया जूनियर साइंटिस्ट वेलकम टू दिस न्यू शो जिसका नाम है जूनियर साइंटिस्ट और मैं सीनियर साइंटिस्ट दोहा वाला कबीर आपके साथ रहूंगा आई नो ये मिक्सअप आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर दीजिएगा ये टाइम क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है तो साइंस की दुनिया बड़ी कमाल की है साइंस इज फन हमेशा बचपन से हमेशा बताया गया कुछ बच्चों की बड़ी इच्छा होती है साइंस को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और कुछ बड़े भी होते हैं जो साइंस को जानना पहचानना चाहते हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते कहते हैं ना भाई बहुत हिसाब किताब है इसमें तो केमिकल होया करें फिजिक्स वगैरह मेरे समझ के बाहर है इसीलिए ये शो है फॉर जूनियर्स जो सीनियर्स को इंस्पायर करेगा जूनियर साइंटिस्ट में हम जूनियर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जो बड़े सिंपल हैं बड़े इजी हैं और स्कूल लैब्स में भी कराए जाते हैं माशाल्लाह आजकल तो और उन एक्सपेरिमेंट्स को जानकर आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल चीजें दुनिया में कैसे काम करती है तो हर चीज में हर जगह पे साइंस है और उसे कैसे अप्लाई करना है कैसे समझना है वो शो में आपको पता लगेगा डोंट वरी मैं कोई थ्योरम कोई फॉर्मूला ये सब नहीं देने वाला हूँ दिमाग पे इतना बोझ नहीं देना वैसे ही बहुत सारा बोझ चल रहा है हर किसी के दिमाग पे तो जरा चिल पिल बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स दैट यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ योर किड्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स तो आप घर पे भी कर सकते हैं और बच्चों को भी चीजें समझा सकते हैं यू नेवर नो बच्चों के दिमाग में उनके छोटे से दिमाग में अगर ये साइंस की थ्योरीज घर कर गई एक क्यूरियोसिटी पैदा कर गई यू नेवर नो आपके घर से एक फ्यूचर साइंटिस्ट निकले एंड नॉट किडिंग मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो दीनी तालीम के साथ साथ एक साइंस की नॉलेज भी उन्हें देता है तो माइंड खुलता है वो हर चीज में एक थ्योरी एक फॉर्मूला सोचता है और उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है और फिर दुनिया को बदलने की जो ताकत कहते हैं वो आती है तो ये क्यूरियोसिटी के लिए जूनियर्स के लिए और जूनियर के जरिए सीनियर्स को इंस्पायर करने की कोशिश है इस शो की नाम रट लीजिएगा पहला एपिसोड है आज का जूनियर साइंटिस्ट और मैं दो

वाला कभी। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज का जो एक्सपेरिमेंट है बड़ा सिंपल है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा, मगर इसकी जो थ्योरी है आज ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनाने की कोशिश है, और इंशाल्लाह हम इसको वीडियो में भी तब्दील करेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ऑडियो फॉर्मेट में जिस चीज के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, वो है फ्लोटिंग एग एक्सपेरिमेंट, या फ्लोटिंग एग डेंसिटी के लीजिए। अब नाम भारी है, डोंट वरी, मैं भाई साहब कती देसी आदमी हूं, आपको देसी तरीके से समझाऊंगा और आपको साइंस जो है एकदम बढ़िया समझ में आएगी, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे हाँ हमें पता है एग फ्लोटिंग वाला, अच्छी बात है, बट दोज डोंट नो उनके लिए ये बहुत खास हो सकता है। देखिए 10 में से 2 बातें, एक बात भी अगर काम कर गई तो कुछ तो बदलेगा गुरु। तो जूनियर साइंटिस्ट में मैं दो हवाला कबीर आपके साथ, एंड जब अभी ब्रेक से लौटेंगे तो जरा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड डोंट वरी, आई विल मेक इट सो इजी कि आप बोलेंगे हाँ यार ये तो मतलब बहुत आसान कर दिया, नया टीचर मिल गया आपको, मुबारक हो। मैं दो हवाला कबीर, FM 107 पे, जूनियर साइंटिस्ट।

रेडियो इज अ थिएटर ऑफ माइंड, तो शीशे का गिलास थोड़ा महंगा लगता है, तो शीशे का गिलास सोच लीजिए, तो दो गिलास पानी और नमक अपने साथ रखना है आपने। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट को आपने करना है शुरू। कैसे होगा शुरू? अब आप इमेजिनेशन अपना ऑन कर लीजिए। अगर आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करने वाले, आपने सबसे पहले वो वाला ग्लास उठाया जिसमें प्लेन वाटर है, इसमें सिर्फ पानी है, ग्लास की गर्दन तक आपने भर दिया है, और इसके बाद जो है आप जो अंडा साथ में लेके आए हैं वो इसमें आपने ड्रॉप करना है, बहुत धीरे से, अंडा टूटेगा बहुत डांट पड़ेगा, आराम। और जैसे आप अंडा इसमें ड्रॉप करेंगे ग्लास में, वो धीरे धीरे धीरे धीरे संक करेगा और बिल्कुल ग्लास के बॉटम में जाके पहुंच जाएगा। सरप्राइजिंग नहीं, मजा नहीं आया? ऑफ कोर्स इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसा ही होगा ना। बट देन दूसरा वाला ग्लास उठाइए, वही शीशे वाला ग्लास जिसमें आपने पानी भर देना है वापस ग्लास की गर्दन तक, मगर इसमें कुछ अलग करते हैं। इसमें आपको मिलाना है नमक, स्वाद अनुसार नहीं पीना, नहीं शिकंजी नहीं मिलानी है, हमें इसमें सिर्फ नमक डालना है फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। माय गॉड, आई फील लाइक ए साइंटिस्ट। ओके, तो ग्लास में आपने भर के नमक डाल दिया, हां जब नमक डाल चुके हैं इसमें, तो अब आपको इसमें वापस जो एग जो अंडा है आपके पास वो इसमें वापस गिराने की कोशिश करनी है। अब जब आप कोशिश करेंगे तो अंडा ग्लूप देने से ग्लास के अंदर नहीं जाएगा बल्कि ये फ्लोट करेगा। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, पर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक साइंटिफिक पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स पर अगर आप ध्यान दें तो जो अंडा है वो रिप्रेजेंट करता है एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल चीज है जिसकी एक डेंसिटी है, एक वजन है और एक ऑब्जेक्ट है। जो प्लेन वाटर था जिसमें नमक नहीं मिला हुआ था, वो नमक के ना होने की वजह से काफी कम डेंसिटी है, जिसे हम कहते हैं ना काफी हल्का सा लग रहा है पानी, यूं समझ लीजिए। तो हल्का है पानी और उसके हल्केपन में, हल्केपन से ज्यादा भारी है एग, और क्योंकि अंडा भारी है इस केस में तो वो डूब जाता है, इसलिए सिंक हो रहा है। मगर जब आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया पानी के अंदर, तो पानी अब हो गया भारी। पानी ने कहा भाई अब कर ले मुकाबला, और जब अब मुकाबला कराएंगे आप, अब जब अंडा इसमें ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो एक कंप्लीट चेंज आपको नजर आता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि साइंस हर जगह है, मगर ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले अंग्रेजी में एक लाइन है वो मैं बता देता हूँ, वो ये है कि साइंस इसमें कहता है कि इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मास है अगर उसे डिवाइड करें बाय इट्स वॉल्यूम, तो आपको ये पता लग जाएगा एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। चलिए इसमें बताइए, हिसाब किताब पे नहीं आते, आप देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपके आस पास आप देखेंगे लिक्विड अगर डेंस है ऑब्जेक्ट से ज्यादा, इस केस में ऑब्जेक्ट अंडा है और पानी जो है वो डेंसर है, मतलब उसमें नमक मिला हुआ है, तो वो फ्लोट ही करेगा क्योंकि नमक मिलने से पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये मास पर वॉल्यूम, इतना तो इजी है, मतलब मास पर वॉल्यूम बढ़ा देता है। अब क्योंकि ये मास पर वॉल्यूम बढ़ गया है तो अंडा जो अभी तक फ्लोट नहीं हो सकता था पानी में, अब उसको एक फोर्स मिल रही है नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से ऊपर एक फोर्स आ रही है जो उसे अंडे को ऊपर फ्लोट होने पे मजबूर कर रही है, बिकॉज यहां पर अब लिक्विड यानी कि पानी डेंस हो चुका है। ये सेम प्रिंसिपल कहां अप्लाई होता है? ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, पर ये क्यों किया और कैसे समझाएंगे आप इसको? ये सेम साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता है ओशंस में, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज निकलते हैं और आप सोचते हैं यार ये ऐसा क्या है, नीचे पंखा वंखा लगाए हैं, पंखा वंखा सब लगा हुआ है लेकिन जहाज डूब क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं डूब रहा है क्योंकि जहाज कैसे डूबेगा, पानी की डेंसिटी उसके आसपास पूरी लिक्विड की, नीचे के लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वही तो इतना पता ही है, समुद्र पानी में नमक ही नमक है, नमकीन पानी, और इसीलिए जहाज जो है उस पर फ्लोट करता है, खुद डूबता नहीं। तो अब इस थ्योरी को लेट इट सिंक इन, आपके दिमाग में इस थ्योरी को जाने दीजिए, एंड इफ यू अबाउट टू ट्राई सच एक्सपेरिमेंट्स, ये वाला स्पेशली बच्चों के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, मगर लेट मी नो इफ यू अबाउट टू ट्राई। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar है, FM107 Qatar, और आगे थोड़ी और इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका भाई अब साइंटिस्ट बन चुका है। जूनियर साइंटिस्ट की शो पहला एपिसोड आपके साथ चलिए।

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। मैं बन चुका हूं जूनियर साइंटिस्ट के साथ एक अच्छा खासा साइंटिस्ट, जाने वाली कई सारी थ्योरीज बताएगा, एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट क्योंकि मौका मिलता है इन चीजों के बारे में बात करने का। सो जूनियर साइंटिस्ट जो शो हमने बनाया है, आज इसका पहला एपिसोड है, इसलिए बार बार नाम लेना जरूरी है। ये इसका मकसद ये है कि आपको नॉर्मल थ्योरीज के जरिए, नॉर्मल एग्जांपल देके बताया जाए कि साइंस कहां कहां कैसे, कुछ चीजें आप सोचते हैं ये होता तो ये कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आया, पर जहां पर आप साइंस लगाने की कोशिश करेंगे और उसे लॉजिकली बता पाएंगे तो बच्चों की क्यूरियोसिटी वाले माइंड में भी हलचल होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, माइट इज आपके घर से कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, पर वो ट्रिगर पॉइंट हमें देने की कोशिश है और ये शो इसीलिए खास बनाया गया है। तो आज हमने बात करी है एग फ्लोटिंग एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो सालों से लोग करते चले आ रहे हैं और स्कूल्स में भी होता है, लेकिन अभी तक अगर आपकी आंखों के सामने अपने बच्चों को करते हुए नहीं देखा तो उन्हें भी करा सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा सेफ्टी नहीं चाहिए, सिंपल आपको एग को ड्रॉप करना है प्लेन वाटर में, अंडे को, और अंडा आपको नीचे सिंक होता हुआ नजर आ जाएगा कि भाई तो डूब गया अंडा, अब कौन बचाएगा। उस अंडे को बचाने के लिए पानी में जब आप सॉल्ट डालेंगे तो अंडा वापस ऊपर आके फ्लोट करने लग जाता है। This is what is happening और यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जहाजों का, समुद्री जहाज पानी पे फ्लोट कर रहे हैं। हर जहाज तो नहीं डूब रहा ना, वो क्यों नहीं डूब रहा, क्योंकि आसपास के लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, या बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो पानी थोड़ा सा भारी है भाई साहब। इसके अलावा देखा होगा अपने आइस क्यूब्स फ्लोट करते हैं, आइसबर्ग्स इनफैक्ट फ्लोट करते हुए नजर आते हैं आप। एंड जो डेड सी है उसे डेड सी क्यों कहते हैं, बिकॉज एवरीथिंग फ्लोट्स, कुछ भी जा नहीं सकता, उसकी जो सॉल्ट का कॉन्टेंट है, नमक की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्टेंट इतना ज़्यादा है सॉल्ट का कि वाटर को हद से ज़्यादा डेंस बना चुका है। और इसीलिए एक वर्ड साइंस का आपको कई मरतबा सुनने में मिला होगा, जिसका मतलब, जिसका जो नाम है वो है बॉयंट फोर्स। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लाइफ जैकेट और स्विमिंग का, लेकिन ये हम बाद में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो बॉयंसी जो है, बॉयंसी फोर्स, ये फोर्स जो है, मैंने भी रिसेंटली इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं आ जाके समझदार बन रहा हूँ एकदम से, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा कि ये एक फोर्स है, ये तब लगती है जब लिक्विड डेंसर हो ऑब्जेक्ट से। इस केस में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, पानी जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, अंडे की कम है, इसलिए बॉयंट फोर्स जो है वो नीचे से लगती है और अपवर्ड फोर्स उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, इसलिए अंडा फ्लोट होने लगता है। सबमरीन्स जो है वो बॉयंसी को यूज करती हैं और इसीलिए सबमरीन्स का फ्लोट होना, पानी के अंदर जाना, ये उस फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। एक और एग्जाम्पल है हॉट एयर बलून्स का। जो हीटेड एयर है बलून के अंदर वो कम डेंसिटी वाली होती है सराउंडिंग एयर से, सराउंडिंग जो हवा है उसकी, उससे ज्यादा, मतलब कम डेंसिटी होती है, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। एक और एग्जाम्पल है ये बॉयंट फोर्स का, नया शब्द है ना, सीखने में टाइम लगेगा, तो बॉयंट फोर्स मैं स्पेल आउट कर देता हूँ जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, बाकी जो समझदार हैं वेरी गुड। सो जो बॉयंसी है उसकी वजह से हॉट एयर बलून भी काम करता है। इसके आपको स्पेलिंग दे देता हूं मैं, ताकि आप अपने अपने आप ही इसके बारे में पढ़ पाए। तो BUOYANCY, बॉयंसी, ये वाली फोर्स लगती है इन तमाम एग्जांपल्स में जो मैंने आपको बताए। अब बायोलॉजी और नेचर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो फिशिंग, स्विमिंग, इन तमाम जगहों पे ये चीज़ काम करती है। मच्छी हमने देखी होंगी, उनके तैरने का अंदाज अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। अब ऑयल का भी एग्जांपल लें आप, तो ऑयल भी पानी पे फ्लोट कर रहा होता है, पर क्यों, क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंसिटी रखता है पानी से, वो ऊपर तैरता रहता है। अब एयर बबल्स के साथ भी यही सीन है, वो राइज करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो है वो उन्हें ऊपर की तरफ धकेल रही है और धीरे धीरे वो रैपिडली ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो एक सवाल इसमें उठता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ नमक के साथ ही कर सकते हैं, बिल्कुल आप चीनी भी नहीं डालिए, जैसे मैंने कहा आप नींबू भी डाल दीजिए और पी जाइए लेकिन यस, ये एक्सपेरिमेंट आप शुगर के साथ भी कर सकते हैं, मगर उसमें देखिए फर्क आपको पता लगेगा। कोई भी ऐसा सॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो पानी में घुल जाने वाली चीज है, वो ऑफकोर्स पानी की डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ चीजें उनका मास जो है, जो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका पानी से ज्यादा मास कितना है, कितना ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है।
अब सॉल्ट का ज्यादा है, शुगर का थोड़ा सा कम है, दोनों ही पानी को भारी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डेंसिटी दे रहे हैं, और इसलिए इस डेंसिटी की मात्रा मतलब कितनी डेंसिटी है उसके हिसाब से बॉयंट फोर्स लगती है। नीचे से जो पानी है, जो पानी का आपके देसी भाषा में समझिए, नीचे से जी प्रेशर दे रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो वो जो फोर्स है बॉयंट फोर्स वो इसी मास पे डिपेंड करती है कौन सा सब्जेक्ट आप उसमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक चीज जोड़ देते हैं कि भाई ये सॉल्ट क्यों यूज हो रहा है, हर एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट क्यों बताया जाता है, ये मैं सोच रहा था, मैंने अच्छे से पढ़ा भी इसके बारे में, मैंने क्यों नहीं पूछ लिया मेरे अराउंड साइंटिस्ट बच्चों से, और बहुत सारे बच्चों ने इस बारे में बात भी करी है। एक हमारे जानने वाले उस बच्चे ने बड़े अच्छे से बताया, और बहुत ही एक ही लाइन में बताऊंगा आपको, सॉल्ट जो है सिंपल सबसे जल्दी मिल जाता है पानी के साथ, बहुत गहरी दोस्ती है, और शुगर जो है वो इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं यूज करते क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और कई मर्तबा सेटल हो जाता है बिल्कुल पानी की सतह, इसलिए हमेशा शुगर से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, सॉल्ट से किया जाता है। तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे थोड़ा सा रिकैप, और उसके बाद फिर आप जो भी कहना चाहें सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 खतर, FM 107 खतर, लेकिन फिलहाल आपने जाना नहीं है।

0: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड आज के शो का पहला एपिसोड आगाज आज पर्दा उठा है और इस शो का नाम है जूनियर साइंटिस्ट। तो मैं भी साइंटिस्ट बन गया हूँ। देखिए, शो का मकसद बड़ा सिंपल है, आप और मैं साथ में साइंस सीख सकते हैं। जिनको आती है बहुत बढ़िया भाई, आप भी सिखाइए लोगों को, और हम और आप सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे जो मेरे लिए बताने में आसानी हो, आप कर भी लें और हम और आप मिलके कुछ समझ भी लें। मैं कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन इस प्रोसेस में हम और आप टीचर जरूर बन जाएंगे। तो ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये मेनली बच्चों के लिए है। वो बच्चे जिनका माइंड क्यूरियोसिटी को तलाशता है, वो जानना चाहते हैं। जैसे आज के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो ये है कि समुद्री जहाज कैसे पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ये डूबते क्यों नहीं है, टाइटैनिक मत देखो, डूबते क्यों नहीं है। अब इसके बारे में हमने बात करी और हमने जाना कि क्यों ऐसा होता है, और सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए कि दो ग्लास आप पानी लीजिए और दोनों ग्लासेस में अंडा डालने की कोशिश कीजिए, एग डालने की, एक में, लेकिन एक ग्लास में आपको सॉल्ट मिला देना है, जिससे पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, पानी भारी हो जाएगा और अंडा फ्लोट होने लग जाएगा। और यही फिनोमेना ओशंस में, समुद्र में चलता है। एक और प्रिंसिपल है जो इससे जुड़ा हुआ है, जाने से पहले बताना चाहूंगा, जिसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट होली मतलब पूरा या पार्शली अगर आधा मिला दिया जाए फ्लूइड में, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, नीचे से फोर्स आती है ऊपर की तरफ, और जो वेट ऑफ द फ्लूइड होता है, जो जैसे पानी का केस है, भारी हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है और एक फोर्स आती है। इसका नाम क्या है, आज हमने सीखा है, बॉयंसी या बॉयंट फोर्स, जो ऊपर की तरफ धकेलती है ऑब्जेक्ट को। एंड काफी सारे एग्जाम्पल्स आज हमने पढ़े, जैसे सबमरीन्स का अलग कॉन्सेप्ट है, शिप्स का, बड़े बड़े जहाज हैं, इसके अलावा हॉट एयर बलून्स हैं, और कौन सा एग्जांपल सीखा हमने, एग का तो सबसे पहले ही सीखा है, और इसके अलावा हमने ये जाना और कोई एक्सपेरिमेंट, हाँ आइसबर्ग, कैसे भूल गया मैं, वही सोचा था, मैंने कहा टाइटैनिक की बात करी, आइसबर्ग की कैसे नहीं करी। तो आइसबर्ग इज एन अदर एग्जाम्पल कि वो कैसे पानी की सतह पर फ्लोट करें। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट, एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको एक ऑडियो फॉर्मेट में सब बताया जाएगा, बल्कि एक वीडियो फॉर्मेट में भी एक्सपेरिमेंट करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बट ये पहला एपिसोड था, आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआ रही, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। माशाल्लाह,
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर, दिल से दिल।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسٹوڈیو کی گھڑی میں 1:30
4: آپ سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی
5: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। और बताइए क्या हाल चाल है आपके, कैसे गया अभी तक का आपका दिन और क्या कुछ आपने प्लान किया है इवनिंग्स के लिए। वेल, हमारे नंबर्स हैं 6662107 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377।
3: बिल्कुल सही भाई, और हमारे साथ जुड़ने के लिए नाजिया ने बताई दिया है क्या करना है, तो टाइम वेस्ट करे बगैर आइए पहले कॉलर को कनेक्ट करते हैं और जानते हैं इनका हाल अहवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
5: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
3: तो हूं हम लोग
6: भाई, नाजिया कैसे?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से हैं। भाई आप कैसे हैं?
6: बस मैं हाजिरी लगाने के लिए आया था, मेरा रजिस्टर में नाम लिख दीजिए एक बार प्लीज।
3: मैडम से हाजिरी लगवाने आ गए आप, चलिए अच्छी बात है, नाम लिख दिया गया। आसिफ भाई कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
6: बस बहुत बहुत बढ़िया भाई, सरवर भाई तुम्हारी आवाज सुनने के लिए करता इसलिए फोन किया।
3: अहलन वसहलन भाई, एनी टाइम। अभी कहाँ है एग्जैक्टली?
6: बस भाई आपके दिल में हूँ।
3: अरे वो तो है ही, परमानेंट। फिलहाल कहाँ है?
6: घर के पास खड़ा हुआ भाई।
3: अरे जगह बता दो।
6: एन खालिद
3: में क्या हाल है, ट्रैफिक वगैरह का इसलिए जानना चाह रहा था मैं।
6: हाई ट्रैफिक तो हाईवे के ऊपर लगी पड़ी है, स्कूल सब छूट गई है।
3: इस वक्त टाइम है क्योंकि स्कूल वगैरह छूटने का, तो एन खालिद की तरफ आसिफ भाई हैं।
6: तो वो हामूर का जो ब्रिज है ना भाई, लाइटिंग वाला ब्रिज
3: जी,
6: इसका बोलते ना भाई, ट्रैफिक ऐसी लगेली, पब्लिक गाड़ी हिला नहीं पा रही है।
3: ओ माय गॉड, और जबकि मैं महज मेरे ख्याल में आधा घंटे पहले वहां से गुजरा, या शायद एक घंटा हो गया, तो बिल्कुल क्लियर था सब। और ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल वगैरह
6: भाई, गलती से भी उसकी
3: पर नहीं जाना हुआ। चलिए भाई, इस वक्त जो सुन रहे हैं ये ट्रैफिक अपडेट आप लोगों के लिए, कि अगर एन खालिद की तरफ जा रहे हैं अभी अबू हमूर के ब्रिज, जो
6: जाना ही पड़ेगा भाई, पब्लिक को जाना ही पड़ेगा।
3: हाँ, जिनको जाना है भाई अल्टरनेटिव रूट ले सकते हैं। आजकल हमारे जो मैप्स हैं वो भी अपडेटेड हैं, और जब जहां जिस जगह ट्रैफिक होता है तो वो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको बताते हैं। तो ये देख के ऐसा मत सोचिए कि ये तो दूसरी तरफ से रास्ता बता रहा है या लंबा रास्ता बता रहा है, वो हमारे लिए बेहतर होता है एक्चुअली।
5: सही।
3: तो आसिफ भाई
6: आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे सदर भाई, एक चीज देखा हूँ मैंने कि सारे रोड ब्लॉक ही रहते भाई इधर।
5: ये तो है,
6: छोटे रोड हो या बड़े रोड हो, मैंने सदर भाई दो चार रोड मैंने ट्राई किया हूँ मैंने कई बार, मगर वो सारे ब्लॉक रहते भाई। और छोटे मोटे जो सिग्नल होते हैं वहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दो बार तीन बार सिग्नल बंद चालू हो ही जाते हैं ऑटोमेटिक।
3: क्या बात है भाई, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया।
5: तो चलिए अब आप क्योंकि आ ही गए हमारे साथ, जुड़ ही गए, तो हमें लगता है कि आज का जो सवाल है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम जानने की, वैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली टाइम और करियर ग्रोथ। हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके ख्याल में करियर ग्रोथ की रेस में फैमिली टाइम को कुर्बान करना कितना ठीक है।
6: नाजिया बहन, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये सवाल का जवाब आपसे नहीं दे सकता हूँ, मैं ख्याल से दूसरा रिश्तेदार आपको देगा, क्योंकि
3: क्यों
6: मैं
3: क्यों
6: सकता हूँ आपको,
3: क्यों नहीं दे सकते भाई, फैमिली की जिम्मेदारी निभाना आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आप फैमिली को छोड़ के दूर आए हुए हैं इस वक्त, तो ये भी तो एक बड़ी वजह है।
5: अच्छा चलिए इसको ऐसे पूछ लेते हैं, क्या ज्यादा पैसे कमाना जो है वो फैमिली में जो चीजों की कमी है उसको पूरा करने के लिए जरूरी है, इसके लिए ज्यादा पैसे कमाना जरूरी है
3: और फैमिली को छोड़ देना, दूर होना मतलब छोड़ देना,
5: फैमिली से थोड़े से दूर हो रहे हैं, बट आप ये है कि उनके लिए पैसे

0: ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये जो सिनेरियो ये ठीक है आपके हिसाब से?
1: मेरे हिसाब से ये सिनेरियो 50-50 है, सही है।
2: मगर आपने ये स्टेप लिया तो क्या वजह है उसकी? वजह यही है दूर आना घर वालों से?
1: यही है कि सर पे जिम्मेदारी है भाई, पूरी करनी है उसको, उसको करने बगैर तो रह नहीं सकते ना यहाँ, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, कहीं भी है, एवरीवेयर।
0: तो मतलब आप ये कहते हैं कि ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करना आप उतना उसके उतने प्रो नहीं हैं, आपको लगता है कि ठीक है अपना जो काम है पूरा किया, जो पैसे आ रहे हैं ठीक है उसी में फैमिली के साथ गुजारा करना चाहिए, क्योंकि फैमिली को कई बार आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट यू बिलीव। हाँ ये कह रहे हैं आप 50-50 रखो, देयर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहन, सही है, मतलब पब्लिक का भी सोचने का मतलब सही है, पब्लिक अपना मेहनत करके कमा भी रही है और भेज भी रही है बराबर अपने टाइम पे टाइम घर पे, अपना टाइम भी निकाल दिए, 50-50 एकदम सही है भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो
0: मतलब कह रहे गुड बैलेंस
1: बताया आपके बारे में,
0: सही सही
1: बताया बराबर।
0: चलिए
1: मैं तो बस आया था सुनर भाई और नाजिया बहन की आवाज सुनने के लिए, बाकी तो इंशाल्लाह
0: चलिए चलिए जज़ाकअल्लाह, थैंक यू
2: आपकी आवाज सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत-बहुत शुक्रिया आज़ाद
0: भाई, बहुत शुक्रिया जी,
2: अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया, आज हम बात कर रहे हैं फैमिली टाइम वर्सेस करियर ग्रोथ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या आपको लगता है और क्यों लगता है, और क्या फैमिली को ज़्यादा खुश रखने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा कमाना ज़रूरी है या नहीं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर है 666-22-107, इस नंबर पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस लेंगे। वहीं अगर आप हमारे साथ कॉल करके कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 443-443-77। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ, हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। जावेद भाई
3: कहाँ है मेरा शेरू?
2: क्या लेके आए इस वक्त? दोपहर में खाना का वक्त है ये बताइए।
3: और उनके साथ हमारी शेरनी।
2: हाँ सही कह रहे हैं भाई, शेरनी शेरनी ही शिकार करती है और मारा मूरी करती है, शेर भाई तो बैठा रहता है बस खामोशी से, सीधा सादा शरीफ। सही कहा जावेद भाई,
0: क्या शराफत आपके चेहरे से टपक रही है।
2: हाँ।
0: सब ना टपक जाए,
3: वो तो मुझे पता
0: हो गई,
3: वो तो पता है, लेकिन शेर की जो खामोशी है ना उसकी खामोशी में भी धाड़े हैं।
2: क्या बात है, इसीलिए सुखद आए हैं बात करने शेर। कैसे हैं जावेद भाई?
3: अल्लाह का शुक्र है, मैं सरवर भाई और नाजिया मैं बिल्कुल खैरियत से, गाबा भाई रोज मुझे मैसेज करते, अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं होता। और आज क्योंकि मीटिंग है हमारी और मैं शर्क रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, जो होटल है वहाँ पर, वो हम सरवर भाई बुफे करेंगे।
2: अच्छा।
3: लंच बुफे। ओके
2: कितने बजे पहुँचना है
3: ये नहीं बताऊंगा।
0: कितने बजे पहुंचना ये नहीं बताऊंगा ये। अरे आपने बहुत अच्छी लाइन दी, मैं भी अब
2: अच्छा ये बता देते
0: दावत में बुलाऊंगी, कितने बजे पहुंचना ये नहीं बताऊंगा।
2: नहीं मगर ये कंफर्म है कि आज ही पहुंचना है, तो फिर तो चलिए पूरा दिन वहां गुजारा जा सकता है, किसी ना किसी वक्त तो आएंगे।
0: पहुंचना कहां है आपको ये नहीं पता,
2: ये पता चल गया ना आज पहुंचना, और पता चल गया किस तरफ जा रहे हैं ये भी पता चल गया, बार बार तो मैं नहीं कह सकता है। जावेद भाई
3: मेरे भाई नाजिया और आप दोनों का मैं शुक्र गुजार हूँ जो आपने मेरी बेटी को विश किया था, और तमाम ऑडियंस सामेन का भी मैं शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने सुना और दुआओं का तोहफा दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
2: नसीब अच्छे करे,
0: मुहर्रम
2: रखे भाई, आपकी आंखों की ठंडक बनाए और नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह।
3: आमीन।
2: तो क्या कहते हैं जी जी जी
3: इंशाल्लाह ताला आपका जो 5 स्टार में आपको मैं इंशाल्लाह बल्कि सबको मैं दावत 5 स्टार में दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला।
2: अरे 5 स्टार में कहाँ खाने मिलते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं जावेद भाई,
0: बताओ
2: असली तो वही है।
0: अगला बंदा खिला रहा है लेकिन इनका उसमें भी वो लगा हुआ है, पख लगा रखी है आपने, ये नहीं ऐसे कर लो सबसे अच्छे खाने तो
2: हैं के चले गए सुन
0: रहे हैं चले गए जवाब सोच रहे हैं क्या तलाश कर। चाय अच्छी बना लेते हैं, चाय पिलाइएगा, और पानी नींबू पानी आप अच्छा बनाते हैं वो इन्हें पिला दीजिएगा।
3: नहीं मैं पानी में मैं मतलब पिलाते भी अच्छा हूँ, पानी में ले जाकर डुबाता भी अच्छा।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है भाई, अच्छा हुआ है मुलाकात नहीं हो रही अभी तक। चलिए साहब, अल्लाह खुश रखे। आज के मौजूद

0: के हवाले से भी कुछ बताते जाइए ताकि हम कुछ सीखें जावेद साहब।
1: चलिए हम आपको और सिंपलीफाई कर देते हैं, पूछते आपसे इस तरह से है कि करियर और फैमिली के बीच बैलेंस मेंटेन करने में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है?
2: नाजिया और सरोर भाई, फर्क है यहाँ पर दो पॉइंट्स है, एक वो पॉइंट है जो बिजनेसमैन है, एक वो पॉइंट है जो जॉब करता है। ओके, जो बिजनेसमैन है मेरे ख्याल से उसके पास फैमिली के लिए टाइम आई थिंक बहुत शॉर्ट होता है, होता भी है लेकिन शॉर्ट। लेकिन मैंने ऐसे भी जॉब वाले देखे हैं जिनके पास टाइम होने के बावजूद भी वो टाइम नहीं देते। जब आप वक्त को पकड़ते हैं तो वक्त आपको पकड़ता है। तो मेरे नजदीक जो मेरे नसीब में है, जो मुझे मिलना है वो मुझे मिलकर रहेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आई विल स्टे विद माय फैमिली। मैं ये प्रेफर करूंगा और मैं इसको करता भी हूँ। मैं मेरा मतलब जहाँ जो भी टाइम है कुछ भी, ठीक है पैसा है सब कुछ है, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरत है, जरूरत है बिल्कुल, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तबके तक देखें तो एक बिलियनियर से लेके एक लेबर भी है, और मेरे ख्याल से वो लेबर शायद अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होगा, बिलियनियर नहीं होगा। ये तजुर्बा थे जिंदगी में देखे भी हमने।
1: बहुत सही, बहुत ही अच्छी बात।
0: वाह, बहुत बहुत अच्छे,
1: बहुत ही अच्छे दोनों।
0: शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने वक्त निकाला। देखिए आपने भी वक्त निकाल ही लिया फैमिली के लिए। FM 107 भी तो फैमिली है।
2: मेरी ये मेरी वो फैमिली है जिन्होंने मुझे, नाजिया और मैविश को भी मैं क्रेडिट, ये वो फैमिली और आप सब लोग FM 107 की टीम जिन्होंने मेरी आगे फैमिली को बढ़ाया है, बल्कि मजीद मुझे फैमिली दी है, वो आप लोगों के दोस्तों से।
1: हम आपकी फैमिली थे, रहेंगे, और हमें खुशी है कि आपको और फ्रेंड्स मिले थ्रू FM 107। वाकई इस बात की हमें बहुत खुशी है, और आप खुद एज अ पर्सन यू आर अ जेम, और बहुत अच्छी दोस्ती आप इंशाल्लाह निभाते हैं, निभाएंगे भी और भी दोस्त बनाएंगे इंशाल्लाह।
2: बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगर मेरी कॉल मुझे ना आ सके तो बस मैं कोशिश करता हूँ सुनने की, लेकिन आज मौका मिल गया, हाजिर हो गया। बहुत शुक्रिया,
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खुशी हुई कि आज फाइनली आपसे बहुत टाइम के बाद इस शो में बात हो रही है। बट चलिए इंशाल्लाह जब जब आपको टाइम मिले कोशिश कीजिएगा जुड़े हमारे साथ
0: इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई बात हो रही है यहाँ पर फैमिली और करियर के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, या ऐसा समझ लीजिए कि जिम्मेदारी और फैमिली के बीच जो अंतर हैं उनके हवाले से। फिलहाल एक कॉल और लेते हैं, चलिए उसके बाद गाना भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: कैसे हैं नसीम भाई, खैरियत से हैं?
3: आपकी दुआ है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ हैं इस वक्त?
3: वकरा आइलैंड
0: हाँ, मैंने ऐसी समझ में आया मुझे, वकरा के बाद क्या कहा आपने? हाईवे पे हूँ, हाईवे पे हूँ। चलिए क्या हाल है ट्रैफिक का वहाँ पे?
3: अभी तो नॉर्मल है,
0: अभी नॉर्मल है। तो क्या कहते हैं नसीम भाई, आज के मौजू के हवाले से फैमिली को टाइम देना या फिर अपने काम की जिम्मेदारी निभाने के बीच क्या क्या मुश्किलात या जो दूर रहना पड़ता है उसमें आपका क्या क्या सोच है, क्या नजरिया है?
3: ऐसे है, अगर काम जो फैमिली
1: काम से फुर्सत मिले तो फैमिली, और फैमिली से फुर्सत मिले तो काम।
3: पहले काम, फिर काम, काम के बाद फुर्सत मिले फैमिली।
1: अरे मुझे लगा कि शायद काम के साथ फैमिली।
3: काम नहीं करेंगे तो आपके साथ फैमिली भी नहीं है।
1: गहरी बात कही इन्होंने कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो फैमिली भी आपके साथ नहीं है। हाँ, तो मतलब अहमियत काम की ज्यादा है, आपकी कम, ये कह रहे हैं
3: आप? अगर आपको आपको ये इस बात की अहमियत नहीं पता है, आप दो चार महीना काम छोड़ के देखिए।
1: दो चार महीने सर मिर्जा, आप काम छोड़ के देखिए सर। बात तो आपने सही कही, लेकिन फिर भी ऐसे घर के कोई तो ऐसा शख्स या कोई तो ऐसा बंदा आपका होगा जिसको, ठीक है पैसे तो सबको चाहिए,

0: ज़रूरत है समझ में भी आती है, लेकिन कोई ऐसा भी बंदा होगा फैमिली का जिसको आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस है, वो चाहते हैं कि आप जो है प्रेजेंट हो, आपका टाइम होने चाहिए, आपसे वो बात करना चाहते हैं, कोई है ऐसा आपकी फैमिली में?
1: है ना, बच्चे ना।
0: हाँ तो देखिए ना, बच्चे हैं, उन्हें आपके काम से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने अब्बा से लेना देना है। तो फैमिली तो है आपके लिए, ये तो आप ये नहीं कह सकते कि काम के बाद फैमिली, काम के साथ फैमिली, ये हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने।
2: चलिए साहब, बड़ी अच्छी बात, अल्लाह खैर करे और आपको आपकी फैमिली से भी मिला के रखे और आपके काम में भी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़।
2: एंड फॉर नाउ चरण और बादशाह एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ जाइए, एंजॉय कीजिए ट्रैक बन जा तू। नाजिया सरवर आपके साथ हैं, FM 107 सुन रहे हैं आप, जुड़े रहिए हमारे साथ, दिल से
0: देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
5: एनर्जी आर,
4: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
5: देसी।
6: वेदर का हाल 107 देनाल।
7: राइट दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आज कैसा रहने वाला है मौसम? देखो, हमेशा की तरह आज भी कुछ नाराज आई मीन टू से कुछ गर्म और सनी ही रहने वाला है। वहीं पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। एंड यू गोना फील लाइक 46 डिग्री सेल्सियस, जो कि कल से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। वहीं पर आसमान एकदम क्लियर है, बारिश के कोई दूर तक चांसेस नहीं है। यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो हाई वर्सेस वेरी हाई लेवल पर है, इसीलिए ज्यादा टाइम धूप में रहने से परहेज कीजिए। अदरवाइज जो प्रिकॉशंस हैं, जो हम बोलते आ रहे हैं आपको, वो सारे आपको जरूर लेने हैं। वहीं पर अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो रात में होगा 32 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 73%, मतलब कहीं ना कहीं रात के टाइम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, सुबह के टाइम तो रहा ही है। और अब आने वाले दिनों में आई मीन कल परसों जो है थोड़ा सा मिस्टी और हेजी वेदर रहने वाला है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। एयर क्वालिटी इज़ ऑलमोस्ट मॉडरेट, मगर फिर भी अगर सेंसिटिव लोग हैं, अस्थमैटिक हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, एहतियात रखिए। आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है फिलहाल 43-44 ही रहेगा। तो अभी बस यही है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट, स्पेशली जो पीक आवर्स हैं 11 to 4, उसमें डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। अगर नहीं बच सकते तो फिर जितने प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग योर हाइड्रेशन एंड एवरीथिंग, उसका भरपूर ख्याल रखिए। और सनग्लासेस, कैप्स, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, इसका इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से कीजिए।
1: रेहान है हमारे साथ, कहते हैं मेरा बेस्ट डिसीजन था कतर में आकर जॉब करना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सर रेहान,
7: नाइस। चलिए, ये आपकी फैमिली के लिए आपका बस बेस्ट डिसीजन था, सो वी अप्रिशिएट दैट।
1: नाइस टू हियर योर वॉइस एट लंच। भाई एचआर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मुबशिर फरहान हमारे साथ, ओके। अस्सलाम वालेकुम सरवर मिर्ज़ा एंड नाजिया उस्मान उरकज़ई हमारे साथ हैं।
7: वालेकुम अस्सलाम
1: व रहमतुल्लाह। यहाँ पर वॉइस नोट आया है भाई, तो अभी नहीं सुन पाएंगे। बदीउज़्ज़मान है हमारे साथ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको सुन लें। ट्रैफिक अपडेट शेयर करिए हमारे साथ सूफियान ने, और बताया है कि अल अमीर रोड जो है वहाँ पर मूवमेंट में तो लग रहा है ट्रैफिक। सूफियान भाई क्या कहना चाहते हैं, कुछ है हाँ। अगर तो अपडेट मजीद दीजिएगा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों? आज काफ़ी दिनों बाद मैसेज कर रहा हूँ सर, थोड़ा बिजी था। रिजवान है हमारे साथ, नसीमी, रिजवान नसीमी, ओके। एम बी भी हमारे साथ जुड़ गए। नादिया जी, सरवर जी, आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कतर, कहते हैं एम बी बी।
7: वेरी गुड आफ्टरनून,
1: बहुत बहुत अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरवर भाई और नादिया बहन, कैसे हैं आप लोग? सरवर भाई, आपका मिजाज, आपका मजा, आपकी तबीयत बहुत पसंद है, खुश रहें। इमरान अब्बास यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप भी खुश रहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं।
7: हेलो,
8: अस्सलाम वालेकुम।

0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ?
1: क्या हाल चाल है? आप खैरियत से ना?
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से, आप कैसे हैं?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। दुआएं आप सबकी।
0: जैज भाई है हमारे साथ या शुएब भाई है, दोनों में कन्फ्यूजन रहता हूँ।
1: है भाई
0: साहब
1: खाना शुरू कर दो।
0: जैसे फिर ऐसी बात चमन बात किया दिलाना तो
2: जैसे ही हो सकते
0: कर सकते। कैसे हैं? खैरियत से हैं?
2: अरे इन्हें वॉलनट से आमंड खिलवाइए
1: भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई, अल्लाह का शुक्र है।
2: अच्छा आज हम पूछ रहे हैं करियर ग्रोथ और फैमिली टाइम पर हमारा ये टॉपिक है। अगर आपको करियर प्रमोशन और फैमिली के साथ इक्वालिटी टाइम स्पेंड करने में से एक चॉइस करनी हो तो आप कौन सी चॉइस के साथ जाएंगे और क्यों?
1: सबसे पहले जाएंगे फैमिली के
2: साथ। अरे वाह क्या बात है, ये लगी मुझे बहुत अच्छी बात कि चलो ठीक है करियर ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट देन इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके साथ आपकी फैमिली हो, क्योंकि उन्हीं के लिए आप आफ्टर ऑल जो कुछ भी करते हैं ना फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। अगर उनका ही साथ नहीं है तो फिर क्या मजा के लिए अपनी अचीवमेंट्स और सेलिब्रेशंस के साथ रहना, है ना?
1: कैरियर भी आपका तभी बनेगा जब आपकी फैमिली साथ होगी, जब आप फैमिली को टाइम दोगे। फैमिली को टाइम दोगे तो फैमिली आपके लिए दुआ करेगी।
2: अच्छा जी ओ नाइस, ये वाली बात तो हमने सोची नहीं कि फैमिली जो दुआ करेगी उससे आपकी किस्मत बदल सकते हैं आप, है ना?
0: क्या बात है भाई, जबरदस्त
2: चमक सकती है। ये बात तो है, लेकिन चलिए फिर भी ये भी सोच सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए हम फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे जावेद जी ने कहा कि जो सो कॉल्ड बिजनेस करते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो ऐसे में फैमिली का तो सपोर्ट तो है, फिर भी दुआएं देते हैं फैमिली?
1: नहीं फैमिली जो है ना, फैमिली तब भी दुआएं देती है मगर जो आगे चलने के बाद में जो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है ना वो फेस नहीं कर पाते।
2: So you wanna say, एक तरह का इमोशनल डिस्टेंस होने लगता है। ट्रू, ये बहुत सही पॉइंट
1: होने लगता है क्योंकि उसमें जो है ना फिर तो कुछ खटास आने लगती है अगर तुम जो है ना खाली बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो।
2: बिल्कुल
1: तो उसमें जो है ना रिश्तों में से खटास आना शुरू हो जाती है।
2: उस वक्त हमें हमारी फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए और फिर तब बदला ले दिए फैमिली आपसे वहां जाके जब आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, जब आप दे सकते थे अब वो टाइम नहीं देने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आपने हमें सिखाई और हमारे लिसनर्स को सिखाई वो ये कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करता दिखते हैं। भले हम उनको कितना भी समझाएं ये करो वो करो, लेकिन जो हमें करता देखते हैं वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो हम अगर आज उनके लिए वक्त निकाल रहे हैं तो कल वो हमारे लिए वक्त निकालेंगे।
0: क्या बात है,
2: बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी चॉइस आपकी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े।
0: बहुत शुक्रिया जैज भाई,
2: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
1: सरवर भाई।
0: जी जी
1: पेंटिंग बन रही है सुबह से।
0: कैंटीन?
2: पेंटिंग
1: कैंटीन नहीं भाई साहब, अरे यार खाना नहीं खाया क्या, कैंटीन सुनाई दे रही है।
0: अच्छा पेंटिंग बन रही है किसकी? मेरी
1: पेंटिंग बन रही है भाई साहब, कोई बैठने को तैयार है आपके ऊपर? शायद सुन भी रहे हो।
0: अरे ये कोई वो कोई शोशा छोड़ के गया होगा जरूर, जिसका नाम कबीर है, ये ऑफिस वहीं से आ रही है, बात 100% है ना? ऐसे ही है
1: कबीर भाई बैठना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई पेंटिंग बनाऊंगा, अपॉइंटमेंट बैठूंगा सलर भाई को।
0: आज कुछ कहानी सुनाई होगी पेंटिंग से मुताल्लिक, मुझे लग रहा है। ऐसे ही है?
1: बिल्कुल जुड़ाई है
0: उसमें। मैं ही मुजरिम हूँगा और मैं ही जालिम हूँगा और मैं ही दुश्मन हूँगा और मैं ही विलन हूँगा।
2: वाह कबीर ने एकदम सही पहचाना।
0: चलिए
2: पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, तस्वीर नहीं बनती।
0: हो सकता है वो पेंटिंग जिसकी बना रहा हो वो निकल लेता हो, ये भी होगा कि बताइए पेंटिंग बनाई और काम तमाम, ऐसा भी हो सकता है।
2: अरे तो मैं जल्दी से बना लूं।
0: सबसे पहले तो नाजिया बनाना चाहेगी मेरे को।
2: जल्दी से बनाओ।
1: सुन लिया।
0: तो आज असल में तबीयत जरा हल्की हो रही है मेरी, वरना उनको अच्छे जवाब देता मैं। चलिए भारत बहुत बहुत शुक्रिया जैस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
0: छोटा सा ब्रेक, यूं गए और यूं वापस आए।

0: निकलने से पहले टूट गए
1: तोड़ दिए गए। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। वैसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो फैमिली को जो है कहीं ना कहीं
1: अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तक दुनिया जो है अल्लाह ताला खैर करे सभी के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
2: कैसे हैं आप लोग?
1: अरे हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं भाई? कहाँ थे?
2: मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ।
1: अरे खैरियत? और कोई नई ताजे खास?
2: जिंदगी घट रही है।
1: कहाँ है
2: अभी?
0: अच्छा मुझे सुनाई दे, कह रहे जिंदगी घट रही है।
1: घट भी रही है।
2: घट भी रही है।
1: घट भी रही है और कट भी रही है। वाह वाह वाह। आरिफ भाई है ना?
0: आरिफ जी। आरिफ जी।
1: क्या बात
2: भाई, पहचाने लग गया।
1: आरिफ भाई एक बार हंस के दिखाइए।
2: नहीं अभी मजाक उड़ाओगे आप।
1: क्या हो गया फिर? ये हुई बात, अब पता चला गया आरिफ भाई है। तो क्या कहते हैं आज जिंदगी का जो मौजू है उसके हवाले से क्या सोचना है आपका?
2: जिंदगी का मौजू तो जैसे अब मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जो आते हैं हम लोग के लिए तो जॉब ग्रोथ ही बहुत बंदे ना हो, मतलब उसको
1: ना लेके
2: भी उसी को लेंगे। उसको चूज ना करके भी उसी को चूज करना पड़ेगा उन लोगों को,
1: मजबूरन कहना चाहता
2: हूँ। मजबूरन पर फैमिली इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका हक है हमारे साथ टाइम बिताना, पेरेंट्स का, बच्चों का, बीवी का भी।
0: सही। तो मतलब आप कहते हैं कि दोनों ही चीजें हो विद गुड बैलेंस कहीं ना।
2: हाँ, मिला के चलना चाहिए बैलेंस।
0: अपने
2: गाँव का ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ, फ्राइडे को 3 हफ्ता हुआ उसको। वो अभी घर बना के और फिर सऊदी गए थे और सऊदी 3 फ्राइडे पहले 3 जुम्मा पहले का इंतकाल हो गया, सऊदी में हार्ट अटैक आ गया। अभी वही मैं सोच रहा था उस टाइम, मेरे को मैं अंदर से एकदम पूरा हिल गया था। पैसा आदमी कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, पर देखो पैसा कमाते कमाते फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाया। उसके बाद घर भी बनाया अच्छा से, अलहमदुल्ला बनाया, उस घर में अच्छे से वो रह भी नहीं पाए।
0: देखो सही बात है कि करियर दोबारा बनाया जा सकता है मगर अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त जो है वो वापस नहीं आता, तो ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन कहीं ना कहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू कि आपने कॉल किया हमें और इतने अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू सो मच।
0: अल्लाह हाफिज।
1: और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक ट्रैक। देवी नेगी कह रहे हैं तुमसे मिलने को दिल करता है, कुछ हाल हमारा भी ऐसे ही है आप लोगों के लिए। फिलहाल एनर्जी आर इस वक्त सुन रहे हैं आप FM 107 पे, सर्वर नाजिया आपके साथ दिल से
0: देसी।

0: हाय।
1: राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी, आज सरवर उनासिया हम दोनों आपके साथ हैं। 2:18 ऑन द क्लॉक एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: कौन है हमारे साथ? माशाल्लाह
2: ठीक ठाक
1: है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद,
0: कल भी बात हुई थी, पहली बार आए थे, शायद बहुत दिनों बाद आए थे। क्या बात है भाई, कैसे हैं नवीद भाई? खैरियत, याद आ गई आपको हमारी आज?
2: जी जी, याद तो आपके, अस्सलाम वालेकुम से पहले जब आपने शो शुरू किया उसक से याद था और ऑन करके बैठे हुए थे रेडियो में, बस मौका मिला कॉल
0: करने का। अहलन वसहलन, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग भी। तो कहाँ हैं अभी एग्जैक्टली नवीद भाई आप?
2: सर मैं अल रायान में हूँ इस वक्त।
0: क्या कह रहा है ट्रैफिक?
2: ट्रैफिक सर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर है। स्कूल का जो टाइम है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, छुट्टी का, तो बिल्कुल क्लियर है अल्लाह का शुक्र।
0: लंच हो गया, खाना खा लिया?
2: जी सर लंच हो गया, मैंने आज राइस खाए थे।
0: अच्छा,
2: विद रायता एंड चटनी।
0: घर से लाए थे, ऑफिस में ही खाया, टिफिन लेके आए थे?
2: सर मैं यूज करता हूँ क्योंकि बाहर जो है वो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए फिर प्रॉब्लम बनता है।
0: अच्छा, तो खुद बना के लाते हैं या
1: टिफिन सिस्टम?
2: जी सर हम लोग खुद ही बनाते हैं, एक्चुअली मेरे कजिन ब्रदर्स मेरे साथ यहीं पे होते हैं तो हम लोग रात में बना लेते हैं।
0: अरे यार क्या माहौल होता होगा रूम का फिर तो, भाई एक साथ है, कितने लोग हैं?
1: नहीं नहीं, ये सफाई भी खुद कर लेते हैं।
2: सर हम चार लड़के हैं
0: माशाल्लाह, और वो तीनों रिश्तेदार हैं, मतलब आप चारों रिश्तेदार हैं आपस में?
2: जी सर दो खाला के बेटे हैं।
0: ओए होए होए, क्या लाइफ सेट कर रखी है,
1: कितने अच्छे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह, सब साथ में मिलजुल के रह रहे हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल, वाकई
0: वाह वाह यार, अल्लाह ताला आप लोगों के बीच में मोहब्बत जो है उसको कायम रखे, नजर से बचाए, और नसीब वाले हैं आप सब नसीब वाले हैं, यकीन जानिए अल्लाह ताला खुश रखे।
2: तो आपको भी वेलकम करूंगा, आप ज्वाइन करेंगे किसी दिन हमें?
0: हाँ जरूर, इसीलिए तो पूछ रहा था, पता कर लेता हूँ पहले कितने लोग हैं, कि कितने पैसों में कितना गेम हो रहा है, ये सब पता कर लेता हूँ मैं पहले, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ।
1: और एक दिन आप चारों लोग कुछ भी मत बनाइएगा, सर्वर जो है वो दो दिन का बना के आप लोग खिलाएंगे।
0: सर्वर वैसे ही बन गए, इंशाल्लाह क्या बात कही है भाई, जरूर
1: कौन सी नंबर की शादी
0: करिए,
1: कौन सी वाली
0: ये छोड़िए, दूसरा एक सवाल रखिए खाली, दूसरे सवाल तो नवीद भाई ने तो बता ही दिया, नवीद भाई ने तो बता ही दिया कि कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं कहना चाहिए, माशाल्लाह भाइयों की वजह से ही आए हैं यहाँ पे, ऐसा फैसला लिया है जिंदगी का, और अल्लाह ताला खुश रखे भाई। तो फिर भी घर वालों की याद तो आती होगी, दूर आ गए हैं उनसे?
2: सर डेफिनेटली, एक्चुअली अब मेरी फैमिली में लाइक मेरी दो सिस्टर्स हैं, वो दोनों मैरिड हैं, और मेरे फादर अल्लाह बख्शे वो जा चुके हैं दुनिया से, तो मेरी मदर ही हैं पीछे।
0: आमीन।
2: तो आप दोनों को मैं इनवाइट करूंगा कि आप लोगों ने ना छोटी के बाद मेरी शादी है तो इनविटेशन में पाकिस्तान के आपको अरेंज करवा दूंगा।
0: बधाइयां पटाखे, क्या कहने,
1: मुझे लगा आप कहेंगे मिठाइयां और क्या।
0: नहीं नहीं मिठाइयां नहीं, हम तो टिकट की बात करेंगे ना, हल्का हाथ रखो यार, ऐसा ना आदमी भाग जाए।

0: जी
1: हाँ बिल्कुल मेरा अगले महीने पाकिस्तान जाने का प्लान बन रहा है एंड आई प्रॉमिस इंशाल्लाह मैं आप दोनों के लिए वहाँ के अच्छी स्वीट लेके आऊंगा इंशाल्लाह
0: क्या बात है यार नहीं तो शादी कब बताई आपने किस तारीख में कब है
2: खाना पूछे आप सीधे ही डिनर का
1: मार्च में है
0: मार्च 2027
2: जाहिर सी बात है
0: 20 मार्च 2027
1: Exactly,
0: लिख लेता हूँ हाथ पे गाड़ के लिख लेता हूँ भूल ना जाओ मिट ना जाए
2: गुदवा
0: लेता हूँ जाके दावत ले दी है यार क्या बात है भाई अल्लाह ताला खुश रखे और इसी तरीके से आप हंसते खेलते रहे अपने भाइयों के साथ रहे फैमिली के साथ रहे और खुश रहे बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए वाईकुम थैंक यू सो मच अहलन वसहलन ये थे नवीद भाई और
2: अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि मैं एकदम स्ट्रेट वे करियर प्रमोशन
0: मैंने आपसे बात नहीं करी ना नाजिया अभी तक नाजिया ढूंढ रही है कोई तो आ जाओ अरे किधर हो करियर वाले अस्सलाम वालेकुम सर भाई नहीं नाजिया मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेशन किसने दिखाया है भाई दुनिया में हम सीख रहे हैं आपसे नादिया आप क्या बात कर रही हैं सुबह दोपहर शाम बेचारी मैं क्या बताऊं बस तीनों वक्त रोटी हाथ से बनाना घर वालों को खिलाना खिला के भाग जाना काम करना और मतलब मैं
2: बर्तन धोना
0: हाँ बताइए साहब कमाने
2: अब ये बात अलग
0: है कि ये काम तीन चार नौकर कर रहे हैं ये खाली वहां खड़ी हुई ये अलग बात है हो रहा है ये पूरा गेम हो रहा है इतनी पैसों में अच्छा कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम सर भाई नादिया मैम कैसे हैं आप दोनों गुड आफ्टरनून मैं तो फर्स्ट टाइम कतर में आया जब 4 या 5 साल हैं कैसे कैसे गुजारे अच्छा बाद में फैमिली के साथ पूरे 6 साल एक दिन एंजॉय किया फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है मुमताज अहमद माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे फैमिली के साथ ही रखे खुश खुशम रखे सर भाई इस जस्ट बॉर्न कहते हैं और यहाँ पर मेरा फोटो भी भेज दिया है इमोजी बना के एक
2: वैसे भाई आपने बिल्कुल सही पहचाना अभी 4 घंटे पहले पैदा हुए हैं
0: नाम नहीं लिखा लिखा हुआ ऊपर रेंट सॉल्यूशन माय गॉड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द सॉल्यूशन पूरी लेटर आया अरबाज का अरबाज मेरे भाई ना पढ़ पाएंगे
2: अच्छा,
0: टाइम
2: वो नहीं है वही भाई हैं जिन्होंने शादी को अपोज किया
0: हाँ वो खुलासा दे रहा हूँ क्यों नहीं करनी मुझे शादी अस्सलाम वालेकुम फैमिली सुकून है पैसा लाइफ है कौन है शाहरुख खान अदर लिखा हुआ नाम तो बताइए क्या है आपका ओके
2: okay.
0: तो हमें आपके साथ FM 107 शहजादा सलीम
2: कैसे हैं शहजादा जी
0: भाई अपनी पिक सेंड करना
2: भाई एक ही फ्रेम में आएगी ये
0: अली है हमारे साथ
2: भाई भेज पाएंगे
0: यार मुझे इन चीज से एक बड़ी चीज याद आती ना दिया
2: क्या?
0: अभी ऑफ एयर बताऊंगा ऑफ एयर
2: अच्छा
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: अहलन व सहलन कौन है हमारे साथ
3: शेर सुना तो फिर शायद आपको मेरी नाम और समझ जाएगी सर भाई
0: यार शेर आ रहा होगा मंसूरा मुंतजा की तरफ से नाम तो बताना पड़ेगा
3: ओके आपने इतना सब कुछ बता दिया चला नाम ही बताएगा
0: नहीं वो तो खुद वो खुद बताना पड़ेगा वरना पैसे लगेंगे उसके आई विल चार्ज एक्स्ट्रा
3: ओके आपके लिए चलो भाई आपके लिए सब कुछ आ जाए कोई बात नहीं

0: मटन
1: पराया कर दिया।
0: नहीं सही कहा, मटन क्यों खाओगे, मटर खाओ।
2: सर भाई एक शेर है सुनाओ।
1: हाँ इरशाद इरशाद
0: सुनाइए।
2: कहते हैं लिबास देखकर हमें गरीब ना समझे, लिबास देखकर हमें गरीब ना समझे, हमारे गम भी तेरे जायदाद से ज्यादा है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय नादिया खरीदोगी
2: जी सर
1: बीघा।
0: लिबास देखकर सर में मजा, हमें अमीर ना समझे।
1: एक्चुअली ये अच्छी बात की नादिया ने, क्या बात है भाई। ओके सो क्या कहते हैं फैमिली के हवाले से, क्या कहना है आपका?
2: ओके ऐसा है मेरे ख्याल में सौरभ भाई, आप टॉपिक आज का जो टॉपिक है मेरे ख्याल में दोनों को बैलेंस रखते हैं, लेकिन फर्स्ट पे जो रखते हैं ना पहले भी फैमिली है, फैमिली के अलावा हम कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में अगर हम 24 घंटे काम करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फैमिली नहीं है, हम फैमिली को टाइम नहीं देते तो ये पैसा हमारे लिए फजूल है, हमारे ये पैसा काम नहीं आते। जो हम काम करते जो हम लोग पैसा कमाते तो फैमिली के लिए ही कमाते हैं ना, माँ बाप के लिए ही कमाते।
0: सही।
2: तो अगर हमारी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली वाले खुश नहीं है, हमारी फैमिली हमसे राजी नहीं है, तो हमारे पैसे का हमारे इनकम का क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से मेरे ख्याल में सबसे फैमिली है, माँ बाप है। और एक और बात बताऊँ मैं, हम लोग काम करते सर भाई आपको पता है, परदेश तो वैसे भी मुश्किल काम है, फिर काम भी उससे भी ज्यादा थकन की चीज है, लेकिन जब हम लोग काम में थके होते हैं और काम से मतलब मुश्किल पैदा होता है नाजे बहन, जब मैं अपनी अम्मी को कॉल करता हूँ कसम से, जब वो मुझे दुआई देते हैं तो मुझे सुकून भी मिलते हैं और खुशी भी मिलते हैं। तो जो काम होता है वो मुश्किल होते हैं, वो परदेश होते हैं, वो मेरे लिए आसान हो जाता है।
1: क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या मतलब कंक्लूड कर दिया भाई ने ये बात कह के,
0: अच्छा कंक्लूजन हो।
1: बहुत शुक्रिया भाई मुदस्सिर भाई, वक्त भी हुआ जाता है तो इजाजत भी ले लेते हैं और आपकी बात भी बहुत
0: अच्छी, बहुत अच्छी,
1: बहुत शुक्रिया।
2: चलो चलो थोड़ा मेरे रिलेटेड था अच्छा लगा था तो कॉल करने
1: के लिए फिर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हमारा घर जाने का टाइम हो गया, इनका पिया घर आ रहा है तो अब
0: सर्वर भाई का तो घर जाने का टाइम है, लेकिन मेरा तो अभी तो है नहीं।
1: क्या
0: और हाँ आज मेरा लाइव भी है, 5 से 6
1: जरूर सुनिए, जरूर सुनिए के साथ फैमिली
0: नहीं ये हेल्थ पे है, हेल्थ रिलेटेड है जहाँ हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगी, तो जरूर आपको अगर मौका मिलता है 5 से 6 जरूर सुनिए। वेमेन का स्पेशल शो है, बहुत ही कमाल के टॉपिक्स है, वेमेन वेलनेस
1: बिल्कुल। और डॉक्टर का नाम भी अगर आप बताना।
0: जी हाँ डॉक्टर सारा हमारे साथ होंगी आज,
1: डॉक्टर सारा।
0: तो बस आज हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 5 से 6 लाइव शो में।
1: चलिए भाई फिलहाल इस वक्त के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसे

हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिन्हें दुनिया के तमाम फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने सिर्फ गोलकीपर नहीं बल्कि फुटबॉल की दीवार कहा। जी हाँ, दिनो ज़ॉफ। इटली का वो सिपाही जो 40 साल की उम्र में भी गोल पोस्ट के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं बल्कि ठंडक, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और हिम्मत का नाम भी है। दिनो ज़ॉफ का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। यंग एज में जब वो फुटबॉल खेलना शुरू कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि वो फुटबॉल के लिए फिट नहीं है। उनकी हाइट और फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर भी सवालात उठाए गए, लेकिन ज़ॉफ ने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग, मेहनत और साइलेंट डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया और फिर धीरे धीरे वो बन गए इटली के सबसे भरोसेमंद गोलकीपर्स में से एक। ज़ॉफ ने अपने क्लब करियर में भी शानदार कामयाबियां हासिल की। उन्होंने यूवेंटस के साथ कई सीरिया टाइटल जीते और इटालियन फुटबॉल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा याद करती है इटली के लिए उनकी कामयाबियों की वजह से। मसलन, दिनो ज़ॉफ ने इटली के लिए 112 इंटरनेशनल मैचेस खेले और फिर आया 1982 का फीफा वर्ल्ड कप। स्पेन में होने वाला ये वर्ल्ड कप ज़ॉफ के कैरियर का सबसे यादगार टूर्नामेंट बनने वाला था। उस वक्त ज़ॉफ की उम्र 40 साल थी, लेकिन उम्र ने उनकी हिम्मत को जरा सी भी कम नहीं किया था। वो इटली के कप्तान थे और टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी लीडरशिप, एक्सपीरियंस और गोलकीपिंग से टीम को संभाला। इटली ने नॉकआउट स्टेजेस में ब्राजील और पोलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में सामने था वेस्ट जर्मनी। सोचिए, एक तरफ वर्ल्ड कप का फाइनल और दूसरी तरफ 40 साल का गोलकीपर दिनो ज़ॉफ। इटली ने जबरदस्त फुटबॉल खेली। पाओलो रोसी, मार्को तर्देली और अलेसांद्रो अल्तोबेली के गोल्स की मदद से इटली ने वेस्ट जर्मनी को 1-3 से शिकस्त दी और दिनो ज़ॉफ बन गए वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा शायद फाइनल के बाद आया, जब रेफरी की फाइनल हुसल बजी, इटली के प्लेयर्स खुशी से झूम उठे और फिर पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। इटली के प्लेयर्स ने अपने 40 साल के कप्तान दिनो ज़ॉफ को कंधों पर उठा लिया। एक गोलकीपर, एक कप्तान और अब एक वर्ल्ड चैंपियन। यह मंजर फुटबॉल हिस्ट्री के यादगार लम्हों में शामिल हो गया। दिनो ज़ॉफ कभी फ्लैशी नहीं थे, ना वो अननेसेसरी टॉन्ट्स देते, ना ही हर वक्त हेडलाइंस में रहने की कोशिश करते, लेकिन जब गेंद उनके गोल की तरफ आती तो सबको पता था दिनो ज़ॉफ वहां है, पुरसुकून लेकिन तैयार, हमेशा तैयार। उनकी गोलकीपिंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ रिफ्लेक्सेस नहीं था, उनका एक्सपीरियंस उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वो गेम को समझते थे, डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते थे, प्रेशर के वक्त अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते थे और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती, दिनो ज़ॉफ मजबूती से गोल के सामने खड़े होते चट्टान की तरह। दिनो ज़ॉफ का करियर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है दोस्तों, कि ग्रेटनेस हमेशा जवानी की मोहताज नहीं, कभी कभी एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और सालों की मेहनत टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतना कोई आम कामयाबी नहीं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कप्तान के तौर पर उठाना, यह दिनो ज़ॉफ को फुटबॉल के सबसे अजीम गोलकीपर्स में शामिल करता है। उन्होंने साबित किया कि फुटबॉल सिर्फ नौजवानों का खेल नहीं, जब तक जज्बा जिंदा हो, जब तक मेहनत का सिलसिला जारी हो और जब तक अपने मकसद पर यकीन हो, उम्र सिर्फ एक नंबर है। दिनो ज़ॉफ ने यह भी साबित किया कि ग्रेटनेस आवाज से नहीं, काम से होती है। वो शोर मचाने वाले हीरो नहीं थे, वो खामोशी से अपना काम करते थे और जब जरूरत पड़ती तो पूरी टीम उनके पीछे खड़ी होती थी।
दिनोज ऑफ इटली की दीवार एक गोलकीपर एक कप्तान एक वर्ल्ड चैंपियन और एक ऐसा लेजेंड जिनका नाम फुटबॉल की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं आपको बताता हूँ अपडेट्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है या क्या काम का है जो आपसे चूक में छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा गैजेट है जो आपको काम आ सकता है। गैजेट्स पर हम आएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम आने वाली है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेबसाइट जो आपके काम आएगी, अगर आपको म्यूजिकल कुछ करना है आप, या चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आप गाने लिखते हैं, सॉन्ग राइटर, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेट, ये भी आपका कंटेंट जनरेशन हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसका नाम है, पहले तो लिखना है आपको X, फिर डालना है स्लैश, फिर लिखना है माइनस MINUS माइनस डॉट, फिर लिखना है प्रो PRO फॉरवर्ड स्लैश AI। आई नो नाम बहुत लंबा है, पर लेट मी जस्ट रिपीट। ओके, तो आपने लिखा सबसे पहले X, एक्सरे वाला, उसके बाद आपने डाला डैश, और उसके बाद आपने लिखा माइनस MINUS, उसके बाद आपने डॉट लगाना है, फिर लिखना है प्रो PRO, फिर फॉरवर्ड स्लैश और लिखना है AI। अब क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऑडियो है और उसके पीछे जो है नॉइसेस हैं, या मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉन्ग, आपने कोई गाना जो है चुन लिया और आप चाहते हैं कि इस पे कवर बनाना है, मुझे कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू सिंग, यू वांट टू रैप, कुछ भी करना है, आपने वो ऑडियो अपलोड किया इस वेबसाइट पे और ये जो है उसके सारे कॉम्पोनेंट जो उसमें बज रहे हैं उन सबको अलग करके आपको दे देगा। Right from drums to everything will be separated और audio अलग, तो आप उन सबको जैसे मर्जी चाहें experiment कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहे use कर सकते हैं, या simple audio हटा के जो main vocal है उसे हटा के आप music भी कुछ कर सकते हैं। It will not only teach you music, it will also help you कि आप अपने content generation के लिए कुछ अगर ट्वीक करना चाहे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में गाना बनाते हैं और वो म्यूजिक यूज कर रहे होते हैं जो ओरिजिनल बॉलीवुड के किसी मूवी का होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ कंटेंट जो बहुत ही नीश है, अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उतना हिट नहीं किया है, मगर इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की है वो खुली हुई है, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू इट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट्स। अब जरा एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो आपके बहुत काम आएगी, और ये जो वेबसाइट है ये है म्यूजिकल बना रहा हूं इसको, म्यूजिकल नहीं है, हड्डियों की आवाज म्यूजिकल भी हो सकती है वैसे तो। दिस इज मसल विकी। ओके, मसल विकी MUSCLEWIKI.com। तो मसल विकी पे जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको पूरा बॉडी एनाटॉमी दिखा देगी। भाई देखो, आपको कौन से मसल पे काम करना है, आप कोई भी मसल इसमें चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली मसल पे काम करना है या इन दो मसल्स पे साथ में काम करना है, एंड उसके बाद आपको ये पूरा पूरा चार्ट बना के देगा कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया है और ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, तो आपको आसानी रहेगी। समटाइम्स यू नो पीपल हु आर शाय लाइक मी, हम लोग पूछ नहीं पाते कि भाई ये कैसे करना है वैसे करना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता भाई, होता है हमसे एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांगा जाता। तो हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किस मसल पे या कैसे काम करना है, तो ये मसल विकी जो वेबसाइट है इस पे जाके बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी। आप जहां पे टारगेट करना चाहते हैं उस जगह की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यू नीड टू सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड दैट इज इट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा जरा जरा खबर की तरफ, ठीक है। तो खबर आ चुकी है मार्केट में, अभी बात करी है बिल गेट्स ने, बड़ा शौक था कि बिल गेट्स अच्छा, तो बिल गेट्स ने बात करी है कि AI रेगुलेशन बहुत जरूरी है ग्लोबली, कि

0: इशू बन चुका है। अब वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। उनका ये भी कहना है कि AI की सेफ्टी को लेकर और उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज पे बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। लोग जो हैं उसके फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑल्सो उन्होंने बात करी AI को लेकर कि किस तरीके से एविएशन की सेफ्टी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे। एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन बहुत सारे AI पे बहुत जरूरी है। आई होप कि उनका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ा दो। आई रियली होप सो। बट ये थी अपडेट्स। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, और हर दिन एक ऐसे फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं जो अवेयर करता है कि कैसे आप नए जमाने के स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये नए जमाने का वो स्कैम है जो आज कल लोगों के सामने से हो रहा है। ये है डिलीवरी स्कैम्स, आजकल बहुत ज्यादा जो कि बढ़ चुके हैं और हर तीसरा बंदा इसका शिकार बन रहा है। ये स्कैम अचानक आपके फोन पर एक नॉर्मल एसएमएस या आपके इनबॉक्स में एक ईमेल के जरिए आते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपका कोई पार्सल या पैकेज आपके घर डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एड्रेस मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर

0: आपके ऊपर एक या दो डॉलर या रियाल की बहुत ही छोटी सी डिलीवरी फी बाकी है। इस मैसेज के नीचे एक ऑफिशियल दिखने वाला लिंक भी होता है ताकि आप उस मैसेज पे ज्यादा यकीन कर पाए, जिसे क्लिक करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ये बात उसमें लिखी होती है, या फिर आप फीस पे करने के बाद उस लिंक को क्लिक करें, फीस पे करें और फीस पे करने के बाद आपके पास आपका पार्सल पहुंच जाएगा। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है क्योंकि आम तौर पे आपके घर पे पार्सल आते रहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं जो आपके घर पे डिलीवर होना होती है, लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम। जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जो लिंक होता है, उसमें दिया गया लिंक असल में एक फिशिंग ट्रैप होता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक फेक डिलीवरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली होती है, चाहे वो कतर पोस्ट की हो या DHL की हो या कोई भी वेबसाइट ऐसी हो जो डिलीवरी करती है आपके घर तक सामान को। जब आप वहां अपना एड्रेस और क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं तो स्कैमर्स आपका पूरा बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। लोग इस ट्रैप में इसलिए आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता ही करता है और उनका कोई पार्सल आने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह से आप बच सकते हैं। कैसे? कुछ स्कैम से बचने के सॉल्यूशन भी हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि किसी भी अनजान लिंक पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं स्कैम होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मैंने तो अभी एड्रेस डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डाली है। हो सकता है आप लिंक क्लिक करें और आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, आपके लैपटॉप में वायरस आ जाए और वहां से वो मालवेयर वायरस के जरिए आपको स्कैम कर सकता है। लिंक पर क्लिक ना करना सबसे आसान है। किसी भी SMS या ईमेल में आए हुए डिलीवरी लिंक पर क्लिक ना करें। असली डिलीवरी कंपनीज कभी भी ऐसा रैंडम नंबर से ना लिंक नहीं भेजती हैं आपको। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप कोशिश करें कि पहले उस लिंक को पढ़ें और समझें कि क्या ये लिंक असल में मौजूद है या नहीं। अगर आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो डायरेक्ट आप गूगल सर्च इंजन पे जाके क्लिक करें, उस नाम को लिखें, कतर पोस्ट या उनकी वेबसाइट लिखें जिस वेबसाइट से आपके घर डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद ही आप बाकी का प्रोसेस करें। उसके अलावा छोटी फीस का ट्रैप, इससे भी बचना बेहद जरूरी है। स्कैमर्स जानबूझकर एक या दो डॉलर जैसी बहुत छोटी अमाउंट या एक दो रियाल या फिर 20-25 इंडियन रुपीस या 100-150 पाकिस्तानी रुपीस के बारे में बात करते हैं। ऐसे छोटे अमाउंट मांगते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे पेमेंट कर दें। ऐसे किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट ना करें क्योंकि ये छोटे पेमेंट जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। सेंडर का नंबर भी चेक करें। अगर मैसेज किसी नॉर्मल 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से आया है या ईमेल का एड्रेस अजीब है तो वो 100% स्कैम है। असली कंपनीज के मैसेज उनके ब्रांड नेम से आते हैं। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी स्कैम को पकड़ने का। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो शुरुआती जो मिनट्स होते हैं या एक दो घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइबर क्राइम को ऐसे में रिपोर्ट करें। अगर आप कतर में हैं और आपके साथ ऐसा कोई खुदा ना खास्ता फ्रॉड हो जाए, या फिर आप किसी और मुल्क में हैं, अगर आपके साथ वहां पर फ्रॉड हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक को इत्तला करें। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें। और भी कई जरिए हैं। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई बार हेल्पलाइन नंबर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर को भी आपको गौर से पढ़ना है क्योंकि ये एक और नए तरह का स्कैम है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको डिलीवरी के स्कैम से बचना है। लिंक पर कभी क्लिक ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करें कि वो सही है या नहीं, छोटी फीस के ट्रैप में कभी ना पड़े और सेंडर का नंबर हमेशा चेक करें क्योंकि ब्रांड कभी भी नंबर से मैसेज नहीं करता। और खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए फ्रॉड से। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्मार्ट मनी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग एंड आर वी रेडी। देखिए आज के इस डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है। कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहां लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल है। टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे, यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है। लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल एप्स के जरिए मैनेज करते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट समझते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है। देखिए कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना? जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में है, सुपरमार्केट में है, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इससे टाइम बचता है और ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है। लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ भी रहे हैं, इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते। लेकिन हाँ, कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है। उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है, अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाती है। गवर्नमेंट्स भी डिजिटल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती हैं क्योंकि इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। इसी वजह से कभी कभी लोग अपने बजट से ज्यादा खरीदारी कर बैठते हैं और फिर सर में दर्द होता है। So, मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ, कैशलेस सोसाइटी एक सोशल एस्पेक्ट रखती है। हर शख्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है, बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना, बजट मेंटेन करना, सर्विसेज सेविंग गोल सेट करना, मोबाइल एप्स चेक करना, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है। आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं, बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस, स्मार्ट बजटिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें तो कैशलेस वर्ल्ड उनके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107।

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर

0: चलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें यही सिखाया है। उन्होंने कहा, आसानी पैदा करो, मुश्किल नहीं, खुशखबरी दो, लोगों को दूर न करो। तो अगर कभी तुम्हें लगे मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो दिल में ये बात याद रखना, जब किसी काम का हुक्म किया जा रहा है हमें, तो अल्लाह मुझसे जो चाहते हैं वो ज़रूर भी ज़रूर, वो आसान एक काम है, वो मैं कर सकूँगा ज़रूर, और मैं तो वो खुशी से ही करूँगा। ये आयत हमें डराती नहीं, हौसला देती है। ये आयत हमें भागने को नहीं कहती, बल्कि करीब आने को कहती है। इसलिए मेरे बच्चों, इस्लाम मुश्किल का नाम नहीं, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है, और इस्लाम अल्लाह की ख़ास रहमत है। और बच्चों, तुम तो हो ही सरापा रहमत। अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सही राह की हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद अगले सेगमेंट में दाखिल होने से पहले बच्चों, चलो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, आ जाना। हाँ,
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं, समझा भी जाना चाहिए।
0: सामिनकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ ड्रामेटिक अंदाज में हम माँ और बच्चे के दरमियान एक गुफ्तगु और हवार मुजाकरात को आपके साथ शेयर करेंगे। इस ड्रामा में आप कहें या फिर ये जो मुजाकरात हैं, इसमें हमारे आज की तिलावत करदा आयत को हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक अमली तरबियत की एक मिसाल भी हमारे अम्मी और अब्बों के लिए रहेगी, तो ये बेदला ताला मुफीद होगी सबके लिए। तो बातें चल रही हैं एक बच्चा और उसकी माँ के दरमियान, यानी बच्चा और अम्मी। अब बच्चा कह रहा है, कुरान पढ़ना कभी कभी मुझे मुश्किल लगता है। अम्मी मुस्कराते हुए, ओ मेरे बच्चे, आओ ज़रा यहाँ बैठो, मुझे एक बात बताओ, क्या अल्लाह हमें मुश्किल में डालना चाहते हैं? बच्चा अब परेशान हो गया, वो सोचने लगा, नहीं नहीं अम्मी, अल्लाह तो आसानी चाहते हैं। अब अम्मी खुश हो गई, क्या बच्चे को समझ में आ गया है। अब वो कहने लगी, बिल्कुल सही, अल्लाह हमसे सख्ती नहीं चाहते, इसीलिए तो कुरान हमें आसानी का रास्ता दिखाता है। अब बच्चा कहने लगा, लेकिन अम्मी जब मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ तो थक जाता हूँ ना। अब अम्मी कहती है, और अल्लाह को तुम्हारी थकन का पता है बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देंगे, और तुम अपने आप को ज़्यादा थकाओ, ये भी तो अल्लाह ने नहीं कहा तुमसे, जितना हो सके पढ़ो, सही से पढ़ो, दिल से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, वही काफ़ी है। अब बच्चा कहता है, अच्छा जी, तो इसीलिए ना हमें तलहा साहब जो आज हमें कुरान फॉर किड्स की मेज़बानी कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, वो भी हमें सिर्फ एक आयत की वजाहत पेश कर रहे हैं पूरे हलके में। और अम्मी कहती हैं, हाँ मेरे बच्चे, देखो ना कितने अच्छी तरह तलहा साहब ने पूरी एक लंबी सूरत नहीं, बस एक आयत तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा दिल भी खुश रहे और कुरान भी बोझ न बने। बच्चा बड़ा मुतमैन हो गया। तो और इस तरह अब मेरे सुनने वाले बच्चे तो बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई तलहा साहब की जो बातें हैं ये अगर हम सुन रहे हैं तो वही मेरे लिए, वही हमारे लिए काफ़ी है, तो इतना भी चलेगा ना कि हम इन बातों को हम दिल से सुन रहे हैं। तो तलहा साहब ने तो यही कहा कि भाई दिल से जो भी करें दिल से करें। तो आज की आयत, इस्लाम ने सख्ती को मना किया है, आसानी की बात कही है, दीन हमारे लिए आसान है, तो ये तमाम तर बातें हमें खुशी से समझना है, खुशी खुशी, नाराज़ होकर नहीं, मजबूर होकर नहीं,

0: मत कहो, बस इतना कहो मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह मेरी मदद करेंगे। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें हारने नहीं देगी और तुम्हें अल्लाह के करीब ले आएगी। प्यारे बच्चों, याद रखो कुरान हमें डराने नहीं आया, हौसला देने आया है। कुरान हमें थकाने नहीं आया, सहारा बनने आया है। तो हमारा क्या सबक है आज का? सबक वही है, अगली बार जब कोई चीज़, कोई किताब भारी लगे, दिन मुश्किल हो, सबक याद ना आए, दिल में मुस्करा कर क्या कहना है, अरे अल्लाह तो मेरे लिए आसानी चाहते हैं ना। कोई फिक्र नहीं, यकीन रखना अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी बच्चों, सुन रहे हो ना मुझे? तो चलो ज़रा चंद लम्हों के लिए हर चीज़ भूल जाओ, बस दिल को सुनो। इस्लाम का दीन हमें जो है ना, कोई सख्ती के लिए नहीं आया कि तुम्हें हमारी तरफ मसाइब और मुश्किलात वगैरह अपने साथ लेकर नहीं आया। ये तो हमें सहारा देने के लिए आया है, हल लेकर आया है ना इस्लाम। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म ऐसे बनाए हैं जो हमारे लिए भारी ना हो और हमें थका ना दें। देखिए नमाज की बात ही अगर कहें तो पहले कितने औकात की नमाज आई थी, 50, फिर आहिस्ता कम करते करते करते करते अब सिर्फ 5 वक्त की नमाजें, सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाजें। तो तुम्हें बताओ कहाँ है 50 मरतबा नमाज पढ़ना दिन में, 50 अवकात में, 50-50 यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जैसे हम कहते नहीं तो सिर्फ 5 है, और भी इसमें 45 मरतबा ऐड कर लो। तो कितनी आसानी है हमारी इस दीन में, और अल्लाह हमसे वही चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। और अगर हम बीमार हों या सफ़र में हों तो अल्लाह हमें रियायत देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये किस लिए है? ये सब इसलिए है क्योंकि अल्लाह हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज की आयत में वही बात बार बार हम वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मेरे साथ एक मरतबा फिर कहो वो आयत, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। कहा है मेरे साथ? अच्छा जी, अब एक बार फिर इस आयत का जो दूसरा जुज़ है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र। क्या कहा मैंने? वला युरीदु बिकुमुल उस्र। देखिए सिर्फ 2 जुमले हैं, आसान है ना, आसान है, हो जाएंगे आसान। अगर आज ये अल्फाज कहना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, ये आयत दिल में ज़रा इसको महसूस, आयत को महसूस करो। अल्लाह तो आसानी चाहते हैं ना, बस यही जुमला बार बार कहते जाओगे तो देखोगे एक मरतबा तुम्हारी ज़बान से भी आयत बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी थकावट के आसानी से ये आयत निकल रही है और तुम्हें बड़ा सुकून मिल रहा है। नन्हे दोस्तों, कभी अगर 2 रास्ते हों और एक आसान हो तो याद रखना अल्लाह को आसान रास्ता पसंद है। आज की आयत हमें डराने के लिए नहीं, हमें सुकून देती है कि हाँ आसान, ये दीन आसान है, इन आसान रास्तों को इख्तियार करते हुए आ जाओ मेरे करीब। अब चंद लम्हे ज़रा खामोश हो जाओ बच्चों, इस बात को अपने दिल में बसा लो, अल्लाह आसानी चाहते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं और हम अकेले नहीं हैं, वो हमारा सहारा है। और अब हमें सुनने वाले जो प्यारे अम्मी अब्बू हैं, अब ज़रा इस पैगाम को अपने दिल से सुनिए। हम सब ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई आसान हो, उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनका मुस्तकबिल आसान हो, उनके सफ़र, उनके फ़ैसले सब आसान हो। हम आसानी को पसंद करते हैं, मुश्किल से घबराते हैं, यही वजह है कि हमने अपने बच्चों के नाम भी आसानी और यसर से जुड़े रखते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी आए ना। कहाँ कोई अपने नाम, बच्चों का नाम इस तरह के मुश्किलात के मानी जो होते हैं जिसमें ओवरऑल मौजू ये नहीं है। मौजू तो ये है कि हम ज़रा सोचें, जब हम खुद ज़िंदगी के हर काम में आसानी चाहते हैं तो क्या हम दीन के मामले में बच्चों पर सख्ती करना चाहते हैं? कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह की सुन्नत आसानी है, तरबियत में आसानी है, सख्ती नहीं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे काम आसान करे तो हमें भी अल्लाह का रास्ता नरमी और तवाजुन से अपनाना होगा। याद रखें प्यारे वालिदैन, जब ज़िंदगी में कोई मामला बहुत मुश्किल लगे तो ख़ुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैंने आसानी का रास्ता छोड़ दिया है? अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अब जब रास्ता आसान नहीं तो उस वक्त हमारे तकवा पर भी सवाल होता है, तो तकवा का रास्ता इख्तियार कीजिए, तक्वा अपनाइए, अल्लाह ऐसे ही हमारे रास्ते सब आसान कर देंगे। यकीन रखिए अल्लाह पर कभी इंसान अकेला नहीं होता, हर मुश्किलात के बाद ही आसानी है। और आज के इस प्रोग्राम चूँकि कुरान फॉर किड्स के हवाले से है, तो सामिन कराम जो हमारी माओ और अबुओं से गुजारिश है, हम ये गुजारिश करते हैं कि कुरान को सज़ा ना बनाएं, यानी सज़ा के तौर पर बार बार ये कुरान को धमकी के साथ डांट के साथ ये वाली हरकत ना हो। हर वक्त इस कुरान को पढ़ने के हवाले से बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाने की कोशिश की जाए, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अगर दीन की बात आए तो सिर्फ दबाव और प्रेशर ही के साथ काम हो रहा हो। क्योंकि मोहब्बत से अगर कोई काम हो तो मोहब्बत क्या करती है, आदत बनाती है, दबाव नफरत पैदा करता है। तो आज की आयत छोटी सी आयत है, एक छोटा सा बीज है जो आहिस्ता आहिस्ता ईमान का मजबूत दरख्त बन जाता है। आज मोहब्बत से लगाया गया ये बीज कल बच्चों के दिल में कुरान की मोहब्बत बनेगा। प्यारे बच्चों, तुम्हें मुखातब किए बगैर तो मैं अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। अब इस हफ्ते के जो एक प्रोग्राम है कुरान फॉर किड्स, मेरे तो दिल ये चाहता है कि हर दिन आपके मुखातिब हूँ और बच्चों के प्रोग्राम में वो जो दिलचस्पी महसूस करता हूँ। लेकिन चूँकि ये तरीक़ा है और हफ्ते में एक मरतबा ही आपसे मिलते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आपको हम कुरान का वो वादा, खूबसूरत वादा याद दिलाते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी ज़रूर आती है। बच्चों, अल्लाह ने हमें यह भी बताया कि एक मुश्किल के मुकाबले में आसानियाँ ज़्यादा होती हैं, यानी मुश्किल एक हो तो अल्लाह आसानी तो कर देते हैं। और एक बहुत प्यारी बात यह भी है बच्चों, ज़रा दिल से सुन लेना, कि जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए भी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। तो ये बात बड़े और बच्चों दोनों के लिए है। अगर हम किसी से नरमी से बात करें, किसी को माफ़ कर दें, किसी का दिल खुश कर दें, तो अल्लाह हमसे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, सामिन किराम, बड़े छोटे सब आज के इस किस्त में, आज के इस हलके में हमने जो सीखा है वो ये कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। इस्लाम आसानी का दीन है, कुरान दिल को सुकून देता है। इसलिए कुरान से मत डरें, कुरान को अपना दोस्त बना लें। ये तो हमें थकाने के लिए नहीं आया, ये तो हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। अगले हलके में हम एक और कुरानी आयत सीखेंगे, और ये एक ही आयत हमें ज़िंदगी जीने का एक नया खूबसूरत तरीक़ा सिखाती है। तब तक मेरे बच्चों, मुस्कराते रहो, अम्मी अब्बू की बात सुनते रहो और कुरान को अपने दिल के करीब रखो। अल्लाह तुम्हें आसानी, खुशी और सुकून अता फरमाए। साउंड डिज़ाइनर शकीब और मुझे तलहा अशरफ ज़मान को मां सलामा कहो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते باذنالله تعالى باي باي
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107, ओनली ऑन FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. एक लंबी सांस ली मैंने क्योंकि मैं ना हमारे स्टूडियो में दौड़ भाग कर रही थी लिटरली. मतलब ये जो स्टूडियो है ना, कभी कभी हमारे जैसे घर का ड्राइंग रूम होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला फील देता है. कभी माइक, कभी ये, कभी वो, एंड देन आई हैव टू चूज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, है कि नहीं. तो काम तो बड़ा ज्यादा है, आसान नहीं है, बट यस इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम क्योंकि यहाँ द रिक्वेस्ट शो पे आपके अपने पसंद के गाने हम प्ले करने वाले हैं. बोला आज का जो थीम है दैट इज रोड ट्रिप प्लेलिस्ट. तो कौन से वो गाने हैं जो आप हमेशा सफर के दौरान सुनना पसंद करते हैं. तो अभी हमें रिक्वेस्ट आई है मुगल की. वो कह रहे हैं कि ये गाना अमिता मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ. उनके दोस्त हैं खादिम भाई, कहते हैं कि उन्हें बस सुना दीजिए. और गाना भी बड़ा खूबसूरत है. आतिफ असलम एंड रोचक कोहली का ग्रेट कॉम्बिनेशन है. ओ हो हो. एंड द सॉन्ग इज देखते देखते. बेहद बेहद खूबसूरत गाना. तो ये हम आपको सुनाएंगे. और उसके बाद हमें एक रिक्वेस्ट आई है असलम की, जो कि सुनना चाहते हैं आतिफ असलम का गाना. और ये वो गाना है जिसके ज़रिए हमारे आतिफ असलम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. यस, दूरी सही जाए ना. तो ये गाना तो आप सुनेंगे, लेकिन पहले हम सुनेंगे देखते देखते, जो कि आपकी राहों में आ ही गया है. और आपने क्या करना है भाई, अगर आप भी ड्राइव करते हैं या अगर आपको सफ़र के दौरान कोई गाना बहुत पसंद आता है, अक्सर आप सुनते हैं, तो शेयर करें 6622107 पर अपने नाम के साथ. अपने डेडिकेशंस भी भेजें. और अभी स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: आपके ज़हन में वज़ारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वज़ारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वज़ारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107. कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर, आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप एंड द रिक्वेस्ट शो आपका अपना पर्सनल म्यूजिकल शो है. और अभी आज का जो थीम है ना बड़ा प्यारा है कि रोड ट्रिप प्लेलिस्ट. कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ कि जब भी आप ड्राइव पे जाते हो या लंबे सफर पे जाते हो तो ये गाना आप लाजमी सुनते ही सुनते हो. मतलब अभी मुझे मैसेज आया है आसिफ भाई का और वो सुनना चाहते हैं. क्या बात है. परिंदा फिल्म का ये गाना आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गाना मैं आपको कुछ ही देर में सुनाने वाली हूँ. एंड लिटरली इस फिल्म की अगर बात करें तो लोकेशंस वगैरह उस दौर में 90s के लेट 80s की मूवी है. सही तरीके से मिल नहीं रहे थे और उस वजह से इस फिल्म को बनने में 3 साल लगे. सो डेफिनेटली तुमसे मिलके ये गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं. थोड़ा सा लेट 80s का दौर है और 90s जब बूम कर रहा था है कि नहीं. और उसके बाद एक बेहतरीन सी रिक्वेस्ट आई है और वो है मोहम्मद सदीक की. एंड आई शुड टेल यू कि ये फिल्म वो फिल्म है जिसके लिए आदित्य चोपड़ा साहब ने 100 से भी ज़्यादा धुनों को सुना और उसके बाद सिर्फ 11 धुनों को फाइनल किया गाना बनाने के लिए. एंड दिस इज़ हाउ दिस सॉन्ग केम. कौन सा गाना है ये. यस वीर ज़ारा फिल्म का गाना तेरे लिए. सो ये दोनों ही खूबसूरत गाने तुमसे मिलके एंड तेरे लिए आपकी राहों में आने वाले हैं. सो वॉल्यूम बढ़ाइए और एक नॉस्टैल्जिक फील के साथ इन्हें एंजॉय कीजिए FM 107 पर. और हाँ मैसेजेस कीजिए 6622107 पर अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान की

0: सिर्फ FM 107 पर।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
3: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। Don't miss it. It's the Goal Show with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107. Dil Se Desi.
0: आप सुन रहे हैं The Request Show A for Amita के साथ, only on FM 107. Dil Se Desi.
4: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। The Request Show पर हम सब मिल रहे हैं, क्या बात है। And I can see the request. मुझे लगता है कि ये जो road trip वाली playlist है ना, इसमें हमारे listeners काफी emotional हो जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है ये, जब आप अकेले drive पे जाते हैं तो वो सारे emotions जो आप कभी वक्त ना मिलने की वजह से या फिर किसी और वजह से जता नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, वो सब एक साथ गानों के जरिए निकल रहे हैं। बिकॉज जिस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, लिटरली दिल को छू रहे हैं। और अभी हमें रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट कम से कम 4 लोगों ने की है, ठीक है। दैट्स अली, अफसल, उमर एंड आरिफ सुनना चाहते हैं ये बहुत ही दिल को छूने वाला गाना है, मासूम फिल्म का। इस धुन को सुनते ही समझ में आ जाता है गाना कौन सा है। क्या बात है अनूप गुप्ता की आवाज में। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। इनफैक्ट ये मेल वर्जन और इसका फीमेल वर्जन लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत खूबसूरत है। सो डेफिनेटली तुझसे नाराज ये गाना हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद रिक्वेस्ट की है मोहम्मद मजीद ने, कहते हैं कि भाई देखो अमिता, कोई भी बेहतरीन सा पश्तो सॉन्ग लगा दो, बस ड्राइव के दौरान मुझे वही सुनना पसंद है। तो चलिए मैं आपको सोफिया कैफ की आवाज़ में ये सुना दूँ तो कैसा रहेगा, जमा सरदारा। आई होप यू गोना लव इट। काफ़ी पेपी सॉन्ग है और आपकी ड्राइव को और भी मज़ेदार कर देगा। तो बस कुछ ही देर में आएगा, आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ। और आप क्या सोच रहे हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, या यूँ कहें जब आप बाहर सफ़र में जाते हैं या कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, ये गाना लाजमी ही आप प्ले करते हैं, वो गाना कौन सा है बताइए, हमसे शेयर कीजिए 666-22-107 पर, एंड हम प्ले करेंगे। सो ज़रूर से रिक्वेस्ट करें, स्टे ट्यून।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. द रिक्वेस्ट शो की आज की प्लेलिस्ट थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक है, थोड़ी इमोशनल है और थोड़ी वो सुकून के पल नहीं होते हैं जब आप अकेले ड्राइव पे जा रहे होते हैं, सफ़र में होते हैं, तो वो जर्नी बेहद खूबसूरत होती है. तो उस टाइम पर ना एकदम धूम धड़ाके वाले गाने कम ही लोग सुनते हैं. लेकिन आई शुड से कि अगली जो रिक्वेस्ट आई है वो आपको ना एकदम थिरकने पर मजबूर करने वाली है. येस, इट्स अ रियली रियली ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट. और मोहम्मद अशफाक ने हमें कहा है कि अमिता देखो ये गाना अगर आपने नहीं प्ले किया ना तो मतलब सोचिए फिर मेरा क्या होने वाला है. नहीं नहीं, हम डेफिनेटली प्ले करेंगे. एंड जब गिटार का ये पीस सुनते हैं देन वी नो ये गाना कौन सा है. सो लव आजकल फिल्म का आहू आहू डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जो कि हम प्ले करेंगे बस अभी कुछ ही देर में. एंड इस फिल्म में सच में सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण की फर्स्ट टाइम पेयरिंग की थी. नोबडी वाज थिंकिंग कि ये जोड़ी भी हिट हो जाएगी, बट यस इट गॉट हिट. और उसके बाद अगली रिक्वेस्ट जो आई है वो राहिल की आई है. और ये गाना तो आई शुड से लकी अली के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी कि भाई आप भी हमारी फिल्म में आके गाना गाइए, है कि नहीं. सो एक पल का जीना ये गाना भी बस आपकी राहों में आने वाला है. और देखो हमारा शो ना बिल्कुल ऐसे भागते दौड़ते हुए जा रहा है, बस कुछ ही देर में क्विज टाइम भी आएगा. लेकिन अगर आपको अपने दिल की बात हम तक पहुंचानी है और अपने पसंदीदा गानों को सुनना है ना, और स्पेशली वो रोड ट्रिप सॉन्ग, तो आप हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107 पर, अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस, ठीक है. और अभी फिलहाल एंजॉय करें लव आजकल का आहू आहू. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: सच में इस गाने को सुनकर क्या वाइब है कि नहीं। वेल हमारी शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो द रिक्वेस्ट शो, और मैं हूँ आपकी परमिता। ये वक्त हो चला है तो जल्दी से आपको मैं एक गाना सुनाती हूँ बीच से, एंड डेफिनेटली आपको वो गाना पहचानना है। लेट्स सी कि आप में से जितने लोग सही जवाब देंगे ये गाना उनके नाम हो जाएगा।
1: कभी तुझ में उतरूं जो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत।
0: सोचिए सोचिए आतिफ असलम की आवाज में ये कौन सा गाना हो सकता है जिसे आप पूरा पूरा सुनना चाहते हैं। हाँ, सो क्विज टाइम शुरू हो चुका है। सही जवाब अपने नाम के साथ 6662107 पर हमसे शेयर करें। और अभी के लिए बासिफ की एक बेहतरीन सी रिक्वेस्ट आ चुकी है, एंड द रिक्वेस्ट इज बहुत ही खूबसूरत गाना है, एंड द सॉन्ग इज कुछ इस तरह, लेकिन इसका ये ब्यूटीफुल वर्जन है। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: क्या बात है, मतलब इस गाने को तो ऐसा लगता है कि रिपीट में सुनते रहे कि नहीं.
1: कुछ इस तरह.
0: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और हमारे शो का नाम है,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी.
0: यस, और इस वक्त आखिरी पड़ाव चल रहा है. हाँ तो देखो, जब आखिरी मुकाम आता है ना, तब रिक्वेस्ट और भरभरा के आने लगती है कि अमिता मेरा गाना, मेरा गाना. तो मैं कहूंगी ऑल राइट. हर दिन शाम 4 से 5 मैं आती हूँ द रिक्वेस्ट शो लेकर एक डिफरेंट थीम के साथ, तो आपका वाला गाना हर दिन बच सकता है. वेल, क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना बीच से सुनाया था और कहा था जल्दी से पहचानो ये गाना कौन सा है. और हमारे लिसनर्स फलक एंड यूसुफ खान एंड कैस साहब, रिजवान और ये बड़ा खूबसूरत सा नाम है इनका, निहात ने सही पहचाना है. एंड द सॉन्ग इज मौसम की बारिश. आतिफ

असलम जी की आवाज में डेफिनेटली गोना एंजॉय. और अभी के लिए आपको मुझे देना होगा इजाजत, ठीक है? तो कल आपकी मेरी मुलाकात होगी शाम 4 बजे फिर से द रिक्वेस्ट शो पर. एंड यस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा FM 107 के, ठीक है? और जाते जाते ये कहना बनता है हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 5:01।
2: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी, सलाम आदाब, अ वेरी गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस FM 107 पे। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया। दोस्तों, एक ऐसा शो है जिसका ताल्लुक सीधा आपकी हेल्थ से है और हम भी ऐसे टॉपिक्स चुन चुन कर लेकर आते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में यूजफुल होते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि इन टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में आप तक पहुँचाया जाए जिससे आप समझ भी सकें और उन चीज़ों को भी कर सके। वेल, आज के इस एपिसोड में ये कहें कि आज के इस सीजन का हमारा यह पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों द हार्मोन पजल पे। अक्सर हम सुनते हैं ना, एक टर्म आपने सुन रखी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन हार्मोन्स असल में क्या होते हैं? ये हमारी एनर्जी, हमारे मूड को, हमारे वेट को, हमारी स्किन को, या ये कह सकते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और इन सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं इसी एपिसोड में। वेल, आज हमारे साथ खास डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सारा अयाज, जिन्हें हम वेलकम कहना चाहेंगे FM 107 पे। आप जो हैं वो हार्मोनल वेलबींग, वेलनेस के हवाले से अपने एक्सपर्ट इंसाइट्स आज के इस एपिसोड में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वेलकम कहते हैं डॉक्टर सारा को ऑन FM 107 एंड ऑफकोर्स ऑन दिस एपिसोड ऑफ वेमेन वेलनेस। हेलो, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड इवनिंग, हाउ यू डूइंग?
3: Good evening, Walaikum Assalam, Alhamdulillah, I'm doing well and thank you so much for calling me today and giving me opportunity to discuss this very important topic.
1: Right, this is of course a very important topic and when we talk about women, we do understand it is so very important. So, first of all, Dr. Sara, I would like to know from you, please tell our audience, explain what hormonal imbalance kehte kise hain aur ye kya hota hai, iska actual matlab kya hai?
3: एक्चुअली बहुत आपने सुना होगा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी एक या एक से ज़्यादा हार्मोन को या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है या तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है, या तो इस तरह से हो रहा है कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं वो अपनी एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो दिस हार्मोनल कंट्रोल कैन अफेक्ट different body functions, जिसमें सबसे important आपके periods जो monthly cycles आते हैं वो affect हो जाते हैं, उसके बाद आपकी fertility affect हो जाती है, बहुत सी खवातीन को pregnancy के मसाइल आ रहे होते हैं, weight which is one of the major factor जिसके लिए बहुत लोग concern रहते हैं, इसके साथ साथ आपका mood affect हो रहा होता है, आपकी sleep और आपकी energy affect हो रही है। So ये hormonal imbalance, hormones का या तो सही ना बनना या तो बनना सही लेकिन उनका काम सही तरीके से ना होना।
1: बहुत ही अच्छा और बड़े सिंपल आपने एक्सप्लेनेशन दी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत सी लेडीज़ मैंने देखा है कि वो पूछती हैं कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो एक फीमेल की डेली हेल्थ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं।
3: ओके, अच्छा, इस तरह से कहना कि कोई एक सिंगल हार्मोन जो आपकी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे हो तो ये ठीक नहीं है। एक्चुअली देयर आर मेनी हार्मोन्स दैट कंट्रोल योर बॉडी फंक्शन।

0: Baby, compares pasanda.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस RJ नाजिया के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हार्मोन्स जो है वो फीमेल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पर इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सारा। तो सारा, एक बार डॉक्टर आपको वापस से वेलकम भी कहना चाहूँगी। अच्छा, जिस तरह से हम कन्वर्सेशन कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, ने पूछा था कि अगर किसी को फटीग हो या फिर मूड स्विंग्स हैं या दूसरे सिम्टम्स, तो कैसे पता चले कि हार्मोनल इश्यूज हैं या फिर लाइफस्टाइल। और आपने भी बहुत ही अच्छे से बताया कि उस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, फॉलो करें, समझें, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल स्ट्रेस तो लगभग हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन गया है, तो ऐसे में क्या स्ट्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है?
6: यस, डेफिनेटली। देखिए, जो क्रॉनिक स्ट्रेस हो

0: होता है जिसको कहते हैं मुसलसल ज़हनी दबाव, वो क्या करता है कि आपके हार्मोन्स जो आपकी रेगुलेट कर रहे होते हैं साइकिल को और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उन हार्मोन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसी की वजह से फिर आपका क्या होता है कि जिन लोग मुसलसल स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि उन लोगों की स्लीप अक्सर डिस्टर्ब रहती है, हर वक्त वो लेथार्जिक रहते हैं, फटीग रहती है उनको, थकन रहती है, किसी काम करने को उनको दिल नहीं कर रहा होता, पुअर कंसंट्रेशन होती है हर काम में, उनकी मूड चेंजेस होते हैं और इस तरह से। और इसके साथ साथ क्या होता है कि उनके जो अपने पीरियड्स की रेगुलरिटी है वो ख़राब हो जाती है, वो मिस कर जाते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, या तो फिर उनका बिल्कुल पैटर्न इरेगुलर हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होगा, लंबे अरसे से आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे, तो आपकी पूरी जो लाइफ है वो अफेक्ट होगी, आपका स्लीप, एपिटाइट, मूड, कंसंट्रेशन, हर एनर्जी, हर चीज़ अफेक्ट हो रही होगी।
1: सही, यहाँ कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ समझ में आती है। अच्छा डॉक्टर, कई वुमेन जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनका वेट बढ़ रहा है, हालांकि उनकी डाइट में कोई ख़ास चेंज नहीं आता, तो क्या हार्मोन्स जो हैं वो एक्चुअली उनको वेट गेन करने के लिए पुश कर रहे होते हैं?
0: ओके, देखें बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स का काम क्या होता है, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी एपिटाइट, आपकी जो बॉडी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, आपकी भूख ख़राब हो जाती है, या तो आप कम खाते हो या तो ज़्यादा खाते हो। जो इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन जो हो रही होती है वो ख़राब हो जाती है, जो आपकी बॉडी में अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होती है वो ख़राब होती है और एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव वेट होता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से आपकी बॉडी आपके फैट को स्टोर करती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से जब हार्मोनल चेंजेस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इवन आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, आपका जो है डाइट में भी कोई ऐसा चेंज ना हो, यही वजह है कि आपको वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं, सच एज थायरॉयड प्रॉब्लम, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये भी एक हार्मोनल कंडीशन है जो मैं आगे जाके अभी डिस्कस करूँगी, और पेशेंट कोई लंबे अरसे से कोई मेडिकेशंस ले रहा हो, तो ये चीज़ें भी हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं वेट गेन में।
1: सही। अच्छा डॉक्टर, क्या हेयर फॉल या फिर जो है एक्नी या कई बार जो है स्किन चेंजेस नज़र आते हैं, उन सब के पीछे हार्मोन्स का क्या और किस तरह का रोल होता है?
0: ओके, देखिए हार्मोन्स जो होते हैं ना, इनका बहुत एक मेजर रोल है आपकी स्किन में, आपके हेयर में, और आपका जो ऑयल प्रोडक्शन हो रही है आपकी बॉडी से। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली जो दो तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसमें एंड्रोजेंस टॉप ऑफ द लिस्ट, उसके अलावा ईस्ट्रोजेन और थायराइड हार्मोन, इसकी जो इम्बैलेंस होता है ये क्या करता है कि आपको एक्नी करेगा, चेहरे पे जो है काफ़ी दाने आ जाएंगे फीमेल्स को खासतौर पे, वो बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं इस चीज़ से, ठीक है, एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, फिर इसके लिए आपको बड़े एक्सपेंसिव और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। किसी किसी को एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाता है क्योंकि स्किन थिनिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है आपकी। इसके अलावा आपका जो स्किन, ओवरऑल स्किन है आपकी बॉडी की, उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट हो जाता है, या तो बड़ी ऑयली होगी और हर वक्त आपको स्किन पे पिंपल्स रहेंगे, या तो फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रैक्ड हो जाएगी। सो ये सारा जो है ना एक हार्मोन है, हार्मोन इसको समझना एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी को ही आपके हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी हेयर पे, आपकी स्किन पे, आपकी ऑयल प्रोडक्शन पे।
1: बिल्कुल। अच्छा अगर डॉक्टर, किसी वुमेन को लगता है कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस है, तो क्या फौरन हार्मोन्स जो हैं वो टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, या किस तरह के प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं, या क्या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है?
0: ओके, सी दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड कि अगर आपको लगे कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं ना, ये दिस इज़ नॉट अ रूटीन, ऑल्दो कि कुछ लोगों को लगता है कि जी अभी हमारे हार्मोन्स ख़राब हैं तो हमें टेस्ट करवाएंगे, इस तरह से बहुत से पेशेंट्स भी रोज़ क्लिनिक में आते हैं जो टेस्ट का कहते हैं, और हम अक्सर टेस्ट करवाएं, और टेस्ट क्योंकि आप हर टेस्ट नहीं कर सकते, आप कितने हार्मोन्स चेक कर सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं, आपका जो मंथली पीरियड है उसका पैटर्न किस तरह का है, पेशेंट की एज कैसी क्या है, और प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हो या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, और या कभी कभी इस तरह से होता है कि एक सिर्फ क्लिनिकल असेसमेंट ही इनफ होती है और आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो. या तो आप सिर्फ वो वाले ब्लड टेस्ट करते हो कि आप कोई सिम्टम इस तरह का सस्पेक्ट कर रहे हो या इस तरह का कोई आपको लगेगा कि दिस ये एक स्पेसिफिक हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी है या एक्सेस में है ये हार्मोन, तो यही ये सिम्टम्स कर रहा है, तो आप उसमें टारगेटेड ब्लड टेस्ट कर सकते हो. लेकिन इट्स नॉट अ रूटीन कि आपको जो है अपने जाके टेस्ट ही करवाने हैं बिफोर ट्रीटमेंट,
1: मतलब ज़रूरी नहीं है. अच्छा एक और चीज़ डॉक्टर, जब हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो इसे बैलेंस होने में कितना टाइम लग जाता है? अगर लाइफस्टाइल से कोई बैलेंस करना चाहे तो क्या मुमकिन है, या फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं?
0: देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना सबसे ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जैसे थायराइड का अगर किसी को प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड में आपको थायरोक्सिन लिए बगैर ठीक नहीं होगे जब तक आपके इवन के लाइफस्टाइल भी अच्छा है. कुछ और हार्मोन्स हैं जब तक आप फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी में ज़्यादा है आपको सिम्टम्स आते रहेंगे जब तक आप उसको मेडिसिन से कंट्रोल नहीं करोगे. लेकिन कुछ सिंपल हैबिट्स हैं दैट कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस और वो आपकी जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक कर सकता है, सच एज हेल्दी बैलेंस डाइट. अपनी डाइट में ट्राई टू ईट मोर प्रोटीन्स रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. फ्राइड आइटम्स, जंक फूड, इसको ज़्यादा अवॉइड ही किया जाए तो अच्छा है. इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 minutes रेगुलर, इफ़ नॉट रेगुलर एटलीस्ट 4 times इन अ वीक. गेट इनफ स्लीप. इसके अलावा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके ब्रेन के फंक्शन और आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना. अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करें, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है तो उसको यूज़ को बिल्कुल कम करें या अवॉइड करें. तो ये चीज़ें हैं जो आपके एक हेल्दी हार्मोन फंक्शन को बैलेंस रखती हैं.
1: और ऐसा हो सकता है इफ अ पर्सन इज़ लाइक एजड 45 है या 46 है, उसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें करता है तो आपको लगता है कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहेंगे?
0: जी बिल्कुल. देखिए हार्मोनल
1: एज इज़ अ बिग फैक्टर और इट्स नॉट अ बिग फैक्टर?
0: एज इज़ अ बिग फैक्टर. ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, ये यूजुअली आपकी रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा होता है. रिप्रोडक्टिव एज हम कहेंगे 15 to 45 years, उसके बाद तो आपको अगर आपने उस एज में इसको मेंटेन नहीं किया तो फिर आपको तो क्रॉनिक इलनेस वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसी एज में अभी से अभी सारी चीज़ को बैलेंस करेंगे तो विद टाइम आपकी ऑफकोर्स सारी चीज़ें सही तरीके से काम करने लग जाएंगी
1: इंशाल्लाह. चलिए बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी मालूमात, बहुत अच्छी टिप्स आपने दी. हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो वाकई लाइफ को लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आती है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आती है, उसे हमें अडॉप्ट करना ही करना है. फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नासिया आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा। आज

0: जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हार्मोन्स को लेकर. बहुत सारी बातें जो हैं वो डॉक्टर ने शेयर की, आई एम श्योर वो सारी की सारी आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं. लेकिन असल मसला तब आता है जब कहा जाता है कि इनको जो है वो अप्लाई करना है. तो जितनी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसका 1% भी आज अप्लाई करने में कामयाब हो पाते हैं तो यकीन मानिए इस शो के ज़रिए हम कामयाब हुए. चलिए अपनी कन्वर्सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सारा से जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल डॉक्टर PCOS और थायराइड का जो मसाइल है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है, बहुत बार सुनने में आता है. तो आपको क्या लगता है क्या इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से है?
1: ओके, सो बात करते हैं PCOS और थायराइड के बारे में. PCOS बेसिकली PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज और रीसेंट टर्मिनोलॉजी में इसको चेंज करके इसका जो नाम चेंज हो गया है वो अब आ गया है PMOS, पॉली मेटाबॉलिक एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. सो इसमें क्या होता है कि अब ये आपकी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को नहीं अफेक्ट कर रहा, आपकी ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है. और साथ ही साथ जो थायराइड है ये भी स्पेसिफिकली इसका ताल्लुक भी आपके हार्मोन्स के साथ ही है. और इसीलिए जब भी आप पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई थायराइड चेंजेस है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन, ऑल्दो के पेशेंट कम खा पी रहा होगा उसका वेट गेन हो जाएगा, हर वक्त कॉन्स्टिपेशन रहेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, नींद ज़्यादा आएगी. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ही हैं. सो यस, ये PCOS और जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये दोनों आपके पीरियड्स को, वेट, फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो जब भी आप सस्पेक्ट करें किसी में PCOS है, आप उस पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी मेडिकल एडवाइस को सीख करें, अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने डॉक्टर के साथ अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें, अगर ज़रूरी हो तो कोई हार्मोनल जो टेस्ट हैं वो करवाए जाए. और इसी तरह अगर थायराइड के सिम्टम्स भी पेशेंट में आएँ, जिस तरह मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं, तो एक मेडिकल एडवाइस लेके थायराइड हार्मोन को भी चेक करवाया जाए.
0: सही, बहुत ही अच्छी बात. अच्छा डॉक्टर, क्या एज के साथ जो है वो हार्मोन्स नेचुरली चेंज होते हैं और क्या वुमेन को किस एज पर अपने हार्मोनल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है?
1: देखें, जो हार्मोन्स हैं वो एज के साथ बिल्कुल चेंज होते हैं. जैसे जैसे आप अपनी 40s के करीब जाते हो तो आपको एक नोटिसेबल चेंज आता है आपकी बॉडी के अंदर. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज, क्योंकि अब आप अपने एक पैरी मीनोपॉजल पीरियड, जो आपका मीनोपॉज के करीब वाला पीरियड है, आप उसको अप्रोच कर रहे होते हो. डेफिनेटली आपकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, आपके वेट में भी आएंगे, आपके मूड में भी आएंगे, आपकी डेली लाइफ स्टाइल, आपकी हर एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न, सब में आपके जो पीरियड है उनमें भी चेंजेस आएंगे. बट ये कहना कि हार्मोनल हेल्थ जो है कि इसके स्पेसिफिक एज पर ही आपको अपने हार्मोनल हार्मोन्स पे फोकस रखना, ऐसा नहीं है. हार्मोनल हेल्थ जो आपकी है थ्रू आउट लाइफ इम्पॉर्टेंट है, नॉट एट एनी स्पेसिफिक एज. बट यस, विद एज आपके अंदर उसके चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं. सो अगर आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल को पहले ही अपने अर्ली अपने 30s में और 20s में अच्छा रखोगे तो जो आपके जो चेंजेस पेरी मीनोपॉज और मीनोपॉज में आने हैं वो कंपेरेटिवली कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर वुमेन, जिसमें जो है जिसका लाइफ स्टाइल और जिसकी जो बाकी जो प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी.
0: सही, बहुत ही ज़बरदस्त बात. अच्छा डॉक्टर, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का भी दौर है. हम लोग जो हैं वो कई बार सोशल मीडिया पे जो सप्लीमेंट्स हैं या फिर जो डिटॉक्स प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं हार्मोनल बैलेंस के नाम पर उन्हें प्रमोट किया जाता है कि ये यूज़फुल हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वाकई इफ़ेक्टिव होते हैं या सबसे पहले आप कहेंगे कि डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना ज़रूरी है और फिर इन सारे सप्लीमेंट्स या डिटॉक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना?
1: ओके, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत एक सही चीज़ है या बहुत एक गलत चीज़ है, क्योंकि इस पे जो साइंटिफिकली जो एविडेंस है ना, बड़ा एक लिमिटेड है. सो हमें वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, या तो जो भी क्लेम कर रहे हैं कि ये हार्मोनल बैलेंस को जो है इम्बैलेंस को ठीक करेगा या तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्योंकि इसमें एक एविडेंस जो है इन सप्लीमेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड है और आपको नहीं पता कि इनकी क्वालिटी कैसी है और इसकी एग्जैक्ट डोज क्या है. सो इट्स बेटर टू ऑलवेज डिस्कस दिस प्रोडक्ट्स विद योर डॉक्टर. और अगर आप वो आपको एडवाइस करें, आपको सही डोज और आपको सही उसकी क्वालिटी और उस क्वांटिटी के बारे में बताएं, तो आप यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग दिस प्रोडक्ट्स, बट डेफिनेटली कि हर किसी को नहीं लेने, क्योंकि इनका कोई इन पे हमारे जो साइंटिफिकली कोई प्रूवन चीज़ नहीं है कि ये आपको फ़ायदा देंगे या आपको नुकसान देंगे. सो आई थिंक बेटर टू डिस्कस विद योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन.
0: ओके, अच्छा डॉक्टर, ये बहुत ही क्विक वन है कि अगर कोई फीमेल ये महसूस करती है कि उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो आप क्या कहेंगी सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या लाइफ स्टाइल चेंज उस पर काम करें, फौरी तौर पर टेस्ट कराएँ, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें सिंपली?
1: ओके, सो फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी डॉक्टर्स कंसल्टेशन.
0: देखिए,
1: आप खुद से कोई रैंडम टेस्ट नहीं करें, खुद से कोई रैंडम ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स नहीं लें. सो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लें, डॉक्टर आपके सिम्टम्स को असेस करेगा और डिसाइड करेगा कि आप क्या कुछ टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीट करेगा और फर्दर लाइफ स्टाइल आपको जो है एडवाइसेस भी देगा डॉक्टर.
0: तो आप कहती हैं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए.
1: डॉक्टर को कंसल्ट.
0: फैंटास्टिक, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बात, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत बात पे और इतनी अच्छी वाली एडवाइस पे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना तो बनता ही बनता है. वापस आएंगे तो फर्दर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे. बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर दिल से देसी।
1: राइट दोस्तों, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नासिया आपके साथ, और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 5:42। और यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रहा है वो है हार्मोन्स को लेकर। तो अब मैं आप डॉक्टर से पूछना चाहूँगी जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सारा। कि डॉक्टर सारा, कई बार मैंने देखा है कि बहुत से जो फीमेल्स हैं, यू नो, उन्हें क्रेविंग हो रही होती है कभी बहुत मीठा खाने की, कभी जंक फूड खाने की। तो क्या लगता है, क्या हार्मोन्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारी क्रेविंग को भी अफेक्ट करते हैं?
2: येस, डेफिनेटली। जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी एपिटाइट को, क्रेविंग्स को, स्पेशली जो आपका मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम के दौरान, ठीक है। इसके साथ जब आप स्ट्रेस हो, पुअर स्लीप हो, और साथ में आपकी जब उसके साथ आपकी ब्लड शुगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, और यही जो फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस हो गया, स्लीप और शुगर्स की फ्लक्चुएशन, ये आपकी क्रेविंग्स को और एपिटाइट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं।
1: सही। अच्छा डॉक्टर, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एंजाइटी, इरिटेशन या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन ज़्यादा महसूस हो सकते हैं?
2: जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं ये आपकी स्पेशली जो आपकी कुछ हार्मोन्स जो ब्रेन और आपकी जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एंजाइटी, इरिटेबिलिटी जिसमें हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, और मूड स्विंग्स, कभी आपका मूड अच्छा है, फ़ौरन से आपका मूड ख़राब हो गया, स्पेशली जब आप अपने पीरियड्स में हो या आप अपने पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को अप्रोच कर रहे हो, इस टाइम पे आपको एंजाइटी और मूड चेंजेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी को भी ये परसिस्टेंट सिम्टम्स हो और सिवियर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स हो, तो इस सूरत में उसको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ इनको डिस्कस करना चाहिए।
1: सही। अच्छा डॉक्टर, बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो कहती हैं कि यू नो, उन्हें ब्रेन फॉग या फिर भूल जाने की या बहुत जल्दी भूल जाने की ये शिकायत, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे क्या इसका भी हार्मोन से किसी तरह का कोई ताल्लुक है?
2: बिल्कुल है। आप ये देखें कि जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसकी वजह से बहुत सी खवातीन एक्सपीरियंस कर रही होती हैं पुअर कंसंट्रेशन को, ब्रेन फॉग को, स्पेशली जो अपना हार्मोनल चेंजेस का पीरियड है उसका, जिसमें यही दो इम्पॉर्टेंट पीरियड हैं, एक आपका पीरियड्स का टाइम आ गया मंथली, एक आपकी प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, एक आपका मीनोपॉज पेरीमीनोपॉज का टाइम आ गया। सो इस टाइम पे आपको पुअर कंसंट्रेशन और ब्रेन फॉग बिल्कुल होता है, और इसके अलावा आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस लेवल और कोई और मेडिकल कंडीशंस हो, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें ब्रेन फॉग और पुअर कंसंट्रेशन में।
1: तो हार्मोन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार हम खुद को यू नो ब्लेम भी दे रहे होते हैं, गिल्ट में भी जी रहे होते हैं, लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाते या हमें एज ए फीमेल पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का नतीजा है। तो बहुत ही ये टॉपिक मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई ओपनर है, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, और हर कोई, जितनी भी फीमेल्स इस वक्त हमें सुन रही है, वो कहीं ना कहीं रिलेट तो कर ही रही हैं। अब हम आएंगे तो वाकई ऐसी कॉन्क्रीट टिप्स और हैबिट्स की बात करेंगे जो अडॉप्ट करके आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल और कैसे बेहतर हो सकता है, और किस तरह से हार्मोन्स का जो इशू है उसे टू सम एक्सटेंड थोड़ा बहुत सॉर्ट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी तो ये डिस्कशन जो है एकदम कंक्लूडिंग जोन में अपने पहुँच जाएगा, जहाँ पर हम एकदम लास्ट में डॉक्टर सारा से और कंक्लूडिंग नोट्स लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. Only on FM 107, दिल से देसी. इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो. यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें. हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
4: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास. ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं. स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है. हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे. पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: भाई जान शो करते करते अगर मेरे को बेहोशी आ जाए तो पानी मार के मुंह पे छींटे मार के मेरे को जगा देना भाई सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ अभी मतलब ऐसा ना सोचना कि अरे 8 बजे का उठा तो सोया भी भाई 3 बजे रात में और फिर 8 बजे उठ गया उसके बाद ऐसा जगा हुआ मैं आके फाड़ फाड़ के काम कर रहा हूँ लेकिन अगर बीच में बात करते रहते छींटे मार देना पानी की
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: बाकी और कोई तरीका है तो भी कर सकते हो फिलहाल 6:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में ये शो अनप्लग्ड इवनिंग और मतलब होते ना हर तरह के लोग होते हैं खास करके अम्मी अलग होती हैं आपको जगाने के लिए अम्मी अगर दी पंखा बंद कर देती हैं या फिर जिस कमरे में आप सो रहे होते हैं वो गेट खोलकर फिर उसके बाद किचन में ऐसे काम करती हैं ऐसे बर्तन गिरते हैं था धूम धाम अम्मी को फर्क ही नहीं पड़ रहा अम्मी को पता है अभी हमारा लड़का उठ जाएगा अब अम्मी की जगह मेरी बीवी ने ली है अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है यार ऐसा लग रहा वापस से मेरी जिंदगी जिया जा रहा हूँ मैं 12 वाली उम्र एक बार फिर से वापस आ गई है बस एक फर्क है चांटे नहीं पड़ते हैं अना सोने के लिए आप आराम से जब मर्जी चाहे तब सो जाए ऐसे क्या है अम्मी मारपीट करके सो लाती थी और अभी जो है थोड़ा फर्क हो गया मारपीट नहीं होती अब बस सुला दिया जाता है कि चलो बस हो गया तुम्हारा टीवी बहुत देर हो गई लेकिन अब्बा का जो जगाना होता है वो अलग होता है भाई साहब अब्बा का जगाना माशाल्लाह अब्बा एक बार आवाज़ देते पता नहीं मर्दों के अंदर लड़कों के अंदर एक अलग सा खौफ है अब्बा की मोहब्बत है या क्या है भाई साहब अब्बा एक बार में कहते थे ना इंसान उठ जाया करता था अम्मा कहती रहे अरे अभी सोने दीजिए यार इतनी देर में सोए थे अम्मा बेचारी लाड भी करती है कहती है ठीक है सो जाए मेरा लल्ला अब्बा फजील जी उठ गया हूँ बस फिर उसके बाद दोबारा आते थे वो देखते थे अरे बेड पे नहीं है देखा अगला आदमी तैयार हो रही है अरे माशाल्लाह ब्रश करके तैयार लेकिन एक जमाना था भाई साहब एक जमाना था जब संडे का दिन होता था आप लेटे रहो या फिर मंडे का दिन है स्कूल है तो सुबह जल्दी उठ जाओ 8-9 बजे अब आज एकदम ही ऐसा फील आ गया भाई 8 बजे उठ के सोया हूं नहीं आंखें बड़ी बड़ी हैं लेकिन मजा आता भाई साहब फिर आपको नींद ना आए तो मजा आता लेकिन अब देखो क्या है कि एक चेंज ये हो गया है अब ऑफिस की टाइमिंग फर्क डालती है आपकी नींद में आपके काम में आपके सोने में आप क्या करेंगे क्या नहीं जब से शाम की टाइमिंग मिली है दिल एकदम से भाग भाग है भाई यार मतलब एक अलग सी चेहरे में चमक है यार ऐसे शाम को 4-5 अपना रिक्वेस्ट शो होता था उठ रहा है अगला आदमी 9-10 बजे आराम से नहीं अब 6-7 हो गया है आ रहे आराम से 12 बजे ऑफिस खुदा ना खास्ता भाई जब सुबह का होता था वो तो मेरी आत्मा ही जानती थी कि भाई मैं उठता था कि मेरी आत्मा उठती थी दिल करता था कि नहीं लेकिन करते थे आना है ना भाई पेट का भी तो सवाल है पेट के सवाल के लिए तो करना ही पड़ता है भाई क्या कर सकते हैं लेकिन असली खुशी है जब आप 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे उठे ऑफिस आए फिर अपना काम करें अलग सा सुकून है एहसासात मैं बता नहीं सकता और मैं ये सोच भी रहा हूँ आज एक सवाल भी यही है कि असल में आपको क्या बेहतरीन शिफ्ट लगती है क्योंकि मेरे ऑफिस में पिछले वाले ऑफिस में एक फीमेल थी वो काम करती थी और उसके अलावा दिल्ली में भी एक बंदा बैठा था उसने ये बात बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दी थी कि सुबह की शिफ्ट सबसे बेस्ट होती है 6 बजे वाली भाई मैंने तो कभी हाँ नहीं भरी है उस बारे में लेकिन उनका कहना था सुबह की 6 की शिफ्ट सबसे बेस्ट होती है क्योंकि 10-11 बजे जब लोग ऑफिस आ रहे होते हैं तब मेरा काम ख़त्म हो गया होता है और पूरा दिन पड़ा रहता है भाई मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है कि सुबह 6 बजे का काम है मेरा मेरे को मौत आ रही होती है भाई 12 बजे के बाद मैं घर जाके दोबारा सोता ही हूँ हो नहीं पाता है कि हाँ ओहो वाओ व्हाट अ लाइफ 12 बजे के बाद इंजॉय करेंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई कहीं नहीं हो रहा कोई एंजॉय नहीं कर रहा सब जाके सो ही जा रहे हैं लाश बन जाते हैं घर पे आपको पता है एसी चल रही कुछ चल रही है ठंडक लग रही नहीं लाश पड़ी हुई है तो आज का सवाल भी मैं यही कर रहा हूं कि सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है, शिफ्ट क्या है, वर्किंग की, काम करने की शिफ्ट सबसे बेस्ट क्या है। अगर आप स्केड्यूल बना पाते अपना खुद का, आप अगर डिसाइड कर पाते कि यार मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है काम करने की, तो आप कितने बजे उठते, कितने बजे काम करते, है ना, ये आज मुझे जानना है। नंबर है 666-22107, 666-22107, 666-22107। सबसे बेहतरीन शिफ्ट वर्किंग आर क्या है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग की, क्योंकि कई लोग तो भाई पागलों की तरह इवनिंग चाहते हैं और उसमें से एक पागल मैं भी हूं बाबू मुझसे कोई पूछता है ना कि अरे वो सुनो मॉर्निंग शिफ्ट लोगे कि इवनिंग, तो मैं कहता हूँ इवनिंग शिफ्ट चाहिए यार, मेरे को इवनिंग शिफ्ट दे दो, तो वो भी आगे से कहता ओहो
4: रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं,
2: मैं भी पता नहीं तड़प नहीं है, बस वो तो क्या है कि इवनिंग सही रहता है थोड़ा
4: रहा नहीं जाता
2: भाई, मुझसे कोई पूछ ले मैं तो बड़ा बड़ा मुंह खोल कर कहता हूँ भैया इवनिंग शो दे दो। बाकी आप, आपको कौन सा शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट पसंद है वर्किंग की, है ना। अब जैसे मुझे आफ्टरनून की भी बढ़िया लगती है भाई साहब। आफ्टरनून की क्या है कि 10 से 1, 12 से 3, है ना, जो शो की टाइमिंग मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप सुबह आए 8 बजे उठ के 9 बजे आए, 4-5 बजे तक आपका काम खत्म, फिर उसके बाद पार्टी भी आपकी, रात भी आपकी, फिर सो भी आप रहे 11 बजे के आसपास तक, तो सब चल जाता है भाई साहब। बाकी तो अब आप बताएंगे। नसीम साहब का मैसेज है, कहते हैं पानी नहीं गरम चाय मारो। गरम चाय, देखो मैं चाय का शौकीन तो हूँ लेकिन एक टाइम का शौकीन हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम वो नहीं चाहिए। हमारे पप्पा बेचारे चाय पीते पीते चले गए तो मेरे को बड़ा डर लगता है नहीं मेरे को चाय नहीं चाहिए। इमरान बानी कहते हैं सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फजल भाई, सुबह के 6 बजे वाली शिफ्ट अच्छी है। इमरान का कहना है भाई 6 बजे के बाद अभी 6 बजे तक जगे रहे, तो क्या दोपहर में नींद लेते हैं या फिर जगे रहते हैं। एक बार इंसान की जो बॉडी मतलब ऐसा वो अडेप्ट कर ले तो फिर चलो ठीक है 12 घंटे 15 घंटे, मेरा वाला हिसाब नहीं है भाई। मगर 8 बजे जगा हूँ और 3 बजे अगर रात में सो के 8 बजे जग गया हूँ 5 घंटे की नींद लेके, तो मैं कब लाश बन जाऊँगा मुझे खुद भी नहीं पता। मैं चलते चलते कब, वो वाली देखी आपने अखबार में न्यूज़ कि गाड़ी चलाते हुए एक आदमी सोया हाईवे पे भयंकर एक्सीडेंट मेरे जैसे आदमियों का होता है भाई फिर उसके बाद मेरी तारीफ होती, अच्छा लड़का था चला गया, अभी आया था 1 महीने पहले मेरे घर ये मेरे साथ होता है। फिर मोहम्मद भाई का मैसेज है, मेरे लिए तो सुबह 6 बजे से मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट मिलती नहीं है। अच्छा 6 बजे की शिफ्ट आपको अच्छी लगती है लेकिन आपको मॉर्निंग शिफ्ट नहीं मिलती है, भाई आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसे सुबह की शिफ्ट नहीं पसंद उनको शाम की है, आप सुबह वाले में चले जाओ, सुबह वाला शाम में आ जाएगा, है नहीं, हो सकता है मोहम्मद साहब आप थोड़ा सा बात करें। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, फराज अहमद कहते हैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अरे वाह भाई वाह भाई, कुछ लोगों की जिंदगी में ये तो बहुत अच्छा, जैसे फराज भाई के साथ तो है मॉर्निंग शिफ्ट, हाँ लेकिन अगर गलती से वाइफ को देर तक सोने की आदत है भाई साहब, जिंदगी जहर हो जाती है और मैं वो तक गले की चमड़ी पकड़ के बता रहा हूँ भाई तुमको मेरी वाइफ को 12 बजे तक ना उठाओ तो वो भी 12 बजे तक लाश बनी रहती है शौक है, अपना अपना शौक है, है लोगों का ऐसा। बाकी फराज भाई कह रहे मेरा तो ऐसे ही है, मेरा तो यही चलता है। फिर मानव का कहना है अच्छा 9 से 5 बेहतरीन है फिर एक लफ्ज के बाद लिखा है 8 से 1 सबसे घटिया है, लेकिन मुझे लगता है 8 से 1, 8 से 3, 8 से 4, 8 से 4 तो घटिया कह सकते हो क्योंकि आपको फिर 7 बजे उठना पड़ता है ना। फिर उसके बाद 4 से 7, 4 से 7 बढ़िया है इनका ऐसा कहना, मानव का ऐसा कहना आई गेस। देखो यार 4 से 7 मेरा मानना है कि शाम का जो टाइम है ना 3 से, फिर उसके बाद बेकार हो जाता है, फिर आप ना पार्टी जा सकते हैं, फिर आपको कोई रात को कोई डिनर पे बुला रहा है, क्योंकि आप अगर 4 से शुरू कर रहे हैं तो आपको 11-12 बजे तक तो ऑफिस में रहना भी है ना, 7-8 घंटे तो दोगे, तो वो भी एक सीन है। फिर उसके बाद इवन अगर आप 9 या 10 बजे भी शुरू करते हैं, 5 बजे तक ख़त्म कर लो 7-8 घंटा, तब तक बेस्ट है, लेकिन फिर ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। बाकी आप बताएं

8666221207 पे कि सबसे बेस्ट शिफ्ट क्या है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग की। मेरा तो इवनिंग है भाई, मैंने अपने बाकी हाथ जो है वो इवनिंग के लिए खड़े कर दिए हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, बॉस सुन रहा होगा तुम्हारा नाम भी बता देना। बॉस देख लो यार, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं ना, जो उनको अच्छा लगता है, जो शिफ्ट उनको अच्छी लगती है वो दे दो मेरा भाई, आपको भी दुआ मिलेगी यार। बाकी सात समंदर पार से ये गाना सुनते हैं करण नवानी की आवाज में FM 107 पे फजील के साथ है। अनप्लग्ड ये शो, अनप्लग्ड ये गाना, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार देंगे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
6: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: हाँ जी, दिल से देसी FM 107। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे फजील के साथ हैं, 6:24 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और समय है एक बार फिर से सवाल को रिपीट करने का। सवाल यह है कि आपके लिए बेस्ट शिफ्ट कौन सी है, आप किस शिफ्ट को अपने बड़े दिल के करीब मानते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट आपके लिए वर्किंग के लिए बेस्ट है, आफ्टरनून की या फिर इवनिंग की। कुछ लोगों के लिए रात की भी ये मैसेज आया कि भाई साहब रात के बारे में तो बात किया नहीं, हम भी तो रात के बाशिंदे हैं, हमारी 10 बजे से शुरू होती है, हमारी 11 बजे से, हमारी 1 बजे से। मैं भूल गया था कि भाई यहाँ पर यू नो ऑफशोर वाले भी हैं, उसके अलावा यू नो बहुत से शिप वाले भी हैं, कुछ उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर जो लोग हैं काम करने वाले। माजरत भाई, मेरी गलती, मतलब आधी जनता तो एयरपोर्ट पे है जो जगती होगी भाई जो एम्प्लॉयज जो रेजिडेंट होंगे वहाँ पर जग रहे हैं उनको भी है कि भाई मैं भी रात का बाशिंदा हूँ, मेरे बारे में भी कोई बात करो। मैं सबसे ज़्यादा अगर इज्जत करता हूँ भाई तो सबसे ज़्यादा इज्जत रात वालों की है, जिनका काम ही 9 बजे 10 बजे के बाद शुरू होता है। सूरज ढलने के बाद अगर आपका काम शुरू हो रहा है तो आपने सच में कुछ तो गुनाह किया है कि रात की शेड्यूलिंग में आपका नाम दिया गया है बाबू। अब देखो कन्फेस कर लो कि क्या आपने ऐसी गलती करी है जो आपको रात की टाइमिंग दी गई है। भाई साहब आप देखें रात की टाइमिंग कितनी, मैं ये नहीं कहता कि बेकार है बट है भाई, थोड़ी तो है। उसमें होता क्या है ना कि एक तो रात की नींद गई, आपकी बॉडी बनी है कि 4-4 घंटे में सोने के लिए, ठीक है वो सब साइंस वगैरह भाड़ गई, लेकिन वो 4 घंटे की नींद या 5 घंटे की जो नींद होती है अगर वो रात में ना मिले तो फिर क्या नींद है यार। लेकिन 9 बजे 10 बजे 11 बजे आप ऑफिस के लिए निकलते हैं रात को, फिर उसके बाद आप काम करते हैं, चाहे वो आप एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो आप शिप पर काम कर रहे हो, चाहे वो आप पोर्ट पर काम कर रहे हो या फिर सिक्योरिटी का काम हो, कुछ भी काम है अगर आपका, आप सोचिए रात में जाएं 5 से 6 बजे तक आप रात में काम करें, फिर दोपहर में सोना है। नहीं, क्यों, दोपहर में तो खूबसूरत लग रहा है कतर यार। और कितना बड़ा नुकसान तब हो जाता है कि दोपहर में जब खूबसूरत लग रहा है कतर और सर्दी का मौसम है, अरे भाई साहब अब दोपहर में सोना है, दिन में सोना है। तो मिसाल के तौर पे अगर 10 से लेकर आपकी 6 बजे की तक की टाइमिंग है, सुबह रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, अब 6 बजे आने के बाद आप घर आते आते 7-7:30 बज जाएगा, आप नाश्ता खाना करके सो जाओगे, फिर उसके बाद आप उठोगे तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास, थोड़ा बहुत आपने बस शहर देखा ही था कि फिर से टाइमिंग हो गई ऑफिस की। भाई अरे मेरा भाई, आप लोगों को ना भाई अलग से सैल्यूट है, और एक और मेरा भाई है उसको तो यार

0: अब चला जा रहा हूँ, छोड़ के अब चला जा रहा हूँ, लेकिन वही है कि ऊपर वाले की मदद जो है वो मिलती रही है और किसी तरह इन्होंने काम किया है। भाईजान मानव यार, मुझे लग रहा तुमने भी कुछ तो बड़ा गुनाह किया। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार। मतलब आप मुझसे 8 घंटा 7 घंटा काम करा लो, ये मत कराओ कि यार 3 घंटा सुबह, फिर 3 घंटे का गया, फिर 4 घंटा बाद में, अरे अरे कोई गलती हो गई, बताओ भाई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा यार। ये मत करो यार, ये तो टॉर्चर टाइप्स नहीं हो गया? लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी जो भाई रात की शिफ्ट कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ यार, है ना, रात को भी उनको काम करना है और फिर दोपहर में सो जाना है, खूबसूरत दुनिया देखी नहीं कतर की, मतलब होता है ना कि यार कुछ भी हो यार, दिन तो देखना ही है, एक बार बाहर निकलना ही है, लेकिन सोने में वक्त गुजार रहे हैं। फिर बाकी लोगों का मैसेज देते हैं। इमरान भाई कहते हैं, सर मेरी शिफ्ट बहुत अच्छी है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, उसके बाद शाम को 4 से 8। भाई इसी के बारे में तो इमरान बात कर रहा था मैं, लेकिन ठीक है, ये अगर आपको बेस्ट लग रही है तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ बात भी करें। अगर सुबह 6 से 10 करने के बाद आप सो ले रहे हैं और 4 से 8 भी आपको काम करने में मजा आ रहा है, तो इमरान भाई आपने कोई गुनाह नहीं किया होगा फिर। यूसुफ भाई कहते हैं, सलाम वालेकुम असलम फजिल, मेरे लिए सुबह की शिफ्ट अच्छी है, सुबह की सारी जिम्मेदारियां और काम निपटा के शाम को पहले घर आके अपने फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यूसुफ भाई का कहना है। तो ये आप मालूम है आपको क्यों सुबह की शिफ्ट अच्छी लग रही है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को स्कूल जाना होता है, है ना, आप भी इसी मजबूरी में उठ जा रहे हैं और आपको यार चलो ठीक है यार सुबह काम कर रहे तो कर रहे हैं। मेरे जैसे इंसान जिनके जिंदगी में अभी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, मुझे तो भाई साहब शाम का ही चाहिए, आफ्टरनून भी मेरे को बढ़ जाए, 10-11 बढ़ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे को सुबह भी चलता है। सुबह के भी अपने पर्क्स हैं, है ना, कुछ तो अच्छी कुछ तो बुरी बातें हैं, लेकिन सुबह के भी अपने कुछ पर्क्स हैं। फिर फरहत भाई ने कहा, इस्लाम वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप ठीक होंगे। भाई फरहत साहब आपने ये पूछ लिया, मैं बहुत ठीक हो गया यार। कहते हैं 6 से 2 भी अच्छी शिफ्ट होती है, लेकिन अगर 3 से 11 भी अच्छी मिलेगी, सुबह के काम सुबह हो जाते हैं, वो फ़ायदा है इवनिंग शिफ्ट का। हाँ ये भी है कि यार अगर आप सुबह 3 बजे या रात को 3 से 11 के बारे में बात कर रहे हैं या सुबह 3 से 11 के बारे में बात कर रहे हैं, दैट आई डोंट नो एक्चुअली। अगर 6 से 2 के बारे में बात करा है तो फिर, लेकिन लिखने के बाद अगर आपने लिखा 3 से 11 तो मैं मानता हूँ रात के 3 से 11 आप कह रहे हैं, रात को 3 से सुबह 11, हाँ वो भी बेस्ट है। फिर अगर आप 5-7 घंटा या 4 घंटा भी सो लेते हैं तो आप पूरे फ्रेश हो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे जाना है भाई साहब, तो आपके पास रात भी पड़ी है, बाकी टाइम भी पड़ा है, ये भी बेस्ट है। मुबीन भाई ने पहली बार कुछ लिखा है, वरना वो बोलते हैं और कुछ भी लिखते हैं। इन्होंने कहा 6 से 2 वाले सही है, वो शिफ्ट सही है, 6 से 2 वाले, सुबह 6 से 2, हाँ ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं ना कि, लेकिन मुझे 6 से 2 अच्छा बुरा क्यों लगता है मैं बताता हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाला आदमी हूँ ना, तो मुझे गर्मियों में 6 से 2 इसलिए बुरा लगता है कि एक तो सुबह 6 बजे उठो, 2 बजे तक काम करो, 1-2 बजे तक, फिर घर जाके सोना ही सोना है, मजबूरी है ना, फिर जब सोने के बाद आप जब उठते हैं तो तकरीबन 6-6:30 के आसपास आप उठते हैं, तो दोपहर का टाइम तो चला गया, आप घूम फिर भी नहीं पाए सर्दी में भी, फिर उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो शाम को 7 से क्रिकेट होता है, तो 7 से 11 करने के बाद 12 बजे तक आप घर पहुँचते हैं और सुबह 5 बजे फिर उठना है, तो सिर्फ 5 घंटे की नींद, और ये स्केड्यूल बार बार चलता रहता है। दिन की नींद यार वो मुकम्मल लगती नहीं है, एक बार में पूरी नींद का जो मजा है ना भाई साहब, कहना तो नहीं चाहिए भाई साहब, नींद का मजा तब है जब आंखों से कीचड़ निकले। आई एम सॉरी, मैंने ये बात करी, कौन है
1: ये लोग, कहां से आते हैं?
0: मुझे पता है कि मैंने ये बात कर दी आपके मुख से निकल रहा होगा,
1: तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
0: आई एम सॉरी बट मेरे को मजा आया कह के। नींद तो वही बढ़िया है जिसमें मतलब आप उठे और आपके आंखों से आंसू निकल लगे मेरे भैया। तो खैर हम शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी एक और ये मैसेज है, मोहम्मद कहते हैं, इतना लंबा गाना समझा कि सो गए। अरे नहीं भाई, अनप्लग्ड ये गाना है, अनप्लग्ड ये इवनिंग शो है, तो वही प्ले कर रहे हैं जो यहाँ पर लगा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोड़ा वाला आदमी बाहर बैठता है, वो डिसाइड करता है गाना कौन सा चलेगा और चलेगा। इसीलिए अभी एक गाने की तरफ बढ़ रहे हैं बेहतरीन से FM 107 पे। बाकी सवाल का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है, अब खत की तरफ वापस आते हैं। खत आज आपको लिखना है और ये खत आपके बॉस के लिए होना चाहिए। आज का खत होना चाहिए आपके बॉस को, आपकी स्केड्यूलिंग को, आपकी शिफ्ट को चेंज करने के लिए

बदलने के लिए, आप कौन सा शेड्यूल चाहते हैं अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आप अपने काम को कैसे करते हैं, तो आपको बेस्ट कौन सा लगता है? ठीक है, तो डियर बॉस, फिर उसके बाद आप अपना खत लिखें। खत में कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा और अच्छा ही लिखो, ठीक है। डियर बॉस, मेरी शिफ्ट चेंज कर दो, इस लाइन को कितना क्रिएटिवली लिख सकते हैं वो लिखिए, और नंबर है 666-22107। कैसे आप शिफ्ट चेंज कराना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी सुबह की शिफ्ट है तो कैसे सुबह की शिफ्ट ही रखो बॉस, कैसे पटियाना है बॉस को, उस पटियाने वाली लाइन को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन खत शुरू होगा डियर बॉस के बाद, ठीक है, या बॉस नहीं भी है, जो भी आपका बंदा है उनका नाम भी अगर आप लिखना चाहें तो अरे बिल्कुल क्यों नहीं। नंबर है 666-22107, एक खत की डिमांड आपसे। सुंदर एफएम 107, दिल से देसी। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना वापस कुछ देर में।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
5: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: हाँ जी, FM 107, दिल से देसी। और जब लोगों से पूछो ना, तो उनके दिल से क्या क्या गुजरती है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, वो सारी बातें आपको बता देते हैं। अभी खत लिखने को कहा है, लोगों ने अपनी दिल की बात तो कह दी है। फिलहाल 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और खत लिखने को कहा था कि अगर आपको अपने बॉस को एक खत लिखना है अपने टाइमिंग को लेकर, कि यार बॉस शिफ्ट चेंज करो यार, मेरे को सुबह की चाहिए, मेरे को शाम की चाहिए, आपको कौन सी शिफ्ट चाहिए, इसको लेकर एक खत छोटा सा लिखना है, तो हुसैन भाई ने तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिख दिया। तो हुसैन भाई, अभी आप वाला थोड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे और लोगों के मैसेज जो है हम वो देख लेते हैं। छोटे छोटे मैसेज, बड़े प्यारे प्यारे मैसेज थे। वाजिद भाई का है, डियर बॉस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया भाई ने, और मुझे वो थ्री इडियट में ही था ना ये लाइन, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, वो प्रिंसिपल को बोलता है ना, रणछोड़ दास छनछड़गा अब्बा। तो वो बहुत ही सही लाइन है वाजिद भाई की। तो वाजिद भाई की जिंदगी में सब सही चल रहा है, और अगर मुझे भी खत लिखना होगा मैं सिंपल यही लिखूंगा, डियर बॉस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो भैया। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते ना। बाकी आतिफ भाई ने भी एक मैसेज किया है और लिखा है, डियर मुदीर रात की हटा के मॉर्निंग की कर दो चलेगा। अरे बीच में शिफ्ट लिखना भूल गए, रात की शिफ्ट हटा के मॉर्निंग की कर दो, घर वालों को घुमा नहीं पाता हूँ। अरे भाई साहब, पता है आतिफ भाई को अपने लिए कोई चिंता होगी भी नहीं, आतिफ भाई को जो भी काम दे रहे हैं इनके बॉस ये कर रहे हैं, लेकिन इनको घर वालों की चिंता कि घर वाले जो है ना उनको घुमाना है, तो सारा तो मसला घूम फिर के घर वालों पे ही आता है। फिर हुसैन भाई ने लिखा है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियर बॉस। सुनो आज डियर बॉस, हुसैन भाई के जितने भी बॉस हैं जिनके एम्प्लॉई हुसैन हैं, तो वो अपने लिए ही समझो इसे। लिखते हैं, डियर बॉस आपसे एक दिल की बात अर्ज है, मेरी शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में चेंज कर दें, दिन में काम करते लगता है कि सूरज भी मुझसे ओवर टाइम करवा रहा है। दर्द है ये इनके बातों में। रात में वैसे भी मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। ओह क्या बात है, आगे ब्रैकेट में लिखा नहीं है लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूं, चमगादड़ के साथ दोस्ती अच्छा जी। इसलिए मेरी प्रोडक्टिविटी भी 4K अल्ट्रा HD में आ जाएगी। हुसैन साहब कहां से चेपा है, अगर आप मेरी शिफ्ट नाइट में कर दें तो मैं दिल से दुआ करूंगा कि आपकी चाय कभी ठंडी ना हो। इस गरीब एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पर थोड़ा रहम फरमाइए। नाइट शिफ्ट इज इक्वल टू हैप्पी एम्प्लॉय, हैप्पी बॉस, हैप्पी कंपनी। आपका फर्मा बरदार एम्प्लॉय। ओ फर्मा फर्मा बरदार एम्प्लॉय हमें मेरा भैया, ये तो तुमने गदरी कह दिया। अबे भाई बहुत दिनों बाद ये लव सुना यार। मेरी अम्मी कहा करती थी, देखो फला का बच्चा मामू का मामी का बच्चा सादिक कितना ज्यादा फरमा बरदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मेरी औलाद है जिसको इतना खराब निकम्मा निकल रहा था। माशाल्लाह अम्मी ने मुझे बहुत कोसा है, रख रख के कोसा है। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, किस भाई का सलाम लिखा है मोहसिन भाई ने, डियर बॉस तुमसे जो कहूंगा वो मानोगे नहीं। तुमसे जो कहूंगा वो मानोगे नहीं, बहुत बेकार इंसान हो। तो खत ही क्यों लिखो, हम देखो ये होता है, मैं जब कह रहा हूँ खत लिखो तो खत नहीं लिख रहे भाई लोग। अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकाली है मोहसिन भाई ने ना, मुझे समझ में आ रहा है ब्रैकेट में कुछ और लिखना चाह रहे हैं कि तुम सामने पढ़ जाओ तो मैं मुक्का मार दूं, लेकिन ठीक है। एक और भाई है, इनने नाम नहीं लिखा है और सलाम के बाद कहा है डियर डैश कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता सॉरी, के सर, ओके उस मैं आधा अधूरा पढ़ रहा हूँ। डियर डैश कंपनी के सर, बीवी को इस वीकेंड मॉल ले जाना है, वीकेंड में ड्यूटी मत लगाना। अरे भैया अरे भैया, ये बीवी का डर मुझे अच्छा लगा। इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और देखिए इस तरह का खत अगर आपके पास आ रहा है, अननोन नंबर से भी आ रहा है, बॉस लोग जितने भी हैं, तो प्लीज ऐसे खत पर थोड़ा गौर करें। नाम यहाँ पर अच्छी बात है, इन्होंने लिखा ही नहीं है, मुझे लग रहा है इसी डर में नहीं लिखा कि बॉस को सही में अगर ये बात पता चल गई तो क्या होगा। डियर कंपनी के सर, बीवी को इस वीकेंड पे, भाई देखो इनकी बीवी को घुमाने दो यार, कितने जालिम बॉस है यार लोग आजकल, मतलब सही में अगर मेरे हाथ मैं बॉस बनू ना, मैं सबसे पहले लोगों को बैठाल कर पूछू तुमको कौन सा समय चाहिए काम करने के लिए। दो लोग अगर एक ही समय मांग रहे हैं जहां पर टकराव हो जाए तो इनकी हफ्ते हफ्ते में चेंज करता रहूं या महीने महीने में चेंज करता रहूं, नहीं तो अगले आदमी को भी मौका मिल जाएगा ऐसे यार ये तो। लेकिन मैं ऐसे जुल्मी लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं हूं जो इस तरह का जुल्म करते हैं कि एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हो यार। लेकिन प्यारे लोग, एम्प्लॉई प्यारे होते, पता नहीं क्यों एम्प्लॉई पे हमेशा दिल आता है। बाकी स्टूडियो की घड़ी में 6:51, फजील को इजाजत लेने और आपको इजाजत देने का वक्त आ गया है। उम्मीद है ये खत जो आपने मुझे लिखा है हल्के हाथ से मेल पर अपने बॉस को भी चिपका दोगे आप, इतने तो शाणे हो ही कि अपनी बात कह ही पाओगे। बाकी मॉर्निंग हो चाहे वो आफ्टरनून की हो या फिर इवनिंग की शिफ्ट हो, काम तो काम है, करना ही है, ज़िंदगी चल जाती है। एक बार बॉडी जो है अपने आप को अडेप्टेबिलिटी में डाल देती है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। जैसे होता नहीं आप लद्दाख पहाड़ी एरिया में जाएं तो और ऊपर अगर आपको जाना हो तो आप एक्लमेटाइज होते हैं। तो वैसे ही जहां आप काम कर रहे हैं एक बार रिदम में सेट हो गया तो आप मॉर्निंग हो इवनिंग हो आफ्टरनून हो कभी भी हो आप काम कर लेते हैं। हमारी बॉडी ऐसी ही बनी है, उम्मीद है कि ये काम चलता रहेगा और जैसी आप शिफ्ट चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे अब कल शाम 6:00 एक नए टॉपिक के साथ और आपके खत के साथ। फिलहाल इजाजत। बाकी हिमेश की आवाज में ये 13 सुरूर गाना आपके लिए, अपना ख्याल रखिए और कल वापस इसी जगह पे अपने खत के साथ वापस आइए। दिल से देसी।

लेकिन सवाल ये है कि आखिर AI है क्या, ये काम कैसे करती है, और सबसे अहम बात कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस टेक्नोलॉजी का आपके फ्यूचर से क्या ताल्लुक है। आज हम इसी बारे में आसान अंदाज में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक आम सी मिसाल ले लेते हैं। आपने कभी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखी और उसके बाद आपको उसी तरह की मजीद वीडियोस तजवीज़ होने लगी, या किसी आपने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर एक चीज़ देखी और फिर आपको उसी किस्म की दूसरी चीज़ें नज़र आने लगी, है ना, होता है ना। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, इन सिस्टम्स के पीछे ऐसी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है जो आपके इस्तेमाल, पसंद और रवैये से मालूमात हासिल करके अंदाजा लगाती है कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज अहम किरदार अदा करती हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर या मशीन को कुछ ऐसे काम करने में मदद देती है जिनके लिए आम तौर पर इंसानी सोच और समझ की ज़रूरत होती है। मसलन मालूमात को समझना, चीज़ों में फ़र्क करना, सवाल का जवाब देना, ज़बान को समझना, मुख्तलिफ पिक्चर्स का एनालिसिस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और बाज़ सूरतों में डिसीशन करने में आपको मदद करना। और अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज तक महदूद नहीं रही। आज AI का इस्तेमाल सेहत, बैंकिंग, तालीम, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, रिसर्च और फिर गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उन जैसे मुख्तलिफ शोबों में भी बढ़ रहा है। मसलन हेल्थ के शोबे में AI डॉक्टर्स को पास मेडिकल रिपोर्ट्स और तस्वीर का तज्जिया करने में मदद दे सकती है। बैंकिंग में अगर कोई डाउटफुल लेन देन है तो उसको शनाख्त करने में मदद मिल सकती है। तालीम में स्टूडेंट्स के लिए सीखने के तरीकों को ज़्यादा पर्सनली बनाने में मदद दी जा सकती है। यानी AI सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखने का नाम नहीं है। यही वजह है कि आज हम AI को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल के करियर के एक बड़े शोबे के तौर पर देख रहे हैं। अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स की दुनिया पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में इदारे तेजी से ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं जो काम को ज्यादा बेहतर, तेज और मौसर बनाने में मदद देती है। इसके साथ ऐसे लोगों की जरूरत भी पड़ रही है जो AI सिस्टम्स को बना सके, उनको समझ सके, उनकी निगरानी कर सके और ये फैसला कर सके कि उन्हें सही और जिम्मेदाराना तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब ये है कि आज स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला एक तालिबिल जब चंद साल बाद यूनिवर्सिटी से फारिग होगा तो मुमकिन है कि वो ऐसी जॉब के लिए एप्लीकेशन दे जिसका नाम आज उसे शायद मालूम भी ना हो। यही तो फ्यूचर के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जॉब्स की दुनिया बदल रही है लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या AI इंसानों की जॉब्स ख़त्म कर देगा? ये सवाल आजकल बहुत अहम है और बहुत आम है। जब भी कोई नई AI टेक्नोलॉजी सामने आती है लोग सोचते हैं कि अगर एक मशीन वो काम कर सकती है जो पहले एक इंसान करता था तो फिर इंसान की ज़रूरत क्यों रहेगी। लेकिन हकीकत इतनी सादा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की तारीख हमें बताती है कि नई टेक्नोलॉजी कुछ कामों को बदल सकती है, कुछ कामों को खुदकार यानी ऑटोमेटिक बना सकती है, लेकिन साथ ही नए काम और नए शोबे भी पैदा करती है। मसलन आज से कई साल पहले सोशल मीडिया मैनेजर, ऐप डेवलपर या फिर बाज डिजिटल मार्केटिंग की मुलाजमतें इस शक्ल में मौजूद नहीं थीं जिस तरह आज हैं। इसी तरह AI भी मुलाजमतों की नौयत बदल रही है। कुछ काम शायद मशीन ज़्यादा तेज़ी से कर सकें लेकिन इंसानों को फिर भी
क्रिएटिव सोच, डिसीजन

0: کرنے، لوگوں کو سمجھنے، ٹیم کو لیڈ کرنے اور پھر موریلٹی کو حساب سے بھی دیکھا جائے تو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے مستقبل میں صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ کی ڈگری حاصل کر لیں، آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کی عادت بنانی ہوگی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ابھی سے یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ کو کن مہارتوں میں دلچسپی ہے، آپ کن ایکسپرٹیز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی پسند ہے؟ کیا آپ کو میتھس اور پرابلم سولو کرنا پسند ہے؟ کیا آپ کو ریسرچ کرنا پسند ہے؟ یا شاید آپ کو لوگوں سے بات کرنا، چیزوں کو تھوڑا منظم کرنا اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنا زیادہ پسند ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اے آئی کی دنیا میں ان سب صلاحیتوں کے لیے جگہ موجود ہے، اور آج کے شو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اے آئی میں کام کرنے کے لیے صرف کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہی واحد راستہ نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سوال ایک بار پھر یاد رکھیے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیوچر میں جابز ختم کرنے کے بجائے زیادہ ملازمتیں پیدا کرے گی؟ ہم دوبارہ اس کے اوپر آئیں گے، لیکن آپ سنتے رہے ایف ایم 107 جہاں پہ آپ شو سن رہے ہیں فیوچر کیریئر وتھ آرج مہوش خان۔ جب ہم اے آئی کا نام سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں فوراً کمپیوٹر کوڈنگ اور بہت سے جو مشکل کچھ میتھس کے کچھ کوئسچنس وغیرہ ان کا خیال آتا ہے، کیوشنز آ جاتی ہیں بہت ساری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آئی کی دنیا بہت وسیع ہے، اس شعبے میں ہر شخص کا کام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اے آئی سسٹمس بناتے ہیں، کچھ انہیں بہتر بناتے ہیں اور کچھ ان کے اخلاقی پہلوؤں پر کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اے آئی سے جڑی مصنوعات اور منصوبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان کیریئرز کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا کیریئر ہے اے آئی انجینئر۔ اے آئی انجینئر کا کام ایسے سسٹمز اور ایپلیکیشنز تیار کرنا ہوتا ہے جو معلومات کو سمجھ سکیں، ڈیٹا سے سیکھ سکیں، پیٹرنز کو پہچان سکیں اور مختلف مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکیں۔ مثلاً اگر کسی کمپنی کو ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو کنزیومرز کے سوالات کا جواب دے، یا پھر کسی پکچر میں موجود چیزوں کو پہچان سکے، تو اے آئی انجینئر اس سسٹم کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے پروگرامنگ، میتھس، ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور مسئلہ حل کرنے کی اچھی مہارت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ کام کرنا، نئی چیزیں بنانا اور مشکل مسائل حل کرنا پسند ہے تو یہ کیریئر آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا جو کیریئر ہے وہ ہے مشین لرننگ انجینئر۔ مشین لرننگ اے آئی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کمپیوٹر کو ہر چیز ایک ایک کر کے بتانے کے بجائے اسے ڈیٹا سے سکھانے کے قابل بنایا جائے۔ مثلاً جب کبھی آپ کسی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ پر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ ویب سائٹ آپ کو آپ کی دلچسپی کے مطابق مزید چیزیں دکھانا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے پیچھے مشین لرننگ استعمال ہوتی ہے۔ ایسے مشین لرننگ انجینئر ماڈلز تیار اور بہتر کرتے ہیں جو ڈیٹا سے سیکھ کر اندازے یا پریڈکشنز کر سکیں۔ اس شعبے میں پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس کی سمجھ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نمبرز، ڈیٹا اور مسائل حل کرنا اچھا لگتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا آپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ تیسرا کیریئر ہے اے آئی ایتھکس اسپیشلسٹ۔ یہ ایک ایسا کیریئر ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یا بہت کم سنا ہو۔ اے آئی ایتھکس اسپیشلسٹ، جیسے جیسے اے آئی طاقتور ہو رہی ہے ویسے ویسے کچھ اہم سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثلاً اگر اے آئی کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرے تو کیا وہ فیصلہ منصفانہ ہوگا؟ اگر اے آئی کو بہت زیادہ ذاتی معلومات دی جائیں تو کیا لوگوں کی پرائیویسی محفوظ رہے گی؟ और अगर AI का फैसला गलत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी हो? ऐसे ही सवालात पर काम करते हैं AI एथिक्स स्पेशलिस्ट। वो देखते हैं कि AI सिस्टम्स में किसी खास ग्रुप के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही, लोगों का पर्सनल डेटा महफूज है या नहीं, और AI को जिम्मेदाराना तरीके से काम इस्तेमाल करना आ रहा है कि नहीं। इस करियर की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी की समझ काफ़ी नहीं, कानून, अखलाकियात, समाज और इंसानी रवैयों की समझ भी बहुत अहम हो सकती है।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझ कर उठाइए।
0: फिर आ जाता है एक और करियर जो है AI प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आपको टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है लेकिन आपका दिल हर वक्त प्रोग्रामिंग करने को नहीं चाहता, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए AI प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा करियर भी मौजूद है। बुनियादी तौर पर AI प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी टीम और कारोबारी टीम के दरमियान रابطे का किरदार अदा करता है। मसलन कंपनी एक नई AI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहती है, प्रोजेक्ट मैनेजर ये समझने की कोशिश करेगा कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स होने चाहिए, टीम किस तरह काम करेगी और पूरा प्लान किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस काम में लीडरशिप, प्लानिंग, कम्युनिकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अहम है। यानी अगर आप लोगों के साथ काम करना, नए आइडियाज देना और मंसूबा बंदी करना पसंद करते हैं तो AI की दुनिया में आपके लिए भी जगह है। एक और दिलचस्प शोभा है AI ट्रेनर। AI सिस्टम्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए अच्छे मेयार का डेटा और दुरुस्त मिसालें दरकार होती हैं। AI ट्रेनर्स मुख्तलिफ मालूमात को मुनज्जम करने, लेबल करने, डेटा के जवाबात को एक तरफ करने और सिस्टम्स की कारकर्दगी को रिव्यू करने में बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मसलन अगर एक AI सिस्टम को इंसानी जबान समझनी है तो उसे बहुत सी मिसालों से सीखना होगा। यहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उन मालूमात को दुरुस्त अंदाज में तैयार और जान सकें। तो क्या AI सिर्फ कंप्यूटर साइंस के तलबा के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये बात याद रखें, AI की दुनिया में इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, बिजनेस ग्रेजुएट्स, डिजाइनर्स, एजुकेटर्स, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और एथिक्स एक्सपर्ट्स सबके लिए मौके मौजूद हैं। क्योंकि AI अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये मुख्तलिफ शोबों के साथ मिलकर काम कर रही है। एक डॉक्टर AI को सेहत के शोबे में इस्तेमाल कर सकता है, एक बिजनेस ग्रेजुएट AI बेस्ड बिजनेस स्ट्रेटजी पर काम कर सकता है, एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट AI के जरिए कंटेंट और कम्युनिकेशन के नए तरीकों पर काम कर सकता है, एक टीचर AI को तालीम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी आपका जो भी मौजूदा शौक है और तालीमी पस मंजर कुछ भी हो, आप AI से जुड़े रास्ते तलाश कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आप सीखने के लिए तैयार हों, अपनी स्किल्स को वक्त के साथ बेहतर कर रहे हों और ये समझने की कोशिश करें कि AI आपके मुंतखब करदा शोबे को किस तरह तब्दील कर रहे हो। और यही वजह है कि फ्यूचर करियर के बारे में सोचते हुए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आज कौन सी जॉब मौजूद है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले 5 या 10 सालों में दुनिया को किस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर वाकई आप AI के शोबे में जाना चाहते हैं तो अब आपको यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए? तो इसके बारे में जानते हैं हम अपने सेगमेंट करियर से कैंपस तक में। अब तक हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इस शोबे में कौन कौन से करियर्स मौजूद हैं, लेकिन अब एक अहम सवाल आता है, अगर आपको AI में अपना मुस्तकबिल बनाना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? जैसे कंप्यूटर साइंस ही वाहिद रास्ता है, या फिर बहुत ज़्यादा रियाजी होनी चाहिए? क्या आपको यूनिवर्सिटी जाने से पहले कोडिंग आनी चाहिए? तो आइए इन सवालों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि AI में जाने का रास्ता सिर्फ एक नहीं है। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी से मुझे हर चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले अपनी जो आपकी बेसिक तालीम है उसको मजबूत करें, अपनी दिलचस्पी को समझें और आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल्स बनाना शुरू करें जो फ्यूचर में आपके काम आएंगी। AI के लिए सबसे आम तालीमी रास्तों में कंप्यूटर साइंस एक है। कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में सीखते हैं। आगे चलकर इसी बुनियाद पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में स्पेशलाइजेशन की जा सकती है। अगर आपको कोडिंग, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है, लेकिन ये एक वाहिद रास्ता नहीं है। एक और अहम शोबा है डेटा साइंस। आज की दुनिया में डेटा बहुत अहम है। कंपनीज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, सरकारी इदारे हर रोज़ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ डेटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं होता। असल काम ये है कि इस डेटा को समझा जाए और इससे मुफीद मालूमात हासिल की जाए। डेटा साइंस में स्टूडेंट्स डेटा प्रोग्रामिंग, स्टेट्स एनालिसिस के बारे में मशीन लर्निंग सीखते हैं। अगर आपको रिसर्च नंबर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो डेटा साइंस आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेक्शन हो सकती है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। AI सॉफ्टवेयर के बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको मेंटेन करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। आपको बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइंस करने के उसूल सिखाते हैं। AI स्किल्स को बाद में आप टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक और रास्ता है रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग। अगर आपको इंटेलिजेंट मशीन्स, रोबोट्स और ऑटोमेशन में दिलचस्पी है तो आप इंजीनियरिंग के साथ AI को कंबाइन कर सकते हैं। मसलन मुस्तकबिल में रोबोट सिर्फ फैक्ट्रीज में ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च और मुख्तलिफ दूसरे शोबों में भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ एक अहम बात है, सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होगी। आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री आपको एक मजबूत फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन आज के तेज़ी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर में एम्प्लॉयर्स ये भी देखते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। मसलन अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना काफ़ी नहीं, कोशिश करें कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, प्रोग्रामिंग सीखें, पाइथन जैसी जबान से शुरुआत की जा सकती है, डेटा के साथ काम करना सीखें, मशीन लर्निंग की बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझिए और आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानें। लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही अहम नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे AI ताकतवर हो रही है वैसे वैसे ह्यूमन स्किल्स भी ज़्यादा अहम होती जा रही है। मसलन कम्युनिकेशन, आपको अपने आइडियाज़ दूसरों तक वाज़ेह अंदाज में पहुँचाना आना चाहिए। टीम वर्क, क्योंकि मुस्तकबिल के ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों की टीमें मिल के करेंगे। फिर आदत है क्रिएटिविटी, ये बहुत से काम कर सकती है लेकिन नए सोचने और मुख्तलिफ तरीके से मसाइल को देखने की सलाहियत हमेशा अहम रहेगी। लीडरशिप, अगर आप मुस्तकबिल में किसी प्रोजेक्ट या टीम को लीड करना चाहते हैं तो लोगों के साथ काम करने और फैसला करने की सलाहियत ज़रूरी होती है। और एक और अहम स्किल है एडेप्टबिलिटी, यानी हालात बदले तो आप भी सीखने और ख़ुद को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी नई है मुमकिन है कि 5 साल के बाद वो आम हो जाए। इसलिए हमें एक ही स्किल पर हमेशा के लिए डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो कोशिश करें कि आपको इंटर्नशिप का मौका मिले। टेक्नोलॉजी कंपनीज, रिसर्च सेंटर्स, इनोवेशन हब्स या डिजिटल

0: ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स आपको ये समझने में इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मदद देती है कि वर्क प्लेस पे असल में काम होता कैसे। कभी कभी चंद हफ्तों या चंद महीनों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको ऐसी चीजें सिखा देता है जो सिर्फ किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। इसके अलावा आज स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के बहुत से रास्ते मौजूद हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, कोडिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा ले सकते हैं, AI कॉम्पिटिशन्स में आप शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ शोबों में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में AI टेक्नोलॉजी, डेटा और डिजिटल सर्विसेज जैसे से जुड़ी हुई जो स्किल्स हैं उनकी अहमियत और बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट सर्विसेज सरकारी इदारों में डिजिटल सर्विसेज को बेहतर बनाने, डेटा को समझने और स्मार्ट सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह हेल्थ केयर भी एक अहम शोबा है। हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर में AI एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पेशेंट की जो मैनेजमेंट है, मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक प्रोसेस और में मुख्तलिफ तरह से मदद दे सकता है। इसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंस में भी डिजिटल सर्विसेज, फ्रॉड डिटेक्शन, AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके लिए दोनों को समझने वाले फाइनेंस और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च और एजुकेशन भी अहम है। कतर में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे शोबों पे काम कर रहे हैं। अगर आप कतर में रहते हैं और अभी स्टूडेंट हैं तो आज से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। डिजिटल स्किल्स सीखिए, कोडिंग की तालीम हासिल करें, अपनी बेसिक नॉलेज इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर करें, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस और वर्कशॉप्स में हिस्सा लें जहाँ पे आपको इंटर्नशिप या रिसर्च के बेहतर मौके मिल सकते हैं। याद रखिए कि करियर एक दिन में नहीं बनता। आज आप जो छोटी स्किल सीखेंगे वो कल आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। हमने जाना कि AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसा शोबा है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करने के तरीके को बदल रहा है। हमने मशीन AI इंजीनियर, AI एथिक्स, लर्निंग इंजीनियर, AI प्रोडक्ट मैनेजर, स्पेशलिस्ट और AI ट्रेनर जैसे करियर्स के बारे में बात की। हमने ये भी देखा कि AI में कंप्यूटर साइंस के अलावा करियर बनाने के लिए डिजिटल साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे भी रास्ते मौजूद हैं। सबसे अहम बात हमने ये समझा कि मुस्तकबिल में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी नहीं होंगे। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी जैसे ह्यूमन स्किल्स भी बहुत अहम रहेंगे। अब वापस आते हैं अपने सवाल की जानिब। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में जॉब्स खत्म करने के बजाय नई मुलाजमतें ज्यादा पैदा करेगी? शायद इस सवाल का एक ही जवाब देना आसान नहीं है। कुछ काम जरूर बदलेंगे, कुछ काम टेक्नोलॉजी खुद करेगी, लेकिन साथ ही नए करियर्स और नए मौके भी पैदा होंगे। असल बात यह है कि हम तब्दीली के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप आज के तालिब इल्म हैं तो मुस्तकबिल से घबराने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें, सीखते रहें, अपनी स्किल्स बेहतर करें और नई टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक मौका समझें। आप सुन रहे थे फ्यूचर करियर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश। अगले शो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक बहुत ही अहम मौजू। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में और वो लोग जो हमारी डिजिटल दुनिया को महफूज रखने के लिए काम करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मुस्तकबिल की तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। मैं हूँ मावश, ये था फ्यूचर करियर। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: इससे शोबे का डिपार्चर, शोबे का यानी काम है कि भाई डिपार्चर को इंश्योर करना, यानी उन लोगों के हवाले से जिनके खिलाफ डिपोटेशन, मुल्क बदरी के हवाले से कुछ फैसला हो, जारी हो चुका हो, तो या फिर ऐसे अफराद जो ख़ुद सफ़र करना चाहते हों, यानी उनकी दखूल और खरूज के हवाले से जो मसाइल हैं ना, उन मसाइल के तहत वो ख़ुद अपने आप को यानी आकर तस्लीम कर दें, सुपुर्द करें और इस तरह वो सफ़र करना चाहते हों तो और मुतल्लिका ऑफिस से उसे इस सेक्शन को रेफ़र कर दिए गए हों तो उनकी प्रोसीजर्स, डिपार्चर जो प्रोसीजर्स हैं ये यहाँ से मुकम्मल की जाती हैं। तो यानी इसमें ऐसे पेशेंट्स का जिक्र भी आता है जिन्हें मेडिकल कमीशन की तरफ से रेफ़र किया गया और उनके डिपार्चर को भी यानी फैसिलिटेट किया जाता है। तो यानी बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट के हवाले से कि जिस शख्स की कानूनी प्रोसीजर्स मुकम्मल होने के बाद मुल्क से रवानगी का कुछ फ़ैसला हो जाता है तो ज़रूरी होता है तो इसके डिपार्चर मुकर्रर कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत मुकम्मल होने को ये यकीनी बनाते हैं। मज़ीद क़िस्मुल मुताबा की तरफ आते हैं, यानी जो ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले हैं मुल्क में रहने के हवाले से, चाहे वो वाफिदीन हों या फिर रहायशी, चाहे उनकी यानी वीज़ा वगैरह की नौीयत कोई भी किसी भी नौीयत के उनके वीज़ाज हों, या फिर वो मुकीमीन, वो रिहायशी अफराद जिनको अपना जो है ना इकामा या रेसिडेंट उन्हें वक्त पर नहीं मिला हो, तो यानी ओवरऑल जब वो वक्त मतलूबा जो वक्त है, मुकर्रा जो वक्त है वो तजावज़ कर जाए, तो ये सपोज़ के वो दरअसल ख़िलाफ़ वर्जी की हालत में है, तो इस तरह के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले रिहाइशियों के हालात को फॉलो अप करता है ये इदारा, यानी क़िस्मुल मुताबा फॉलो अप सेक्शन। ठीक है, तो फिर उनके हवाले से जो लाजमी जो प्रोसीजर्स हैं वो आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर यानी अगर यहाँ मुखालफत खिलाफ वर्जी की सूरत में अगर ये साबित हो कि यहाँ शरीका कोई कंपनी या कोई अशखास या कोई पर्सनल कोई अफराद यानी इस सिलसिले में ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हैं तो उनको भी ब्लॉक लिस्ट में लाया शामिल किया जाता है। तो ये हो गया क़िस्मुल मुताबा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल अगर हम ये कहें कि ये सेक्शन ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले स्पॉन्सर्स या जो भी मुलाज़मीन हैं, खा कंपनीज या इंडिविजुअल्स, इनको मुख्तलिफ़ बैंड लिस्ट में शामिल करने से मुतालिक प्रोसीजर्स को फॉलो अप करता है, इस सिलसिले में वो काम करता है। अब आते हैं तीसरी किस्म जो उन्होंने बताया, किस्मों मुताबातिल कदाया। ठीक है, तो ये है मुख्तलिफ जो प्रोसीजर्स हैं इसको फॉलो अप करने का सेक्शन है। तो इसमें उन्होंने जैसा कि हमें बताया कि कानून रकम 21 बराए साल 2025 के मुताबिक जो ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले मुतल्लिक अफराद को जो शुऊन नियाबत शुऊन अल-इक़ामा इकामा से मुतालिक जो उनके जो डिफेंस हैं नियाबा है उनको वो उनके सामने पेश किया जाता है, प्रोसिक्यूशन है इकामा से मुतालिक जो प्रोसिक्यूशन है तो उनके सामने पेश किया जाता है, और यानी आगे जो प्रोसीजर्स हैं वो इस सिलसिले में इसको फॉलो अप करते हैं, और इसी तरह इस प्रोसिक्यूशन के पास अगर दूसरी शिकायतें हों तो उनको भी फॉलो अप करने के हवाले से काम करते हैं, और इन जो फ़ैसले सादर होते हैं उन फैसलों को नाफिज करने के लिए भी वो काम करते हैं। इसी तरह प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर यानी किसी को अगर वक्ती तौर पर रोकने की बात आ जाए या फिर किसी को रिहाई करने की बात आ जाए, ओवरऑल ये पूरी ये पूरा प्रोसेस वो करते हैं ये इदारा क़िस्मों मुताबातिल कदाया। ठीक है, तो ये जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि ये तीन सेक्शन हो गए, मज़ीद और भी सेक्शन उन्होंने बताया, क़िस्मुल बहथ व तहर्री, क़िस्मुल हज्ज, क़िस्मुस साला अल खारजिया। तो चलें हम उनसे पूछते हैं बाकी अकसाम की जो अहम डेफिनेशन है, उनकी जो अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमें इस सिलसिले में इसको यानी तफसील से बताएँगे। سيادة الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة، كنا نتكلم عن الأقسام الرئيسية في الإدارة، فالأقسام الأخرى يعني حبذا لو توضحوا لنا هذه.
1: عندنا بعد قسم البحث والتحري، عندنا قسم البحث والتحري يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات على المخالفين على

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. दोस्तों आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग एंड आर वी रेडी. देखिए आज के इस डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है. कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहाँ लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ज्यादा यूज करते हैं. इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल है. टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं. पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है. लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल एप्स के जरिए मैनेज करते हैं. इसी वजह से कई एक्सपर्ट समझते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है. देखिए कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना. जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, सुपरमार्केट में हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है. सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया. इससे टाइम बचता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है. एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी. आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना. तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है. लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं. अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ भी रहे हैं, इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते. लेकिन हाँ, कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है. उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है, अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाती है. गवर्नमेंट्स भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करती हैं क्योंकि इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है. इसी वजह से कभी कभी लोग अपने बजट से ज्यादा खरीदारी कर बैठते हैं और फिर सर में दर्द होता है. सो मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ, कैशलेस सोसाइटी एक सोशल एस्पेक्ट रखती है. हर शख्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती. सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं. अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी हो सकते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए. देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना, बजट मेंटेन करना, सर्विसेज सेविंग गोल सेट करना, मोबाइल एप्स चेक करना, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है. आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं. बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है. डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं. इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं, बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं. अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस, स्मार्ट बजटिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें तो कैशलेस वर्ल्ड उनके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल साबित हो सकता है. वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107. दिल से दिल.

0: 107 presents Tech Update. अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं आपको बताता हूँ अपडेट्स में कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है या क्या काम का है जो आपसे चूक में छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा गैजेट है जो आपको काम आ सकता है। गैजेट्स पर हम आएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपके बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम आने वाली है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेबसाइट जो आपके काम आएगी, अगर आपको म्यूजिकल कुछ करना है आप, या चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आप गाने लिखते हैं, सॉन्ग राइटर, यू वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेट, ये भी आपका कंटेंट जनरेशन हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसका नाम है, पहले तो लिखना है आपको X, फिर डालना है स्लैश, फिर लिखना है माइनस MINUS माइनस डॉट, फिर लिखना है प्रो PRO फॉरवर्ड स्लैश AI। आई नो नाम बहुत लंबा है, पर लेट मी जस्ट रिपीट। ओके, तो आपने लिखा सबसे पहले X, एक्सरे वाला, उसके बाद आपने डाला डैश, और उसके बाद आपने लिखा माइनस MINUS, उसके बाद आपने डॉट लगाना है, फिर लिखना है प्रो PRO, फिर फॉरवर्ड स्लैश और लिखना है AI। अब क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऑडियो है और उसके पीछे जो है नॉइजेस हैं, या मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉन्ग, आपने कोई गाना जो है चुन लिया और आप चाहते हैं कि इस पे कवर बनाना है, मुझे कुछ ट्राई करना है, यू वांट टू सिंग, यू वांट टू रैप, कुछ भी करना है, आपने वो ऑडियो अपलोड किया इस वेबसाइट पे और ये जो है उसके सारे कॉम्पोनेंट जो उसमें बज रहे हैं उन सबको अलग करके आपको दे देगा। Right from drums to everything will be separated और audio अलग, तो आप उन सबको जैसे मर्जी चाहें experiment कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहे use कर सकते हैं, या simple audio हटा के जो main vocal है उसे हटा के आप music पे कुछ कर सकते हैं। It will not only teach you music, it will also help you कि आप अपने content generation के लिए कुछ अगर tweak करना चाहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी languages में गाना बनाते हैं और वो music use कर रहे होते हैं जो original Bollywood के किसी movie का होता है। That is a kind of content जो बहुत ही niche है, अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो उतना हिट नहीं किया है, मगर इसका मतलब ये भी है कि opportunity की जो खिड़की है वो खुली हुई है, यहाँ पे you can also do it. So this is one of the most powerful websites. अब जरा एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो आपके बहुत काम आएगी, और ये जो वेबसाइट है ये है म्यूजिकल बना रहा हूं इसको, म्यूजिकल नहीं है, हड्डियों की आवाज म्यूजिकल भी हो सकती है वैसे तो। दिस इज मसल विकी। ओके, मसल विकी MUSCLEWIKI.com। तो मसल विकी पे जब आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको पूरा बॉडी एनाटॉमी दिखा देगी, भाई देखो आपको कौन सी मसल पे काम करना है, आप कोई भी मसल इसमें चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली मसल पे काम करना है या इन दो मसल्स पे साथ में काम करना है, एंड उसके बाद आपको ये पूरा पूरा चार्ट बना के देगा कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया है और ये वाली एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, तो आपको आसानी रहेगी। समटाइम्स यू नो पीपल हु आर शाय लाइक मी, हम लोग पूछ नहीं पाते कि भाई ये कैसे करना है वैसे करना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता भाई, होता है हमसे एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांगा जाता। तो हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किस मसल पे या कैसे काम करना है, तो ये मसल विकी जो वेबसाइट है इस पे जाके बहुत बहुत हेल्प होगी आपकी। आप जहां पे टारगेट करना चाहते हैं उस जगह की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यू नीड टू सिंपली फॉलो द स्टेप्स एंड दैट इज इट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा जरा जरा खबर की तरफ, ठीक है। तो खबर आ चुकी है मार्केट में, अभी बात करी है बिल गेट्स ने, बड़ा शौक था कि बिल गेट्स, अच्छा तो बिल गेट्स ने बात करी है कि AI रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ग्लोबली एक इशू बन चुका है। अब वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, उनका ये भी कहना है कि AI की सेफ्टी को लेकर और उसको मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज पे बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है, लोग जो हैं उसके फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑल्सो उन्होंने बात करी AI को लेकर कि किस तरीके से एविएशन के सेफ्टी सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे, एंड साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेशन बहुत सारे AI पे बहुत जरूरी है। आई होप कि उनका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ा दो, आई रियली होप सो। बट ये थी अपडेट्स, दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी, सी यू इन द नेक्स्ट वन।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सुन्नत की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ जिंदगी के बड़े फैसलों में हमारी रहनुमाई नहीं करती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की इंतहाई मामूली हरकात को भी अदब और खूबसूरती अता करती है। हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे गुफ्तगू करें, कैसे मजलिस में बैठें, हत्ता कि अगर हमें छींक आ जाए तो उस वक्त हमारा अंदाज क्या हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें इसके भी तालीम दी है। और शायद यही सुन्नत की जामियत है कि इंसान जिंदगी के किसी लम्हे में भी नबवी रहनुमाई से महरूम नहीं रहता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतसा वदअ यदहु औ थौबहु अला फीह वखफद औ गद्द बिहा सौतहु। इसे रिवायत किया है अबू दाऊद, तिर्मिजी और अहमद ने। रिवायत किया है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपना हाथ या अपना कपड़ा मुंह पर रख लेते और उससे अपनी आवाज़ को हल्की या पस्त करते। तो सामने किराम, इस मुख्तसर से हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छींकने के दो आदाब सिखाए। पहला अदब मुंह को ढांपना और दूसरा आवाज को पस्त रखना। बज़ाहिर दोनों बातें बहुत मामूली मालूम होती हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए दोनों का ताल्लुक किससे है? दूसरों को अजियत से बचाने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह को ढांपते ताकि मुंह या नाक से निकलने वाली कोई चीज पास बैठे हुए शख्स तक न पहुंचे। इसी तरह आवाज को पस्त रखते ताकि अचानक बुलंद आवाज से दूसरों को तकलीफ या नागवारी न हो। तो आज की सुन्नत का सबक ये है कि अपनी जरूरत पूरी करते हुए भी दूसरे की राहत का ख्याल रखिए। छींक एक फितरी अमल है, इंसान उसे हमेशा रोक नहीं सकता, लेकिन सुन्नत ये नहीं कहती कि छींक ही मत आए, बल्कि सुन्नत हमें ये बताती है कि एक ऐसा अमल जो आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन इसका अंदाज तो आपके इख्तियार में है। यही उसूल जिंदगी के कितने ही मामलात पर लागू होता है। हमें फोन पर बात करनी पड़ सकती है, लेकिन मजलिस में अपनी आवाज धीमी रख सकते हैं। हमें रास्ता इस्तेमाल करना है, लेकिन दूसरों के लिए रुकावट पैदा करने से बच सकते हैं। हमें अपनी जरूरत पूरी करनी है, लेकिन दूसरे इंसान के आराम को नजरअंदाज किए बगैर। सामिन इकराम, आज हम सेहत और सफाई के हवाले से भी जानते हैं कि छींक के साथ बारीक कतरात फिजा में फैलते हैं, इसीलिए उमूमी सेहत के आदाब में छींकते और खांसते वक्त मुंह और नाक को मुनासिब तरीके से नापने की ताकीद की जाती है। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस अमल की एक इजाफी खूबसूरती है, वो सफाई का दव इख्तियार तो करता है, साथ ही ये भी याद रखता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, और हर दिन एक ऐसे फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं जो अवेयर करता है कि कैसे आप नए जमाने के स्कैम या फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये नए जमाने का वो स्कैम है जो आज कल लोगों के सामने से हो रहा है। ये है डिलीवरी स्कैम्स, आजकल बहुत ज्यादा जो कि बढ़ चुके हैं और हर तीसरा बंदा इसका शिकार बन रहा है। ये स्कैम अचानक आपके फोन पर एक नॉर्मल एसएमएस या आपके इनबॉक्स में एक ईमेल के जरिए आते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपका कोई पार्सल या पैकेज आपके घर डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका एड्रेस मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर आपके ऊपर एक या दो डॉलर या रियाल की बहुत ही छोटी सी डिलीवरी फी बाकी है। इस मैसेज के नीचे एक ऑफिशियल दिखने वाला लिंक भी होता है ताकि आप उस मैसेज पे ज्यादा यकीन कर पाए, जिसे क्लिक करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ये बात उसमें लिखी होती है, या फिर आप फीस पे करने के बाद उस लिंक को क्लिक करें, फीस पे करें, और फीस पे करने के बाद आपके पास आपका पार्सल पहुंच जाएगा। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है क्योंकि आम तौर पे आपके घर पे पार्सल आते रहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं जो आपके घर पे डिलीवर होना होती है। लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा स्कैम, जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जो लिंक होता है उसमें दिया गया लिंक असल में एक फिशिंग ट्रैप।

0: होता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक फेक डिलीवरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली होती है, चाहे वो कतर पोस्ट की हो या DHL की हो या कोई भी वेबसाइट ऐसी हो जो डिलीवरी करती है आपके घर तक सामान को। जब आप वहां अपना एड्रेस और क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं तो स्कैमर्स आपका पूरा बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। लोग इस ट्रैप में इसलिए आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता ही करता है और उनका कोई पार्सल आने वाला है ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह से आप बच सकते हैं। कैसे? कुछ स्कैम से बचने के सॉल्यूशन भी हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि किसी भी अनजान लिंक पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं स्कैम होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मैंने तो अभी एड्रेस डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डाली है। हो सकता है आप लिंक क्लिक करें और आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, आपके लैपटॉप में वायरस आ जाए और वहां से वो मालवेयर वायरस के जरिए आपको स्कैम कर सकता है। लिंक पर क्लिक ना करना सबसे आसान है। किसी भी SMS या ईमेल में आए हुए डिलीवरी लिंक पर क्लिक ना करें। असली डिलीवरी कंपनीज कभी भी ऐसा रैंडम नंबर से ना लिंक नहीं भेजती हैं आपको। और फिर भी अगर आपको लगे तो आप कोशिश करें कि पहले उस लिंक को पढ़ें और समझें कि क्या ये लिंक असल में मौजूद है या नहीं। अगर आपको किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो डायरेक्ट आप गूगल सर्च इंजन पे जाके क्लिक करें, उस नाम को लिखें, कतर पोस्ट या उनकी वेबसाइट लिखें जिस वेबसाइट से आपके घर डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद ही आप बाकी का प्रोसेस करें। उसके अलावा छोटी फीस का ट्रैप, इससे भी बचना बेहद जरूरी है। स्कैमर्स जानबूझकर $1 या $2 जैसी बहुत छोटी अमाउंट या 1-2 रियाल या फिर 20-25 इंडियन रुपीस या 100-150 पाकिस्तानी रुपीस के बारे में बात करते हैं। ऐसे छोटे अमाउंट मांगते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे पेमेंट कर दें। ऐसे किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट ना करें क्योंकि ये छोटे पेमेंट जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। सेंडर का नंबर भी चेक करें। अगर मैसेज किसी नॉर्मल 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से आया है या ईमेल का एड्रेस अजीब है तो वो 100% स्कैम है। असली कंपनीज के मैसेज उनके ब्रांड नेम से आते हैं। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी स्कैम को पकड़ने का। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो शुरुआती जो मिनट्स होते हैं या 1-2 घंटे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइबर क्राइम को ऐसे में रिपोर्ट करें। अगर आप कतर में हैं और आपके साथ ऐसा कोई खुदा ना खासा फ्रॉड हो जाए, या फिर आप किसी और मुल्क में हैं, अगर आपके साथ वहां पर फ्रॉड हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक को इत्तला करें। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें। और भी कई जरिए हैं। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई बार हेल्पलाइन नंबर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर को भी आपको गौर से पढ़ना है क्योंकि ये एक और नए तरह का स्कैम है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर आपको डिलीवरी के स्कैम से बचना है। लिंक पर कभी क्लिक ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करें कि वो सही है या नहीं, छोटी फीस के ट्रैप में कभी ना पड़े और सेंडर का नंबर हमेशा चेक करें क्योंकि ब्रांड कभी भी नंबर से मैसेज नहीं करता। और खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए फ्रॉड से। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत खूबसूरत बुनियादी उसूलों और अच्छे अखलाक पर कायम है। इज्जत, खुलूस, जिम्मेदारी, सबर, शुक्रगुजारी और मेहमान नवाजी जैसे रवैये कतरी माशरे की खास पहचान है। ये उसूल सिर्फ माशरे की खास पहचान नहीं बल्कि लोगों के रोजमर्रा अमल में भी नजर आते हैं। दोस्तों की इज्जत करना कतरी माशरे का अहम उसूल है। किसी से मिलते वक्त सलाम करना, नरमी से बात करना, सामने वाले की बात तवज्जो से सुनना एहतराम का इजहार है। बुजुर्गों का खास लिहाज रखा जाता है क्योंकि उनके पास जिंदगी का कीमती तजुर्बा होता है। बुजुर्ग सिर्फ खानदान के बड़े फर्द नहीं होते बल्कि रिवायत और यादों के मुहाफिज भी होते हैं। उनकी नसीहत सुनना और उनके तजुर्बे से सीखना नई नस्ल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खुलूस का मतलब है कि दूसरों से सच्चाई और अच्छे इरादे के साथ पेश आया जाए। कतरी सकाफत में मुस्कुराहट, प्यारी गुफ्तगू और खैर ख्वाही को अहमियत दी जाती है। कभी कभी एक छोटा सा रवैया, जैसे किसी की खैरियत पूछना या मुश्किल वक्त में हौसला देना, रिश्ते को मजबूत बना देता है। नरम लहजा हर मुलाकात को खुशगवार बना सकता है। मेहमान नवाजी कतरी सकाफत का रोशन पहलू है। मेहमान का खैर मुकदम करना, उसे आराम देना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना अच्छे अखलाक की अलामत है। अरबिक कहवा और खजूर मेहमान नवाजी की मशहूर अलामतें हैं। मेहमान को कहवा पेश करना खुलूस और इज्जत का इजहार होता है। इस रिवायत की खूबसूरती सिर्फ पेश की जाने वाली चीज में नहीं है बल्कि उस मोहब्बत में होती है जिसके साथ वो पेश की जाती है। कतरी माशरे में हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी होती है। घर में अपने फर्ज निभाना, बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना और अपने वक्त की कदर करना अच्छे रवैये हैं। जिम्मेदारी सिर्फ किसी बड़ी बात का नाम नहीं होता, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी इसी का हिस्सा हैं। अपने घर को साफ रखना, चीजों की कदर करना, वादा पूरा करना और दूसरों के हकूक का लिहाज रखना जिम्मेदारी को जाहिर करता है। सबर इंसान को मुश्किल जरूरत हाल में पुरसुकून रहने में मदद करता है। सबर का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं बल्कि समझदारी और हिकमत के साथ अपना रास्ता जारी रखना है। कतरी सकाफत में सुलह, नरमी और अच्छी गुफ्तगू को पसंद किया जाता है। अगर किसी बात पर मुख्तलिफ राय हो तो अदब और तहम्मुल के साथ बात करना बेहतर रवैया होता है। इससे रिश्तों में इज्जत भी कायम रहती है और दिलों में खुरबत भी बढ़ती है। जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करना और दूसरों का शुक्रिया अदा करना बहुत खूबसूरत आदत है। शुक्रगुजारी से खुशी और तसल्ली का एहसास बढ़ता है। घर के किसी फर्द, दोस्त या किसी मददगार शख्स ने अगर आपके लिए कुछ किया हो तो उसे शुक्रिया कहना छोटा मगर पुरअसर अमल है। ये अल्फाज दूसरे शख्स को बताते हैं कि उसकी मेहनत और खुलूस को नजरअंदाज नहीं किया गया। खानदान कतरी माशरे में अहम मकाम रखता है। वालदैन की खिदमत, रिश्तेदारों की खैरियत पूछना और खुशी या परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होना खानदानी रिश्तों को मजबूत बनाता है। बच्चे अपने घर से अदब और रवैये सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि घर के बड़े एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो वो भी इसी तरह पेश आना सीख सकते हैं। इस तरह अच्छे उसूल नस्लों तक पहुँचते हैं। इसके साथ आ जाती है सादगी और तवाज़ो। तवाज़ो का मतलब है कि इंसान अपनी खूबियों के बावजूद नरमी और सादगी से पेश आए, दूसरों को छोटा ना समझे और हर शख्स की इज्जत का ख्याल रखे। सादगी जिंदगी को आसान बनाती है। खुशी के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी खानदान के साथ वक्त गुजारना, मेहमान से मिलना या फिर पुरानी कहानियां सुनना भी खुशी का खूबसूरत सबब बन जाता है। قطری ثقافت کا حسن اسی میں ہے کہ روایت کو اخلاق کے ساتھ یہ جوڑتی ہے. مجلس، قہوہ، لباس یا دعوت اپنی جگہ، لیکن ان سب کی اصلی روح ہے عزت، خلوص اور اپنائیت. آج کی کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ اچھے اصول زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور جب ہم نرمی سے بات کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں اور دل سے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی زیادہ پرامن اور خوشگوار بن جاتا ہے. تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے، ثقافت

आफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूं आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता।

0: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आरजे माविश। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्रोग्राम। मैं आपको लिए चलूंगी एक ऐसे सफर पे जो हमें तारीख के और राग से लेकर रूहानी गहराइयों तक ले जाएगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया शो स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स, यानी अंबिया कराम की कहानियां। ये प्रोग्राम अंबिया कराम की जिंदगियों की कहानियां सुनाएगा, जिनसे हम सबक सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। इस प्रोग्राम का तसव्वुर बहुत सादा मगर गहरा है। हम हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, कामयाबियों और अल्लाह की तरफ से दिए गए सबक पर बात करेंगे। ये कहानियां ना सिर्फ इस्लामी तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि इनमें रूहानी और अखलाकी सबक पोशीदा हैं, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा ये शो तमाम लिसनर्स की दिलचस्पी के लिए हो, वो भी जो इस्लामी तारीख, रूहानी बातों और अखलाकी सबक में दिलचस्पी रखते हैं। और ये शो हर उम्र के अफराद के लिए मौजू साबित हो, बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई इससे फायदा उठा सके। और हमारी थीम यही है कि हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी का जायजा लिया जाएगा, उनकी जद्दोजहद, अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात में सबर और अल्लाह की इताअत को उजागर किया जाएगा। और ये कहानियां आज के जदीद चैलेंजेस से जोड़ी जाएंगी, ताकि सुनने वाले ये जो लाजवाल इकदार हैं उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें। आज का एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो पहले इंसान और पहले नबी जिनकी कहानी से इंसानी तारीख, इंसानी कहानी शुरू होती है। तो रहे हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने इंसान को कैसे तख्लीक किया, जन्नत में कैसे रिहाइश दी और फिर जमीन पर भेजा। ये कहानी हमें तौबा, रहम और जिम्मेदारी का सबक देगी।
0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
1: अब आइए बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के एक जायजे पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे अजीम तख्लीकात में से एक हैं। वो पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया। उनका किस्सा कुरान मजीद में बयान किया गया है, खास तौर पे सूरह अल बकरा, सूरह अल अराफ और दीगर सूरतों में। ये किस्सा हमें बताता है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और अल्लाह की इताअत की अहमियत क्या है। अब आइए जरूरी वाकयात को तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पसे मंजर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला है। फरिश्ते हैरान हुए और पूछा, क्या ऐसा खलीफा जो जमीन पर फसाद करेगा?

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: सबसे पहले जायजा लेते हैं तखलीक के मामले का। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से तखलीक किया, उन्हें शक्ल दी और अपनी रूह फूंककर जिंदा किया। कुरान में है, और जब मैंने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये तखलीक हमें बताती है कि इंसान अल्लाह की सबसे आला मखलूक है, जो मिट्टी से बना मगर रूह इलाही से नवाजा गया। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ने मिट्टी को गूंदा, शक्ल दी और फिर रूह फूंकी। यह अमल हमें इंसानी अजमत की याद दिलाता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ये तखलीक ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी है, जो इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती है। हम आज की साइंस से मुवाजना करें तो ये तखलीक का मौजजा है, जहां अल्लाह ने मिट्टी के अनासर से इंसान बनाया, जो आज की जेनेटिक्स और बायोलॉजी से मुताबकत रखता है मगर इलाही ताकत से। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया। फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, जो एहतराम का इजहार था। ये शर्फ हमें बताता है कि इंसान को इल्म दिया गया है, जो फरिश्तों से भी बढ़तर है। अल्लाह ने फरमाया, और हमने बनी आदम को इज्जत दी। ये इज्जत जिम्मेदारी भी लाती है कि इंसान जमीन पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चले। आज

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: इस किस्से से हमने क्या सीखा? तो आए अपने सेगमेंट वर्ड्स ऑफ विजडम की तरफ, जहां हम देखेंगे अखलाकी इकदार, रूहानी पैगामात और आज की जिंदगी की मुताबिकत। हजरत आदम अलैहि सलाम की कहानी अल्लाह के हुक्म की अहमियत बताती है। एक नाफरमानी से जन्नत से निकाले गए, जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी के कुछ नतायज होते हैं। आज की जिंदगी में यह नमाज रोजे की पाबंदी को याद दिलाता है। उनकी खालिस तौबा और पछतावा हमें बताता है कि गलती के बाद आजी से माफी मांगना जरूरी है। खलीफा के तौर पर इंसान को जमीन की हिफाजत और अमाल की जवाबदेही देनी है। अगर हम रूहानी पैगाम की बात करें तो अल्लाह की तौबा कबूल करने से उम्मीद मिलती है कि अल्लाह का रहम बहुत ही वसी है। इंसान अल्लाह को जानने और इबादत करने के लिए बना है। शैतान का असर हमें बताता है कि शैतान हमें बहकाएगा, लेकिन हमने अपने ईमान में मजबूत तर होना है ताकि उसके फरेब से बचा जा सके। आज की जिंदगी में अगर हम मुताबिकत देखें तो गलतियों की जिम्मेदारी लेकर तौबा करें, जो जाती तरक्की तक आपको ले जाएगा। आज की परेशानियों में तौबा रूहानी तजदीद लाएगी, माहौलियात की हिफाजत और इखलाकी क्यादत की तरकीब मिलती है इससे हमें। इंसानी कमजोरी आलमगीर है, मगर तौबा और ईमान से इलाही मकसद से जुड़ा जा सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने हजरत आदम अलैहि सलाम की कहानी से सीखा कि अल्लाह की इताअत, तौबा और जिम्मेदारी कैसे हमारी जिंदगी को बामकसद बनाती है। हम गलतियां करते हैं, मगर अल्लाह का रहम हमेशा मौजूद है। इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं, तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, तो हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
2: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
3: दिल से देसी।
2: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। क्रिकेट हो
5: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 runs,
4: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।

0: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

साई जिहाद में कोई वादी वो पार करें और उनके हक में उसे लिख ना लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे।